आज शुक्रवार है। शक संवत 1948 के श्रावण माह की 16वीं तिथि। तदनुसार 7 अगस्त सन 2026। इस समय प्रातः के 5:56 हुए हैं। हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ होती है।

0: FM 103.2 MHz पर हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं। सुबह के 6 बजने वाले हैं। हिंदी समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: समाचार के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश में श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था।
2: 7 अगस्त 1905 को देश के आजादी के लिए स्वदेशी आंदोलन का प्रारंभ हुआ था और आपने जो है भारत की नींव डाली गई थी। अंग्रेजों के खिलाफ देशवासियों ने एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी थी। जन जन जुड़ गया था। अभी पिछले सप्ताह आप सबने फ्रेंडशिप डे मनाया। मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे। हमने इतने ही उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है।
1: श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों और अपने हाथों से कपड़े बनाने वाले कारीगरों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया।
2: हैंडलूम डे मनाने का मतलब है कि हर गरीब परिवार, बुनकर परिवार, जो अपने हाथों से अपनी छोटी छोटी घर में लूम पर कपड़े बनाते हैं, और आप भी तो इस प्रकार से एक हैंडलूम की वैरायटी के साथ GRWM वीडियो करके जरूर दुनिया के सामने अपनी बात रख सकते हैं। हैंडलूम के लिए लोगों को प्रेरित कर

0: सकते हैं। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना।
1: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरीटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में 2 प्रकाशन अर्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज 23,731 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय चक्रीय जैव ऊर्जा योजना गोवर्धन को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति ने असम में राष्ट्रीय राजमार्ग 15 के साथ गुवाहाटी के पास बेहारा चरियाली से तेजपुर तक 135 किलोमीटर से अधिक लंबे 4 लेन राजमार्ग के निर्माण को भी मंजूरी दी। देश ने ओडिशा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि-4 का सफल परीक्षण किया। रक्षा मंत्रालय ने बताया कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तनपोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में 2रे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर और भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हो। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनर्समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई नियंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिहा का सामना जापान की हिना केची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:05 हुए हैं। लीजिए पेश है देश वंदना और भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना। भारत देश हमारा है, हमको जान से प्यारा है, दुनिया में सबसे न्यारा है, सबकी आंखों का तारा है।

राजकुमार भारद्वाज का लिखा और गाया भक्ति गीत आपने सुना। संगीत निर्देशन राजकुमार भारद्वाज का था। भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं।

ब्रज सर्वरी का लिखा और संगीतबद्ध किया भक्ति गीत आपने सुना अनुजा सिन्हा की आवाज में। आइए सुनिए आराधना कार्यक्रम में अगली भक्ति रचना। गायक कलाकार हैं श्रेयस पौराणिक।

श्रेयस पौराणिक का गाया लिखा और संगीतबद्ध किया भक्ति गीत आपने सुना। आइए सुनते हैं आराधना कार्यक्रम में ये अंतिम भक्ति रचना।

ऋचा शर्मा का गाया भक्ति गीत आपने सुना और इसी के साथ आज की आराधना संपन्न हुई। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:30 हो चुके हैं। खेती की बात कार्यक्रम में आज जानकारी का विषय भाटा के उन्नत खेती। वाचक है नंद कुमार यादव।

किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। संगवारी हो, आज खेती की बात में लेके पहुंचे हवन भांटा के उन्नत खेती के बारे में जानकारी। भांटा ला हमन बैगन के नाव ले जानथन, जौन हर सोलेनेसी जाति ले आथे। संगवारी हो, एकर उपयोग हमन चटनी बना के, तर के, भूंज के औ अमटहा खाए में उपयोग करथन, जौन मा अब्बड़ कन प्रोटीन और विटामिन के मात्रा पाए जाते। आवाओ जाना थन कि कौन प्रकार के विधि ला चेत करके एला हमन बढ़िया ले लगा सकिन। संगवारी हो, जलवायु के बात करें तो एकर बार 15 ले 32 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के आवश्यकता होते। माटी के बात करें तो एकर बार अलग अलग प्रकार के माटी में हमन लगा सकत हन। फिर पानी निकासी वाला जोन उपजाऊ रेतीली दोमट माटी है, तेन हर एकर पैदावार बर सुघर होते। भांटा के अब्बड़ कन प्रजाति आते, जेला लगा के किसान भाई मन ज्यादा उत्पादन ला ले सकत है। एमा पंजाब बहार, पंजाब नंबर 8, जामुनी गोई, पंजाब बरसाती, पंजाब नीलम, पंजाब सदाबहार, ए नाव के किसम मन बढ़िया होते। संगवारी हो, पनीरी के देखरेख घलाव और रोपण बर घलाव चेत करे बर लगते। बैगन के जौन बीजा है तेला 3 मीटर के लंबा, 1 मीटर के चौड़ा और 15 सेंटीमीटर के ऊंचा बेड में लगा थन तो बनी रही थी। पहलैया बेड में बढ़िया सरहगल हा गोबर के खातु ला डाल देवे। फिर बुवाई ले 2 दिन के पहले कैप्टान के घोल में डाले जाते। जेकर ले का होते, नर्सरी बेड में पौधा हर जौन नष्ट होते तेकर ले बचाव हो जाते। भांटा के बुवाई के जौन बेरा है तेन हर अभी के बेरा बर सुघर माने जाते। एकर बर किसम और माटी के उपजाऊ शक्ति के अनुसार पंक्ति में 60 सेंटीमीटर के और पौधा में 35 ले 40 सेंटीमीटर के दूरिया रख के नर्सरी में बीजा ला 1 सेंटीमीटर के गहिला में लगा थन तो बने रही थी। संगवारी हो, बीजा के मात्रा के बात करें तो एकर बर 1 एकड़ के कहूँ हमन खेती करथन तो पनीरी लगाए बर 300 ले 400 ग्राम बीजा के आवश्यकता हर होते। फसल के बढ़िया बढ़वार लेहे बर बीजा जौन है तेला कार्बेंडाजिम 3 ग्राम ले, चाहे थीरम 3 ग्राम ले, प्रति किलो बीजा के दर ले उपचारित करके लगाए ले बढ़िया माने जाते। खातु माटी के घलाव चेत रखे बर पड़ते, जेमा आखरी घाव जोताई करत घानी

0: सरहा गलहा गोबर के खातु ला 10 टन प्रति एकड़ के दर ले माटी मा मिला लेवाए। नाइट्रोजन 25 किलोग्राम, फास्फोरस 25 किलोग्राम, पोटास 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के दर ले देवा थंताओ बने रिथे। संगवारी हो, नींदा के और बंद कचरा के रोकथाम बर 2-4 पैत भांटा के फसल मा निंदाई गुड़ाई करे बर लगते। करिया रंग के पॉलीथीन सीट ले पौधा ला तोप देथन तो बने रिथे। ज्यादा होय मा हमन फ्लू क्लोरोलिन 800 ले 1000 मिलीलीटर ला प्रति एकड़ के दर ले उपयोग करथन तो सुघर रिथे। ज्यादा जानकारी लेहे बर कृषि वैज्ञानिक के सलाह लेके फसल ला लगाथन तो सुघर रिथे, आमदनी हर घलो बढ़ते। एकरे संग राम राम, जय जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम खेती की बात। आज जानकारी का विषय था भाटा के उन्नत खेती। वाचन स्वर नंद कुमार यादव का था। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 6:35 हुए हैं। डीजे पेश है रामचरितमानस का गायन। मुख्य गायक कलाकार हैं भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह। संगीत निर्देशन सतीश भाटिया का है।

पिता के वचन की मर्यादा का पालन करने के लिए श्री राम को वन गमन करना था, किंतु सीता को वन जीवन के कष्ट भोगने देना राजा दशरथ को स्वीकार्य न था। अतः उन्होंने मंत्री सुमंत्र से ये कहा था, यदि दो चार दिनों में वन में घूम फिरकर वापस लौटने को तैयार न भी हों, तो वो सीता को अवश्य लौटा लाएं। श्री राम ने कई प्रकार से सीता को अयोध्या वापस लौट जाने की सीख दी, किंतु सीता का एक ही उत्तर था, हे करुणामय और परम ज्ञानी, आप विचार कर देखें, शरीर को छोड़कर छाया अलग कैसे हो सकती है। मंत्री सुमंत्र से उन्होंने कहा, आप पिता और ससुर के समान मेरे हितैषी हैं, आपकी बात का खंडन करना मुझे शोभा नहीं देता, किंतु अत्यंत आर्त होकर मैं आपके सम्मुख आई हूँ। पति के चरण कमलों के अभाव में जगत के सभी नाते रिश्ते मेरे लिए व्यर्थ हैं।

रामचरित मानस का गायन अभी आप सुन रहे थे। मुख्य गायक कलाकार थे भूपिंदर सिंह और मिताली सिंह। संगीत निर्देशक थे सतीश भाटिया। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:45 हो चुके हैं। कार्यक्रम नवविहान के अंतर्गत आज हम बात करेंगे कौशल भारत मिशन के बारे में। श्रोताओं, कौशल भारत मिशन या भारत का राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू किया गया एक अभियान है। इसका प्रबंधन भारतीय राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा किया जाता है। ये अभियान 2022 तक भारत में 30 करोड़ से अधिक लोगों को विभिन्न कौशल में प्रशिक्षित करने के लिए किया गया था। कौशल भारत मिशन का मुख्य उद्देश्य देश के युवाओं को उद्योग की मांग के अनुसार व्यावहारिक और तकनीकी प्रशिक्षण देना है, ताकि उनकी रोजगार क्षमता को बढ़ाया जा सके और उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जा सके। इस योजना के मुख्य उद्देश्य और विशेषताओं की बात करें तो देश के करोड़ों युवाओं को अल्पकालिक और दीर्घकालिक कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है। उद्योग की जरूरत के अनुसार युवाओं को आज के समय की औद्योगिक मांग जैसे आईटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, स्वास्थ्य सेवा और विनिर्माण के योग्य बनाया जाता है। कौशल उन्नयन के तहत पुराने कामगारों को नए जमाने की तकनीकों के अनुसार री स्किल और अप स्किल करना। कौशल भारत डिजिटल हब के तहत जरिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम और रोजगार के अवसर उपलब्ध कराया जाता है। इस मिशन के तहत प्रमुख योजनाएं हैं प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। यह मिशन की सबसे बड़ी योजना है जो युवाओं को मुफ्त प्रशिक्षण और प्रमाण पत्र देती है। राष्ट्रीय शिक्षुता प्रोत्साहन योजना NAPS, इसके तहत युवाओं को काम के दौरान सीखने यानी ऑन द जॉब ट्रेनिंग का अवसर दिया जाता है। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के तहत तकनीकी शिक्षा को मजबूत करने के लिए संस्थानों का आधुनिकीकरण किया गया है। इस योजना को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय चलाता है। इसके तहत युवाओं को मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। ट्रेनिंग पूरी होने पर सरकार की तरफ से प्रमाण पत्र भी दिया जाता है। इसमें तकनीकी और पारंपरिक दोनों तरह के काम सिखाए जाते हैं। युवाओं की ट्रेनिंग और डिजिटल कोर्स के बारे में और अधिक जानने के लिए आप कौशल भारत प्लेटफॉर्म पर जा सकते हैं। मिशन का मूल आदर्श वाक्य कौशल भारत कुशल भारत।

और इसकी पात्रता वैध आधार कार्ड धारक और संबंधित नौकरी के लिए पात्रता मानदंडों को पूरा करने वाले भारतीय नागरिक हैं। श्रोताओं, इस मिशन का उद्देश्य देश के युवाओं को काम के लायक हुनर सिखाना है, ताकि वे आसानी से नौकरी पा सकें या अपना खुद का काम शुरू कर सकें। श्रोताओं, इस संबंध में और अधिक जानकारी के लिए इसके आधिकारिक पोर्टल कौशल भारत पर जा सकते हैं। कार्यक्रम नवविहान के अंतर्गत अभी आप जानकारी सुन रहे थे कौशल भारत मिशन के बारे में।

आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 6:50 हुए हैं श्रोताओं, ये वक्त होता है कार्यक्रम विवरण का। सुबह 11:10 पर हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में आयोजित 12वें हथकरघा दिवस समारोह का सजीव प्रसारण। समय याद रखिएगा, आज सुबह 11:10 पर। सुबह 8:30 पर हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले करेंगे कार्यक्रम इनसे मिलिए। रायपुर केंद्र से ही रिले करेंगे प्रादेशिक समाचार सुबह 9:55 पर और 11:55 पर। संसद समीक्षा रात 8 आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। दिल्ली केंद्र से ही रात 10 रिले करेंगे संसद में प्रश्नकाल के दौरान हुई कार्यवाही की रिकॉर्डिंग का प्रसारण। कार्यक्रम आज सुबह का प्रसारण समय सुबह 7:05 पर। गांधी चर्चा सुनेगा सुबह 7:20 पर। आज का विषय होगा प्रथम महायुद्ध यादों के झरोखे से सुबह 7:30 पर और फरमाइशी फिल्मी गीतों का आपकी पसंद कार्यक्रम सुबह 10:30 पर आप सुनेंगे।

गूंजे स्वर गांव के इस कार्यक्रम में सुबह 10 बजे आप सुनेंगे बांस गीत, कलाकार होंगे शिवचंद यादव और साथ ही आज का प्रसंग होगा राजा छौरा के किस्सा। बैगा कर्मा सुनेगा, गायक कलाकार होंगे नीलम बैगा, मीना बैगा सुकरिया और अंजोर सिंह बैगा और साथी। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण प्रतिदिन आप सुनते हैं सुबह 11 बजे, लेकिन आज इस कार्यक्रम को आप सुनेंगे सुबह 9 बजे। विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे सुबह 9:30 से 9:55 तक, 12 बजे से शाम 5 बजे तक और फिर रात 9:15 से रात 10 बजे तक। प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का प्रसारण समय शाम 5 बजे। युवा जगत कार्यक्रम में शाम 5:35 पर आज की बात का विषय प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कैसे करें, ओबी पर केंद्रित क्रम होगा मेरी बारी। शाम 7:30 बजे ग्राम सभा कार्यक्रम में क्रमबेरा के

0: गोठ में चर्चा का विषय बरसात में पशुधन की सुरक्षा। फोन इन कार्यक्रम का विषय होगा खरीफ फसलों में जल प्रबंधन। विशेषज्ञ डॉक्टर चंचला रानी पटेल, प्रक्षेत्र प्रबंधक कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर। साथ ही सुनिएगा गीत, मौसम, मंडी की जानकारी और सामयिक सुझाव भी दिए जाएंगे। चित्रपट संगीत शाम 5:05 पर। ईमेल करें, गीत सुने 6:20 पर और शाम 7:00। कार्यक्रम रजनीगंधा रात 8:15 पर प्रसारित किया जाएगा। हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर याद दिला दें, 11:10 पर हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में आयोजित 12वें हथकरघा दिवस समारोह का सजीव प्रसारण। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण समय होगा 9:00। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 6:55 होने ही वाले हैं। संस्कृत समाचार आकाशवाणी दिल्ली से रिले किए जाएंगे।
1: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचकः कृष्णप्रसादोपाध्यायः। अद्य राष्ट्रिय हस्ततन्तु दिवसः उत्साहेन आनन्देन च आचरन्त्विति प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना नागरिकाः प्रार्थिताः। एकस्मिन् चलचित्रीय सन्देशे श्रीमोदी अवदत् यत् 1975 वर्षे अगस्ट मासस्य 7 भारतस्य स्वातन्त्र्यसङ्घर्षस्य भागरूपेण स्वदेशीय आन्दोलनस्य आरम्भः अभवत्। सर्वक्षेत्राणां जनाश्च एकीभूय ब्रिटिशर शासनं विरुध्य ऐतिहासिकं संघर्षं कृतवन्तः। प्रधानमन्त्री जनान् स्वहस्तैः वस्त्राणि निर्मातृभ्यः, निर्धनतन्तुवायकुटुम्बेभ्यः, शिल्पिभ्यश्च साहाय्यं कर्तुं प्रोत्साहितवान्।
2: मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: केन्द्रीय मंत्रिमंडलेन ह्यः स्वच्छ ऊर्जायाः ग्रामीण अर्थव्यवस्थायाश्च वर्धनार्थं प्रायः पादोन 24,000 कोटि रूप्यकाणां परिव्यय युतां राष्ट्रिय जैव ऊर्जना योजनां गोवर्धनमिति अनुमोदितम्। नवदिल्ल्यां प्रसारमाध्यमैः सह वार्तालापं कुर्वन् सूचना प्रसारण मन्त्री अश्विनी वैष्णवः अवदत् यत् इयं योजना अस्मात् वर्षादारभ्य 35-36-2000 वर्षपर्यन्तं प्रवर्तयिष्यते। श्री वैष्णवः अवदत् यत् आर्थिक कार्यस्य मन्त्रिसभा समित्या अपि असमराज्ये राष्ट्रिय राजमार्ग 15 इत्यस्य पार्श्वे गुवाहाटीतः तेजपुरपर्यन्तं पंक्तिचतुष्टय युतस्य राजमार्गस्य निर्माणम् अनुमोदितम्। मन्त्रिमण्डलस्य गोवर्धन योजनायाः अनुमोदनविषये प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्रमोदिना सामाजिक प्रसार माध्यमे उक्तं यत् स्वच्छ ऊर्जायै ग्रामीण समृद्ध्यै देशस्य सामूहिक स्वप्नस्य स्वावलम्बनाय च अयं निर्णयः महत्वपूर्णः पदक्षेपः अस्तीति। केन्द्रीय वित्तमन्त्री निर्मला सीतारामनः उक्तवती यत् सर्वकारस्य महत्वाकांक्षा अस्ति यत् आधुनिक प्रगतिः संस्कृतिः परम्परयोः आधारिता भवेदिति। नवदेहल्यां CD देशमुख व्याख्यानं 2026 इति कार्यक्रमं सम्बोधयन्ती श्रीमती सीतारामनः अवोचत् यत् उपभोक्तावादिनः न भूत्वा समृद्धायाः सम्पन्नायाः च भारतीय सभ्यतायाः अनुरूपं सफलं भवितुं भारतस्य नियतिः भवेदिति। भारतम् ओडिशाराज्यस्य चण्डीपुरनगरस्य एकीकृत परीक्षणक्षेत्रात् मध्यमपरिधियुक्तस्य अग्निचार इति क्षिपण्याः सफलतया परीक्षणम् अकरोत्। रक्षामन्त्रालयः अवदत् यत् प्रक्षेपणेन क्षिपण्याः सर्वाः प्रचालनात्मकतान्त्रिकमानदण्डाः प्रमाणिताः अभवन्निति। केन्द्रेण गोवा राज्यस्य विधानसभाक्षेत्रेषु अनुसूचितजनजातीनां प्रतिनिधित्वस्य पुनः समायोजनस्य अधिनियमः 2025 इत्यस्य कार्यान्वयनम्।

0: अधिसूचितम् येन गोवाराज्ये अनुसूचित जनजातीनां कृते विधानसभास्थानानां आरक्षणस्य मार्गः प्रशस्तः अभवत्। भारतीय राजपत्रे प्रकाशितायाः अधिसूचनायाः अनुसारं राज्यस्य जनजातीय समुदायानां दीर्घकालस्य अपेक्षां पूरयन् निर्वाचनक्षेत्रस्य पुनः समायोजनस्य आरक्षणस्य च प्रक्रियां समर्थयन् ह्यः अधिनियमः प्रवृत्तः अभवत्। भारत ऋतु विज्ञान विभागेन अद्य मध्यप्रदेशे, राजस्थाने, केरल राज्ये, माहे प्रदेशे, ओडिशा राज्ये, तटीय दक्षिणान्तर्गत कर्णाटके च मेघावृष्ट्या प्रचण्ड बातेन विद्युत् प्रभावेन च सह प्रचण्डतः अतिप्रचण्डायाः वर्षायाः पूर्वानुमानं कृतमस्ति। अद्य अण्डमान निकोबार द्वीपेषु, झारखण्डप्रदेशे, लक्षद्वीपे, पश्चिमबङ्गप्रदेशे, मध्यप्रदेशे, तमिलनाडुप्रदेशे, पुदुच्चेरीप्रदेशे, कारैकलल् प्रदेशे, उत्तराखण्डप्रदेशे च एतादृशी स्थितिः भविष्यति। बैडमिंटन क्रीडायां भारतस्य तन्वी शर्मा अद्य असन नगरे कोरिया मास्टर्स क्रीडायाः महिला सिंगल्स इत्यस्यां प्राग उपान्तचक्रीय क्रीडायां स्वस्याः देशवासिन्या रक्षिता रामराज इत्यनया सह क्रीडति इति वार्ताः।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को भारत के स्वाधीनता संग्राम के हिस्से के रूप में स्वदेशी आंदोलन का शुभारंभ किया गया था और समाज के हर वर्ग के लोगों ने एकजुट होकर ब्रिटिश शासन के विरुद्ध ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। उन्होंने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पादन खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूं, 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदे, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। मंत्रालय के अनुसार इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करना होगा। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। इस कार्यक्रम में दो प्रकाशन अर्थ रूट और मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है। ये अधिनियम कल से प्रभावी हो गया है। इस कदम का स्वागत करते हुए गोवा के मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत ने इसे एक वायदे का पूरा होने जैसा बताया। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। राजधानी रांची में 6 प्रदर्शनकारियों की भूख हड़ताल जारी है। छात्र नेताओं का दावा है कि उन्हें कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से बातचीत का कोई निमंत्रण नहीं मिला है। विरोध प्रदर्शन का असर कल झारखंड विधानसभा में भी देखा गया, जहां विपक्षी विधायकों ने मानसून सत्र के पहले दिन ही नारेबाजी की। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि सरकार आंदोलनकारियों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंड

0: की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वाधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान तथा विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने भारत की समुद्री सुरक्षा संरचना के प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हो। अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और पर्यटन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। ओवल ऑफिस में बोलते हुए ट्रंप ने सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निराशा व्यक्त की। कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा, जबकि अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 7:05 हुए हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम आज सुबह।

श्रोताओं, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 2015 को घोषित किया गया ताकि 1905 में इसी दिन शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन को याद किया जा सके और इस प्राचीन भारतीय कला को पुनर्जीवित किया जा सके। माई हैंडलूम माई प्राइड। 7 अगस्त 1905 को कलकत्ता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। इस आंदोलन का उद्देश्य भारत में निर्मित वस्तुओं के उपयोग को बढ़ावा देना और ब्रिटिश उत्पादों का बहिष्कार करना था। वोकल फॉर लोकल। पहला राष्ट्रीय हथकरघा दिवस चेन्नई में माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा शुरू किया गया था, जिसका उद्देश्य बुनकरों को सम्मान देना, हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देना और राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में हथकरघा उद्योग के योगदान को उजागर करना है। श्रोताओं, ये दिवस गांधी जी के स्वदेशी आंदोलन और चरखा के विचारों से गहराई से जुड़ा है, जिन्होंने खादी और हथकरघा को आत्मनिर्भरता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतीक बताया था। हथकरघा पहनी परंपरा का समर्थन करी। हथकरघा उद्योग कृषि के बाद सबसे बड़ा रोजगार देने वाला क्षेत्र है, जिसमें महिलाओं की हिस्सेदारी बहुत अधिक है। इस क्षेत्र में काम करने वाले कुल बुनकरों और कारीगरों का लगभग 70% हिस्सा महिलाओं का है। हथकरघा उद्योग ग्रामीण और आर्थिक रूप से पिछड़ी महिलाओं को घर बैठे रोजगार, वित्तीय स्वतंत्रता और सामाजिक सम्मान प्रदान करता है। हथकरघा बुनकर मुद्रा योजना, महिला कामगार सहायता योजना, सामाजिक सुरक्षा और बीमा योजनाएं

जैसी कई योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, जिसका लाभ महिलाएं उठा रही हैं। इन योजनाओं के द्वारा महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाता है, कम ब्याज पर ऋण और आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराए जाते हैं। विभिन्न मंचों और मेलों के जरिए उनके द्वारा बनाए गए उत्पादों को बाजार तक न सिर्फ पहुंचाया जाता है, बल्कि उनका उचित मूल्य भी दिलाया जाता है। श्रोताओं, हथकरघा हमारे देश की

कि उनका उचित मूल्य भी दिलाया जाता है। श्रोताओं, हथकरघा हमारे देश की समृद्ध और विविध सांस्कृतिक विरासत का प्रतीक है। इसका उद्देश्य देशवासियों को स्वदेशी बुनकरों द्वारा बुने गए हथकरघा उत्पादों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना भी है। हर धागे में देश की शान, हथकरघा है हमारी पहचान।

0: श्रोताओं, इस गाने के बाद आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुन लेते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार, सुप्रभात, सादर अभिवादन। यातायात पर आधारित दैनिक प्रस्तुति ट्रैफिक अपडेट साथ बिलासपुर के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शहर में लगातार हो रहे विकास कार्यों एवं कुछ चौक चौराहों में जहां सड़कों की लंबाई चौड़ाई के अनुपात में वाहनों के अत्यधिक घनत्व के कारण कहीं मंद तो कहीं सामान्य गति से वाहनों का आवागमन हो रहा है। छोटे से लेकर बड़े से बड़े वाहन सभी इन सड़कों में भागते दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। तभी तो हम सब यह कह सकते हैं कि संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। आप सभी से अनुरोध है, जब भी आप किसी भी वाहन के साथ सड़क में हो, स्थिति परिस्थिति के अनुसार बिना किसी हड़बड़ी के साथ यातायात धर्म का पालन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ें। ऐसे स्थान में ओवरटेक बिल्कुल ना करें। सड़कों में लंबे समय के लिए वाहन खड़ा ना करें। बीच सड़क में सवारी चढ़ाना या उतारना ना करें। चौक चौराहों में लगे यातायात संकेतों का 100% पालन करें और शॉर्टकट

0: सर में गलत दिशा में वाहन न चलाएं। मित्रों, प्रायः सभी सड़कों में यदि नजर डालें तो भाग दौड़ कर रहे वाहनों में दो पहिया वाहनों की संख्या सर्वाधिक दिखाई देती है, अर्थात यह कहा जा सकता है कि दो पहिया वाहन लोगों की सर्वाधिक और पहली पसंद है, क्योंकि यह छोटी है, इसका रखरखाव आसान है, इससे कभी भी कहीं भी आसानी से जाया जा सकता है। साथ ही यह हर वर्ग के बजट के अंदर का वाहन है, किंतु विडंबना इस बात की है कि इतने गुणों से युक्त होने के बाद भी सर्वाधिक मृत्यु दो पहिया वाहन वालों की होती है, वह भी सिर की चोट से। कारण, हम सुरक्षा मानकों का, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं करते, इसलिए जब भी दो पहिया वाहन में चल रहे हैं सहयात्री सहित हेलमेट जरूर धारण करें। साथियों, हेलमेट एक बहुउद्देशीय उपकरण है। तेज गर्मी के दिनों में यह हमारी लू के थपेड़ों से रक्षा करता है। वर्षा के दिनों में बारिश की तेज बूंदें जो चेहरे में कंकड़ की तरह चुभती हैं, इससे हमारी रक्षा करता है। और ठंड के दिनों में ठंडी हवा से हमें बचाता है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि दुर्घटना के समय यह हमारी जान की रक्षा करता है। इसलिए जब भी दोपहिया वाहन में चले हेलमेट अवश्य धारण करें, हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये था आज का ट्रैफिक अपडेट। श्रोताओं, प्रत्येक वर्ष अगस्त माह के पहले सप्ताह को विश्व स्तनपान सप्ताह के रूप में मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य महिलाओं को स्तनपान एवं कार्य को दृढ़ता पूर्वक एक साथ करने का समर्थन देता है। साथ ही कामकाजी महिलाओं को उनके स्तनपान संबंधी अधिकार के प्रति जागरूकता प्रदान करना और कार्यालयों में भी इस प्रकार का माहौल बनाना कि स्तनपान कराने वाली महिलाओं को किसी भी प्रकार की असुविधाएं ना हो। श्रोताओं, बच्चे के जन्म के तुरंत बाद पीला गाढ़ा चिपचिपा दूध, जिसे कोलेस्ट्रम कहा जाता है, नवजात शिशु के लिए संपूर्ण आहार होता है, जिसे जन्म के तुरंत बाद एक घंटे के भीतर ही शुरू कर देना चाहिए। सामान्यतः बच्चे को 6 महीने की अवस्था तक केवल स्तनपान कराने की अनुशंसा की जाती है। श्रोताओं, स्तनपान कराने से माँ और शिशु दोनों को फायदा होता है। माँ का दूध शिशु के लिए संपूर्ण आहार होता है। दूध में पाया जाने वाला तत्व शिशु को प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, जो शिशु को रोगों से बचाता है। शिशु का विकास अच्छी तरह से होता है। इस तरह माँ का दूध बच्चे के लिए श्रेष्ठ ही नहीं बल्कि जीवन रक्षक भी होता है।
2: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
3: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
1: श्रोताओं, MS स्वामीनाथन भारत के महान अनुवांशिक वैज्ञानिक थे, जिन्हें हरित क्रांति का जनक माना जाता है, जिन्होंने उच्च उपज देने वाली गेहूं और चावल की किस्मों को विकसित कर देश को खाद्यान्न में आत्मनिर्भर बनाया। 1943 के बंगाल के भीषण अकाल ने उन्हें कृषि क्षेत्र में करियर बनाने के लिए प्रेरित किया। 1960 के दशक में जब भारत गंभीर सूखे और अकाल का सामना कर रहा था, तब इन्होंने अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉक के साथ मिलकर मैक्सिकन बीजों को भारतीय किस्मों के साथ मिलाकर उच्च गुणवत्ता वाले संकर बीज विकसित किए। इससे भारत में गेहूं और चावल के उत्पादन में भारी वृद्धि हुई। कृषि और खाद्य सुरक्षा के क्षेत्र में उनके अद्वितीय योगदान के लिए उन्हें कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। 2024 में भारत सरकार द्वारा उन्हें मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 1925 में आज ही के दिन जन्म

हुआ था अनुवांशिकी विद और कृषि वैज्ञानिक श्री एम एस स्वामी नाथन जी का। उन्हें याद करता है आकाशवाणी का बिलासपुर परिवार। और इसी के साथ कार्यक्रम आज सुबह बस यहीं तक। आज्ञा दीजिए सीमा को।

0: आज सुबह।
1: अभी आप सुन रहे थे प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 7:20 हुए हैं। लीजिए प्रस्तुत है कार्यक्रम गांधी चर्चा। आज का विषय है प्रथम महायुद्ध।

गांधी चर्चा सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। श्रोताओं, जब पहला महायुद्ध छिड़ा तो गांधी जी इंग्लैंड होते हुए देश लौट रहे थे। उनका विचार इंग्लैंड में कुछ सप्ताह ठहरने का भी था। 6 अगस्त 1914 को वो इंग्लैंड पहुंचे और तुरंत भारतीयों का एक एम्बुलेंस दल बनाने के लिए सभा की। इस दलील का उन पर कोई प्रभाव न पड़ा कि साम्राज्य का संकट भारत के लिए सुअवसर है। बाद में गांधी जी ने लिखा था, मैं भारतीय और अंग्रेज की स्थिति में अंतर तो जानता था, लेकिन मुझे ये विश्वास नहीं था कि हम पूरी तरह गुलाम बन गए हैं। तब मेरा विचार था कि दोष अधिकतर व्यक्तिगत अधिकारियों का है, न कि अंग्रेजी तंत्र का, और हम प्यार से इन अफसरों का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं। अगर अंग्रेजों की सहायता और सहयोग से हम अपनी स्थिति सुधार सकते थे तो हमारा कर्तव्य था कि जरूरत पड़ने पर उनकी मदद कर हम उनकी सहायता प्राप्त करें। अगर इंग्लैंड में गांधी जी को पसली के दर्द की बीमारी न हुई होती तो शायद वो अपने द्वारा संगठित एम्बुलेंस दल में स्वयं भी भर्ती हो जाते और उनका भारत लौटना अनिश्चित काल के लिए रुक जाता। भारत लौटने पर उन्होंने देखा कि राष्ट्रवादी युद्ध में बिना शर्त सहायता देने का विरोध कर रहे हैं। युद्ध में सहायता देना राजभक्ति का लक्षण माना जाता था। बिना शर्त राजभक्ति का परिचय देना राजनैतिक पिछड़ेपन का लक्षण और सरकारी पिट्ठुओं का काम था, देशभक्तों का नहीं। लेकिन गांधी जी का मत था कि युद्ध में सरकार से सहयोग करने की कोई कीमत नहीं मांगनी चाहिए। उन्होंने कहा, हमने सरकार के संकट काल में उसकी वफादारी की, इससे ये सिद्ध नहीं हो जाता कि हम स्वराज के योग्य हो गए। राजभक्ति स्वतः कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो दुनिया भर में नागरिकता की एक अनिवार्य शर्त है। 1916 से 1918 तक गांधी जी ने राजनीति में कोई सक्रिय भाग नहीं लिया। उनके आदर्श और कार्य प्रणाली भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दोनों प्रमुख दलों से बिल्कुल ही मेल नहीं खाते थे। नरम दल उनके सत्याग्रह के संविधान इतर तरीके पसंद नहीं करता था। गरम दल महायुद्ध में अंग्रेज सरकार के प्रति उनके द्वारा जानबूझकर अपनाए गए सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण को नापसंद करता था। अतः गांधी जी ने न तो होम रूल यानी स्वशासन आंदोलन में भाग लिया और न समझौते को उस बातचीत में, जिसके फलस्वरूप भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और अखिल भारतीय मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौता हुआ। वो भारतीय राजनीति की प्रमुख धारा से विलग मालूम पड़ते थे। उस समय राष्ट्रीय मंच पर गांधी जी नहीं किंतु एनी बेसेंट और लोकमान्य तिलक ही छाए हुए थे और सरकार के निकट भी उन्हीं दोनों का महत्व था। ब्रिटेन के मंत्रिमंडल के एक सदस्य

एडविन मॉन्टेग्यू ने, जो 1917 में भारत आए थे, अपनी डायरी में लिखा था कि उस समय शायद तिलक ही भारत में सबसे शक्तिशाली व्यक्ति थे। गांधी जी के बारे में मॉन्टेग्यू की राय थी, वो निरे समाज सुधारक हैं, जनता के कष्टों को जानने और दूर करने की उनमें बड़ी तीव्र अभिलाषा है, और वो ये कार्य अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं, देशवासियों की दशा सुधारने की शुभ निष्ठा से करते हैं। कुलियों जैसे कपड़े पहनते हैं, स्वयं किसी तरह का लाभ उठाने की नाम मात्र भी इच्छा नहीं करते, करीब करीब हवा पीकर जीवन निर्वाह करते हैं और शुद्ध कल्पना के जगत में विचरते हैं। गांधी चर्चा को हम और आगे बढ़ाएं और पहले सुने एक उनका प्रिय भजन।

गांधी जी का एक और प्रिय भजन हम कार्यक्रम के उत्तरार्ध में सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले हम और गांधी चर्चा में हिस्सा लें। यद्यपि गांधी जी ने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि महायुद्ध के समय में वो किसी राजनीतिक संघर्ष में भाग नहीं लेंगे, वो ऐसे कष्ट दूर करने के प्रयत्न से अपने को न रोक सके जिससे करना न्याय संगत था और जिसमें देरी नहीं की जा सकती थी। 1917 की ग्रीष्म ऋतु में वो बिहार प्रदेश के चंपारण जिले में गए, जहां नील की खेती होती थी, और वहां गोरे बागान मालिकों के खिलाफ किसानों की ओर से आवाज उठाई। उसी साल उन्होंने अहमदाबाद की कपड़ा मिलों में मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया। अगले वर्ष जब खेड़ा जिले में वर्षा न होने से खेती को नुकसान पहुंचा तो उन्होंने भूमि कर घटाने के लिए संघर्ष किया। स्थानीय अधिकारी गांधी जी के इन कार्यों से घबरा गए, लेकिन सरकार जल्दी में आकर बल प्रयोग नहीं करना चाहती थी। गांधी जी इन झगड़ों को सीमित ही रखना चाहते थे और राष्ट्र

स्तर पर संकट पैदा किए बिना ही इन समस्याओं का ऐसा समाधान चाहते थे जिससे मजदूरों और किसानों को किसी हद तक न्याय प्राप्त हो जाए। 1918 में जब ब्रिटेन और उसके मित्र राष्ट्रों की हालत खराब थी और पश्चिमी मोर्चे पर जर्मनों के जोरदार आक्रमण की आशंका थी, तो वाइसराय ने युद्ध में सहायता देने के प्रश्न पर विचार करने के लिए दिल्ली में भारतीय नेताओं का सम्मेलन बुलाया। गांधी जी ने सम्मेलन में भाग लेकर रंगरूट भर्ती करने के प्रस्ताव का हिंदी में एक ही वाक्य कहकर समर्थन किया, अपने दायित्व का पूरा ध्यान रखकर मैं प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। फिर तो वो तन मन से रंगरूट भर्ती के काम में लग गए। यूरोप के मोर्चे पर लड़ने वाली ब्रिटेन की भारतीय फौज के लिए गुजरात के गांव में रंगरूट भर्ती करने के लिए जाना अहिंसा के पुजारी गांधी जी के लिए एक तरह से हास्यास्पद ही था। गुजरात के गांव में यात्रा के लिए बैलगाड़ी तक न मिलने पर गांधी जी और उनके साथियों को अक्सर एक दिन में 20-20 मील पैदल चलना पड़ता था। गांधी जी इन्हीं कष्टों को सहन न कर सके और भयंकर पेचिस से पस्त हो गए। इसी बीच युद्ध समाप्त हो गया और गांधी जी को पता चला कि राजद्रोह समिति रिपोर्ट प्रकाशित हो रही है और नागरिकों की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने के लिए सरकार विधेयक पेश करने जा रही है। भारतीय नेताओं में शायद अकेले गांधी जी ने ब्रिटेन की संकट की घड़ी में बिना किसी शर्त के सहयोग देने का आग्रह किया था, क्योंकि उन्हें आशा थी कि युद्ध की समाप्ति पर ब्रिटेन की ओर से सद्भावना का उचित प्रदर्शन होगा। अब उन्हें लगा कि रोटी के बदले पत्थर मिले हैं। युद्ध काल में किसी भी तरह के संघर्ष से दूर रहने का उन्होंने हर संभव प्रयत्न किया था। अब शांति काल में जो अन्याय किया गया उसके विरोध में लड़ने के लिए वो तड़प उठे। आज की गांधी चर्चा हम यहीं संपन्न करते हैं। अनुमति दीजिए। नमस्कार।

कार्यक्रम गांधी चर्चा का प्रसारण अभी किया जा रहा था। आज का विषय था प्रथम महायुद्ध। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 7:32 हुए हैं। लीजिए पेश है पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से।

0: गुलजार की रचना आपने सुनी लता मंगेशकर और तलत महमूद के युगल स्वर में। संगीत निर्देशन सलील चौधरी का था। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें, आज सुबह 11:10 पर हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में आयोजित 12वें हथकरघा दिवस समारोह का सजीव प्रसारण। और सुबह 9 बजे आप सुनेंगे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। ये थी कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और

टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

रानी रूपमती फिल्म का गाना आपने सुना, मोहम्मद रफ़ी और कृष्णा चोकर की आवाज़ों में। गीत लिखा था भरत व्यास ने, धुन तैयार की थी SN त्रिपाठी ने।

0: भाभी फिल्म का गाना आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा था राजेंद्र कृष्ण ने और धुन तैयार की थी चित्रगुप्त ने।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना, गुलाम मोहम्मद के संगीत निर्देशन में, लता मंगेशकर की आवाज़ में, पाकिज़ा फिल्म से।
1: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
2: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
3: RBI कहता है,
2: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
0: यादों के झरोखे से कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम अपने सुनने वालों को एक बार फिर याद दिला दें, सुबह 11:10 पर हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में आयोजित 12वें हथकरघा दिवस समारोह का सजीव प्रसारण। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आज आप सुनेंगे सुबह 9:00। ये थी कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं, और अब आइए कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं ये गाना।

और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में। गीत लिखा था मजरूह सुल्तानपुरी ने, धुन तैयार की थी ओपी नैयर ने। और इसी के साथ पुराने फिल्मी गीतों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से अब समाप्त होता है।

आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। इस समय सुबह के 8 बजने वाले हैं। समाचार प्रभात और उसके बाद मॉर्निंग न्यूज़ थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।

0: मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो। मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी सब ऊपर वाले की दया है। मतलब सोलर पैनल की। मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा।
1: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
2: हर घर सूर्य घर।
3: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है।
4: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेन देन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की रक्षिता रामराज से। अब समाचार विस्तार से। केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है।
5: भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 6 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है। इससे राज्य की अनुसूचित जनजाति समुदायों की लंबे समय से प्रलंबित मांग पूरी हुई है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन तथा सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी। गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से अपेक्षित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डॉ. सावंत ने इस कानून को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सबका साथ सबका विकास की भावना को प्रतिबिंबित करता है। महेश सोप्रेक, आकाशवाणी समाचार, पणजी।
4: लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है।
6: सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं PSP और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान और संरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। सदन द्वारा पारित संशोधन में उस मौजूदा कानून प्रावधान को हटाने का प्रयास किया गया है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर व्यापारी छूट दर MDR वसूलने से रोकता है। वहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTG

0: एस और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT के माध्यम से किए गए रियल टाइम भुगतानों पर पहले से ही ऐसा शुल्क लगता है। UPI लेनदेन अब तक ऐसे शुल्कों से मुक्त रहे हैं। भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन कराधान पर व्यापक कानून का हिस्सा है, जिसे मंगलवार को सदन में पेश किया गया। सदन की कार्यवाही के पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
1: पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है।
2: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे, जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। पोर्ट्स इंडस्ट्री मैरिटाइम एक्सपर्ट टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म।
1: देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल Agni-4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने में राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि JPSC और JSSC भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में चल रहा आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।
3: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची में 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रांची सदर के SDM रजत कुमार और ADM धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी NDA विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर CBI जांच की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो भी छात्रों की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
4: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनके शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्रों और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से शिल्पकला, कौशल और देश के हथकरघा बुनकरों के समर्पण का उत्सव मनाने के

0: लिए इसका आयोजन किया जाता है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
2: मैं आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो

0: उपलब्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदें, उसका एक वीडियो बनाएं और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट।
2: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है, जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका की यात्रा करते हैं। समाचार कक्ष से मनोज।
1: मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
3: असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार करगोलाघाट और उदालगुरी जिलों में बाढ़ से एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। राज्य में अब तक 480 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिवसागर, गोलाघाट, चोरहाट और सरायदेव जैसे सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा सेवाओं को तेज कर दिया है। जल जनित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
1: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
4: धन्यवाद प्रियंका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं हो सकती क्रीमी लेयर प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के हलफनामे को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने लिखा है बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी। सीएनजी और पीएनजी में क्रमिक तरीके से 5% तक बायोगैस को मिलाया जाएगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है देश में डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए नए आईटी नियम लागू। अब 36 नहीं 3 घंटे में हटाना होगा एआई से बना फर्जी वीडियो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बीमा दावा निपटान में देरी पर 2% ब्याज के साथ दावे की रकम दी जाएगी। दावे की प्रक्रिया पारदर्शी, आसान और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए। जेंजी हमारी पीढ़ी से अधिक ईमानदार, उनकी बात सुननी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को अमर उजाला सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। 2013 के दुष्कर्म मामले में तहलका के पूर्व संपादक तेजपाल को 10 वर्ष कैद की सजा मिलने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने दिया है। हिंदुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है तरुण तेजपाल के प्रति नरमी बरतने का आधार नहीं है, महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनका पालन होना ही चाहिए। वायुसेना की पहली महिला टॉप गन बनी भावना कंठ। राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि स्क्वाड्रन लीडर भावना ने ग्वालियर स्थित टेक्सटिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का प्रतिष्ठित लड़ाकू प्रशिक्षण कार्यक्रम फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर ये उपलब्धि हासिल की।
1: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए। और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता

0: समाचार अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। सुबह के 8:30 हुए हैं। कार्यक्रम इनसे मिले अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: रायपुर केंद्र है। सुबह के 8:30 हुए हैं। इनसे मिलिए कार्यक्रम के तहत अब सुनते हैं वसुंधरा सम्मान से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार और लेखक श्री राजेश गनोदवाले से प्रकाश उदय की बातचीत।

0: श्रोताओं, इनसे मिलिए कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। आज इनसे मिलिए कार्यक्रम में हम आपकी मुलाकात करवा रहे हैं जाने माने पत्रकार और लेखक श्री राजेश गनोदवाले जी से, जिन्हें हाल ही में 26वें प्रतिष्ठित वसुंधरा सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्टूडियो में।
1: नमस्कार जी।
0: वसुंधरा सम्मान अपने आप में ही एक बहुत प्रतिष्ठित सम्मान है और ये 26वां पड़ाव है जब आपको ये पुरस्कार प्राप्त हो रहा है। तो वसुंधरा सम्मान की थोड़ी सी पृष्ठभूमि पर यदि आप प्रकाश डालें तो बेहतर होगा।
1: मेरे लिए एक बहुत सुखद एहसास है कि जिस आकाशवाणी केंद्र के साथ मैंने किसलय से अपने जीवन का आरंभ किया, उस आकाशवाणी केंद्र में मैं आज एक मेहमान के तौर पर मौजूद हूँ। लगातार मेरा इस केंद्र के साथ जुड़ाव है और आकाशवाणी जो है, जिसने, मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जीवन की जो जैसी भी अब तक की बुनावट है उसमें एक बहुत अहम वो रोल है आकाशवाणी रायपुर का, और आकाशवाणी रायपुर के उन तमाम बड़े नामों का जिनके साथ मुझे काम करने का मौका मिला। जहाँ तक इस सम्मान की बात है, ये वसुंधरा सम्मान है और ये भिलाई की जो संस्था है, जो एक मैगजीन भी निकालती है कृति बहुमत, ये उनका इनिशिएटिव है, लेकिन जिनकी स्मृति में दिया जाता है वो नाम है कीर्तिशेष देवी प्रसाद चौबे जी। वसुंधरा सम्मान के रूप में इसको हम सब जानते हैं, लेकिन इस सम्मान की जो पूरी पृष्ठभूमि है वो रचनात्मकता है, लेकिन रचनात्मकता से आशय केवल लिटरेचर नहीं है, विशेष रूप से जो जर्नलिज्म है, जो पत्रकारिता है, और पत्रकारिता में जो न्यूनतम 3 दशक के अनुभव के साथ जो लोग काम कर रहे हैं अब तक, ये उनको देने की परंपरा संस्था ने बनाए रखी है। और जैसा कि आपने भी आरंभ में बताया, ये इसका 26वां वर्ष है और पहले वर्ष ये दिया गया था हमारे ही प्रदेश के बहुत मूर्धन्य पत्रकार संपादक श्री रमेश नैयर को। ये भी बात आपके सामने रखते हुए मुझे बहुत गौरव का अनुभव हो रहा है कि 26वें वर्ष में मेरा चुनाव अगर इस सम्मान के लिए हुआ है, तो इसी वर्ष रमेश नैयर जी पर तैयार की हुई मेरी किताब साधक संपादक भी प्रभात प्रकाशन से आ रही है, जो मैं समझता हूँ एक संयोग भी है और एक सुखद अनुभूति भी मेरे लिए है। लेकिन ये जो सम्मान है, जैसा कि मैंने बताया, पत्रकारिता और विशेषतः रचनात्मक पत्रकारिता, जिसमें ऐसे जो रचनाकार या ऐसे जो पत्रकार जो राजनैतिक खबरों के अलावा जिनकी अपनी पहचान प्रदेश के मामले, प्रदेश की संस्कृति, प्रदेश की कला और प्रदेश का जो रचनात्मक दाय है उसको देखने और दिखाने का जो दृष्टिकोण है लेखन के माध्यम से, उनको देने की कोशिश की जाती है। इसलिए जो सम्मानित इस बार की जो ज्यूरी है, ये संभवतः उनको ऐसा लगा कि उम्र के इस पड़ाव में इस सम्मान के लिए मेरे नाम का चुनाव किया जा सकता है।
0: चलिए, बहुत बहुत बधाई आपको।
1: बहुत धन्यवाद जी। जी
0: राजेश भाई, आपका जो नाम है वो सांस्कृतिक पत्रकारिता के लिए जाना जाता है
1: जी,
0: तो ये सांस्कृतिक पत्रकारिता की शुरुआत आपने कब से की और कैसे मन में ये विचार आया कि इस क्षेत्र में लिखा जाए?
1: देखिए, मेरी बुनियाद तो तबले की रही है, मैंने तबले की तालीम बाकायदा ली है और बी म्यूज की जो उपाधि होती है वो कोर्स मैंने पूरा किया, और स्कूली समय से लिखने का एक इंटरेस्ट था, क्योंकि धर्मयुग, चंदा मामा और ब्लिड्स पढ़ने के मौके उन दिनों घर में मिल जाते थे, तो एक इंटरेस्ट ये था। और लेटर टू एडिटर, इसमें चूंकि नाम लिखने

0: वालों का वाले का आता है, तो एक आकर्षण यह भी था कि अखबार में नाम छप जाए। तो एक मित्र था, मित्र ने कहा कि यार तेरा नाम छप सकता है, इस तरह से कर। तो एक इंटरेस्ट जागा, और जब मैंने पहली बार अपना नाम देखा तो अच्छा लगा, और वो सिलसिला जो शुरू हुआ। तो धीरे धीरे, चूंकि जैसा मैंने आपको बताया कि पढ़ने की दिलचस्पी एक कहीं ना कहीं भीतर में थी, तो लाइब्रेरी जाना और पढ़ाई करना, तो पढ़ाई भी साथ ही साथ चल रही थी और लिखने का इंटरेस्ट भी अपने तरह से भीतर में काम कर रहा था। लेकिन तबले की तालीम, मन में ये था कि तबले में कुछ करना है, और पढ़ाई तबले की चूंकि चल ही रही थी, और एक स्थितियाँ ठीक ठाक तबले की बनी। लेकिन उम्र के एक दौर में आने के बाद ये लगा कि मेरा मिजाज बहुत तैयार था म्यूज़िक के मामले में, लेकिन मेरी उंगलियाँ उतनी तैयार नहीं थी। और तो ऐसे समय ये मैंने अचानक तय किया कि बेहतर होगा कि मैं भीड़ का हिस्सा बनने की बजाय लेखन की तरफ जाऊं। और लिखना कम हुआ नहीं था, लिखना और पढ़ना, और नौकरी की तलाश कर ही रहा था। तो ये लगा कि अगर मैं किसी अखबार को ज्वाइन करूंगा तो मुझे जो जनरलाइज जिस तरह के काम होते हैं वैसे काम दिए जाएंगे जो मेरी दिलचस्पी से बाहर थे, और या हम ये भी कह सकते हैं कि जिसके लिए मैं अपने आप को अनफिट पाता था।
1: यानी जैसे कि यहाँ कहना चाहूँगा मैं
0: जी
1: कि तबले के लिए आपने अपनी उंगलियों को उतना अभ्यस्त नहीं पाया, लेकिन लेखन में उन्हीं उंगलियों को आपने एकदम से दस्त कर
0: हाँ जी,
1: दिया।
0: संभवतः कह कह सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि व्याकरण चूंकि म्यूजिक का मैंने सीखा हुआ था, तो मैं म्यूजिक की रिपोर्टिंग्स अपने ढंग से म्यूजिक कॉलेज ही किया करता था। और अखबारों में मैंने ये देखा कि उस तरह से काम करने वाले उस समय कोई नहीं थे, हालांकि देशबंधु अखबार में हेमलता आंजनेलू मैम थी, वो शौकिया काम किया करती थी, वो स्टाफर भी थी वहाँ की, लेकिन उनकी रिपोर्टिंग हम पढ़ते थे। इसके अलावा जनसत्ता में पढ़ने की दिलचस्पी थी, तो उसमें काफ़ी लोगों को पढ़ना, तो मुझे लगा कि मैंने म्यूज़िक का चूंकि ग्रामर सीखा है और टेक्निकली म्यूज़िक समझता हूँ। यहाँ एक बात मैं आपको और बताऊँगा कि रंगमंच का इंटरेस्ट भी स्कूली दौर में मुझे था, तो 9th क्लास से मैं ड्रामा करना शुरू कर दिया था। तो यहाँ के तमाम बहुत सारे डायरेक्टर्स के साथ मैंने ड्रामे किए, और इंटरेस्ट चूंकि जाग ही रहा था तो ड्रामे के साथ भी इंटरेस्ट था। उन्हीं दरमियान हबीब तनवीर का सानिध्य भी मिला, तो उनके
1: अरे
0: दल में
1: वाह,
0: भी राजकुमार कॉलेज में एक वर्कशॉप लगा था, उस वर्कशॉप में हमको हिस्सा लेने का मौका मिला। उसके बाद हमने जादूगर कलाकार नाम का एक ड्रामा किया था, जिसमें लंदन से 4 लोग, 4 या 5 लोग आए थे, जिसमें एक थी जेराल्डिन बोन जो क्राफ्ट का काम सिखाती थी, एक थी एलिजाबेथ लिंच जो डायरेक्शन के मामले में एक्सपर्ट थी, एक डेविड लीन थे जो क्राफ्ट और मार्शल आर्ट पे काम करते थे, और एक और लेडी थी जिनका नाम था एली प्रिटी। ये
1: अच्छा
0: ऐसे 4 लोग थे, और ये लगभग महीने भर हमने उस वर्कशॉप में हिस्सा लिया, जिसमें राजकुमार कॉलेज के बच्चे, हबीब तनवीर के नया थिएटर के अपने लोग, और हम कुछ शहर के नागरिक कलाकार। तो जब वो पूरा वर्कशॉप खत्म हुआ, शो हुआ, तो हबीब साहब ने कहा कि मैं एक नया ड्रामा तैयार कर रहा हूँ जो है हिरमा की अमर कहानी, जो बस्तर के जो महाराजा थे प्रवीरचंद भंजदेव उनके जीवन पर आधारित, और वो हबीब साहब का अपना लिखा हुआ था। तो उन्होंने देखा कि किनका इंटरेस्ट है शहर के लड़कों का, आप हमारे साथ काम करने आए। तो इस तरह से मेरा जुड़ाव हुआ, और फिर मुझे लगा कि अब हबीब साहब के साथ काम करने का मौका मिल रहा है। हालांकि उस समय हबीब साहब क्या थे, इसको हमारी समझ डेवलप नहीं थी, इसलिए हम जानते नहीं थे, लेकिन अच्छा लगता था काम
1: जी जी
0: करना। तो वो सिलसिला चला। तो म्यूज़िक का ग्रामर समझना या ड्रामा कर लेना, तो थोड़ा एक इंटरेस्ट स्वाभाविक रूप से कि चलो नाटकों की समीक्षाएं कर दे अखबारों में, म्यूज़िक के बारे में लिख दे, तो ये इंटरेस्ट इस तरह से एक मन तैयार हो गया। तो मुझे ये लगा कि मैं शायद इस तरह बेहतर काम कर सकता हूँ, इस तरह से मैंने आपको आपको कल्चरल जर्नलिज्म की तरफ मोड़ दिया।
1: जी, किस संघ की बात होगी ये?
0: ये मैं ऐसा मोटे तौर पर कह सकता हूँ कि 85 के बाद,
1: अच्छा
0: और 85 में हालांकि मेरे को जैसा याद आता है कि मैंने एक मेरा बड़ा राइटअप जो अपने यहाँ की खेल की एक बड़ी बहुत बड़ा नाम था छत्तीसगढ़ का, सुश्री तंद्रा राय चौधरी जो अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलक थी,
1: जी
0: उन पर एक एक रिपोर्ट लिखी थी। और चूंकि लोकल अखबारों में लिखता था और जनसत्ता में भी लिख रहा था, मैं अपने ढंग से संडे मेल उस समय आता था, संडे मेल में भी मैं लिख रहा था, और दिल्ली जाने के मौके मिलते थे तो साप्ताहिक हिंदुस्तान जाकर के मिलता था। तो मृणाल पांडे जी ने एक बार मुझे कहा कि छत्तीसगढ़ की जो कला और संस्कृति है उस पर कोई रिपोर्ट तैयार करो। तो वो उन्होंने कह तो दिया, वो मेरे लिए एक बड़ा टास्क भी था। तो मैं रायपुर आया, उसके बाद वो लिखा, और कुछ महीनों के बाद दोबारा मुझे किसी और संयोग से दिल्ली जाने का मौका मिला, तो मैं वो रिपोर्ट लेके उनके पास चला गया कि मैंने इसको लिखा है। तो उन्होंने देखा, उनको याद तो बहुत नहीं था लेकिन बाकायदा छापा। तो देश के बड़े पत्र और पत्रिकाएं उसमें छपने के बाद ये लगा कि थोड़ा सा एक उत्साह बढ़ा कि चलो हम ये काम कर सकते हैं।

0: तो यहाँ रायपुर में भी मैं काम कर ही रहा था, आकाशवाणी से भी जुड़ाव था, यहाँ भी छोटे छोटे प्रोग्रामों में आता था अपने ढंग से ग्रुप के साथ। तो नवभारत अखबार ने अवसर दिया। हालांकि नवभारत से पहले मैं स्वदेश में अपने इंटरेस्ट से जा करके उनको किसी भी प्रोग्राम की रिपोर्ट बना के रात को छोड़ के आता था साइकिल से, तो वो
1: जी
0: ले लेते थे। उसके बाद समय शिखर में भी इसी तरह से दिया। नवभारत एक पहला ऐसा अखबार था जिसने बाकायदा आमंत्रण दिया कि आप हमारे लिए कल्चरल रिपोर्टिंग शुरू करें।
1: अरे वाह,
0: तो मैंने उनके सामने एक बहुत विनम्रता से ये शर्त रखी कि मैं ये काम ज़रूर करूँगा, मगर मैं रेगुलर स्टाफर की तरह से काम नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि मन पे जैसा मैंने आपको बताया कि एक भय था कि अगर मैं रेगुलर स्टाफर हो जाऊँगा तो मुझे वो क्राइम की बीट भी देंगे, मुझे खेल भी देंगे, जिसके लिए मुझे बड़ा भय भी था। मेरी जो
1: रुचि
0: बुनावट
1: नहीं।
0: है,
1: जी
0: रुचि, वो उसके लायक नहीं थी। तो नवभारत में आने के साथ एक तरह से, जिसको हम कहते हैं कि प्रॉपर रोज अखबार में जाना, डेस्क में बैठना और एक सिलसिलेवार काम करना, लेकिन वहाँ मैं वही काम करता था जो मेरी दिलचस्पी का था
1: जी
0: और
1: जी
0: मुझे किसी ने रोका नहीं।
1: वाह, बहुत अच्छी बात। आपने बीच में हबीब तनवीर साहब का
0: जी
1: जिक्र किया, तो उनके साथ और भी कुछ काम करने का मौका कभी मिला आपको?
0: हाँ, वो हिरमा की अमर कहानी लगभग 2 2.5 साल में तैयार हुआ। और उनका उनका एक तौर तरीका ये होता था कि वो अपना रूटीन का कोई अगर ड्रामा कर रहे हैं वो तो कर ही रहे हैं, और किसी और ड्रामे की रिहर्सल करते थे। तो रिहर्सल करते करते हमको कभी वो दिल्ली बुलवा ले 15 दिन के लिए, कभी कांकेर बुलवा ले, कभी बिलासपुर बुलवा ले वहाँ वर्कशॉप में। तो हमको उनको भी समझने का मौका मिला। इसी बीच 90 के दशक में मैंने एक ड्रामा लिखा था दिलचस्पी से अपनी, किस्सा ठल्हा राम का। तो जिसमें ठल्हा राम से आशय है कि जो अपन छत्तीसगढ़ी में कहते हैं ना कि ठल्हा बैठे हैं, तो यानी जो कुछ नहीं कर रहा है, इस तरह से एक एक लोक कहानी मुझे कहीं से मिली थी जिसमें यह था कि एक व्यक्ति कुछ करता नहीं है और वो लफाजी करता है, लेकिन उसका जो तुक्का है वो लगते जाता है। तो उसकी गांव में एक थोड़ी सी पूछ परख होती है, तो वो अपने उस तुक्के को लोगों के सामने ऐसा शो करता है कि वो जानकार है। इसमें
1: अच्छा।
0: एक बड़ा हंसी मजाक की चीजें निकलती थी, तो मुझे लगा कि इसमें एक बहुत रोचक ड्रामा लिखा जा सकता है। मैंने एक प्रयास किया
1: जी
0: और वो ड्रामा लिखा गया। तो साहित्य कला परिषद की एक योजना आती है, नए राइटरों को वो अवार्ड देते हैं, तो मैंने वो स्क्रिप्ट उनमें भेज दी। और ये शायद संयोग रहा कि वो नाटक वहाँ भी चुन लिया गया, तो उसको साहित्य कला परिषद ने 1997 में मोहन राकेश नाट्य सम्मान दिया दिल्ली में।
1: जी
0: तो हबीब साहब को इस बात की जानकारी हुई, तो हालांकि उस समय हबीब साहब के साथ काम करना मेरा खत्म हो गया था, लेकिन हबीब साहब के साथ जुड़ाव बहुत था।
1: जी
0: और जब भी उनका यहाँ आना हो, वो उनकी चिट्ठियाँ आती थी या उनका टेलीफोन आता था, और कभी उर्दू में उनकी चिट्ठियाँ आती थी तो उनकी बड़ी बहन घर बुलवाती थी
1: अच्छा
0: और वो कहती थी कि राजेश आ जाओ, बाबा की चिट्ठी आई है, बाबा यानी हबीब साहब।
1: जी
0: तो उन्होंने कहा कि तुमने कोई ड्रामा लिखा है? मैंने सुना तो मैं संकोच तो था, तो मैंने बताया हाँ सर लिखा है। तो बोले पढ़ने दो, तो मैंने दिया। तो कुछ समय के बाद उनका टेलीफोन आया और उन्होंने कहा कि मैं इसको कर रहा हूँ रायपुर में, हम इसका देखते हैं क्या होता है। तो अपने दल के साथ रायपुर में शो हुआ और शो को लोगों ने अप्रिशिएट किया।
1: जी
0: उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इसको और करता हूँ। तो स्पीक मैके का एक फेस्टिवल हो रहा था दिल्ली में कुछ सप्ताह का, जिसमें करीब 4 एक शो उन्होंने, एक दिन उनका प्ले होता था गांव के नाम ससुराल, उसमें भी हबीब साहब के कलाकार और कुछ दिल्ली के कलाकार, इस तरह से वो एक ड्रामा उन्होंने तैयार कराया, खेला। और बाद में मैंने एक ड्रामा और लिखा था जिसको उन्होंने कहा था कि मैं करवाऊंगा, लेकिन वो अब उम्र के उस दौर में थे
1: बिल्कुल।
0: जिसमें वो अपनी बायोग्राफी पर लगे हुए थे। लेकिन मेरा उनके साथ मिलना निरंतर था, और जिस दुर्भाग्य से जब वो भोपाल में अपने जीवन के आखिरी पड़ाव में थे, हॉस्पिटलाइज थे, तो मैं हॉस्पिटल भी गया, उनसे मिल के भी आया था। तो फिर बाद में मैंने अपने ढंग से हबीब साहब को देख के एक सीरीज पे कुछ लिखने की कोशिश की, वो
1: जी
0: हालांकि अभी अप्रकाशित है लेकिन है।
1: जी जी जी बहुत अच्छी आपने बात बताई। कई संस्मरण आपके आए, कुछ यादें आपकी खुलकर सामने आई हबीब साहब को लेकर और अपने छत्तीसगढ़ की पत्रकारिता और
0: जी
1: लेखन को लेकर। एक बात हम आपसे ये जानना चाहेंगे राजेश जी, यहाँ पर कि एक तरफ आप लेखन भी बदस्तूर आपका जारी था, दूसरी तरफ आप आंचलिक पत्रकारिता पर भी अपना ध्यान
0: जी
1: केंद्रित किए हुए थे, तो दोनों में सामंजस्य किस तरह आप रख पाते थे?
0: देखिए, बुनियाद तो लिखने और पढ़ने की एक ही है, इसलिए शुरुआती दौर में मुझे ये तो तय नहीं था कि मैं जर्नलिज्म पे जाऊंगा, लेकिन साप्ताहिक हिंदुस्तान या धर्मयुग पढ़ने की वजह से एक जो लिटरेचर के प्रति एक अंदर में एक जिसको अपन कहते हैं एक धार पनपने लगी, तो वो इंटरेस्ट था। और यहाँ देशबंधुओं में जो उनका अवकाश अंक आता था, उसमें सप्ताह में एक बार एक पोइट्री आती थी जिसको डिज़ाइन के फॉर्मेट में तैयार करते थे अरुण काठोटे, जो यहाँ के पुराने चित्रकार हैं, तो वो पढ़ता था तो

0: मुझे बड़ा अच्छा लगता था।
1: जी
0: तो उसको नियमित पढ़ने का ये फायदा होता था कि देश भर के जो बड़े कवि हैं, जो बड़े नाम हैं समकालीन कविता के, जो चंद्रकांत देवताले हों, चाहे केदारनाथ सिंह हो, चाहे अशोक वाजपेयी हो, और बहुत सारे नाम, चाहे ऋतुराज हो या अजीत कुमार हो, इनकी कविताएं पढ़ने मिलती थी। तो एक मन भी तैयार होने लगा और लगा कि मैं भी कुछ कोशिश करूं। तो मैं अपने ढंग से कोशिश करता था। तो पंजाब का जो घटनाक्रम था उस समय, उस घटनाक्रम के बाद जो स्थितियां बदली, तो मैंने अपने ढंग से एक छोटी सी कविता लिखी थी जिसका शीर्षक था पंजाब तुम चुप क्यों हो। तो वो कविता मैंने वहां भेजी, तो वो बाकायदा डिजाइन होके उसमें छपी, तो उत्साह जागा।
1: जी हाँ
0: तो इस
1: जी
0: ढंग से फिर पोएट्री और कहानियां पढ़ने का शौक बहुत रहा शुरू से। तो वो भी कहीं ना कहीं था, लेकिन मैंने एक ये तय किया था कि अखबार में काम करते हुए जर्नलिज्म तो करना है, वो क्रिएटिव जर्नलिज्म करना है, लेकिन लिखने की का जो इंटरेस्ट है वो जो लिटरेचर है उसकी तरफ जाना है।
1: जी
0: तो सामंजस्य दोनों में इस तरह से था, और आज भी है। हालांकि आज जो मेन स्ट्रीम का जर्नलिज्म है वो थोड़ा सा कम हुआ है, क्योंकि 2014 तक मैं कंटिन्यू अखबार में काम किया, उसके बाद मैंने एक तरह से अपने आप को थोड़ा सा अलग किया और क्रिएटिव राइटिंग की तरफ। तो आजकल ये जो फेसबुक का जो माध्यम है या सोशल मीडिया का जो माध्यम है, उसमें जो अपनी पोस्ट है और कुछ जो बड़े नाम हैं वो काम करवाते हैं। हाँ, एक बहुत अच्छी बात इसमें ये रही कि मुझे ऐसे लोगों के साथ मेरे संपर्क हुए जिन लोगों ने सीखने और सिखाने की बहुत कोशिश की और अवसर दिया। जैसे इंडिया टुडे में मैं बहुत कोशिश करता था कि मेरा कुछ काम आए, लेकिन इंडिया टुडे आप जानते हैं कि वो एक पॉलिटिकल किस्म की मैगजीन है, मगर उसके जो संपादक थे तत्कालीन जगदीश उपासने,
1: जी
0: वो चूंकि उनसे मेरा एक परिचय था स्थानीयता की वजह से, क्योंकि वो भी छत्तीसगढ़ के, तो उन्होंने कहा कि हमारी मैगजीन पे वैसा कोई पेज नहीं है जिस पर तुम काम करते हो, लेकिन हम देखते हैं क्या होता है। और उन्होंने अपने आखिरी पेज में फुर्सत नाम का एक पेज शुरू किया
1: अच्छा
0: जिसमें देश भर में जो इस तरह की चीज़ें हो रही है, चाहे वो थिएटर हो, चाहे रंगमंच हो, या म्यूजिक हो, या बुक रिव्यू हो, या सिनेमा हो,
1: हाँ
0: उसकी
1: हाँ
0: छोटी छोटी करीब 100-150 शब्दों का सिलसिला उन्होंने मुझे ध्यान में रख के किया। तो इंडिया टुडे के साथ वो जो सिलसिला हुआ वो धीरे धीरे ऐसा बढ़ा कि वो जो एक पेज का फुर्सत था वो 4 पेज में बदल गया।
1: अरे वाह,
0: और आज 2026 तक, अभी हमारे ही प्रदेश की एक बड़ी सुनाम धन्य आर्टिस्ट तीजन बाई के नहीं रहने पर भी मैंने इस बार उन पर लिखा, तो वो इंडिया टुडे में सिलसिला चल रहा है, वो 1995 से आज देख ले लगभग 30 साल अब हो रहे हैं।
1: जी हाँ जी
0: तो वो सिलसिला बहुत नियमित है, और इंडिया टुडे ने देश भर में एक जो पहचान दी, वहाँ भी मैंने वही काम किया जो मेरी दिलचस्पी का था कि
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: रचनात्मक जर्नलिज्म।
1: जी हाँ जी हाँ। अच्छा, यहाँ राजेश जी एक बात और जानना चाहेंगे हम
0: जी
1: कि पत्रकारिता का एक लंबा दौर आपने देखा है और अब जो पत्रकारिता का दौर है,
0: जी
1: एक बदलता हुआ परिवेश है। हम ये कहें कि अब सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा हावी हो गया है, प्रकाशन का जो क्षेत्र था वो
0: जी
1: थोड़ा सिमट गया है, तो ये जो फर्क आया है इसे लेकर आप क्या सोचते हैं?
0: देखिए, फर्क तो बेशक है, और मैं भी अब उस दौर से तो बाहर निकल चुका हूँ, नौजवानी वाले दौर से, लेकिन मैं इस फर्क का स्वागत करता हूँ अपने तरह से।
1: जी
0: एक संयोग भी है कि हम 200 साल के हिंदी जर्नलिज्म के दौर पे अभी खड़े हैं। उदंत मार्तंड जो कोलकाता से निकला था, उसके अब 200 वर्ष पूरे हो चुके हैं हिंदी अखबार के। तो एक तो बहुत सुंदर बात यह है कि हिंदी जर्नलिज्म ने जिस तरह से एक दौर में शुरुआत की थी कि जो ट्रेडल वाली जो थी कि एक एक अक्षरों को जोड़ना,
1: वो
0: उसके बाद
1: मशीन मतलब
0: मशीन से
1: कंपोजिंग होती थी,
0: कंपोजिंग वाला,
1: बहुत कठिन वक्त था वो।
0: और उसके बाद हम ऑफसेट पे आए। ऑफसेट के बाद आज तो ऑफसेट के का एक और नया जो स्ट्रक्चर है वो भी हम देखते हैं कि बिल्कुल आधुनिक जो टेक्नोलॉजी है। अब ये रहा कि अक्षरों को जोड़ना, फिर ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंटिंग, उसके बाद कलर प्रिंटिंग, फिर ऑफसेट पे आना, और अब ये आज सोशल मीडिया, मैंने आज आपने केवल अपने व्हाट्सएप पे कोई चीज़ तैयार की, किसी को भेजा, वो अखबार पे तत्काल चली जाती है, वो सीधे प्रिंटिंग पे। तो स्याही को स्पर्श करना, अक्षरों को स्पर्श करना, और अब बिना स्पर्श किए, तो एक इन सब चीज़ों का मजा है। चीज़ें आसान बहुत हुई है, अब सवाल सिर्फ ये है कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसा कैसा हो रहा है। और अब तो बल्कि मैं ये कहूँगा कि अब ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई, जब से आया लोग एआई के ऊपर आश्रित हो गए हैं, क्योंकि वो तो एक टेक्निक है, वो तो एक मशीन है।
1: बिल्कुल
0: मशीन ने एक चीज़ आपको तैयार करके दे दी, उसके अंदर वो स्वाद है कि नहीं, उसके अंदर वो गंध है कि नहीं, ये तो मानव ही बता पाएगा, या
1: बिल्कुल
0: आपका
1: बिल्कुल।
0: मस्तिष्क बता पाएगा।
1: तो
0: लेकिन
1: इससे ये लगता नहीं कि कहीं कहीं संवेदनाएं थोड़ी कम हो
0: बेशक
1: गई हैं
0: बेशक
1: और
0: बहुत ज़्यादा,
1: या नष्ट हो रही हैं?
0: बे बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा।
1: जी
0: उसकी वजह जैसा मैंने कहा ना कि अगर हम एआई पर आश्रित हो रहे हैं, टेक्नोलॉजी पर, हम आश्रित ना हो करके उसको एक सहारे के रूप में देखें, उसको एक सहोदर के रूप में देखें, और ये सोचे कि हमारे काम को बेहतर बनाने के लिए एक टूल हमारे साथ।

0: बात है। तो नई टेक्नोलॉजी का हम स्वागत भी हम करेंगे, और ये तो तय है कि चीजें हर दिन बदल रही है, मगर हर तकनीक के साथ कहीं ना कहीं हमारी जो अपनी रूट्स होती है वो भी बहुत काम करती है। आज देखिए जिस तरह से जो दुनिया बदल रही है, दुनिया का दौर हम देख रहे हैं, बहुत सारी परेशानियां हैं मनुष्य को, मानसिक परेशानियां, शारीरिक परेशानियां, और ये कहीं ना कहीं प्रकृति के साथ जो हम दोहन कर रहे हैं उसकी वजह से है। सारे बदलाव के बाद लोग कहते हैं कि फिर से अपनी रूट्स की तरफ चलो, लोग अब वापस गांव की तरफ आ रहे हैं। तो आशय मेरा कुल मिला के कहने का ये कि रूट्स को बचा करके हम थोड़ा सा अगर टेक्निक का स्वागत करें तो बेहतर होगा।
1: राजेश जी, काफी अच्छी चर्चा हो रही है।
0: जी
1: अच्छा, हिंदी पत्रकारिता की हम जब बात करते हैं, हिंदी की पत्र पत्रिकाओं की बात करते हैं, तो अब थोड़ा सा ऐसा लगता है कि लोगों का जो रुझान है पढ़ने के प्रति कुछ कम हो गया है। वो ज्यादातर मोबाइल पर निर्भर हो गए हैं या जो दूसरे माध्यम हैं
0: जी
1: उन पर जाना ज्यादा पसंद करते हैं। तो ये जो है
0: जी
1: प्लेटफॉर्म जो परिवर्तित हुए हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप?
0: देखिए मैं भी उसका शिकार हूं, मतलब पढ़ने की दिलचस्पी होने के बावजूद अगर एक बार हाथ में सुबह हमने मोबाइल ले लिया तो 1 घंटे वो हमारा ले लेता है, उसके बाद हमको जरूर लगता है कि हमको नहीं लेना था, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। मगर एक बात जरूर है कि अभी बहुत सारे प्रकाशन जो नए आए हैं और इतनी ज्यादा चीजें प्रकाशित होके आ रही है, तो एक तरफ तो ये बिल्कुल आपने बहुत सही कहा कि ये सच तो है कि पढ़ने की प्रवृत्ति कम हुई है, लेकिन प्रकाशन जिस तेजी से आ रहे हैं, और आप किसी भी नए प्रकाशक से बात करिए अपने संग्रह के लिए, वो आपको 1 साल का वेटिंग देगा। इसका मतलब चीजें प्रकाशित हो रही हैं, चीजें बिक रही है। तो मुझे लगता है कि पढ़ने की प्रवृत्ति एक तरफ कम भी हुई है, लेकिन लोग फिर से उसकी तरफ जा रहे हैं। ये जरूर है कि थोड़ी सी भागदौड़ ऐसी है कि टेक्नोलॉजी आ गई है, तो अलमारी में जाके या लाइब्रेरी में जाकर किताब निकालने की बजाय अब आज देखिए इस समय जो लाइब्रेरियाँ आ रही है वो डिजिटल लाइब्रेरियाँ हैं। तो है तो लाइब्रेरी वो भी, लेकिन वहाँ सिस्टम लगा हुआ है, आदमी क्लिक करके अपनी चीज़ें तलाश रहा है। गुणवत्ता की थोड़ी कमी ज़्यादा हो सकती है, ये चूंकि फ्रेज है, एक
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: दिन रात जैसे बदलते हैं।
1: परिवर्तनशील है प्रकृति,
0: जी
1: बस यही
0: जी
1: हम मान सकते हैं
0: जी
1: उसे लेकर। राजेश जी, अभी जो नए युवा साथी है, नए पत्रकार जो इस क्षेत्र में आना चाहते हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि परिवेश बहुत बदल रहा है, पत्रकारिता का ट्रेंड भी काफी परिवर्तित हो गया है, तो
0: जी
1: ऐसे में क्या संभावनाएं बनती हैं या क्या चुनौतियां हैं उनके समक्ष?
0: देखिए ये सवाल तो बहुत शाश्वत है और बहुत गंभीर सवाल भी है कि मैं भी इस फेज से अपने समय में बहुत गुजरा हूँ, और आज भी उम्र के इस पड़ाव में भी कहीं ना कहीं वो चीज़ें मुझे अभी भी परेशान करती हैं। जर्नलिज्म एक ऐसा माध्यम है जिसके साथ जाने अनजाने एक अघोषित शब्द ग्लैमर का जुड़ गया है। इस पे सहमति और असहमति लोगों की हो सकती है, और उस सहमति का भी हम स्वागत करते हैं, लेकिन जनरेशन इस समय की ऐसी है उसको एक बहुत कम समय में नाम चाहिए, बहुत कम समय में वो लोगों के बीच जाना। अच्छा, चूंकि मीडिया इस समय का ऐसा है जिसको हम एक हमारे सामने एक शब्द है सोशल मीडिया का, वो बहुत जल्दी लोगों को लोकप्रियता देता है, तो लोकप्रियता मिलना बहुत आसान है, लेकिन लोकप्रियता को पचाना और उसको बनाए रखना, तो हर व्यक्ति अगर जर्नलिज्म पे ये मान के आएगा कि उसका नाम हो जाए, वो 4 लोगों के बीच सराहा जाए और बड़े बड़े नामों के बीच जाके बैठ जाए, तो ये एकाएक संभव नहीं है। और अगर बहुत आसानी से आपको मिल जाता है तो इसका मतलब आपको ये भी नहीं समझना चाहिए कि जिन लोगों ने एक लंबा समय गुजारा है आपने उनको कहीं पीछे छोड़ दिया है। ये जरूर है कि इस समय जर्नलिज्म में आर्थिक सुरक्षा बहुत अच्छी है, हालांकि आज अब जो नया दौर है जर्नलिज्म का उसमें रेगुलर स्टाफर रखने की बजाय लोग कॉन्ट्रैक्ट पे रख रहे हैं, तो ये एक समस्या है, लेकिन अपेक्षाकृत जो आरंभिक स्ट्रक्चर है सैलरी का वो सम्मानजनक है। अब ये अलग बात है कि आप कहाँ काम कर रहे हैं या कहाँ नहीं कर पा रहे हैं, तो चुनौतियाँ बेशक बढ़ी हैं, लेकिन चुनौतियों के अनुपात में विस्तार भी उसका उतना ही हुआ है, इसलिए स्कोप बढ़ा है। कंपटीशन बहुत है, क्योंकि अगर आप अच्छा नहीं लिखेंगे तो आप पीछे कर दिए जाएंगे, क्योंकि AI ये प्रैक्टिकल नॉलेज की चीज़ें हैं। आप कब तक कहीं से कोई चीज़ स्क्रिप्ट तैयार करके आके बैठेंगे, कभी ना कभी तो आपको फ्रंट पे आना पड़ेगा।
1: बिल्कुल बिल्कुल,
0: तो अच्छा, जर्नलिज्म एक ऐसा माध्यम है कि आप ये नहीं बता सकते कि ये घटना घटने वाली है, जो रेगुलर बीट होती है उसको हम तो एक एक रूटीन का स्ट्रक्चर मानते हैं, कि आपको कोई खेल मैदान है आपको रिपोर्टिंग करनी है, वो चीज़ें अलग है, क्राइम की बीट का रिपोर्टिंग अलग है, लेकिन आकस्मिक कोई चीज़ कहीं हो रही है, तो इसलिए एक तो पढ़ना बहुत ज़रूरी है, दूसरा देखना बहुत जरूरी है, तीसरा लोगों को सुनना बहुत जरूरी है, क्योंकि सुनने की

0: क्षमता लोगों में अब खत्म होती जा रही है।
1: बहुत
0: लोग
1: बहुत
0: दूसरों को सुनना पसंद नहीं करते। आप किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति के साथ बैठ जाएं, उसको सुने तो आपको ये लगेगा कि आपने चार किताबें, मतलब एक आप
1: एक
0: साथ
1: साथ
0: आप
1: पढ़
0: पढ़ के
1: लिया
0: आए। मैं
1: बिल्कुल।
0: आपको मेरा अनुभव बहुत संक्षेप में बताऊं। एक हमारे शहर में एक पेड़ काट दिया गया था, 200 साल पुराना पीपल का पेड़। जैसा मैंने आपको बताया कि मेरा एक थोड़ा सा एक अटैचमेंट है ग्रीनरी के प्रति, और मुझे अक्सर ये लगता था कि क्या इस शहर का एक ऐसा डाटा इस प्रदेश का तैयार करना चाहिए जिसको हम ग्रीन ऑडिट कहें। तो इसको लेके मैंने अपने ढंग से कुछ प्रयास किया, वो बात बनी नहीं। मतलब मैं उसके पीछे, मेरा कॉन्सेप्ट ये था कि जनरेशन को ये पता होना चाहिए कि आपके शहर में बड़ के या पीपल के या 100 या 150 साल पुराने कितने पेड़ हैं। तो इसको मैंने एक ग्रीन ऑडिट नाम देकर के एक पहल की थी। लेकिन जो मैं अभी मैंने आपसे पहले कहा कि जो 200 साल पुराना जब पेड़ काटा गया तो मैं बहुत बेचैन हुआ, तो मैंने उस पर एक अपने ढंग से एक डिस्पैच तैयार किया और हमारे ऑफिस में जब वो मैंने दिया तो वो छपा बाकायदा। और मैंने उसमें उस तरह से उसको ये लिखा था कि जब पेड़ कटा तो उस गार्डन पे शाम को पंछी आते हैं और वो अपने उस जगह को देखते हैं जहाँ वो पेड़ था, क्योंकि उन पंछियों का उसमें बसेरा था।
1: जी
0: तो वो परेशान हो जाते हैं कि शाम को अपने, आप सोचे कि मैं अपने घर में जा रहा हूँ और शाम को मेरा घर मेरी जगह पे ना दिखे तो मेरी हालत क्या होगी। तो मैं बहुत डिस्टर्ब था, तो मैंने उसको सोचा कि इसको कैसे लिखा जाए। तो ये तय किया कि चिड़िया जो है वो चिट्ठी लिखती है। अब वो चिड़िया किनको चिट्ठी लिखेगी, तो वो राज्य के मुखिया को लिखती है, यानी मुख्यमंत्री को। तो उसका शीर्षक था चिड़िया की चिट्ठी मुख्यमंत्री के नाम,
1: अरे वाह।
0: और वो एक बाकायदा पत्र था पूरा। और
1: हाँ
0: आखिरी में वो चिड़िया लिखती कि सादर आपकी गौरैया निवासी टाउन हॉल, चूंकि वो टाउन हॉल में पेड़ काटा गया था। ये बताते हुए मुझे बड़ा रोमांच हो रहा है कि ये नवभारत के सभी एडिशन ने इसको छापा, और जब ये मुंबई में महाराष्ट्र में छपा तो कुछ महीने के बाद मेरे पास महाराष्ट्र सरकार का जो शिक्षा डिपार्टमेंट है जो पाठ्य पुस्तकें छापता है वहाँ से टेलीफोन आया। उन्होंने कहा कि ये आर्टिकल आपका है, हम इसको पाठ्य पुस्तक में लेना चाहते हैं। तो मैं तो बहुत चौंक गया। मैंने कहा इसमें ऐसा क्या है? आपको लगा नहीं, इसमें जो आपने बात उठाई है, हम इसको संदर्भ बदलेंगे लेकिन ये किसी भी राज्य के लिए, किसी भी शहर के लिए ये हो सकता है, क्योंकि इसमें जो आपने बात कही
1: बिल्कुल
0: हमको लगता
1: बिल्कुल
0: है कि बच्चों को इससे सीख मिलेगी।
1: सार्वभौमिक बात।
0: तो वो जो 7वीं का हिंदी पाठ्यक्रम है महाराष्ट्र सरकार का, उसमें वो पढ़ाया जाता है।
1: अरे
0: करीब
1: वाह
0: मैं समझता हूँ 8-10 साल इस बात को हो गए,
1: जी जी
0: वो आज भी पढ़ाया जा रहा है। तो ये एक एक रिपोर्टिंग का पॉजिटिव मोड आप कह
1: बिल
0: सकते
1: बिल्कुल
0: हैं।
1: बिल्कुल उसका प्रभाव है ये।
0: जी जी
1: जी जी काफ़ी बातचीत हुई आपसे और कई विषयों पर हमने इस संदर्भ में बातचीत की कि पत्रकारिता क्या है और फिर अभी का जो दौर है वो क्या है, जो नए आने वाले हैं पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके लिए क्या संभावनाएं हैं, कौन सी चुनौतियां हैं। तो इस पूरी बातचीत के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार पुनः वसुंधरा सम्मान आपको प्रदान किया जा रहा है इसकी घोषणा के लिए, और इस सम्मान को प्राप्त करने के लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद पूरे आकाशवाणी परिवार की ओर से।
0: धन्यवाद आदरणीय प्रकाश उदय जी, आप लोगों ने, आकाशवाणी परिवार ने, और आपने मुझे आमंत्रित किया। मेरे लिए जैसा कि मैंने कहा कि हमेशा आकाशवाणी एक सीखने का माध्यम रहता है, आज भी उम्र के इस दौर में भी यहाँ आते हुए एक तो रोमांच भी होता है, थोड़ा संकोच भी होता है, भय भी होता है, लेकिन अंदर ही अंदर एक जो आनंद और खुशी का भाव है वो एक बहुत प्रेरणा देता है। तो मेरी इस पूरी बातचीत से अगर किसी भी व्यक्ति को कोई काम की बात अगर निकल के आएगी तो मैं समझता हूँ मेरा आना और आपकी मेहनत सार्थक हुई। मैं आपको एक बार फिर से और सारे आकाशवाणी परिवार को और खासतौर पर श्रोताओं को नमस्कार, बहुत धन्यवाद।

0: इनसे मिलिए कार्यक्रम के तहत अभी आप सुन रहे थे वसुंधरा सम्मान से सम्मानित वरिष्ठ पत्रकार और लेखक श्री राजेश गनोदवाले से प्रकाश उदय की बातचीत। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी ही देर में होगा।
1: कार्यक्रम इनसे मिली अभी हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से रिले कर रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 9 बजे हैं। लीजिए पेश है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग
0: उमंग कार्यक्रम के सभी श्रोताओं को मेरा यानी अजीत का नमस्कार। श्रोताओं, आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर विचार से, जिसे हमें भेजा है गांव गणेश धाम परसुली पोस्ट खेरथा बाजार जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मवंतीन बाई और मोतीम बाई मानिकपुरी जी ने। बड़ा ही खूबसूरत पर्यावरण संदेश आपने भेजा है। लिखा है, करते वृक्ष प्रदूषण दूर, देते हैं वर्षा भरपूर। बहुत सुंदर विचार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस छोटे लेकिन बेहद खूबसूरत पर्यावरण संदेश के लिए। और आइए अब सुनते हैं पिछले दिनों संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम। तो मित्रों, सबसे पहला संदेश हमें मिला है ग्राम ममना जिला हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा, प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा। अगला संदेश हमें मिला है करसोग जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से हमारे चिर परिचित श्रोता योगेश ठाकुर जी का। अगला संदेश हमें मिला है ग्राम जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना, भावना, बिंदु, गोलू, कुसुम भाई, बाबू दिव्यांश और सूरज कुमार ढाक से। ग्राम नागर कोहरा जिला राजनांदगांव छत्तीसगढ़ से बबलू साहू, जामुन देवी साहू, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा और बेबी आराध्या साहू। अगला संदेश हमें मिला है हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडखे, नंदा बोडखे, हनुमान बोडखे और उत्तम जामदाड़े जी का। और आखिरी संदेश जो हमें मिला है वो हमें मिला है बिलाईगढ़ छत्तीसगढ़ से रोशनलाल देवांगन और कौशल्या देवांगन जी का। बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, आपसे निवेदन है इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे आपके उमंग कार्यक्रम से। तो एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूँ हमारी आपकी सबकी प्यारी श्रृंखला ये भी जानिए की अगली कड़ी में। तो आइए करते हैं आज की चर्चा की शुरुआत। तो श्रोताओं, आज हम एक बार फिर से चलते हैं सुदूर उत्तर पूर्वी सुंदर राज्य मेघालय और पहुंचते हैं वहां के पूर्वी खासी हिल्स में, जिसे हम ईस्ट खासी हिल्स भी कहते हैं। श्रोताओं, इन्हीं पर्वतों में बसा है माउली नोंग गांव। बता दें कि यह चेरापूंजी से लगभग 90 किलोमीटर दूर है और बांग्लादेश की सीमा से सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। अब आइए जानते हैं कि क्या खास बात है इस गांव में। जी, तो आपको बता दें कि माउली नोंग गांव को सन 2003 में एशिया का सबसे स्वच्छ गांव घोषित किया गया था। कहते हैं कि इसका नाम माउली नोंग किसी प्राचीन स्थानीय गांव के मुखिया के नाम पर पड़ा है। श्रोताओं, इस गांव को लोग प्रेम से गॉड्स ओन गार्डन यानी ईश्वर का अपना बगीचा भी कहते हैं, क्योंकि यहां चारों ओर सुंदर फूलों, पेड़ों और हरियाली का अनूठा और सुंदर संसार दिखाई पड़ता है। चारों ओर बादल, झरने और घने बादल इस गांव की खूबसूरती को बहुत बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। श्रोताओं, अब जानते हैं कि इस गांव की सबसे खास बात क्या है। जी, तो इस गांव की सबसे खास बात यह है कि इस गांव में सफाई और स्वच्छता किसी सरकारी विभाग या कर्मचारी का दायित्व नहीं है, लेकिन यहाँ के हर निवासी का काम है। यहाँ हर व्यक्ति गांव की सफाई में भाग लेता है। उस गांव को देखने वाले कहते हैं कि जैसे आप इस गांव की सीमा में घुसेंगे, आपको जगह जगह बांस से बने हुए सुंदर कलात्मक कूड़ेदान लगे हुए मिलेंगे। आप कूड़ा यहाँ वहाँ जहाँ जी चाहे वहाँ नहीं फेंक सकते। सड़क पर एक पत्ता भी दिखाई दे तो लोग तुरंत उठाकर उसे कूड़ेदान में डाल देते हैं। उसके बाद क्या होता है, आइए जानते हैं उसके बाद क्या होता है। उसके बाद श्रोताओं, सप्ताह के अंत में गांव का सारा कचरा एक जगह जमा किया जाता है और उसे जैविक खाद बनाई जाती है। प्लास्टिक और रासायनिक खाद पर पूर्ण प्रतिबंध है। आइए अब बात करते हैं यहाँ के समाज की। मित्रों, यहाँ समाज में मातृसत्तात्मक व्यवस्था चलती है, यानी परिवार का उपनाम माँ के नाम पर चलता है। एक और बहुत ही सुंदर और शिक्षाप्रद बात आपको बताना चाहते हैं श्रोताओं, हम विश्वास करते हैं कि आपको भी ये बात बड़ी अच्छी लगेगी, और वो ये है कि इस गांव को देखने के लिए पूरे सप्ताह पर्यटक देश विदेश से आते रहते हैं, पर्यावरण विशेषज्ञ भी आते रहते हैं। पूरा सप्ताह गांव वालों के लिए बहुत व्यस्त रहता है, इसीलिए यहाँ की ग्राम समिति ने एक निर्णय लिया है। वो निर्णय ये है कि प्रति रविवार को गांव पर्यटकों के लिए पूरी तरह से बंद रखा जाए। लेकिन ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गांव वाले चाहते हैं वे अपना व्यक्तिगत और पारिवारिक समय यानी क्वालिटी टाइम शांति से बिता सकें। श्रोताओं, इस गांव के

0: अरे बहुत ऊंचा टावर है जिसे स्काई व्यू टावर कहते हैं। ये बांस का बना हुआ है। इस टावर पर चढ़कर पड़ोसी देश बांग्लादेश को साफ साफ देखा जा सकता है। माउली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं। ये अद्भुत पुल प्राकृतिक इंजीनियरिंग का अनूठा नमूना है। श्रोताओ, इसे लोहे या सीमेंट से नहीं बनाया गया, लेकिन ये रबर के पेड़ों की जड़ों को प्रशिक्षित करके बनाया गया है। सचमुच माउली नोंग गांव अपने आप में एक अद्भुत गांव है और आज के युग में स्वच्छता और सामाजिक सामंजस्य की अनूठी मिसाल प्रस्तुत करता है। तो श्रोताओ, ये थी हमारी आज की जानकारी। अब आज का प्रश्न, आज की जानकारी से, तो हमारा आज का प्रश्न है, माउली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए। माउली नोंग गांव के पास एक अनूठा पुल है जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहते हैं, क्यों? श्रोताओ, आप अपना उत्तर हमारे IBRS नंबर यानी 8800440559 पर भेज सकते हैं और हमारे ईमेल पर भी आप अपना संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cieet.nic.in। और आइए अब सुनते हैं आज के शैक्षिक कार्यक्रम। तो आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की कड़ी में हमारा पहला कार्यक्रम है, कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। श्रोताओं, कक्षा 6 की समाज के अध्ययन की पाठ्यपुस्तक के एक पाठ पर आधारित इस कार्यक्रम के द्वारा विशेषकर इतिहास के उन विभिन्न स्रोतों की चर्चा की गई है जिनके द्वारा हम अपने भूतकाल की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
1: दोस्तों नमस्कार, एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपका स्वागत है। ये जानने के लिए कि कल क्या हुआ था या आज क्या हो रहा है, हम रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविजन देख सकते हैं या फिर अखबार पढ़ सकते हैं, लेकिन बहुत पहले क्या हुआ था ये कैसे जाना जा सकता
2: है ना साथियों? अच्छा सवाल। यही सवाल निधि और आदिका के मन में भी था। वे छुट्टियों में अपनी नानी के घर गई हुई थी। हुआ यूं कि एक दिन वे समाचार पत्र पढ़ रही थीं। अचानक उनकी निगाह समाचार पत्र के एक अंश पर पड़ी जहाँ छपा था, लगभग 2000 साल पहले। वे सोचने लगीं,
3: भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
4: हाँ, 2000 साल पहले।
3: नानी माँ?
5: हाँ निधि।
3: ओ नानी माँ, कहाँ हो?
5: अरे यही हूँ, आ जाओ निधि, आओ आदिका बेटी।
3: अरे ये क्या सारे बक्से खोल रखे हैं, क्या कर रही हो?
5: हाँ हाँ बताती हूँ, जल्दी क्या है?
3: कितने ढेर सारे कपड़े हैं नानी माँ, ये तो बहुत पुराने हैं ना?
5: हाँ बेटी, बहुत पुराने हैं, तुमसे और तुम्हारी मम्मी से भी पुराने। और पता है निधि, आदिका जानती हैं आप ये कपड़े हमने कब पहने थे?
3: नहीं पता, बताओ ना रानी माँ।
5: अरे ये कपड़े तो हमारी शादी के हैं।
3: नाना नानी की शादी के कपड़े? भाई वाह, नानी पहले और आज के कपड़े कितने अलग अलग दिखते हैं, है ना?
5: हाँ हाँ निधि, समय के साथ साथ सारी चीजें बदल जाती हैं।
3: नानी एक बात मेरे मन में भी आ रही है, और वो ये कि बहुत पुराने बातों को कैसे जाना जा सकता है?
5: अरे बिटिया, ये बताने के लिए तो हमारे पंकज से बढ़िया और कोई नहीं हो सकता।
3: हाँ हाँ, मामा जी से पूछेंगे।
5: हाँ बिटिया, वो तो पुरातत्व वेत्ता है ना? अरे देखो देखो, तुम्हारे नाना जी भी आ गए, आइए आइए ना, देखिए बिटिया कुछ पूछ रही है।
3: नाना जी पुरातत्ववेत्ता किसे कहते हैं? हाँ हाँ बताइए ना नाना जी।
6: बेटी बड़ा अच्छा सवाल है, देखो पुरा यानी पुरानी या प्राचीन, तत्व यानी चीजें या वस्तुएं, और वेत्ता यानी जानकार।
3: अच्छा,
6: पुराने या प्राचीन वस्तुओं की जानकारी रखने वाले को पुरातत्ववेत्ता कहते हैं, अंग्रेजी में इसे आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। पंकज आज शाम को आएगा तो उससे पूछ लेना, ठीक है?
3: मामा जी, मामा जी,
1: अरे निधि,

0: ओ आदिका, कैसी कट रही तुम्हारी छुट्टियाँ?
1: बहुत अच्छी तरह मामा जी। आज सुबह हम समाचार पत्र पढ़ रहे थे।
0: ये तो बहुत अच्छी बात है
2: जी। उसमें छपा था लगभग 2000 साल पहले, ये लेख किसी सभ्यता के बारे में था मामा जी। भला ये कोई कैसे जान सकता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था?
0: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ

0: लगता है कि 2000 साल पहले क्या हुआ था।
1: अच्छा अच्छा, तो ये बात है। आओ आओ, यहाँ बैठो। अरे बैठो बैठो, मैं तुम्हें कुछ तस्वीरें दिखाता हूँ। जरा इसे देखो, बता सकती हो कि ये क्या है?
0: ये किसी खुरदरी सी शीट की तस्वीर है, इसमें कुछ लिखा गया है, शायद गोदकर।
1: शाबाश निधि, तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना। ये खुरदरी शीट दरअसल एक पेड़ की छाल है, जिसे भोज वृक्ष कहा जाता है।
2: अच्छा, भोज वृक्ष।
1: हाँ, भोज वृक्ष हिमालय क्षेत्र में मिलता है। इसकी छाल पर या ताड़ के पत्तों पर उन दिनों लोग हाथ से लिखते थे। हाथ से लिखी होने के कारण ये पांडुलिपि कही जाती है।
0: पांडुलिपि, ये हमें कहाँ मिली है?
1: निधि, ये पांडुलिपियाँ ज्यादातर प्राचीन मंदिरों और विहारों से खुदाई में प्राप्त हुई हैं। तुम्हें पता है, कुछ पुरानी गुफाओं में भी मिली हैं।
0: अच्छा।
1: और बेटी, मैं तुम्हें बताता हूँ, इन पांडुलिपियों में उस समय की धार्मिक परंपराओं, राजाओं के जीवन, दवाइयों, कला और विज्ञान की जानकारी हमें मिलती है। हमें कई नाटक और कविताएं भी मिलती हैं।
0: ये किस भाषा में है?
1: बहुत अच्छा सवाल पूछा है बेटी तुमने। ये ज्यादातर संस्कृत, तमिल और प्राकृत भाषा में है। उन दिनों प्राकृत भाषा का इस्तेमाल आम लोग करते थे।
0: मामा जी, अब आगे भी बताइए ना।
1: हाँ, बताता हूँ बताता हूँ, अरे धैर्य रखो। अतीत या पुराने समय के बारे में हमें पांडुलिपियों से तो पता चलता ही है, लेकिन हमें बहुत सारी जानकारियाँ अभिलेखों और शिलालेखों से भी मिलती हैं।
0: अच्छा।
1: अभिलेख को अंग्रेजी में इंस्क्रिप्शन कहते हैं। इंस्क्रिप्शन शब्द से ही इंस्क्राइब निकला है, जिसका मतलब है लिखना, खोद कर लिखना या उत्कीर्ण करना। इसको उकेरना भी कहते हैं।
0: अच्छा।
1: और हाँ, अतीत को जानने के लिए हम अभिलेखों का भी अध्ययन करते हैं। ऐसे अभिलेख हमें पत्थर या धातु पर खोद कर लिखे हुए मिलते हैं। लगभग 2250 वर्ष पुराने पत्थर पर लिखा अभिलेख या शिलालेख हमें वर्तमान अफगानिस्तान के कंधार से मिला है।
0: अच्छा।
1: ये सम्राट अशोक के आदेश पर लिखा गया है। पत्थर पर लिखने की कला को एपिग्राफी भी कहते हैं, और शिलालेख को
0: एपिग्राफ।
1: शाबाश निधि।
0: मामा जी, अभिलेख और शिलालेख में क्या फर्क है?
1: देखो, अभिलेख को किसी भी कठोर वस्तु पर लिखा जा सकता है, मतलब ये कोई धातु भी हो सकती है। ये अभिलेख हमें पकी मिट्टी, सिक्के, तांबे और चांदी पर भी लिखे मिले हैं। लेकिन शिला का मतलब होता है पत्थर। ये लेख पत्थरों पर ही लिखे जाते हैं।
0: मामा जी, आपने शिलालेख की बात की, ऐसे पत्थर पर हमें क्या लिखा हुआ मिलता है?
1: ऐसे पत्थर पर कभी कभी राजा लोग अपने आदेशों को खुदवाते या उत्कीर्ण करवाते थे, ताकि लोग उन्हें देख सकें, पढ़ सकें और उसका पालन कर सकें।
0: मामा जी, मैंने सुना है कि भूविज्ञानियों के अध्ययन से भी हमें अपने अतीत के बारे में पता चलता है।
1: आदिका, बिल्कुल ठीक सुना है तुमने। भूविज्ञानी मिट्टी के नमूनों, पुराने पत्थरों, पहाड़ों और महासागरों का अध्ययन करते हैं और पता लगाते हैं कि पहले पृथ्वी कैसी थी और आज क्या उसका स्वरूप कुछ बदला है।
0: ओह, कितना रोचक है ये सब जानना।
1: हाँ आदिका, रोचक तो है ही। तो दोस्तों, हमारा समय अब समाप्त होता है। इस वायदे के साथ कि एक नजर अतीत की ओर श्रृंखला में आपसे फिर भेंट होगी। अब आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।
3: तो साथियों, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। अब आपके लिए कुछ करने को, तो चलिए बनाते हैं अभिलेख। तो सबसे पहले आप मुलायम मिट्टी या क्ले लीजिए, फिर उसे हाथों से एक पट्टी की तरह बना लीजिए और उसे गोल या चौकोर जैसा कोई आकार दीजिए। अब सतह को किसी सपाट चीज से चिकना कर दीजिए। तो अभिलेख के लिए अब आपकी पट्टी तैयार है। इस मुलायम मिट्टी पर लिख

लिखने के लिए आप पेंसिल या किसी नुकीली लकड़ी का प्रयोग कर सकते हैं। अब इस मुलायम मिट्टी पर अपनी मातृभाषा के कुछ अक्षर या शब्द लिखिए या कोई चित्र बनाइए। मिट्टी को सुखा लीजिए और फिर विद्यालय में अपने मित्रों और शिक्षकों को दिखाइए और इसके बाद इसे सहेज कर रख लीजिए। हो गया ना तैयार आपका अभिलेख। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, ध्वन्यांकन मुकुल सिंह, कलाकार रंजीत कुमार, रेणु तंवर, अजीत होरो और पूनम कुदुसिया, बाल कलाकार आदिका और परिनिधि, शोध एवं आलेख अजीत होरो, निर्देशन विमलेश चौधरी तथा ध्वनि संपादन एवं निर्माण सौम्या मलिक। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना कार्यक्रम कैसे जानते हैं हम अपना अतीत।

0: जादुई पिटारा है ना मजेदार साथियों। जी हाँ, आप भी अब अपने आसपास की स्थानीय चीजों से बना सकते हैं अपना मजेदार जादुई पिटारा। क्या
1: जादुई पिटारा?
0: और आइए अब सुनते हैं अंत में कार्यक्रम अराउंड द वर्ल्ड। इस कार्यक्रम के द्वारा दो यात्रियों का एक रोचक यात्रा वृतांत प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि किस प्रकार उन दो लोगों ने 80 दिनों में पूरी दुनिया का एक चक्कर लगा लिया।
2: Which is the most interesting place you have visited? How did you go there and return? Have you traveled by different means of transport? Is there a mode of transport that you would like to use?
3: Mr. Phileas Fogg lays a bet with some of his friends to go around the world in 80 days. This is the story of how he traveled with his companion, Passepartout.

0: और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत को उमंग की तकनीकी टीम के साथ अगले सप्ताह तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: अभी आप सुन रहे थे प्रायोजित कार्यक्रम NCERT आकाशवाणी का, ये बिलासपुर केंद्र है। हम अपने सुनने वालों को याद दिला दें, सुबह 11:10 पर हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में आयोजित 12वें हथकरघा दिवस समारोह का सजीव प्रसारण। गुंजेश्वर गांव के ये कार्यक्रम आप सुनेंगे सुबह 10 बजे, और फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद पेश करेंगे सुबह 10:30 पर। ये थी कार्यक्रम संबंधी कुछ सूचनाएं। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। इस समय सुबह के 9:30 हुए हैं। 9:55 तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। वो बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

ऐसी बेमिसाल कहानियां आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।

सन 1947 भारत का विभाजन हो रहा था। एक प्रोडक्शन कंपनी में काम करने वाला एक प्रोडक्शन मैनेजर लाहौर से मुंबई की तरफ रवाना हो रहा था। जाने माने शायर कतील शिफाई उसके दोस्तों में से एक थे। दो दोस्त जुदा हो रहे थे और शायर दोस्त ने अपने फिल्मी दोस्त से विदा लेते हुए उसे एक शेर उपहार में दिया। कतील शिफाई ने एक पर्ची पर लिख कर दिया था, उड़ते उड़ते आस का पंछी दूर उफक में डूब गया, रोते रोते बैठ गई आवाज किसी हरजाई की। ये पर्ची उस लड़के ने संभाल कर रख ली। देश के विभाजन के वक्त लाहौर से मुंबई आने वाला वो प्रोडक्शन मैनेजर था जे ओम प्रकाश। जे ओम प्रकाश आगे चलकर फिल्मी दुनिया के एक बड़े निर्माता और निर्देशक बने। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई।

स्कूल में टीचर थे और उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को उसूल सिखाए। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी में तमाम उपलब्धियों से बढ़कर हैं आपके उसूल। पिता हमेशा बेटे से कहा करते थे कि आपको हमेशा जिंदगी में सीखते रहना है, ज्ञान की प्यास कभी खत्म नहीं होनी चाहिए और कभी ये मत मानो कि तुमने सब कुछ जान लिया है। और जानने की लालसा जिंदगी में बनाए रखना, देखना तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद ओम प्रकाश लाहौर में एक फिल्म प्रोड्यूसर के दफ्तर में क्लर्क बन गए। बहुत लगन के साथ काम किया और फिर वो मैनेजर की पोस्ट तक पहुंचे, यानी धीरे धीरे उनकी तरक्की होती चली गई।

जी ओम प्रकाश का जन्म 24 जनवरी 1927 को सियालकोट पंजाब में हुआ था। हम उन दिनों की बात कर रहे हैं जब भारत अविभाजित था। ओम प्रकाश के पिता लाहौर के एक स्कूल

हमने आपको बताया कि विभाजन के बाद जे ओम प्रकाश मुंबई आ गए। ये वो दिन थे जब उनकी जिंदगी का संघर्ष चल रहा था। संघर्ष के इन दिनों की रातें जे ओम प्रकाश लोकल ट्रेनों में सोकर बिताते थे। दादर से ट्रेन में बैठते, ट्रेन कल्याण तक जाती और फिर दादर वापस आती। जे ओम प्रकाश उस ट्रेन में ऊँगते रहते। जब पुलिस वाले देख लेते तो भगा देते थे, उतार देते थे। मुसाफिर थे जे ओम प्रकाश, चलते चले जाते थे लोकल ट्रेनों में अपनी मुफलिसी के दिनों में।

संघर्ष के इन दिनों में जे ओम प्रकाश को निर्माता निर्देशक मोहन सहगल की कंपनी में काम मिल गया। ये वो दिन थे जब मोहन सहगल न्यू दिल्ली फिल्म बना रहे थे। जे ओम प्रकाश प्रोडक्शन मैनेजर बन गए। मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में जे ओम प्रकाश चिंचपोकली नाम के एक इलाके में चौल में रहा करते थे। अभिनेता राजेंद्र कुमार भी उन दिनों में संघर्ष कर रहे थे और वहीं उनके साथ रहा करते थे। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से वादा किया कि जब वो फिल्म उद्योग में बड़ा नाम बन जाएंगे तो एक दूसरे के साथ काम करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि ये वादा पूरा भी हुआ। जे ओम प्रकाश प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर लगातार काम करते रहे और उन्होंने फिल्मी दुनिया में फिल्में बनाने के हर पहलू पर गौर किया, उसे सीखा और उसमें माहिर बन गई।

60 के दशक का वो जमाना जब जे ओम प्रकाश के भीतर एक सपना पल रहा था, और वो सपना था प्रोड्यूसर बनने का सपना। उन्होंने आसपास खोजबीन शुरू की कि कोई ऐसा फाइनेंसर हो जो पैसे लगाने के लिए राजी हो जाए और उनकी फिल्म बन जाए। बहुत संघर्ष के बाद जब कहीं कोई उम्मीद नहीं बची थी, अचानक एक दिन फाइनेंसर का फोन आया, वो फिल्म में पैसा लगाने के लिए राजी हो गए। इस तरह से 60 के दशक में जे ओम प्रकाश ने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया, फिल्म युग। फिल्म युग की पहली फिल्म आई आस का पंछी। इस फिल्म के हीरो थे वही राजेंद्र कुमार जो चिंच पोकली के संघर्ष के जमाने में जे ओम प्रकाश के साथ रहा करते थे। हीरोइन थी वैजयंती माला, संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन। मजेदार बात यह है कि इस फिल्म के निर्देशक बनाए गए मोहन कुमार

0: कुमार, जो मोहन सहगल के असिस्टेंट हुआ करते थे। फिल्म आस का पंछी जबरदस्त हिट रही और एक प्रोड्यूसर के तौर पर जी ओम प्रकाश और फिल्म युग छा गए।
1: धीरे

0: कहां तक चले।
1: इसके बाद मोहन कुमार के ही निर्देशन में जे ओम प्रकाश ने अपने प्रोडक्शन हाउस फिल्म युग की दूसरी फिल्म पेश की, जिसका नाम था आई मिलन की बेला। ये फिल्म सन 1964 में आई थी। राजेंद्र कुमार और सायरा बानो इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे।

सन 1966 में जे ओम प्रकाश ने एक नए निर्देशक को मौका दिया। ये निर्देशक थे रघुनाथ झालानी, जो उन दिनों में बिमल रॉय के असिस्टेंट हुआ करते थे। रघुनाथ झालानी ने बनाई आए दिन बहार के। मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र और आशा पारेख।

सन 1969 में रघुनाथ झालानी ने ही बनाई आया सावन झूम के। ये भी जे ओम प्रकाश की एक बहुत जबरदस्त फिल्म थी।

आपको बता दें कि जे ओम प्रकाश अक्सर ही नई प्रतिभाओं को मौका दिया करते थे। उन्होंने रघुनाथ झालानी को मौका दिया बतौर निर्देशक, जिन्होंने आए दिन बहार की बनाई। रघुनाथ झालानी बिमल रॉय के सहायक निर्देशक हुआ करते थे। इसी तरह उन्होंने मुकुल दत्त को मौका दिया और निर्देशन की दुनिया में उनका पहला कदम बना आन मिलो सजना।

सचिन भौमिक जाने माने स्क्रिप्ट राइटर हुआ करते थे। उन्हें निर्देशन की दुनिया में मौका दिया जे ओम प्रकाश ने और फिल्म आई राजा रानी। दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश की फिल्मों के नाम हमेशा अ से हुआ करते थे। ये उनका एक अंधविश्वास था कि अगर वो फिल्मों के नाम अ से रखेंगे तो वो फिल्में ज्यादा चलेंगी। इत्तेफाक ये भी हुआ कि दो ऐसी फिल्में उन्होंने बनाई जिनके नाम अ से नहीं थे और वो ज्यादा नहीं चली, सचिन भौमिक के निर्देशन वाली राजा रानी और फिल्म भगवान दादा। ये दोनों फिल्में जे ओम प्रकाश के प्रोडक्शन से आई थीं और इनका नाम अ से नहीं था। वैसे अ से फिल्मों के नाम शुरू होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इस कहानी का ताल्लुक उसी घटना से है जो हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताई थी। सन 1947 में जब भारत का विभाजन हो रहा था, तब जे ओम प्रकाश के दोस्त मशहूर शायर कतील शिफाई ने जुदा होते हुए एक पर्ची पर एक शेर लिखकर दिया था जे ओम प्रकाश को। कतील शिफाई ने ये कहा था कि तुम चाहो तो इस शेर का इस्तेमाल आगे चलकर अपनी फिल्मों के लिए कर लेना। सन 1960 के जमाने में जब जे ओम प्रकाश प्रोड्यूसर बने और अपनी पहली फिल्म बनाने लगे, तो जो कहानी उनके पास थी वो थी एक नौजवान की कहानी जो फौज में जाना चाहता है और उसके परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं हैं। इस फिल्म का नाम उन्होंने कतील शिफाई के इस शेर में से ही लिया, आस का पंछी। आगे चलकर कतील शिफाई ने जे ओम प्रकाश को चिट्ठी लिखी और कहा, देखा मेरा शेर तुम्हारे कितने काम आया।

0: पंछी उड़ता है ऊंचे गगन पर, पहुंचेगा एक दिन कभी तो चांद की उजली जमी पर। दिल मेरा एक आस का
1: जी। ओम प्रकाश फिल्मी दुनिया में पूरी तरह से डूब जाना चाहते थे, यानी फिल्म बनाने के हर पहलू पर जुनून की हद तक उनका ध्यान था। चूंकि वे फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे, इसलिए उनकी रचनात्मक प्यास अभी भी पूरी तरह से नहीं बुझ रही थी, और इसके लिए उन्होंने निर्देशक बनने की ठानी। सन 1973 में वो निर्देशक बन गए फिल्म आपकी कसम के जरिए। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना, मुमताज और संजीव कुमार। वैसे आपको बता दें, आपकी कसम सन 1970 में आई के एस सेतु माधवन की फिल्म वजवे मायम पर आधारित थी, लेकिन ये जे ओम प्रकाश की फिल्मी समझ थी कि उन्होंने मूल मलयालम फिल्म के अंत को बदल दिया। मूल मलयालम फिल्म में पति और पत्नी दोनों ही समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जे ओम प्रकाश ने फिल्म आपकी कसम का अंत कुछ इस तरह से रखा कि पति पत्नी के कदमों में अपना दम तोड़ता है और इस तरह से वो अपना प्रायश्चित करता है।

जाने माने निर्माता निर्देशक बी आर चोपड़ा ने आपकी कसम को देखकर ये कहा था कि ये फिल्म किसी नए नवेले निर्देशक का काम नहीं लगती, बल्कि एक बहुत पके हुए और समझदार निर्देशक का काम लगती है। जे ओम प्रकाश ने इसके बाद बनाई आंखों आंखों में।

फिल्म युग हमेशा अपनी सामाजिक फिल्मों के लिए जाना जाने वाला फिल्म बैनर रहा। उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो परिवार के साथ देखी जा सकें या जिनमें कोई सामाजिक पहलू हो। जे ओम प्रकाश ने इस तरह से मनोरंजक और खुशनुमा फिल्में बनाने वाले एक निर्माता निर्देशक के तौर पर अपना नाम स्थापित कर लिया था। सन 1975 में उन्होंने निर्देशन किया फिल्म आक्रमण का। सन 1975 जे ओम प्रकाश के करियर का एक बहुत महत्वपूर्ण साल बन गया जब उन्होंने कमलेश्वर की कहानी पर गुलजार के निर्देशन वाली फिल्म प्रोड्यूस की

इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे सुचित्रा सेन और संजीव कुमार। सन 1977 में जे ओम प्रकाश ने फिल्म अपनापन का निर्माण और निर्देशन किया। दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश ने बाहर की कई फिल्मों का निर्देशन किया, यानी ऐसी फिल्में जिन्हें उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया था। ऐसी ही एक फिल्म थी सन 1977 में आई आशिक हूं बहारों का। सन 1981 में आई फिल्म आसपास के निर्देशक जे ओम प्रकाश ही थे। इस फिल्म की एक खासियत आपको बता दें, मशहूर गायक मोहम्मद रफी 31 जुलाई 1980 को इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। उनका जो आखिरी गाना रिकॉर्ड किया गया था वो फिल्म आसपास के लिए ही किया गया था। सन 1980 में जे ओम प्रकाश ने बनाई अपनी जबरदस्त कामयाब फिल्म आशा।

0: अभी आप सुन रहे थे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम। ये आकाशवाणी बिलासपुर है। इस समय 9:55 होने ही वाले हैं। प्रादेशिक समाचार अब हम आकाशवाणी रायपुर से रिले करेंगे।
1: का ये रायपुर केंद्र है। सुबह के 9:55 हुए हैं। अब सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन

बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आज राष्ट्रपति राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। नवजात शिशुओं को सुरक्षित मातृ दुग्ध उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ में ह्यूमन मिल्क बैंक की स्थापना की जाएगी और राज्य की दो खिलाड़ी मधु सिदार और गीता यादव का चयन भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम के लिए किया गया है। अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाएगा। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। वे वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के बुनकरों और कारीगरों को नमन किया है। उन्होंने कहा कि इस दिन देश अपनी समृद्ध और जीवंत हथकरघा विरासत का जश्न मनाता है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार हथकरघा क्षेत्र को निरंतर समर्थन देती रहेगी। वहीं राजधानी रायपुर में आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आयोजित किए जाने वाले राज्य स्तरीय समारोह में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होंगे। समारोह में छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ के नए प्रीमियम ब्रांड कौशल फैब और बिलासा लोगो का शुभारंभ किया जाएगा। कार्यक्रम में मेधावी विद्यार्थियों, वरिष्ठ बुनकरों और उत्कृष्ट बुनकरों को प्रोत्साहन और सम्मान राशि दी जाएगी। साथ ही आवास निर्माण, भवन निर्माण, उन्नत उपकरण और अन्य योजनाओं के तहत बुनकरों तथा शिल्पियों को सहायता प्रदान की जाएगी। कार्यक्रम में कोसा सिल्क और हैंडवोवन कॉटन पर आधारित विशेष फैशन शो भी होगा। रायपुर में विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के पहले मातृ दूध कोष यानी ह्यूमन मिल्क बैंक की स्थापना की घोषणा की गई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि ये पहल नवजात शिशुओं को सुरक्षित मातृ दुग्ध उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण होगी। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों की 10 माताओं को माता यशोदा सम्मान से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मातृ शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना था। छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी इकोसिस्टम के विकास के लिए भारत सरकार से 50 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये राशि पूंजीगत निवेश विशेष सहायता योजना के तहत स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इससे स्वच्छ ऊर्जा, किसानों की आय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। छत्तीसगढ़ की दो खिलाड़ी मधु सिदार और गीता यादव का चयन भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम में हुआ है। दोनों खिलाड़ी 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन के मोकिंग में होने वाले जूनियर एशिया कप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। वे बिलासपुर के खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण ले रही हैं। उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव ने दोनों खिलाड़ियों से वीडियो कॉल पर बात कर उन्हें बधाई दी और प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी हैं। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने एसआई संवर्ग और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2024 के प्रारंभिक परिणाम को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों का खंडन किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परिणाम में वही नाम प्रदर्शित किए गए हैं जो अभ्यर्थियों ने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज किए थे। आयोग ने अभ्यर्थियों और आम लोगों से अपील की है कि वे भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें और परीक्षा से जुड़ी जानकारी के लिए केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं उत्तर छत्तीसगढ़ में कुछ स्थानों पर भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर आज राष्ट्रपति राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। नवजात शिशुओं को सुरक्षित मातृ दुग्ध उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ में ह्यूमन मिल्क बैंक की स्थापना की जाएगी और राज्य की दो खिलाड़ी मधु सिदार और गीता यादव का चयन भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम के लिए किया गया है। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन 11:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।

रहे थे। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है। सुबह के 10 बजे है, लीजिए पेश है कार्यक्रम गूंजे स्वर गांव के। कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बांस गीत में प्रसंग राजा छौरा के किस्सा, गायक कलाकार शिवचंद यादव और साथी, और साथी सुनिएगा बैगा कर्मा। गायक कलाकार होंगे नीलम बैगा, मीना बैगा, सुकरिया एवं अंजोर सिंह बैगा और साथी। कार्यक्रम में पहले सुनिए बांस गीत। आज का प्रसंग है राजा छौरा के किस्सा, गायक कलाकार हैं शिवचंद यादव और साथी।

Dominica!

Mm-hmm.

0: राजा छौरा के किस्सा बांस गीत में ये प्रसंग अभी आप सुन रहे थे शिवचंद यादव और साथियों से। गुंजेश्वर गांव के कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
2: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों पे 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
3: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
2: मेरे रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
1: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
0: श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें, 11:10 पर हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में आयोजित 12वें हथकरघा दिवस समारोह का सजीव प्रसारण।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

नीलम बैगा, मीना बैगा, सुकरिया एवं अंजोर सिंह बैगा और साथियों का गाया बैगा कर्मा गीत आपने सुना और इसी के साथ गुंजेश्वर गांव के कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है FM बैंड 103.2 MHz पर। इस समय सुबह के 10:30 होने वाले हैं। लीजिए पेश है फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम आपकी पसंद। श्रोताओं, आपके पत्रों और आपकी पसंद के गानों को लेकर आज मैं हूं आपके साथ सीमा साहू। कार्यक्रम का पहला गाना आप सभी श्रोताओं की पसंद पर दतरंगी भाटापारा से नुखीलाल वर्मा, हीरामणि पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि वर्मा। भाटापारा से दान सिंह रावत, दानू पद्मिनी, शुभम सौरभ और नीरज रावत। बाजारपारा बेमित्रा से भाई भरत लाल सिन्हा, लव कुमार लक्की सिन्हा। बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण चंद्रेश कुमार चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति। इंदिरा नगर रायगढ़ से शेख अब्दुल सलीम, बेगम परवीन बानो, अब्दुल जमीर, मोहम्मद अलीम, आसिफ नईम रजा। तेलीपारा बिलासपुर से रज्जन साहू, बेबी ईशानी साहू, छन्नूलाल श्रीवास और अनीता श्रीवास। डोंगरगांव छत्तीसगढ़ से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका गजभिये, बेबी अनिष्का और तन्मय गजभिये। बिलाईगढ़ से रोशन देवांगन, कौशल्या देवांगन, हेमलता और डिम्पल देवांगन। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं आनंद बख्शी का लिखा गीत राहुल देव बर्मन के संगीत निर्देशन में लता मंगेशकर की आवाज़ में। फिल्म है

झील के उस पार इस फिल्म का गाना भी आपने सुना लता मंगेशकर की आवाज़ में। गीत लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की थी राहुल देव बर्मन ने। कार्यक्रम का अगला गाना ये सुनते हैं याराना फिल्म से किशोर कुमार की आवाज़ में। गीत लिखा है अनजान ने, संगीत तैयार किया है राजेश रोशन ने और इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है नवागढ़ कटई से नारायण प्रसाद वर्मा, चंद्रकांत शारदा दामिनी वर्मा, बेमेतरा से सुरेश कुमार सारथी, पूर्णिमा हेमलता, भाई कमलकांत, वीरेंद्र व्रिजकांत सारथी, शीतला नगर दुर्ग से हैं शिव चंद्राकर और भगवान चंद्राकर, ग्राम रसेड़ा अकलतरा से हैं मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, कीर्ति कुमार, संध्या, डिकेश कुमार साहू, यहीं से वासु, डॉली और पूर्वेश साहू, मगरलोड जिला धमतरी से हैं पुनूराम साहू, राज तेजस्वरी, राजश्री, राजवीर साहू, जहांगीर मेहंदा से रामनारायण।

कश्यप, कविता देवी, कुसुम लता, खुशबू कुमारी कश्यप, धरसीवां से छेदूलाल यादव, श्रीमती सीता, अर्चना, अरुणा यादव, यहीं से अनुराधा और अल्पना यादव, दुर्गापारा संतोषी नगर रायपुर से हैं छन्नूलाल यादव, अनुराग, अभिषेक, अलका, नामिका, बलदाऊ यादव, कुमारी रानू, खुशी, प्रवीण साहू और सी एल यादव।

0: याराना फिल्म का गाना आपने सुना किशोर कुमार की आवाज में, गीत लिखा था अनजान ने, धुन तैयार की थी राजेश रोशन ने। फरमाइशी फिल्मी गीतों का आपकी पसंद कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लेते हैं आज का ट्रैफिक अपडेट।
1: नमस्कार, सुप्रभात, सादर अभिवादन। यातायात पर आधारित दैनिक प्रस्तुति ट्रैफिक अपडेट साथ बिलासपुर के साथ मैं हूं उमाशंकर पांडे। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। शहर में लगातार हो रहे विकास कार्यों एवं कुछ चौक चौराहों में जहां सड़कों की लंबाई चौड़ाई के अनुपात में वाहनों के अत्यधिक घनत्व के कारण कहीं मंद तो कहीं

0: सामान्य गति से वाहनों का आवागमन हो रहा है। छोटे से लेकर बड़े से बड़े वाहन सभी इन सड़कों में भागते दौड़ते दिखाई दे रहे हैं। तभी तो हम सब यह कह सकते हैं कि संपूर्ण बिलासपुर जिले की यातायात व्यवस्था बिल्कुल सामान्य है। आप सभी से अनुरोध है, जब भी आप किसी भी वाहन के साथ सड़क में हो, स्थिति परिस्थिति के अनुसार बिना किसी हड़बड़ी के साथ यातायात धर्म का पालन करते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ें। ऐसे स्थान में ओवरटेक बिल्कुल ना करें। सड़कों में लंबे समय के लिए वाहन खड़ा ना करें। बीच सड़क में सवारी चढ़ाना या उतारना ना करें। चौक चौराहों में लगे यातायात संकेतों का शत प्रतिशत पालन करें और शॉर्टकट चक्कर में गलत दिशा में वाहन न चलाएं। मित्रों, प्रायः सभी सड़कों में यदि नजर डालें तो भाग दौड़ कर रहे वाहनों में दो पहिया वाहनों की संख्या सर्वाधिक दिखाई देती है। अर्थात यह कहा जा सकता है कि दो पहिया वाहन लोगों की सर्वाधिक और पहली पसंद है, क्योंकि यह छोटी है, इसका रखरखाव आसान है, इससे कभी भी कहीं भी आसानी से जाया जा सकता है। साथ ही यह हर वर्ग के बजट के अंदर का वाहन है। किंतु विडंबना इस बात की है कि इतने गुणों से युक्त होने के बाद भी सर्वाधिक मृत्यु दो पहिया वाहन वालों की ही होती है, वह भी सिर की चोट से। कारण, हम सुरक्षा मानकों का, सुरक्षा उपकरणों का उपयोग नहीं करते, इसलिए जब भी दो पहिया वाहन में चल रहे हैं सहयात्री सहित हेलमेट जरूर धारण करें। साथियों, हेलमेट एक बहुउद्देशीय उपकरण है। तेज गर्मी के दिनों में यह हमारी लू के थपेड़ों से रक्षा करता है। वर्षा के दिनों में बारिश की तेज बूंदे जो चेहरे में कंकड़ की तरह चुभती हैं, इससे हमारी रक्षा करता है। और ठंड के दिनों में ठंडी हवा से हमें बचाता है। और सबसे प्रमुख बात यह है कि दुर्घटना के समय यह हमारी जान की रक्षा करता है। इसलिए जब भी दोपहिया वाहन में चलें, हेलमेट अवश्य धारण करें। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा शुभ हो।
1: ये था आज का ट्रैफिक अपडेट।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
1: कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है श्रोताओं, और अगला गाना आप सभी की पसंद पर और एठी पारा भाटा पारा से अनीता साहू, वीणा साहू, नेहा और मोनिशा साहू, ग्राम धुर्रा बांधा भाटापारा से है प्रमोद साहू, देव कुमार, नवीन कुमार, युवराज साहू, दतरेंगी से भागवत वर्मा, लेवई से गुलाबदास मानिकपुरी, लच्छनपुर से विश्वनाथ साहू, चरडोंगरी पिपरिया से दुर्गाराम साहू, बलौदा अकलतरा से दिलहरण गौतम, अंजलि गौतम, आनंद पटेल और समृद्धि पटेल, पलारी रोहासी से डगेसर राम साहू, नूतन साहू, घनश्याम, अलका, जानवी, गौरव साहू, नर्मदा धाम सुरसुली से कैलाश यादव, सुरेश यादव, डिकेंद्र यादव और योगेश यादव, पौड़ी भाठा कलतरा से दिलीप चंदन, चुआराम यदु, निखिल चंदन, वसुंधरा, प्रांजल चंदन, बिरगांव तखतपुर से हैं जयमुन कोल, दिलीप कोल, रामायणी कोल और भुवनेश्वर कोल, बिरकोना से एस कौशिक, पोटिया कलादुर्ग से संजय साहू, सुजाता साहू, शशांक साहू और सीमा साहू। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं गुलजार की रचना खयाम के संगीत निर्देशन में दर्द फिल्म के इस गीत को अप

गुलजार की रचना आपने सुनी खय्याम के संगीत निर्देशन में। गायक कलाकार थे आशा भोसले और किशोर कुमार। फिल्म थी दर्द। फरमाइशी फिल्मी गीतों का आपकी पसंद कार्यक्रम इस समय आप आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओं, कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम आपको याद दिला दें, 11:10 पर हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में आयोजित 12वें हथकरघा दिवस समारोह का सजीव प्रसारण।

0: भारत के कोने कोने से फिजाओं में गूंजती विविध भारती,
1: देश की सुरीली धड़कन
2: विविध भारती,
0: भूले बिसरे गीतों के साथ संगीत सरिता,
1: कुछ बातें कुछ गीत कायम रहे छाया गीत,
0: तलाश करती इंस्टाग्राम फेसबुक मायने रखते हैं आपके ट्वीट,
1: वीर सैनिकों की जय माला
0: और हसी का हवा महल, बाइस्कोप की बातें यादों के उजाले,
1: चौबारे पर सहेली है सखियों के संग,
3: सखी सहेली,
1: बॉम्बे टॉकीज
4: और सेल्यूलॉइड के सितारे,
1: हम क्या कहें आपको याद सब है जरा जरा,
3: मुझे याद सब है जरा जरा,
0: और आपके अपने लोकल रेडियो स्टेशन पर
1: डीटीएच और ऐप पर 24 घंटे सातों दिन,
0: मन का सुकून दिल की आरती
1: सुरीली संदली।
5: आपकी पसंद कार्यक्रम के अगले गीत के लिए हमें ये फरमाइशी पत्र मिला है, ग्राम दरचूरा से ददुआ साहू, भूरी साहू, संतोषी, दुलोरिन, रेखा, मोतीलाल, कामेश्वरी कुमारी और प्रीतम कुमार साहू का, रिंगनी से दिनेश वर्मा और करुणा वर्मा, ग्राम महमदपुर भक्तिन बाजार अकलतरा से रमेश कैवर्त, राजकुमारी और आरती कैवर्त, भाटापारा से श्याम रतन मुंधड़ा, रचनाकार मुंधड़ा, रावण भाटा भाटापारा से हैं बबला यादव, रिखी राम, श्रीमती कमलेश्वरी यादव, हटरी बाजार भाटापारा से हैं मोतीलाल, श्रीमती गौतम देवदास, मुकेश, पवन, गोलू देवदास, ग्राम वामन बोर्ड से हैं कुमार यादव, श्रीमती अमृत कामदेव और लेखूराम यादव, ग्राम बसीबार से शिवनारायण नामदेव, सविता देवी, रामप्रसाद, कुमारी आंचल, कुमारी चंचल, कुमारी चांदनी, विनय कुमार वर्षा, मनोज कुमार कंवर, शांति नगर पाली से विष्णु सिंह कोरम, श्रीमती संतोषी कोरम, कुमारी आरती, कुमारी पूर्वा, कुमारी प्रतिभा, योगेश, नीलेश, चंद्रशेखर और सभी कोरम परिवार के सदस्य, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा, आदित्य देवांगन, बमहर चाटीडीह से गंगा देवी, पूनम, धनेश्वरी देवांगन, महेश्वरी, कुमारी मिल्की, बेबी मीनाक्षी और निधि देवांगन, बनियापारा धमतरी से हैं रामचंद माखीजा, काफिर भाई, श्रीमती सविता, बेबी स्वाति और पूरा माखीजा कुटुम्ब, भाटापारा से बचकमल, मोतीलाल यादव, बसंत भृगु, विनय ठाकुर, चोराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु, लेखराम यदु, राधेश्याम, जितेंद्र साहू, मारवाड़ी कुआ भाटापारा से सिया राम और अश्विनी पांडे, सोनाडीह से सुब्रत चौधरी और बेबी अनीशा, रायपुर से नीलू मेघ और हरिओम मेघानी, ग्राम पंचायत बठेना से हैं बलकरण वर्मा, अंजनी ज्योति वर्मा, रेखा धनेश्वरी वर्मा, चटौद सारा गांव से हैं श्रीजान वर्मा, सुहद्रा वर्मा, आयुषी और कृत वर्मा। आप सभी श्रोताओं की पसंद पर आइए सुनते हैं लता मंगेशकर और ईला अरुण का गाया आनंद बख्शी का लिखा गीत, नमहे फिल्म के इस गीत के संगीतकार हैं शिव हरी।

लता मंगेशकर, इला अरुण और साथियों का गाया गीत अभी आपने सुना, फिल्म थी लम्हे। कार्यक्रम का अगला गाना ये सुनते हैं, लता मंगेशकर की आवाज़ में गजब फिल्म से। गीत लिखा है आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और इस गीत को सुनने के लिए हमें पत्र लिख भेजा है लुत्रा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम और मोहम्मद अजीज़, नेहरू वार्ड भाटापारा से प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र साहू, दुष्यंत राघवेंद्र साहू, मोहनपारा कल्तरा से हैं अभिनव अभिषेक और उमा देवी साहू, हथनीपारा भाटापारा से हैं दुर्गा दुर्गेश्वरी, गीतू मुकेश वर्मा, हरीश किरण दुलारी वर्मा, महाराष्ट्र बीड शहर से प्रकाश पगारिया, पराग प्रदीप पगारिया और केशव पटेल, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से हैं पवन कुमार सेन।

प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू रविंद्र सेन, यहीं से खुशी रौनक सेन, मेहरनगर उमड़खेड़ महाराष्ट्र से हैं अभिजीत गौहाणकर, श्रीमती सरिता गौहाणकर, प्रिंस एकांश गौहाणकर, बदलापुर मुंबई से हैं सिद्धांत गौहाणकर, प्रणीता अर्जुन गौहाणकर और टुक टुक, आकार हाइट्स बहादुरा नागपुर से हैं वैशाली शैलेश, सुमित और कुमारी ध्वनि गौहाणकर, रिंगनी से दिनेश और करुणा वर्मा, भाटापारा दतरंगी से द्वारिका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार, दीपक कुमार, झावेंद्र कुमार वर्मा, छत्तीसगढ़ बावली मर्रा कोना से हैं उत्तम कुमार कौशिक, बिहारी लाल कौशिक, हरीश कुमार और शिवम कुमार कौशिक।

लता मंगेशकर का गाया गजब फिल्म का गाना आपने सुना। इसे लिखा था आनंद बख्शी ने, धुन तैयार की थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने। श्रोताओं, अगर आप भी सुनना चाहते हैं अपनी पसंद के गीत तो हमें लिख भेजिए। हमारा पता है, कार्यक्रम आपकी पसंद द्वारा केंद्र निदेशक, पोस्ट बॉक्स नंबर 49, आकाशवाणी बिलासपुर, पिन है 495006। और इसी के साथ फरमाइशी फिल्मी गीतों का आपकी पसंद कार्यक्रम अब समाप्त होता है। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है।

0: ये आकाशवाणी बिलासपुर है। 11:10 होने वाले हैं। थोड़ी ही देर में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करेंगे। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में आयोजित 12वें हथकरघा दिवस समारोह का सजीव प्रसारण।
1: राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय पुरस्कार वितरण समारोह का आयोजन किया गया है। आज का यह समारोह भारत की समृद्ध वस्त्र परंपरा, बुनकरों की अद्भुत कला और हमारी सांस्कृतिक विरासत को समर्पित है। इस गरिमामय अवसर पर भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, देशभर से चयनित उत्कृष्ट हथकरघा बुनकरों और शिल्पकारों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करेंगी। इसका विवरण देने के लिए मैं हूं शोएसियार खान और मेरे साथ हैं कौशिक राय। नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आपका।
2: नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल आर डियर लिसनर्स ट्यून्ड इन एंड वी एक्सटेंड आर हार्टिएस्ट ग्रीटिंग्स ऑन द 12th नेशनल हैंड।

0: President of India, Srimati Draupadi Murmu, will grace the occasion as the chief guest. The function will also be attended by the Union Minister of Textiles, Shri Giriraj Singh, Union Minister of State for Textiles, Shri Pavitra Margarita, Srimati Neelam Shami Rao, Secretary Textiles, and Dr. M. Bina, Development Commissioner, Handlooms. The celebrations will also be attended by Sant Kabir Handloom awardees and National Handloom awardees and their family members. Handloom weavers from across the country, members of the Award Selection Committee, eminent personalities associated with the handloom sector, senior government officials, media representatives and other distinguished guests. A major highlight of the celebrations is the presentation of the Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for the year 2025. A total of 22 awards comprising 3 Sant Kabir Handloom Awards and 19 National Handloom Awards will be conferred upon outstanding handloom weavers for their outstanding craftsmanship, innovation and contribution to the preservation of India's handloom traditions. The function will also witness the release of 4 commemorative postage stamps celebrating India's rich and diverse handloom weaving traditions. 2 publications will also be unveiled by the Honorable President: Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India, and the Handloom Awards Book 2025 will be unveiled during the function. An exhibition showcasing award-winning handloom products has been organized on the sidelines of the events. Visitors here will have the opportunity to witness live demonstrations of traditional kani weaving and wall hanging weaving, providing a glimpse into the diversity and craftsmanship of India's handloom traditions.
1: Mananiya Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu aaj राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह के दौरान प्रतिष्ठित हथकरघा पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस समारोह में केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह, वरिष्ठ गणमान्य व्यक्ति, हथकरघा उद्योग के प्रतिनिधि, मास्टर बुनकर, डिजाइनर, निर्यातक, कारीगर और अन्य विशिष्ट अतिथि शामिल होंगे। भारत की समृद्ध हथकरघा परंपराओं के संरक्षण, संवर्धन और विकास में असाधारण योगदान के लिए कुल 22 पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार विजेता और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार विजेता शामिल है। वस्त्र मंत्रालय ने संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 के विजेताओं की घोषणा की है। ये पुरस्कार हथकरघा क्षेत्र में बुनाई, नवाचार, डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्योगों और उत्पादक कंपनियों में उत्कृष्ट प्रदर्शन को मान्यता देते हैं। ये पुरस्कार राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम के हथकरघा विपणन सहायता घटक के अंतर्गत स्थापित किए गए हैं और हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए सर्वोच्च राष्ट्रीय मान्यता का प्रतिनिधित्व करते हैं। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के दौरान ये पुरस्कार उन व्यक्तियों और संगठन को प्रदान किए जा रहे हैं जिन्होंने भारत की हथकरघा विकास को मजबूत करने और घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में इसकी प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस कार्यक्रम में देशभर से संसद सदस्य, वरिष्ठ अधिकारी, उद्योग विशेषज्ञ, शैक्षणिक संस्थान, निर्यातक, डिजाइनर और हथकरघा बुनकर शामिल हो रहे हैं। हथकरघा पुरस्कारों का उद्देश्य हथकरघा क्षेत्र में उत्कृष्टता, नवाचार और निरंतर प्रतिबद्धता को प्रोत्साहित करना है। ये पुरस्कार उत्कृष्ट शिल्प कौशल, पारंपरिक कौशल को संरक्षित करने हेतु आधुनिक तकनीकों को अपनाने, उत्पाद विविधीकरण, डिजाइन नवाचार और बुनकर समुदायों के सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान को मान्यता देते हैं। अगर बात करें संत कबीर हथकरघा पुरस्कारों की, तो ये उन हथकरघा बुनकरों के लिए देश का सर्वोच्च सम्मान है जिन्होंने असाधारण शिल्प कौशल और भारत की बुनाई परंपराओं को संरक्षित और बढ़ावा देने के लिए आजीवन समर्पण दिखाया है। पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन असाधारण तकनीकी कौशल, नवाचार

0: इस क्षेत्र में निरंतर योगदान, पारंपरिक बुनाई के तरीकों को बढ़ावा देने, कारीगरों को मार्गदर्शन देने और समुदाय के विकास के लिए प्रयासों के आधार पर किया जाता है। ये जो संत कबीर हथकरघा पुरस्कार है, इसमें शामिल है एक सोने का सिक्का, तामपत्र, शॉल, प्रमाण पत्र और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार उन हथकरघा बुनकरों और हितकारकों को सम्मानित करता है जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट रचनात्मक गुणवत्ता, नवाचार और उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया है। ये पुरस्कार कारीगरों और संस्थानों को भारत की विविध हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करते हुए शिल्प कौशल, उत्पाद विकास और बाजार में पहुंचने वाले मानकों को लगातार बेहतर बनाने के लिए प्रेरित करता है। बुराई श्रेणी के पुरस्कार विजेताओं का चयन जोनल, मुख्यालय और केंद्रीय स्तर की चयन समितियों के माध्यम से एक कठोर बहुस्तरीय मूल्यांकन प्रक्रिया द्वारा किया जाता है और इन समितियों में अनुभवी, पेशेवर, तकनीकी विशेषज्ञ और वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं जो निर्धारित पात्रता मानदंडों और मूल्यांकन मापदंडों के आधार पर नामांकनों का आलंकन करते हैं। डिजाइन विकास, विपणन, स्टार्टअप उद्यमों और उत्पादक कंपनियों से संबंधित श्रेणियों के लिए नामांकन को अंतिम स्वीकृति के लिए मुख्यालय समिति और केंद्रीय स्तर की समिति द्वारा एक व्यवस्थापित मूल्यांकन के द्वारा गुजरना पड़ता है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ये 12वें राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार का वितरण करेंगी।
1: Yes, you're absolutely right. The National Handloom Day is observed every year on the 7th of August to commemorate the Swadeshi movement, which launched on the 7th of August 1905, that gave renewed impetus to indigenous industries and India's handloom sector. The observance recognizes the enduring contribution of handloom weavers to the country's cultural heritage and socio-economic development. Since its inception in 2015, National Handloom Day has served as an occasion to celebrate the artistry, skill and dedication of India's handloom weavers while reaffirming the government's commitment to the preservation, promotion and sustainable development of the handloom sector. India's handloom sector continues to be one of the country's largest source of sustainable rural employment, supporting livelihoods of more than 35 lakh persons, with women constituting over 70% of the workforce. Besides its economic significance, the sector remains a custodian of India's rich textile traditions and an important contributor to environmentally sustainable production practices. In the 136th episode of Mann Ki Baat on the 26th of July, the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi had said that on the 7th of August, our country will celebrate National Handloom Day. On this occasion, quote the Prime Minister, "We celebrate the skills and creativity of our weaver brothers and sisters. These friends of ours are carrying forward traditions that have been passed down through generations," unquote, the Honorable Prime Minister. Every handloom garment tells the story of a specific region or community and the countless people associated with it. These are people who are proudly dedicated to preserving India's cultural heritage. The Honorable Prime Minister has urged every citizen to honor our weaver friends by encouraging handloom crafts. This will further strengthen the spirit of being vocal for local. Since 2015, the way handloom has been promoted in the country, it has improved the lives of a large number of people. The saris of Pochampalli and from Kuthampalli and Kutch, these saris have enriched many individuals and touched many groups, infusing new energy and identified into our glorious handloom traditions. These are carrying forward the beautiful tradition, while others are engaging women weavers to create wool products. People are preserving their traditional arts and providing employment to our sisters. And this also brings to mind that our handlooms indeed are a

0: rich tapestry of what India has to offer to the world. The Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, in just a short while from now will present the National Handloom Awards and the Sant Kabir Handloom Award to the winners of the National Handloom Awards 2025 at the Rashtrapati Bhavan Cultural Center.
1: Maraniye Rashtrapati Srimati Draupadi Murmu, 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र सभागार में ये हथकरघा पुरस्कार देंगी। इसमें शामिल है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, कमला देवी चट्टोपाध्याय हथकरघा पुरस्कार, हथकरघा उत्पादों के डिजाइन विकास स्टार्टअप उद्यम और प्रोड्यूसर कंपनी और विपणन हेतु राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार वर्ष 2025। आपको बता दें, राष्ट्रीय हथकरघा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 अगस्त को मनाया जाता है। इसी दिन वर्ष 1905 में स्वदेशी आंदोलन को नई दिशा मिली थी। विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार और स्वदेशी उत्पादों को अपनाने के संकल्प ने भारतीय हथकरघा उद्योग को नई ऊर्जा प्रदान की। उसी ऐतिहासिक विरासत के सम्मान में वर्ष 2015 से हर साल 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जाता है। आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र का वातावरण बहुत ही गर्मीमय और अत्यंत भव्य दिखाई दे रहा है। सभागार को देश के विभिन्न राज्यों की पारंपरिक हथकरघा कलाकृतियों, रंग बिरंगे वस्त्रों और पुष्प सज्जा से सुसज्जित किया गया है। देशभर से आए बुनकर, राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता, वस्त्र मंत्रालय के अधिकारी, डिजाइन विशेषज्ञ और अनेक विशिष्ट अतिथि इस समारोह में उपस्थित है। भारत की पहचान उसकी विविधता में निहित है और यही विविधता हमारे हथकरघा उद्योग में भी दिखाई देती है। उत्तर प्रदेश की बनारसी साड़ी विश्व भर में अपनी महीन जरी बुनाई के कारण प्रसिद्ध है। तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ियां अपनी शुद्ध रेशमी बुनाई के कारण एक विशेष स्थान रखती हैं। वहीं मध्य प्रदेश की चंदेरी और महेश्वरी साड़ियां अपनी हल्की बनावट और उत्कृष्ट डिजाइन के लिए जानी जाती है। तेलंगाना की पोचमपल्ली इकट, गुजरात का पटोला, पश्चिम बंगाल की बालूचरी और जामदानी, असम का मूंगा रेशम और कश्मीर का पश्मीना, ये सभी भारतीय बुनकर की अद्भुत कला के जीवंत उदाहरण है। हथकरघा उद्योग भारत में कृषि के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध कराने वाले सबसे बड़े पारंपरिक क्षेत्रों में से एक है। देशभर में लाखों परिवार प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस उद्योग से जुड़े हुए हैं। आपको बता दें कि देशभर के सभी जो हमारे महिलाएं हैं, वो कताई, रंगाई, बुनाई, डिजाइनिंग और विपणन, हर स्तर पर महिलाओं का योगदान इस क्षेत्र में दिखाई देता है। वहीं भारत का वस्त्र मंत्रालय हथकरघा क्षेत्र के विकास के लिए अनेक योजनाएं संचालित कर रहा है। राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम, बुनकर सेवा केंद्र, डिजाइन विकास, कौशल उन्नयन और डिजिटल विपणन तथा ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनकरों को नई संभावनाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। इंडिया हैंडलूम ब्रांड जैसी पहल भारतीय हथकरघा उत्पादों की गुणवत्ता और प्रामाणिकता का प्रतीक बन चुकी है। थोड़ी देर में माननीय राष्ट्रपति 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में ये पुरस्कार प्रदान करेंगे।
0: Yes, you are absolutely right. And today, the Honorable President of India will confer the Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 to one awardee, and National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Design Development for the year 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for the year 2025 to two awardees, and the National Handloom Award for Startup or Producer Company for the year 2025 to one awardee. And it is indeed a proud moment for them. And these awardees will also

0: interact with the Honorable President, and in just a short while from now, we shall be taking you over to the Rashtrapati Bhavan Cultural Center, where the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, will confer the Sant Kabir Handloom Awards 2025 and the National Handloom Award 2025. We take you over to Rashtrapati Bhavan Cultural Center.
1: Namaskar. माननीय राष्ट्रपति जी एवं मंच पर विराजे विशिष्ट अतिथिगण, आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस समारोह का शुभारंभ हम सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन के साथ करेंगे। मैं माननीय राष्ट्रपति जी से विनम्रता पूर्वक आग्रह करती हूं कि वे दीप प्रज्वलित कर इस समारोह का शुभारंभ करें एवं मंच पर विराजे सभी माननीय अतिथिगण, वस्त्र मंत्री जी, आदरणीय विदेश एवं वस्त्र राज्य मंत्री जी, वस्त्र सचिव एवं विकास आयुक्त हथकरघा से भी अनुरोध करती हूं कि वे कृपया दीप प्रज्वलन में शामिल हों।

0: धन्यवाद। और अब इस समारोह का आविर्भाव करते हुए मैं सर्वप्रथम श्रीमती नीलम शमी राव, सचिव वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार से अनुरोध करती हूं कि वे कृपया अपना स्वागत भाषण दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय जी, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स एंड एक्सटर्नल अफेयर्स, डिस्टिंग्विश्ड अवॉर्डीज, रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स, मेंबर्स।

0: Handloom Day, an occasion that honors the extraordinary contribution of India's weaving community and reaffirms nation's collective commitment to strengthen the spirit of Swadeshi. The handloom sector, a custodian of our civilizational heritage, Grameen Rozgar Ka Sadhan, Mahilaon Ke Aage Rakhe Hue Development Ka Sutradhar, or Sustainable Production Ki Dhuri. Yeh 35 lakh weavers aur usse jude hue logon ko support karta hai. Mantrale apni ek integrated approach ke saath mein handloom development ki dui pakshiye ya do tarike ki objectives par kaam karta hai, jahan par preservation of tradition ke saath saath competitive, resilient aur future ready handloom ecosystem ki bhi hum baatcheet karte hain. National Handloom Development Program aur Raw Material Supply स्कीम के माध्यम से हम लाखों बुनकरों
1: कब्स. हेलो हेलो, देख रहे हो कैसे बादल जैसे
2: लाइट एकदम फ्रेश और एक्टिव लग रहा हूं. आपको बता दें, राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक गेन सभागार में 12वें राष्ट्रीय हैंडलूम पुरस्कार दिए जा रहे हैं.
0: 1.5 lakh weavers have been onboarded onto the India handmade e-marketplace. Handloom hearts, cottage, kunj have been repositioned

0: as a professionally curated year-round platforms to reach out to the consumers and bring the best of handlooms and handicrafts to the world. The formation of 200 handloom producer companies across the country has enabled weavers to work together professionally, access markets more effectively, and achieve economies of scale. Weave the future ke tahat mein artificial intelligence enabled design tools unke dwara banaye gaye traditional motifs ko reimagine karne ki cheshta aur global bazaar ke anurup taiyar kiye gaye designs, while digital cataloging and e-commerce platforms are connecting looms in remote villages directly to customers across the world. QR-based authentication would provide traceability, ensuring that the story, skill, and heritage behind each weave reaches with complete transparency and trust. Institutional partnerships remain essential to this journey. Initiatives like Weave the Future are positioning India's handloom tradition as a global leader in sustainability, championing circularity, responsible production, innovative designs, and the slow fashion. Our collaboration with organizations such as UN Women, academic institutions like IITs, design schools, NIFT, and research bodies has enabled new approaches. The growing recognition of more than 100 geographical indicators tagged handloom products has also provided larger, distinct, and unique identity. In the vision of Viksit Bharat 2047, the handloom sector stands as a shining tradition and progress, with technology as an enabler and weavers at the heart of journey. It is building a future where this legacy of handloom leads the world. Aaj is Rashtriya Hatkarga Divas par, main aap sabhi ko apna sincere appreciation deti hu, rajya sarkaron ko bhi, implementing agencies ko bhi, development partners aur industry stakeholders ko bhi, par sabse zyada उन बुनकर बहनों और भाइयों को जिनके बुने हुए ताने बानों से हमारा जीवन रंगीन, जीवंत और एक मेमोरी के साथ जुड़ा रहता है. आई वंस अगेन वेलकम द ऑनरेबल प्रेसिडेंट मैडम एंड एवरीबॉडी ऑन दिस ओकेशन ऑफ द 12th हैंडलूम डे. थैंक यू. जय हिंद.
1: थैंक यू मैम फॉर दिस वॉर्म वेलकम एड्रेस. अब मैं भारत सरकार के माननीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह जी से निवेदन करती हूँ कि वे माननीय राष्ट्रपति महोदय का स्वागत एवं सम्मान करें. आई रिक्वेस्ट द ऑनरेबल मिनिस्टर श्री गिरिराज सिंह टू काइंडली फेलिसिटेट द ऑनरेबल प्रेसिडेंट.
2: और अब केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह माननीय राष्ट्रपति का शॉल पहनाकर सम्मान कर रहे हैं. तालियों के साथ सबने उसका अभिवादन किया.
1: धन्यवाद आदरणीय मंत्री जी. और अब हम बढ़ते हैं आज के समारोह के इस महत्वपूर्ण भाग पर, जो है संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और वर्ष 2025 के राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कारों की ओर. ये प्रतिष्ठित पुरस्कार उन कुशल बुनकरों और कारीगरों को सम्मानित करते हैं जिनकी लगन, इन्वोकेशन और कलात्मकता ने हमारी राष्ट्र की हथकरघा विरासत को अत्यंत समृद्ध बनाया है. मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार, जिसमें 3 पुरस्कार जिसमें पदक और ताम्रपत्र शामिल है, और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार, ये कुल 21 पुरस्कार हैं जिसमें ताम्रपत्र शामिल है, इनके विजेताओं को अपने कर कमलों द्वारा सम्मानित करें.
2: और अब बारहवें राष्ट्रीय
1: सर्वप्रथम शुरुआत करेंगे संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 के साथ
2: माननीय राष्ट्रपति
1: बुनकर वर्ग से आ रहे हैं ओडिशा।

से श्री राम मेहर, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आपके उत्पाद का नाम है विजित पार खादी साड़ी। मेडल और ताम्रपत्र के साथ संत कबीर हथकरघा पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया जा रहा है श्री राम मेहर। हमारे अगले विजेता हैं बुनाई वर्ग से ही असम से आई श्रीमती रुनिमा चेतिया चौधरी। आपका विशेष उत्पाद है मूंगा सिल्क साड़ी।

0: हमारे अगले विजेता हैं उत्तर प्रदेश से बुनाई वर्ग से ही जनाब शाह मोहम्मद अंसारी, आपका विशेष उत्पाद जरबफ श्वेतांबरी अवध जामदानी साड़ी। अब बढ़ते हैं राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 की ओर। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए बुनाई वर्ग के लिए ही तमिलनाडु राज्य से आए अन्नामलाई मारीमुतो, आपका विशेष उत्पाद है कांचीपुरम रेशमी साड़ी और ये जॉइंट अवार्ड है। और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता हैं कुमारन बलरामन, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए, आपका भी विशेष उत्पाद कांचीपुरम रेशमी साड़ी। हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही तेलंगाना से आए श्री गंजी वेंकटेश, आपका विशेष उत्पाद इक्कत साड़ी। बुनाई के लिए ही अगले विजेता आंध्र प्रदेश से श्री मरकला नटराज, जोरदार तालियों से अभिवादन कीजिए, कॉटन टसर हाफ और हाफ जामदानी साड़ी, आपका विशेष उत्पाद। अगले विजेता उत्तर प्रदेश से बुनाई के लिए जनाब नसीम अंसारी, आपका विशेष उत्पाद इश्कत गुलदस्ता जामदानी साड़ी। जम्मू और कश्मीर से हमारे अगले विजेता बुनाई वर्ग से ही ये भी एक जॉइंट अवार्ड है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए जनाब फयाज अहमद वानी, आपका विशेष उत्पाद चांददार कानी शॉल। और इसी जॉइंट अवार्ड के दूसरे विजेता जनाब मंजूर अहमद हजाम, हमारे अगले विजेता हैं मध्य प्रदेश से बुनाई के लिए श्री कमल गौड़, आपका विशेष उत्पाद महेश्वरी साड़ी। पश्चिम बंगाल से आए हमारे अगले विजेता हैं श्री अभिनव बसक, फॉर 500 काउंट मजलिन खादी जामदानी साड़ी।
1: आपको बता दें राष्ट्रपति भवन के सभागार के सांस्कृतिक केंद्र में इस वक्त राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 का वितरण किया जा रहा है माननीय राष्ट्रपति श्री द्रौपदी मुर्मू के कर कमलों द्वारा।
2: Yes, you are absolutely right, and the Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, has already conferred the Sant Kabir Handloom Award to two awardees, Shri Ram Meher from Odisha for weaving, and the handloom product was Bichitpar Khadi Sari, and to Shri Shah Mohammad Ansari of Uttar Pradesh on the category Languishing Weaves, and the product was Zarbaft Shwetambari Tissue Jamdani Sari. The Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Award 2025 was conferred upon Srimati Runima Chetia Choudhury of Assam for the category Weaving, and her product was Natural Dyed Muga Silk Sari. The National Handloom Awards 2025 are being conferred upon 12 awardees, Shri Annamalai Marimuthu of Tamil Nadu for weaving the Kanchipuram Korvai silk sari, and this award jointly was also conferred upon Shri Kumaran Balaraman. Shri Ganji Venkatesh of Telangana got the

0: National Handloom Award for Ikat Sari, Shri Murukala Nataraju of Andhra Pradesh for his product Cotton Tasar Half and Half Jandani Sari, Shri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the Ikat Guldasta Jandani Sari, Shri Manzoor Ahmed Hajam and Shri Fayyaz Ahmed Wani of Jammu and Kashmir for the Chand Dar Kani Shawl, and Shri Kamal Gaud of Madhya Pradesh for the Maheshwari Sari, Shri Abhinav Boshak of West Bengal for the Khadi Muslin Jamdani Sari, Shri Prafullo Kumar Sahu of Odisha for the Jagat Singhpur Sari, Shri Bariga Ram of Rajasthan, a young weaver, for the Pattu Sari, and Shri Vankar Keshabhai from Uttar Pradesh for the Tangalia Dupatta. And the Honorable President is conferring the various awards to the awardees on the National Handloom Day 2025, and she is conferring the National Handloom Awards 2025.
1: Marketing training se hi agle vijeta hain Tamil Nadu se Messrs 31 Kovilwadi Hatkarga Bunkar Sahkari Samiti. और आज का आखिरी पुरस्कार असम से स्टार्टअप उद्यम यानी निर्माता कंपनी के लिए मेसर्स मार्वेला एसोसिएट्स. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, दैट कंक्लूड्स आवर अवार्ड्स प्रेजेंटेशन. विद दैट वी कंक्लूड द अवार्ड्स लिस्ट. आपके उत्कृष्ट कार्य संपूर्ण हथकरघा समुदाय और राष्ट्र के लिए प्रेरणा का स्रोत है. सभी पुरस्कार विजेताओं को हमारी हार्दिक बधाई. आज हम मध्य भारत के आले से रंगे हथकरघा वस्त्र नामक एक विशेष कॉफी टेबल बुक का अनावरण भी यहां पर होने जा रहा है. इसका शीर्षक है धरती यानी अर्थ, जड़ यानी रूट्स और धागा यानी थ्रेड. मैं माननीय राष्ट्रपति जी से निवेदन करती हूं कि वे अपने कर कमलों द्वारा इस कॉफी टेबल बुक का अनावरण करें.

0: धन्यवाद। ये प्रकाशन हमारे हथकरघा कारीगरों के कौशल, रचनात्मकता और दृढ़ता के लिए एक स्थायी श्रद्धांजलि के रूप में कार्य करेगा। और अब हम हथकरघा पर आधारित चार स्मारक डाक टिकटों के विमोचन की ओर अग्रसर हैं। इसके लिए मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं श्री जितेंद्र गुप्ता, महानिदेशक डाक सेवाएं। आपसे अनुरोध है, कृपया मंच पर आएं और माननीय राष्ट्रपति जी को हथकरघा पर जारी स्मारक डाक टिकट की प्रथम एल्बम विमोचन हेतु भेंट करें।
1: And the Honorable President of India is being presented with the special commemorative postage stamps, and the Honorable President is releasing these commemorative postal stamps, which have been unveiled by the Department of Posts, Government of India. These are all rupees 5 postal stamps, which depict the rich heritage.

0: Runima Chetia Choudhury.
1: All right.
0: Assam.
1: Time to get one NRI task done.
0: Weaving.
1: And you thought I'm going out?
0: There were 12 awardees for the National Handloom Award 2025 from Tamil Nadu, which went jointly to Sri Annamalai Marimuthu and Sri Kumaran Balaraman for their Kanchipuram Kurvai silk sari. Sri Ganji Venkatesh of Telangana bagged the National Handloom Award 2025 for the Ikat Sadi. Sri Murakala Nataraju of Andhra Pradesh got the Katan Tushar half and half Janarani Sadi. Sri Naseem Ansari of Uttar Pradesh for the Ikat Guldasta Jamdani Sadi.
2: And
0: we have the Union Minister of State for Textiles, Sri Pavitra Margarita.
2: पद तक आपकी प्रेरणादायी यात्रा आपकी सादगी संवेदनशीलता और जनसभा के प्रति समर्पण 140 करोड़ देशवासियों के लिए प्रेरणा का स्रोत हैं। As we gather here today, we remember 7th of August 1905 when the Swadeshi movement became a symbol of India's resolve for self-reliance. More than a century later, under the visionary leadership of Paramadriniya Pradhan Mantri Sri Narendra Modi ji, that spirit continues through the vision of Atmanirbhar Bharat, vocal for local and local for global, creating new opportunities for our weavers and artisans. Maniya Rashtrapati ji, pichle vars Rashtriya Hast Shilp Puraskar Samaroh ke apne sambodhan mein aapne GI Tech ke mahatva par bhi vishesh bal diya tha aur adhik se adhik paramparik utpadon ko GI pehchan dilane ka ahvan kiya tha. Isi disha mein aage badhte hue do din pehle hi GI and Beyond 2.0 summit ka safal ayojan kiya gaya jisne GI ecosystem ko aur majbut banane ke bhi disha mein mahatvapurna kadam badhaya hai. साथ ही ये बताते हुए मुझे अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि वर्ष 2014 के बाद हथकरघा एवं हस्तशिल्प श्रेणी में जीआई पंजीकरणों में 3 गुना से अधिक वृद्धि हुई है. The true credit for the enduring legacy and growing global recognition of India's handloom and handicraft traditions belong first to our generations of weavers and artisans who have preserved this priceless heritage for thousands of years. Under the constant guidance of Honorable Union Minister of Textiles, Sri Giriraj Singh Ji, and through the dedicated efforts of the Secretary of Textile, DC Handlooms, and the entire Ministry of Textile team, this legacy continues to reach the new heights. As I conclude, I would like to extend my heartfelt congratulations to all the recipients of Sant Kabir Handloom Awards and the National Handloom Awards for your craftsmanship, innovation and dedication. You continue to preserve our weaving traditions while inspiring future generations. Antata, aiye hum sab milkar ye sankalp le ki hamare bunkaron ko samman पहचान और नए अवसर निरंतर मिलते रहे तथा हमारे बुनकरों द्वारा बुना गए प्रत्येक धागा विकसित भारत के सपने को और अधिक सशक्त करे. धन्यवाद. जय हिंद.
3: धन्यवाद माननीय मंत्री जी, आपके ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायी भाषण के लिए आपका धन्यवाद. और अब मैं आमंत्रित करने जा रही हूं श्री गिरिराज सिंह जी को. माननीय वस्त्र मंत्री भारत सरकार, आपसे अनुरोध है कि भारत के हथकरघा क्षेत्र के भविष्य के लिए अपना संबोधन और दृष्टिकोण साझा करें. जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए.
4: भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे. आज 12वें हस्तकरघा दिवस के अवसर पर देश के राष्ट्रपति, हम लोगों के आन बान शान, भारत की संस्कृति और सभ्यता की प्रतीक और हमारे हैंडलूम के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में आज हम पूरे देश और दुनिया में आपका नाम लेता हूं, आपका मैं स्वागत भी करता हूं.

0: जब मंच पर बैठे हमारे सहयोगी राज्य मंत्री मानवर मार्गरेटा जी पवित्रा, हमारी सचिव नीलम शम्मी राव जी, हमारी डीसी हैंडलूम श्रीमती एम बीना जी और सभी यहां आए हुए हमारे विजेता बुनकर भाइयों, अधिकारी, प्रेस मीडिया, सभी का मैं सम्मान करता हूं। जब मैं 12 में हस्तकरघा दिवस की बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मैंने अपने अतीत को खो दिया, क्योंकि धन्यवाद मैं माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी को देता हूं, जिन्होंने 14 में प्रधानमंत्री बनने के बाद उनके मन में लगा जो हैंडलूम हमारे आजादी के पहले से हजारों वर्ष से हमारे सभ्यता और संस्कृति का एक महान कृति है, उसको शायद नजरअंदाज किया गया। नजरअंदाज इस क्यों किया गया मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जब हमारे सहयोगी मित्र कह रहे थे 1905 की बात, उसी 7 अगस्त को स्वदेशी आंदोलन के दिन को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2015 7 अगस्त को ये पुनर्स्थापित करने का काम किया, क्योंकि ये भारत के विकास को विरासत के साथ जोड़ के देखते हैं। ये हमारी ऐसी विरासत जिसे हम याद करते हैं कि भारत की विरासत में खादी और हैंडलूम एक अंगूठी से बंगाल का मुस्लिम मसलिन पूरे पास हो जाता था, लेकिन विदेशी आक्रांताओं ने, अंग्रेजों ने इस पे प्रहार किया हमारी टेक्नोलॉजी को, तो हम लोगों ने स्वदेशी आंदोलन, हमारे पूर्वजों ने मैनचेस्टर के कपड़े को बहिष्कार करके और इन्हीं बुनकर भाइयों के कृति पर हम पूरे देश को एक जन आंदोलन में बदलने का काम किया।
1: एंड वी आर ब्रिंगिंग यू द नेशनल हैंडलूम अवार्ड्स फ्रॉम द राष्ट्रपति भवन कल्चरल सेंटर। The Honorable President of India, Shrimati Draupadi Murmu, conferred the National Handloom Award 2025 to the awardees. And now the Minister for Textile, Shri Giriraj Singh.
0: Jab 10 saal baad aata to 43 lakh, aur jab uske baad 10 lakh aata to 35 lakh, aakhir kyon? Aaj main kuch naujawan भाइयों को देखा, मेरे अंदर वो प्रसन्नता जो मैं कह नहीं सकता। और मेरा लक्ष्य है कि भारत के बुनकर भाइयों के लड़के और लड़की इस पेशा में कैसे आए, ये मेरी चिंता है। और मेरी चिंता है ये तब होगा जब मैं इनके संतति को, इनको अच्छी रकम मिले। ये तो संत कबीर हैं, ये हैंडलूम अवार्ड है, अवार्डी के कपड़े को तो मैडम मैं बीड भी कर रहा हूं, जिससे बुनकर भाइयों से पूछता हूं संत कबीर इस साड़ी का कीमत कितना लेंगे, तो 1,90,000 और कॉटेज में लोग लेकर के जाते हैं। लेकिन आम बुनकरों की पीड़ा चाहे उड़ीसा हो,

चाहे बिहार हो, चाहे बंगाल हो, चाहे गुजरात हो, जिस देश का ले, वो आज उनकी पीड़ा को कहना उचित नहीं लगता। लेकिन जो संकल्प मोदी जी के नेतृत्व में लिया है, क्योंकि जब हम सूती कपड़े को देखते हैं तो बाजार में जाता है तो लोग उसे पावर लूम से कंपेयर करते, फिर उसकी कीमत देखते। हमने तय किया है आने वाले दिन में हम निश प्रोडक्ट बनाएंगे और जीआई जो प्रोडक्ट है उसको हम प्रमोट करेंगे। केवल निश प्रोडक्ट बनाएंगे नहीं, हमने गुवाहाटी में हम लोगों ने विभाग ने हमने मॉडल को स्थापित करने का काम किया है। हमारे देश में 29 बीवर सर्विस सेंटर है, 3 एक्सटेंशन है, 11 राज्य और केंद्र मिला के IISTE है और 20 निफ्ट का कैंपस है। मैं सबों को लेकर के, लेकिन फर्स्ट फेज में मैं सर्विस सेंटर को, IISTE को, एक्सटेंशन को, कि किसी भी बुनकर भाइयों की आमदनी मिनिमम 50,000 रुपया मासिक से कम नहीं हो। ये मोदी जी की पीड़ा है, ये गरीबों का, और ये होगा, ये करना शुरू कर दिया हूं गुवाहाटी से, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। दूसरा आपसे निवेदन करता हूं, इसमें हम अप स्किलिंग करते हैं। अप स्किलिंग करने के बाद अगर लूम नहीं है तो लूम हम देते हैं, लूम अगर है उनको सूता देंगे, उनको डिजाइन देंगे, उनके प्रोडक्ट की मार्केटिंग जो नहीं कर पाएंगे उनकी मार्केटिंग भी करेंगे। अगर ये हमारे बुनकर भाइयों को ठीक लगता है तो मुझे तालियों की गड़गड़ाहट से सब विभाग को एक दें। और ये शुरू कर दिया है, अभी 25,000 से 30,000 रुपये गुवाहाटी विभिन्न सर्विस सेंटर क्या दे रहे हैं 6 राज्यों में इसको फर्स्ट फेज में, और लक्ष्य है 2030-31 तक कोई ना बचे। दूसरा तय किया, आज तक इनकी पहचान कार्ड नहीं था, मुख्य कानून छो था, जो कह दिया सर्वे में वही हम लिख लेते थे। लेकिन अब हम लोगों ने 2025 के जनवरी से हमने इनका पहचान कार्ड बनवाया, 35 लाख आए। लेकिन जो नई गतिविधि हुआ है, हम उस पहचान को ऑनलाइन छोड़ा है, और केवल ऑनलाइन नहीं छोड़ा है बल्कि हर दिन वो, और मुझे खुशी है अब 65 लाख से हम 35 लाख पहुंच गए, अब 35 से हम 65 रिवर्स में जाएंगे, लगभग 1 लाख नए बीवर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ये हमारा संकल्प है। हमारा दूसरा संकल्प है कि बीवर भाई अपने बच्चों को IISTE में दें, पढ़ाएं, फिर निफ्ट में उसको हम प्रमोट करेंगे, और ये 2 लाख रुपया इनके बच्चों की पढ़ाई के लिए भारत सरकार टेक्सटाइल डिपार्टमेंट देने का काम करेगा। इसलिए ये पीड़ा है। आज कई युवक जब IISTE से पढ़ करके निफ्ट जाते हैं, अपना कारोबार करते हैं, वो 150 लोगों को रखते हैं। मेरा उद्देश्य है मास्टर बीवर यानी बिचौलिया, मास्टर बीवर से बीवर का मुक्ति दिलाना। उसके लिए ई कॉमर्स रखा है, उसके लिए विदेशों में ईपीसीएच से के साथ जोड़ करके अभी शुरुआत की है 50

0: हैंडलूम 50 हैंडीक्राफ्ट, क्योंकि इस बार जो योजना हम बना रहे हैं वो हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट दोनों को मिला करके हैंडलूम की साड़ी बन गई, अगर उस पर पैच वर्क हुआ तो वो हैंडीक्राफ्ट हो जाता। तो हमने तय किया है दोनों को मिला करके एक नए तरह से हम बीभर भाइयों के जिंदगी में परिवर्तन करेंगे। अभी राष्ट्रपति महोदया अभी आईआईटी दिल्ली से एमओयू किए हैं, केवल एमओयू नहीं किए हैं, अभी 100 बीभर से जस्ट शुरू किया है एक एप्लीकेशन मोबाइल के थ्रू, उसमें हम कार्बन फुटप्रिंट कितना कैप्चर कर रहे हैं वो उनको दिखाई देगा, बीभर को दिखाई देगा कि उनकी एफिशिएंसी कितना आज के काम का है, उनको दिखाई देगा। एआई टूल्स भी लगा रहेगा, उनके सिस्टम में कोई गड़बड़ी होगा तो एआई टूल उसको रोकेगा। इस तरह से टेक्नोलॉजी का सहारा हम इनके जो लूम है लूम को परिवर्तित करेंगे। आसाम का एक शिव सागर जो जिला है वहां एक रिटायर्ड इंजीनियर ने लूम बनाया, अभी वो 70 से 80 पीपीएम पर जा रहा है। उसने मुझे कहा है कि हम 180 पीपीएम पर जाएंगे, पर मिनट 180 पिक जाएगा। लोगों ने कहा ये तो पावर लूम की तरह होगा, हम कहा टेक्नोलॉजी तो इसी को कहते हैं, जब टेक्नोलॉजी होगा तभी हम ये करेंगे, हम मैकेनिकल चेंजेज लाएंगे। मैं इतना ही आपको वादा करता हूं कि
1: आप बता दें 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार में ये समारोह आयोजित किया जा रहा है, जिसमें माननीय राष्ट्रपति ने हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। और आपको बता दें ये कई अलग अलग क्षेत्रों में ये पुरस्कार प्रदान किए गए। माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किए गए हैं।
0: और जो मेरा लक्ष्य है पच लखिया भाई और बहन बनाना, 10 लखिया बनाना, इस संकल्प को पूरा करेंगे आपके नेतृत्व में, मैं यही कह रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय, आपके उत्साहवर्धक संबोधन और हथकरघा क्षेत्र को बढ़ावा देने और मजबूत करने में आपके सटीक नेतृत्व के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देवी और सज्जनों, मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है कि मैं माननीय राष्ट्रपति जी को 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आपसे विनम्र निवेदन है, कृपया सभा को अपना संबोधन दें। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। बैठे बैठे, मैं कुछ कहने से पहले मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहती हूँ और भारत की सरकार को धन्यवाद देना चाहती हूँ। टेक्सटाइल डिपार्टमेंट अच्छे लोगों को दिया है, अच्छे एक मंत्री को दिया गया। मुझे लगता है टाइम का पाबंदी है, टेक्सटाइल ऊपर में बातें करने के लिए उनको एक दिन दिया जाए तो शायद कम होगा। इस समारोह में उपस्थित भारत सरकार में मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स श्री गिरिजाराज सिंह जी, मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर टेक्सटाइल्स श्री पवित्र मार्गरेटा जी, सेक्रेटरी टेक्सटाइल्स श्रीमती नीलम स्वामी राव जी, डेवलपमेंट कमिश्नर डॉक्टर एम बीना जी, गणमान्य अतिथियों, सभी अवार्डीज और सभी गुणाकार डिजाइनर देवियों और स्वजन, सभी को नमस्कार।

आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित होकर मुझे अत्यंत आनंदित महसूस हो रही है। मैं देश के प्रतिभाशाली बुनाकारों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। जब हम यहाँ पे इधर आ रहे थे, एग्जीबिशन हम देखे, इतने सारे वैरायटीज देख के मुझे लगता है, मुझे कोई ने बोले मैडम आपका महिलाएं थोड़ा कम है, केवल 5 लोगों को दिया जाता है। मैंने बोली नहीं नहीं, हम लोग 100 लोगों को दिए नहीं, केवल 24 लोगों को दिए, हम सबको दिले 50 तो जरूर महिलाओं को मिलता है। इसने हमारे क्षेत्रीय विशेषताओं के संरक्षित भी किया है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है। हमारे ग्रामीणों और जनजातीय समाज ने प्रकृति के साथ सामंजस्य से जीने की पारंपरिक ज्ञान प्रणालियों को सदियों तक संजोय है। हथकरघा उस परंपरा का एक सशक्त उदाहरण है। प्रकृति के अनुरूप जीने की पद्धति की उपयोगिता आज समूची विश्व में स्वीकृति जा रही है। देवियों और स्वजनों, हथकरघा क्षेत्र में रोजगार की अपार संभावनाएं हैं। मुझे बताया गया है कि इस क्षेत्र में देश की 35 लाख से भी अधिक आबादी संलग्न है। विशेष बात यह है कि इसमें 25 लाख से अधिक महिलाएं हैं, 35 से 25 महिलाएं हैं। उनके सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। इसमें लगभग 2/3 कारीगर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित है। इस प्रकार ये क्षेत्र आजीविका सृजन के साथ साथ समावेशी विकास का भी एक सशक्त माध्यम बना है। देश इंडिपेंडेंट होने के कुछ साल बाद में धरती पे आई, स्कूल गई, जो असहयोग आंदोलन के टाइम महात्मा गांधी ने जिस बात गांव-गांव घूम के बोले थे, हम जो स्कूल में 15 अगस्त और 26 जनवरी में हम घूमते थे, प्रभात फेरी करते थे, वही गाना हम गाते थे। मैं हम तो ओडिया में पढ़ाई की है, तो मैं थोड़ा ओडिया के 2 पंक्ति बोलना चाहती हूँ। आज ही आसी अच्छी नुआ जुगांतर गांधी कहती बोली बराबर, खाओ भात मुठे घर ढेंकी कुटा, पिंधो लुगा खंडे हाते काटी सुता। इट मीन्स आज नया युग आ गया है। इसीलिए जितने जमीन है, जमीन में खेती करो, अनाज उगाओ और अपना खाओ, अपना करो अपना खाओ। और कर्पास इतने उत्पादन होता है, इसीलिए वहां से थ्रेड निकालो और बुनाई करो और खुद का पहनो। आज भी मैं जो 7 क्लास तो पढ़ती थी, पर कितने साल हो गया है, लेकिन वो 2 पंक्ति मेरे दिल में है, अभी भी मुझे याद है। इसीलिए आज जो देखती हूँ, केवल वो वाला मोटे वाला सूत नहीं, आज इतने फाइन फाइन कपड़ा बनाते हैं, कोई 1 लाख 2 लाख 5 लाख तो है, तो यहीं पे तो सब है। हम विदेशों में नजर क्यों डाले। देवियों और स्वजन, संत कबीर हथकरघा पुरस्कार से आज सम्मानित हुए वरिष्ठ बुनाकार विशेष बधाई के पात्र हैं। इन सभी ने ही आपने दशकों के कामकाजी जीवन में केवल अपने कौशल को ही नहीं संवारा, बल्कि उन्होंने सैकड़ों बुनाकारों को प्रशिक्षित और प्रेरित भी किया है।

गुणाकारों की नई पीढ़ी तैयार करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है। राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार पाने वाले सभी प्रतिभाशाली और कर्मठ बुनाकारों को भी मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। पूर्वोत्तर से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर सुदूर दक्षिण तक देश के अनेक राज्यों की हथकरघा शैलियों के बेजोड़ उदाहरण का सर्जन उन कर्मठ बुनाकारों

0: आधुनिक डिजिटल सॉल्यूशंस के माध्यम से बाजार तक पहुंच को अधिक प्रभावी बनाया जा सकता है। साथ ही ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के माध्यम से भारतीय हथकरघा उत्पादों की पहुंच वैश्विक बाजारों तक और अधिक सशक्त बनाया जा सकती है। मुझे विश्वास है कि ये क्षेत्र देश के समावेशी विकास एवं आत्मनिर्भरता का सशक्त आधार बनेगा। मैं हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सभी पुरस्कार विजेताओं को एक बार फिर बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।
1: The Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, was speaking at the Rashtrapati Bhavan Cultural Centre on the occasion of the 12th National Handloom Day. The Honorable President also conferred the National Handloom Awards 2025 to the winners under the category of Sant Kabir Handloom Awards 2025 to two awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay Sant Kabir Handloom Awards 2025 to one awardee and the National Handloom Awards 2025 to 12 awardees, the Kamala Devi Chattopadhyay National Handloom Award 2025 to two awardees and the National Handloom Awards for Design Development for the year 2025 to two awardees, the National Handloom Award for Marketing of Handloom Products for 2025 to two awardees and the National Handloom Award for Startup Producer Company for the year 2025 to one awardee. And she also released commemorative postage stamps, and the Honorable President of India also released two publications, Earth, Root, Thread, All Dyed Handloom Textiles of Central India and the Handloom Awards Book 2025.
2: आज का ये समारोह केवल पुरस्कार वितरण नहीं बल्कि भारत की उस सांस्कृतिक चेतना का उत्सव है जिसने सदियों से अपनी परंपराओं को जीवित रखा है। जब हम हाथ से बुना हुआ भारतीय वस्त्र धारण करते हैं तब हम केवल एक परिधान नहीं पहनते बल्कि एक बुनकर की मेहनत, उसके परिवार की आशा और भारत की सांस्कृतिक विरासत को सम्मान देते हैं। राष्ट्रपति भवन के सांस्कृतिक केंद्र के सभागार नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के इस विशेष समारोह से आप सजीव विवरण सुन रहे थे। मैं श्रेयसी आर खान अपने साथी कमेंटेटर कौशिक राय और कार्यक्रम प्रभारी प्रमोद कुमार के साथ आज्ञा लेता हूं। नमस्कार। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया।
3: अभी हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे थे माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति में आयोजित 12वें हथकरघा दिवस समारोह का सजीव प्रसारण। आकाशवाणी का ये बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 MHz पर। इस समय 12:20 हो चुके हैं। श्रोताओं, अब से लेकर शाम 5 बजे तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम।

0: जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय,
0: वो कॉमिक क्रिएटर है।
3: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
3: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है?
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
3: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: विविध भारती पर इस वक्त आप सुन रहे हैं कार्यक्रम यादों की महफिल और आज हम याद कर रहे हैं फिल्मकार जे ओम प्रकाश को, क्योंकि आज है उनकी पुण्यतिथि, उनकी याद का दिन। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं आशिक हूं बहारों का, इस फिल्म से किशोर कुमार और लता मंगेशकर के स्वर हैं, आनंद बख्शी की रचना, संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने।

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं, 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे
2: सखी सहेली।
3: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम
4: चलते रे, इश्क भी पड़ जाते
3: पूरे दबंग अंदाज में, और दोस्तों की महफिल सजी हो तो

0: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
1: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
0: जी,
1: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
0: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
2: मैं निकला गड्डी लेके
0: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर शोक अदाओं के।

0: कथा, दिशा और चश्मे पर दूर।
1: उन्होंने कहा कि देखो, अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची आए, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला, वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे, वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
0: और आ गया।
1: एक और आ गया।
2: जल्दी बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
3: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
0: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की। 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर
4: सुनिए
0: एक आवाज जिसमें है जोश।

0: आ रही हैं महबूबा महबूबा महबूबा विविध भारती पर सुंदरा 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: ब्रेक से पहले आपने सुना था आसपास फिल्म का गीत लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल थे। अब आपको सुनवाते हैं अर्पण फिल्म का ये गीत। लता मंगेशकर ने इस गीत को गाया है, आनंद बख्शी के ही बोल हैं, संगीत है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का।

लता मंगेशकर की आवाज में अभी आप गीत सुन रहे थे अर्पण फिल्म से। इसी गीत के साथ कार्यक्रम यादों की महफिल आज यहीं संपन्न होता है। आज हमने आपको सुनवाए फिल्मकार जे ओम प्रकाश की फिल्मों के गीत, क्योंकि आज था उनकी याद का दिन। अब दीजिए आज्ञा, नमस्कार।

आप सुन रहे हैं देश का नंबर वन मनोरंजन चैनल विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम सुरीला सफर बस थोड़ी ही देर में लेकर हाजिर होंगे।

लीजिए श्रोताओं, सुरीला सफर कार्यक्रम लेकर हम हाजिर हो गए हैं। आप सभी विविध भारती सुनने वालों को पूजा नारायणिया का प्यार भरा नमस्कार। श्रोताओं, इस सफर की सबसे खास बात यही है कि गीतों का चयन भले ही हमने किया हो, लेकिन उन्हें पहचानने का खूबसूरत सा खेल आप सभी के साथ गीतों के साथ हम खेलते हैं। फेसबुक पर हम कुछ छोटे छोटे शब्दों और संकेतों यानी इबारत के जरिए आज के गीतों की झलक साझा आपसे करते हैं और फिर आपकी टिप्पणियां इस सफर को और भी दिलचस्प बना देती है। ये है इस सफर की खास बात। कोई बिल्कुल सही गीत पहचान लेता है तो कोई अपने अंदाज से यादों का नया पन्ना खोल देता है। तो आइए आज भी देखते हैं कि हमारे श्रोताओं ने इन संकेतों से किन किन गीतों का अंदाजा लगाया है। पढ़ेंगे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स, करेंगे उनसे जुड़ी बातें और सुनाएंगे मधुर सुरीले गीत जो हर सफर को सचमुच सुरीला बना देते हैं। सबसे पहले पढ़ देते हैं आज की इबारत यानी टेक्स्ट। सावन के झूले पड़े भीगी भीगी रातों में भी पिया अनजान है सपनों की सूखी फुलवारी तन में पिया दिन भर मुझे यूं सताए दो नयन ख्वाबों की महफिल सजाए दर्पण में देखूं जिसे वो सपने सच्चे लगने लगे शाम सवेरे दिल में तू रहता है तुझसा दिल का हंसी पहले देखा कहां दिल ने कहा नहीं माना और एतबार कर लिया यानी कहा ना माना और दिल ने एतबार कर लिया बेखुदी में आ गए पास हम और अब ना होंगे जुदा। तो ये थी हमारी आज की इबारत। इनसे जुड़े कई कमेंट्स हमें आ गए हैं। एक श्रोता कहते हैं कि सावन के झूले पड़ चुके हैं लेकिन प्रेमी पिया अनजान है और दिल के सपनों की सूखी फुलवारी ने उम्मीद और अरमान को निराशा से भर दिया है। फिर भी दो नैनों ने जो ख्वाबों की महफिल सजाई है उसमें प्यार की रोशनी धीरे से जगमगाई है जिससे दिल को एतबार हो गया कि अब वो फिर से जुदा नहीं होंगे। सूखी फुलबारी यानी निराशा के बावजूद नए सपने सजाना यानी कि मन में आशा रखना मन की अदम्य प्रेम भावना को दर्शाता है। वहीं अनजानेपन के बाद भी दिल का एतबार करना प्रेम की सहज और पवित्र प्रकृति को उजागर करता है। जी हाँ, बिल्कुल सही आपने कहा है। ऐसे ही हमारे एक और श्रोता कहते हैं कि सावन की बारिश का एक अजीब सा स्वभाव है, यह हमेशा बाहर नहीं बरसती अक्सर भीतर भी भिगाती रहती है। झूले डलते तो हैं पेड़ों पर लेकिन झूलता मन है। दर्पण में चेहरा अपना दिखाई देता है मगर आंखें किसी और की परछाई ओढ़ लेती है। ख्वाब भी बड़ी खामोशी से आकर दिल के आंगन में बैठ जाते हैं और एक अनकहा नाम पूरे दिन सांसों में गूंजता रहता है। फिर एक दिन दिल बिना किसी दलील के यकीन कर लेता है कि मोहब्बत का रास्ता मंजिल से नहीं इंतजार से होकर गुजरता है। सावन हर साल लौट आता है यह याद दिलाने के लिए कि कुछ रिश्ते बारिश की तरह होते हैं, उन्हें छूने से ज्यादा महसूस किया जाता है। कितनी सुंदर बात आपने कही है। एक और श्रोता कहते हैं कि ये सावन जो है ऋतु नहीं हृदय की वह अवस्था है जहां हर बूंद किसी अनकहे नाम का उच्चारण करती है। झूलों की रुनझुन भीगी रातों की नमी दर्पण में उभरती छवि और आंखों में सजती ख्वाबों की महफिल सब मिलकर उस प्रेम की कहानी कहते हैं जो पहले एहसास बनकर उतरता है फिर विश्वास बनकर दिल में ठहर जाता है। यहाँ विरह भी मधुर है प्रतीक्षा भी सुंदर क्योंकि प्रेम का सबसे उजला रूप उसी धैर्य में जन्म लेता है जहां मिलन से पहले स्मृतियां साथ निभाती हैं। अंततः यह इबारत बताती है कि सच्चा प्रेम शब्दों से नहीं भीतर धीरे धीरे बरसते सावन से पहचाना जाता है। एक ऐसा सावन जो जीवन को भीगने के

साथ साथ महकाता भी है, यानी कि महकना सिखा देता है। जी हाँ बिल्कुल। तो श्रोताओं, सबसे पहला गीत आ रहा है सफर का आपके लिए, जुर्माना फिल्म से। इस गीत को गाया है लता मंगेशकर ने, लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीत बद किया है आर डी बर्मन ने।

0: और पहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन, संघर्ष, अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष गोवारिकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना, ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी

0: वेरिएशन फ्री।
1: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा।
3: वो कॉमिक क्रिएटर है।
4: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
3: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
4: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
3: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
4: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपा दी जाती।
3: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
5: गीत के साथ हमने आपको संदेश भी सुना दिए हैं। श्रोताओं, आज हमारी जो इबारत यानी टेक्स्ट जो था वो बड़ी ही सरलता के साथ आपके सामने आज हमने रख दिया था। इसमें गाने पहचानना शायद बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा होगा, है ना। सावन की झूले पड़े ये गीत अभी आपने सुना। सचमुच सावन का नाम आते ही मन जैसे अपने आप गुनगुनाने लगता है। झूलों की पिंगे हो, सखियों की हंसी ठिठोली हो या फिर अपने प्रिय के आने की मीठी सी प्रतीक्षा। सावन

0: के इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस छिपका दी जाती।
1: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: गीत के साथ हमने आपको संदेश भी सुना दिए हैं। श्रोताओं, आज हमारी जो इबारत यानी टेक्स्ट जो था वो बड़ी ही सरलता के साथ आपके सामने आज हमने रख दिया था। इसमें गाने पहचानना शायद बिल्कुल भी मुश्किल नहीं रहा होगा, है ना? सावन की झूले पड़े ये गीत अभी आपने सुना। सचमुच सावन का नाम आते ही मन जैसे अपने आप गुनगुनाने लगता है। झूलों की पिंगे हो, सखियों की हंसी ठिठोली हो, या फिर अपने प्रिय के आने की मीठी सी प्रतीक्षा, सावन हर एक एहसास को और भी गहरा बना देता है। इसलिए इस मौसम में प्रेम का भी तो महत्व अधिक बढ़ जाता है ना। प्रेम का रूप इस मौसम में और भी हरा हो जाता है, यानी खिल जाता है, हरियाली छा जाती है। तो प्रेम सिर्फ शब्दों में नहीं, मुस्कानों में, आंखों की चमक में और गीतों की मिठास में भी महसूस होने लगता है। सावन दिलों को एक दूसरे के और भी करीब ले आता है। हमारे एक श्रोता कहते हैं कि सावन के झूले और भीगी भीगी रातों की बातें आज के सुरीले सफर से भाव विभोर करने वाली है, लेकिन बादल हैं कि बरसना ही नहीं चाहते। सुना है पुराने समय से मेघ मल्हार गाते थे और बादल बरस जाते थे। उम्मीद है कि आज की गीतावली यानी सुरीला सफर की गीतावली से ही आज सावन की फुहार बरसेगी। क्यों ना उन्हीं फुहारों का मजा लिया जाए। क्या बात है, बिल्कुल ऐसा ही कुछ करना होगा। और हमारे अगले श्रोता कहते हैं कि आज सुरीला सफर का सफर झूले में बैठकर सुनने का दिल कर रहा है, लेकिन हमारे फ्लैट में झूला नहीं है और हमारे शहर जामनगर में बारिश भी नहीं हो रही। ओहो, तो रात भीगी भीगी कहां से नसीब होगी। बिल्कुल हम समझ सकते हैं, लेकिन आज दोपहर में विविध भारती पर सुरीले और सदाबहार गीतों की बारिश होगी, तो तय है कि सुरीले सफर में भीगने का बेसब्री से इन्हें इंतजार है। क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। गीतों को सुनते हुए ही सावन का आनंद आप उठा रहे हैं। ऐसे ही हमारी अगली श्रोता कहती है कि सावन आता है तो चारों तरफ हरियाली छा जाती है, फिर मन इस हरियाली से कैसे अछूता रह पाता। यह महीना ढेर सारी यादें लेकर आता है, झूले, चूड़ियां और मेहंदी के रंग में रंगा। यह मौसम तब और भी खिल उठता है जब प्रियतम आने को हो, गीतों की फुहार के साथ कुछ पिंगे झूले की उड़ा ले आती है। श्रोताओं, आप बताइए कि क्या आपके गांव, मोहल्ले या आंगन में भी कभी सावन के झूले पड़ते थे, या कि अब शहरों में भी आप ऐसा किया करते हैं? क्या आपको भी याद है कि वो दिन जब बारिश की पहली फुहार पड़ते ही मन यूं ही बाहर निकल जाने को मचल उठता था, या फिर कोई ऐसा गीत जिसे सुनते ही आपको अपना बचपन, अपनी सहेलियां, अपने कोई लोग, कोई बहुत खास पल याद आ जाता हो? तो ये सब हमें आप संदेश के माध्यम से बताइए। तो आइए सावन के महीने में आज के कार्यक्रम में अपने मन को टटोलते हुए खोलिए उन यादों का पिटारा। बता दीजिए कि आज का कौन सा गीत आपकी प्यारी याद को ताजा करता है। अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं अनजाना फिल्म से लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में आनंद बख्शी के बोल हैं।

अब देखिए सावन की भीगी भीगी रातें प्रेम की दिल में दस्तक दे रही हैं। ये दस्तक सुनकर किसी का साथ याद आने लगता है, तो कभी किसी से हुई प्यारी सी मुलाकात याद हो आती है। हमारे एक श्रोता कहते हैं, आज का सुरीला सफर ऐसे लग रहा है जैसे किसी खुली गाड़ी में हवाओं के साथ बातें करते हुए फर्राटा भरते हुए चले जा रहे हों। गानों के मुखड़ों को इबारत के रूप में हमारे सामने रख दिया गया है, इसमें दिमाग कुछ लगाना ही नहीं है, गाने सबके सामने रखे हुए हैं, बस इन गानों के बजने का इंतजार था। जी बिल्कुल, ये गाने हमने आपको सुनाना शुरू कर दिया है। इतना जरूर है कि सभी गाने सभी के पसंद के होंगे, तो आज गाने सुनने का दिन है। बिल्कुल, एक श्रोता कहते हैं कि पिछले कुछ दिनों से सुरीला सफर में सावन छाया हुआ है। हो भी क्यों नहीं, क्योंकि सावन सभी मौसम का राजा है। गर्मी की तेज जलन से तन मन जब व्याकुल हो जाता है, तब मन ठंडक और बारिश की कामना करता है, और बारिश की पहली फुहार से तन मन प्रफुल्लित हो उठता है। चारों ओर मानो धरती ने हरियाली की चादर ओढ़ ली है, ऐसा लगता है। और ऐसे में हम जैसे संगीत प्रेमियों के मन में सावन के कई गीत उमड़ने लगते हैं। तो इन्होंने एक गीत लिखा है, सावन का मेरा प्रिय गीत है, रिमझिम के गीत सावन गाए। क्या बात है, अभी तो ये गीत हमने आपको सुनवाया। एक श्रोता कहते हैं कि लगता है कि घटाओं से सजे मेघालय में रिमझिम फुहारों वाली गीतों की मालाओं से हो रही है आज हमारी मुलाकात। पिया मिलन की उत्कंठा और मनमीत की प्रतीक्षा करने वाले गीतों की चमकीली बूंदे इबारत में दिखाई दे रही है, और उन्होंने कुछ गीत भी हमें लिखे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि प्रेमिका कह रही है, सावन के झूले पड़े तुम चले आओ, लेकिन पिया अनजान है कि कभी जल सकता है जिया भीगी भीगी रातों में। ये तो पता तब पता चलेगा जब दो नयन ख्वाबों की महफिल सजाएंगे, तब वो भी गुनगुनाने लगेंगे, नैनों में दर्पण है दर्पण में कोई, देखूं तुझे जिसे सुबह शाम, ऐसे ही कुछ कहता है ये सावन। क्या कहता है, यही कि शाम सवेरे दिल में तू रहता है, फिर क्या बेखुदी में सनम उठ गए जो कदम आ गए पास हम। दोपहर एक बजे सुरीला सफर में जुड़ जाने का समय होते ही पास आ गए हम। क्या बात है। एक और श्रोता है जिन्होंने हमारी ही इबारत को अपने अंदाज में लिख दिया है, और सावन में रिमझिम फुहारों की बूंद में जब पिया की याद आती है और हसीन ख्वाबों में डूब जाते हैं, मिलन की आस जाग उठती है कि तुम आ जाओ और फिर जुदा ना होंगे। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन के सुहावने मौसम में रिमझिम फुहारों के बीच पिया मिलन

की आस और उनसे जुदाई का एहसास दिल को बहुत तड़पाते हैं और हर पल अपने पिया के पास होने की इच्छा और तीव्र हो जाती है, जिससे दो दिलों की दूरियां दिल में बेचैनी और तड़प को और बढ़ा देती है, जिससे बारिश की बूंदें मन में ठंडक के बजाय सुरीली उदासी से भर देती है। सावन के सुहावने मौसम में अपना पिया मिलन की पुरानी यादों को ये मौसम जगाता है, जिससे भीगी हुई धरती और उमड़ते घुमड़ते काले बादल मन को अत्यधिक भावुक बना देते हैं। बिल्कुल ये मौसम है ही प्यार का। श्रोताओं, जो सवाल हमने आपसे पूछे थे उन्हें याद रखते हुए आप हमें संदेश भेजते रहिए। हमें आपके संदेशों का बेसब्री से रहता है इंतजार। आपकी ये अनमोल यादें हम तक उस वक्त की भीनी भीनी सौंधी सी खुशबू पहुंचा रही है, सावन की फुहारों के साथ।

0: इसी गीत के साथ लेते हैं कुछ संदेश।
1: एक अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं आती,
1: और बातें जिंदगी की जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो। तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: कनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर। एक आवाज।

0: जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक है लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जानी माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: हाय हाय,
3: श्रोताओं, प्रेम की कोमल अनुभूतियों को हम शब्दों में कह नहीं पाते, पर ये गीत सब कुछ कह जाते हैं। गीत कितना अच्छा माध्यम है ना प्रेम को व्यक्त करने का। अच्छा बताइए, अगर गीत ना होते तो कैसा होता जीवन, प्रेम का इजहार कैसे होता? और सावन के मौसम में गीत ही नहीं सुने सुनाए जाते तो कैसा होता सावन, ये बताते चलिए। फिलहाल हम लेते हैं हमारे श्रोताओं के संदेश। एक श्रोता कहते हैं कि आज अनूठे पद्यांश को पिया मिलन की आस के साथ पिरोया गया है। सावन की रिमझिम फुहारों के बीच जब पिया मिलन की आस जागती है तो मन का हर कोना पुलकित हो उठता है। प्रकृति जहां ठंडी बूंदों से भीग रही होती है, वहीं प्रेमी का मन मिलन की उत्कंठा में सुलग रहा होता है। बरसती बूंदों में छुपा है सदियों का इंतजार, बाहर सावन की फुहार है भीतर विरह की आग। ये कजरारी रातें और ये रिमझिम सा सावन, सावन तो आ गया बस तुम रह गए हो जाने कहां, क्या बात है। ऐसे ही अगले श्रोता कहते हैं कि आज की इबारत एक गजब इबारत है, कभी सावन से पिया अनजान है तो कभी भीगी रात तो कभी सूखी फुलवारी। इस तरह से उन्होंने हमारी ही इबारत को अपने शब्दों में पिरोया है। और हमारे और श्रोता जो कह रहे हैं कि दिलचस्प संदेशों से सजे विविध भारती के सबसे लोकप्रिय सुपरहिट सुरीला सफर कार्यक्रम ये चल रहा है। और एक श्रोता ने इतनी प्यारी बात कही है कि मेरी प्यारी प्यारी विविध भारती को किसी की नजर ना लगे चश्मे बद दूर, यूं तो हमने लाख चैनल सुने हैं विविध भारती सा नहीं सुना। ये बारिश तो सिर्फ 4 महीने होगी, क्या बात है। बस सावन के गीत आपको विविध भारती पर सुनने को मिलते ही रहेंगे, है ना।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि सावन का मौसम बड़ा अनोखा होता है। बाहर पेड़ों पर झूले पड़ते हैं तो मन भी यादों और ख्वाबों के झूलों पर झूलने लगता है। कभी कोई अपना याद आता है, कभी दर्पण में कोई सपना मुस्कुरा देता है। दिल बार बार उसी का नाम लेता है जिससे शायद अभी तक कुछ कहा भी नहीं गया। यही तो पुराने फिल्मी गीतों की खूबसूरती है। वे हमारे मन की उन अनकही भावनाओं को भी सुर दे देते हैं जिन्हें हम अक्सर शब्दों में नहीं कह पाते। क्या बात है।

हमारे कुछ श्रोता ये भी कह रहे हैं कि रिमझिम की फुहार बरस रही है और रिमझिम के बीच में अपनी कविता आपसे साझा करना चाहता हूँ। आशा करता हूँ कि आप कविता पढ़ेंगे। अच्छा, तो कविता तो बहुत बड़ी है, हम शायद इसे नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन हम इसे देख जरूर रहे हैं।

विविध भारती का सुरीला सफर है, कैसा सफर, हर कोई जाना है, हर कोई माना है, होती रहती है बातें, प्यार मोहब्बत भरी, मौसम पहाड़ों नदियों से भरी, बातें जब होती लगती हैं खूब सुंदर न्यारी, होती है बड़ी सुहानी, सुरीली सुनकर दिल को होती है तसल्ली, ये श्रोता कह रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि गांव हमारा बहुत सूखा पड़ा था, फिर कुछ ही दिनों में बरसात की फुहार आई और फिर जमकर बरसा सावन, फिर हम मन हमारा खुशी से झूम उठा और बोल पड़ा आया सावन झूम के, फिर सावन के झूले पड़े और झूले देखकर होंठ गुनगुनाने लगे कि सावन के झूलों ने मुझको पुकारा, मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया। क्या बात। लेते हैं अब अगला।

हमारी एक श्रोता कहती हैं कि मुझे लगता है कि आज की इबारत का मुख्य रंग सावन, प्यार, ख्वाब, दिल और मिलन है। क्या बात है, आपने बिल्कुल सही पहचाना है। और एक श्रोता कहते हैं कि इस वक्त हम बाबा अमरनाथ कश्मीर के पवित्र स्थान के बेस कैंप में हैं, और ठीक है आप ये हमें बता रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं कि बारिश में भीगना हमारे लिए कष्टकारी होता है, इसलिए हम तो वर्षा का आनंद घर के अंदर बैठकर ही लेते हैं, विशेषकर अपने टेरेस के झूले पर गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों के साथ। क्या बात है। एक श्रोता कहते हैं कि हमें तो कॉलेज का समय याद आता है, हम सब दोस्त कैंटीन में गरम गरम समोसे पैटीज खाया करते थे। एक और श्रोता कहते हैं कि जब मैं छोटा था तो पापा यही सब सॉन्ग सुनते थे तो मुझे बहुत गुस्सा उठता था, लेकिन आज बड़ा होने के बाद यही सब सॉन्ग मुझे दिल को सुकून दे रहे हैं। क्या बात कही है आपने। पुराने गीत इतने सुकून भरे होते हैं, सुनना जरूर चाहिए आज की जनरेशन को भी। देखिए हमारे अगले श्रोता कहते हैं कि बचपन में हमारे गांव से थोड़ी दूर हरा भरा वन था और वहां शिवजी का मंदिर था, वहां सावन की अमावस को मेला लगता था, वहां वड़ का बहुत ही विशाल वृक्ष था, वड़ की लंबी डाली लटकी हुई रहती थी, उसी डाली को लटक कर हम झूला झूलते थे और बहुत ही आनंद आता था। बिल्कुल आता रहा होगा। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन की पहली बारिश में जवान होते थे तब भीगने का मजा और ही था, लेकिन अब इस उम्र में अंगूर खट्टे हैं, सिर्फ याद ही काफी है। हमारे एक श्रोता और कहते हैं कि सावन की फुहार और प्रेम का संबंध प्रकृति और मनुष्य के बीच का सबसे कोमल समझौता है। बारिश धरती को सींचती है और प्रेम दिल को, दोनों ही बिना मांगे आते हैं और जब चले जाते हैं तो कुछ गीला कुछ यादगार छोड़ जाते हैं। सावन अगर बारिश हो तो भीगने से मत डरना, और अगर कोई याद आए तो उसे भी भीगने देना, है ना। लेकिन अपनी सेहत

का जरूर ख्याल रखिए, क्योंकि अगर उम्र ज्यादा है तो और छोटे बच्चे हैं तो थोड़ा हमें देखभाल करनी ही होती है, थोड़ा बच के ही भीगना होगा, है ना? श्रोता ने ये कहा था कि और अगर कोई याद आए तो उसे भी भीगने देना, क्योंकि सावन का असली जादू यही है कि वह सब कुछ गीला कर देता है और गीले दिल सबसे ज्यादा महसूस करते हैं। एक और श्रोता कहती है कि धड़कनों में बस गया है सांवरा, रूह में तन्हाई की राहें सजाया है, हर लम्हा उसकी यादों का पहला दिल ने ख्वाबों में उसे अपना बनाया है, अब तो शाम सवेरे बस एक ही दुआ, प्यार के सफर में भी वो ही मिले। एक और श्रोता कहते हैं कि बाहर चल रही सावन की बरसात, साथ में विविध भारती का संग, हाथ में गरम कॉफी का कप, सामने प्लेट में गर्मा गर्म पकौड़े, क्या बात है। आप तो असल मजा ले रहे हैं इन गीतों को सुनते हुए सुरीले सफर का, क्या बात है। एक और श्रोता कहती है कि हमें तो सावन इसलिए अच्छा लगता है, एक तो चारों तरफ हरियाली और फूल बहुत ही प्यारे खिल जाते हैं, छोटे छोटे सब रंग के फूल और पक्षी भी इतने खुश नजर आते हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन का पावन महीना, विविध भारती मुंबई की मेरी दीवानगी और आज सुरीला सफर प्रोग्राम, और मैं हूं कश्मीर में, क्या बात है। वहीं से आप सुन रहे हैं, सुनते रहिए बिल्कुल, और वहां पर है सुहाना मौसम, ऐसा भी वो बता रहे हैं। एक और श्रोता कहते हैं कि सफेद कागज पर काली स्याही से मैं लिखी हुई दास्तान हूं, मैं वो गुजरे जमाने की एक राह हूं, दूर पहाड़ों पर मैं कभी खिला कभी मुरझाया फूल हूं। फिलहाल आपको सुनवाने जा रहे हैं अगला गीत चश्मे बद्दूर फिल्म से, येसुदास और हेमंती शुक्ला की आवाज में, इंदु जैन का लिखा गीत, राजकमल का संगीत।

एक श्रोता ने कहा कि बहुत सालों बाद भोला भाला फिल्म का गाना सुना, क्या बात है, यह VBS पर ही संभव है। शुक्रिया। अब सुनिए ये गाना।

हमारे श्रोता कहते हैं कि पूजा जी, हमारे भोपाल में तो केवल बादल छाए हुए हैं, पानी तो सावन के महीने में भी तरसा रहा है, अब तो केवल विविध भारती का ही सहारा है। एक श्रोता कहते हैं कि वह क्या बात है, लता दीदी की सुरीली आवाज में

मेरी पसंद का एक सदाबहार बेमिसाल गीत यहाँ बज गया है। उस समय हमारी खुशी का ठिकाना नहीं रहता जब कार्यक्रम में अधिकतर गीत हमारी पसंद के आ जाते हैं। जी धन्यवाद। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन आते ही मन मयूर नाचने लगता है, फूलों पर पानी की बूंदें ऐसी लगती हैं जैसे शबनम की बूंदें गिर रही हैं। ऐसे माहौल में काम करने में भी दिल नहीं लगता, दिल करता है बस ऐसे मौसम को देखते ही रहें। एक और श्रोता कहती हैं कि मौसम की पहली बारिश अपने साथ पुरानी स्मृतियों की एक पूरी किताब खोल देती है। वह चेहरा, वह बातें और उनके साथ बिताए हुए पल जो वक्त की धूल के नीचे छिप गए थे, अचानक धुले धुले से साफ नजर आने लगते हैं। बूंदों की छुअन उस स्पर्श की याद दिलाती है जो कभी रूह को छू गया था। यह याद कितनी गहरी होती है कि इंसान चाहकर भी इससे मुंह नहीं मोड़ पाता। यह महज एक इत्तेफाक नहीं है। सदियों से सावन को प्रेम, विरह और मिलन का महीना माना गया है। हम चाहे अपनी मसरूफियतों में कितने भी आगे निकल चुके हों, दिल के किसी कोने में आज भी वह मोहब्बत और उसकी कसक उतनी ही महफूज है। श्रोता कहती हैं कि सावन की ठंडी बौछारें जब जिस्म को छूती है तो रूह में सुलगती हुई किसी की यादें ताजा हो जाती हैं। बरसात का यह हसीन मौसम जहां एक तरफ प्यार की बेताबी बढ़ाता है, वहीं दूसरी तरफ महबूब की दूरी सीने में एक मीठा मगर गहरा दर्द जगा देती है। एक और श्रोता कहते हैं कि बहुत सुंदर गीत स्वामी फिल्म से, क्या बात है, आपको अच्छा लगा, ये बहुत ही बढ़िया है। एक और श्रोता कहते हैं कि सावन के महीने में ऐसा लगता है जैसे कहीं मोर नाच रहे हो, पंछी चहचहा रहे हो। ऐसे मौसम में दिल करता है कि कागज और कलम उठाएं और कोई कविता लिखें। ठंडी ठंडी हवाओं में कलम रुकती ही नहीं है। क्या बात। एक और श्रोता कहते हैं कि 50 बरस पहले की बात होगी, गांव में झूले पर झूलते सब मस्ती में कजरी गा रहे थे कि झूला टूटा और दूसरी ओर बैठे दो लोग कीचड़ में गिरे जो पहचान भी नहीं आ रहे थे, और इस ओर के तीन लोग नीचे इधर गिरे और चोटिल हो गए। सावन का मजा किरकिरा हो गया। लीजिए अब आपको सुनवा देते हैं अगला गीत। समाधि फिल्म से आशा भोसले की आवाज में मजदूर सुल्तानपुरी के बोल आर डी बर्मन का संगीत।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि फिल्म अनजाना का यह रिमझिम के गीत सावन गीत में सावन की रिमझिम और दिल की तड़प एक साथ बोलती है। राजेंद्र कुमार की सादगी और बबीता की मासूम अदा इसे और भी खूबसूरत बना देती है। जी हाँ, प्यार जब बरसात में भीगता है तो हर बूंद एक गीत बन जाती है। वही बूंद रिमझिम के गीत सावन गायिका जादू बिखेर देती है। बिल्कुल सही। एक और श्रोता कहते हैं कि इस बरसात के मौसम में तो चाय और पकोड़े का स्वाद बढ़ जाता है और आपके प्रोग्राम सुरीला सफर का स्वाद भी और बढ़ जाता है। दिल करता है कि गीत आते ही रहे और सावन की झड़ी लगी हुई रहे। एक और श्रोता कहते हैं कि पुरानी फिल्मों में सावन पर बने गाने बहुत ही सुमधुर होते थे। बिल्कुल सही आप फरमा रहे हैं। सावन के गीतों में सबसे पसंदीदा गाना उनका आया आया सावन झूम के। एक श्रोता कहती हैं कि मुझे आज भी याद है कि मैं और मेरा भाई स्कूल से लौट रहे थे और बहुत जोर की बरसात आ गई। वह पूरी सड़कों पे पानी पानी भर गया और हमें घर आने में बड़ी दिक्कत हुई। हाँ, बरसात के मौसम में ये दिक्कतें तो हमें देखना ही होती। एक श्रोता कहते हैं कि हमारे नागपुर में पिछले हफ्ते बहुत बारिश हुई लेकिन अब रुक गई है तो फिर से गर्मी बढ़ गई है। एक श्रोता कहते हैं कभी कभी मैं सोचता हूं अगर मैं कोमा में चला जाऊं और कुछ भी सुनाई ना पड़े तो मुझे लगता है यही वो गाना है माँ सरस्वती का होगा जो मुझे होश मिला सकता है। अरे अरे, ऐसे तो नहीं कहिए। एक श्रोता कहते हैं कि फिल्म जुर्माना का यह गीत सावन के झूले पड़े तुम चले आओ आनंद बख्शी द्वारा रचित, और जी हाँ, ये तो हमने आपको बता दिया है, एक अमर गीत है जो राग पहाड़ी पर आधारित है और यह गीत सावन के मौसम में प्रेयसी के अकेलेपन और अपने प्रेमी के प्रति अघात प्रेम व पुकार को बेहद खूबसूरती से बयां करता है। क्या बात है, वाह क्या बात है। लता दीदी की सुरीली आवाज में मेरी पसंद का सदाबहार बेहतरीन गीत शानदार है। बहुत धन्यवाद इस गीत को सुनवाने के लिए। आपका भी बहुत धन्यवाद संदेश के लिए। तुम चले आओ, तुम जो चले गए हो तो होगी बड़ी खराबी। यादों की महफिल कार्यक्रम में इस मजेदार गीत के लिए आप सभी का धन्यवाद। विविध भारती को ये धन्यवाद दे रहे हैं। एक श्रोता कहते हैं ये मौसम आया है इतने सालों में, आजा कि खो जाएं ख्वाबों ख्यालों में। फिल्म का जी ओम प्रकाश जी के सुपरहिट गाने आज उन्होंने सुने यादों की महफिल में और उन्हें बड़ा आनंद आया। एक और श्रोता कहते हैं कि पिया का नाम आते ही सांसों में एक सरगम सी बजने लगती है। बेचैनी और सुकून का मिला जुला रूप इस पल को जादुई बनाता है। पल के बिछाए रास्ते को देखना और हर आहट पर यह सोचना कि प्रिय आ गया है इस रुत की सबसे हसीन सच्चाई है। जब सावन की यह रुत आती है तो प्रकृति भी श्रृंगार करती है। ठंडी हवाएं, खिले हुए फूल और फिजा का नशा प्रेमियों के दिल की धड़कन बढ़ा देता है। लंबे इंतजार के बाद प्रेमी से मिलने की घड़ी जब पास आती है तो मन का कोना कोना खुशी से झूम उठता है। क्या बात है, इसी बात पे आपको सुनवा रहे हैं अगला गीत। आरोप फिल्म से लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाजों में माया गोविंद का लिखा गीत है। भूपेन हजारिका का संगीत पर किया।

हमारे एक श्रोता कहते हैं कि आज अपने सुरीली धड़कन के सुरीला सफर कार्यक्रम में प्रस्तुत गद्य पद्यमयी इबारत की जो बात समझी है इन्होंने कि चल रहे ऋतुचक्र के अनुरूप सावन की ही बातें हैं और इस दृष्टिकोण से आज की इबारत सराहनीय है, ऐसा वो कह रहे हैं। साथ ही हमारे एक और श्रोता कह रहे हैं कि बहुत दिनों के एक नई उम्मीद है सावन के, दिल की बात घर से दूर, प्यार की मंजिल ये मोहब्बत की आवाज, हर गीत मोती की माला, सभी सॉन्ग कुछ यादें ताजा हो गई है उनकी, ऐसा वो बता रहे हैं।

हमारी श्रोता कह रही है कि आज की सुंदर सी इबारत, सावन की रूमानी फुहारों, झूलों की मस्ती, किसी अपने की याद, आंखों में बसे सपनों और प्रेम के अटूट विश्वास का सुंदर चित्र प्रस्तुत करती है। इसमें प्रकृति और प्रेम का ऐसा संगम है जो हर दिल को भीगा भीगा सा एहसास देते हैं, और उन्होंने ये गीत लिखा है। अब आपको सुनवा देते हैं ये गीत।

श्रोताओं, समय की कमी रहते हुए कार्यक्रम अब समाप्त होने की ओर है, तो ये गीत हम आपको पूरा नहीं सुनवा पा रहे हैं, लेकिन इन्हीं गीतों के साथ आज का सुरीला सफर कार्यक्रम अब यहीं संपन्न करने की दीजिए आज्ञा पूजा नारानिया को। लेती हूँ आपसे विदा। जी नमस्कार।

संस्कृत भारती राष्ट्रीय सेवा वंदे मातरम इस रचना की 150वीं वर्षगांठ के स्मृति उत्सव के अंतर्गत प्रस्तुत है लघु रूपक श्रृंखला वंदे मातरम एक जय घोष। मूल मराठी संहिता मिलिंद सबनीस, हिंदी अनुवाद जयंत पात्रीकर, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। आज सुनिए श्रृंखला की 40वीं कड़ी।

0: बंगाल के विभाजन का विरोध करने हेतु पूरे देश में सभाएं होने लगी। इस आंदोलन की अधिकतर सभाओं का आरंभ या समापन वंदे मातरम से होने लगा। पढ़े लिखे लोग जब भी आपस में मिलते तो नमस्कार की जगह वंदे मातरम कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते। वंदे मातरम इस गीत की लोकप्रियता बढ़ने के साथ साथ उसका दुष्प्रचार भी हुआ। वंदे मातरम की तुलना अन्य भाषाओं की कविता से करके उसमें कमियां दिखाने के प्रयास तत्कालीन कुछ लेखकों और संपादकों ने किए।
1: ১৯০৭ में लंदन के टाइम्स समाचार पत्र में हैदराबाद के दक्खन पोस्ट के संपादक सिद्ध मोहन मित्र ने वंदे मातरम के बारे में ऐसा ही भ्रमित करने वाला लेख लिखा था। फ्रांस के राष्ट्रीय गीत ला मार्सलेज का

0: वंदे मातरम बंगाली संस्करण है और इसमें कुछ उत्तेजक शब्द जोड़कर लोगों को प्रेरित करने का कवि का प्रयास है, ऐसा उस लेख में लिखा गया था। इस लेख का भारत में ही नहीं बल्कि पाश्चात्य समीक्षकों ने भी खंडन किया। पायोनियर के अंक में लिखा था, कविता की दृष्टि से या रचना की दृष्टि से वंदे मातरम गीत अधिक अच्छा है। ला मार्सलेज में कवि का हृदय दिखाई नहीं देता, परंतु वंदे मातरम में कवि ने अपनी आत्मा समर्पित की है। फ्रांस और हिंदुस्तान के इन राष्ट्रीय गीतों में बहुत बड़ा अंतर है। वंदे मातरम एक प्रार्थना है। इसमें स्वदेश के आधार पर आद्य शक्ति को मां कहकर संबोधित किया गया है। मातृभूमि को केवल मां कहकर कवि रुका नहीं है, बल्कि मां के समान ही प्रेम और श्रद्धा अर्पित करनी चाहिए, ऐसा उन्होंने सुझाया है। जो गीत देशवासियों को अपनी जन्मभूमि से मां के समान प्रेम करना सिखाता है, उस गीत की तुलना ला मार्सलेज गीत से कैसे हो सकती है।
1: वंदे मातरम शब्द अब केवल भारत में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी पहुंच गई। वंदे मातरम शब्द का उच्चारण करते हुए फांसी पर चढ़ने वाले पहले क्रांतिकारी खुदीराम बोस के बाद अनेक क्रांतिकारी वंदे मातरम कहते हुए शहादत स्वीकार करने लगे। लंदन में ही वीर सावरकर, सेनापति बापट, निरंजन पाल, मदनलाल धींगरा जैसे युवा क्रांतिकारियों के गुरुतुल्य श्यामजी कृष्ण वर्मा, सरदार सिंह राणा और मादाम कामा के साथ थे। अंग्रेजों की राजधानी लंदन में कर्जन वाइली नामक अंग्रेज अधिकारी पर गोलियां चलाने वाले मदनलाल धींगरा को फांसी की सजा सुनाई गई। 17 अगस्त 1909 को मदनलाल धींगरा को पेंटनविले जेल में फांसी दी गई, पर उससे पहले उनका लिखा हुआ पत्र अंग्रेजों ने छुपा दिया था। सावरकर और ज्ञानचंद वर्मा ने भाग दौड़ करके फांसी से एक दिन पहले डेली न्यूज समाचार पत्र में मदनलाल धींगरा का चैलेंज नामक पत्र छपवाया और लंदन में सामान्य जनता से लेकर पुलिस तक सभी को धक्का लगा। इस पत्र की भाषा अत्यंत ओजस्वी तो थी ही, पर इस पत्र का अंत वंदे मातरम शब्दों से किया गया था। शब्दों के कारण केवल दो दिनों में इंग्लैंड से लेकर अमेरिका तक कई बड़े समाचार पत्रों ने इस पत्र को प्रसिद्धि दी, जिसके कारण भारतीय क्रांतिकारियों का आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, अंग्रेजों का दमन और वंदे मातरम शब्द दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गए। मदनलाल धींगरा लिखते हैं,
0: आत्म बलिदान कैसे करना चाहिए, यही एकमात्र शिक्षा इस समय हिंदुस्तान में देने योग्य है। यह शिक्षा देने का एक ही मार्ग है, स्वयं का बलिदान करना। इस भावना से प्रेरित होकर मैं प्राणार्पण कर रहा हूं और मुझे अपने बलिदान पर गर्व है। इस भारत माता की संतान के रूप में मेरा पुनर्जन्म हो और इसी पवित्र कार्य में मेरा शरीर, मेरा जीवन मातृभूमि के लिए न्योछावर हो जाए, यही ईश्वर के चरणों में प्रार्थना है। भारतीय स्वाधीनता का पक्ष विजयी हो, मानव जाति के कल्याण और ईश्वर के वैभव का समर्थन करने वाला स्वतंत्र भारतवर्ष संसार में आत्म तेज से चमकने लगे, तब तक मेरे जन्म मृत्यु का चक्र ऐसे ही चलता रहे, ऐसी मेरी परमेश्वर से प्रार्थना है। वंदे मातरम।
1: चौदह के आसपास प्रथम विश्व युद्ध की हवाएं चलने लगी। उन दिनों कोमागाता मारू जहाज का किस्सा विशेष रूप से चर्चित रहा। इस जहाज के ध्वज पर वंदे मातरम, सत श्री अकाल और अल्लाहु अकबर शब्द अंकित थे। बाबा गुरुदत्त सिंह के नेतृत्व में 360 भारतीय यात्रियों को लेकर कोमागाता मारू नामक जापानी जहाज 4 अप्रैल 1914 को हांगकांग से रवाना हुआ। 23 मई को ये जहाज जापान होते हुए कनाडा पहुंचा। ब्रिटिश सरकार के इशारों पर नाचने वाली कनाडा सरकार ने इस जहाज को बंदरगाह पर लगाने की अनुमति नहीं दी। 15 दिनों तक समुद्र में

0: खड़े इस जहाज पर अन्न जल समाप्त हो गया। युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। अंततः सरकार को झुकना पड़ा। आगे वहां से निकला जहाज 27 सितंबर 1914 को कलकत्ता के बजबज बंदरगाह पर पहुंचा और वहां हुई मुठभेड़ में 18 यात्री शहीद हो गए। इस पूरे प्रकरण के मुख्य नेता बाबा गुरुदत्त सिंह को वंदे मातरम शब्द अत्यंत प्रिय थे, इसीलिए इस जहाज के ध्वज पर भी वंदे मातरम शब्द थे।
1: विदेशों में बसे भारतीयों में वंदे मातरम शब्द के प्रति अत्यंत आदर भाव उत्पन्न हो गया था। वंदे मातरम के प्रति उनका प्रेम कई प्रसंगों से व्यक्त होता था। इसी दौरान वीरेंद्रनाथ चट्टोपाध्याय ने आयरलैंड में वंदे मातरम मंडल नामक संस्था की स्थापना की थी। अफ्रीका में 22 अक्टूबर 1912 को गोपाल कृष्ण गोखले केपटाउन और फिर जोहान्सबर्ग गए थे। हर जगह उनका वंदे मातरम के नारों से स्वागत हुआ।
0: दिसंबर 1912 को दिल्ली में लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया। उस समय इस षड्यंत्र के सूत्रधार लाला हरदयाल बरकले में थे। ये समाचार सुनने पर लाला हरदयाल सहित भारतीय छात्रों ने एक सभा की जिसमें वंदे मातरम गीत गाया गया। एक साल बाद इस घटना की वर्षगांठ पर 23 दिसंबर 1913 को लाला हरदयाल ने भारतीयों के लिए एक पर्चा बांटा जिसका नाम था शाबाश। इस पर्चे में लिखा था, गुलामों स्वतंत्रता कैसे प्राप्त करोगे, हम कहते हैं बम की सहायता से। बम विद्रोह का संदेश वाहक है, शस्त्र की पूजा करो, शस्त्रों का अभिवादन करो। उस पर्चे के पहले भाग में बम बनाने की प्रक्रिया, दूसरे में उसकी उपयोगिता और तीसरे में बम की प्रार्थना दी गई थी। पत्र का अंत वंदे मातरम शब्दों से किया गया था।
1: केवल कनाडा, फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका में ही नहीं बल्कि जहां भारतीय नागरिक मुस्लिम देशों में थे वहां भी वंदे मातरम पहुंच गया। विश्व यात्री रामनाथ विश्वास ने उस समय घटी घटनाओं को लिखा है। तुर्कस्तान में अदम नामक स्थान की मस्जिद पर तुर्की भाषा में वंदे मातरम शब्द लिखे थे, साथ ही हिंदुस्तान का झंडा भी था। शुक्रवार को सफाई के बाद नमाज के समय वंदे मातरम का उच्चारण होता था। वियना में अमेरिकन एसोसिएशन में रामनाथ के भाषण के बाद हिंदी लोगों ने वंदे मातरम का जय जयकार किया। बगदाद, तेहरान, इराक में हिंदी लोगों का वंदे मातरम के प्रति प्रेम उन्होंने अनुभव किया। भारत के बाहर वंदे मातरम पहुंच तो गया ही था, परंतु भारत में बंगाल विभाजन को लेकर जनमानस में भड़की आग अभी भी जल ही रही थी। आ सेतु हिमाचल गूंजता स्वर, सत्य पावन और परम है अडिग हर भारतीय, मन में नहीं कोई भरम, वेदों से भी वंदनीय है, जय घोष वंदे मातरम, वंदन है वंदे मातरम, जय घोष वंदे मातरम।

0: वंदे मातरम एक जय घोष। आप सुन रहे थे इस लघु रूपक श्रृंखला की 40वीं कड़ी, मूल मराठी संहिता मिलिन सबनीस, अनुवाद संकलन और शीर्षक गीत रचना जयंत पात्रीकर, शीर्षक गीत के संगीतकार अमित रॉय, वाचक स्वर जयंत पात्रीकर और मंदाकिनी जोशी, तकनीकी सहयोग किरण बंग, प्रस्तुति सहयोग आकाशवाणी पुणे, प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। ये कार्यक्रम विविध भारती से प्रसारित किया गया।
1: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम चलते।

0: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश।
1: वंदे
0: सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
2: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है, रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
0: सुनना न भूलिए विविधा रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
3: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं।

0: विविधा रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
1: हिंदी सिनेमा की कुछ कल्ट फिल्में उनके नाम पर हैं, स्पर्श, कथा, दिशा और चश्मे बदूर।
2: उन्होंने कहा कि देखो अब सिर्फ हम नौजवान तीनों दिखा रहे हैं, सिर्फ कॉलेज के युवक नहीं, उनके माँ बाप भी आए हैं, उनके चाचा चाची हैं, एक दादी माँ डाली, बाप डाला, एक भाई डाला वगैरह वगैरह, एक पान वाला डाला। सईद को पकड़ा लिया और उसने कहा फिर मुझे वी हैव टू गो टू जामा मस्जिद, पुरानी दिल्ली जाना पड़ेगा। मैंने कहा पुरानी दिल्ली क्या करोगे जाके, पान वाले का अगर मुझे करना है रोल तो मुझे देखना नहीं चाहिए पान वाले वगैरह। तो मैंने कहा ये नसीर के बाद ये एक
3: और आ गया।
4: कहा जल्दी है बुलबुल, कोई और कर्जेदार लग गया तेरे पीछे क्या?
5: अरे ललन मियां आप काट देना रास्ता, अब मेरा काम नहीं होगा।
1: दास्तान सई परांजपे की, उजाली उनकी यादों की, 19 जुलाई से 9 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
6: सुनिए
7: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन।

0: 2:15 का समय होने जा रहा है। अब से कुछ ही देर में आप सुनेंगे समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार होने वाली बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तरी हिस्सों में मूसलाधार बारिश। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का पहला खिताब जीता और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार विस्तार से। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। एक रिपोर्ट।
2: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा पक्षों की दलीलें पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान है। यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो आपूर्तिकर्ता को तय की गई राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद दोबारा गलती करने पर 1,000 रूपए से लेकर 50,000 रूपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: इससे पहले पहले सदन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को

0: सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर वर्ष लगभग 58 करोड़ पैकेट भोजन परोसता है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या नगण्य है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत 5 करोड़ रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया, 54 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, 6 अनुबंध समाप्त किए गए और नियमों का उल्लंघन करने वाले लाइसेंस धारकों को प्रतिबंधित भी किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर हुए राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया NCPI और शिवसेना के सांसद भी शामिल थे। बैठक के बाद संसद परिसर में पत्रकारों से बातचीत में शिवसेना सांसद ज्योति सावित्री नागनाथ वाघमारे ने कहा कि प्रधानमंत्री ने संसद की कार्यवाही में बार बार हो रहे व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री का मानना है कि लगातार हंगामे के कारण नवनिर्वाचित और प्रतिभाशाली सांसदों को सदन में अपने विचार रखने का अवसर नहीं मिल पाता। NCPI सांसद शताब्दी रॉय ने कहा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
1: वेलकम तो के साथ जो है और उसके बाद उन्होंने बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ाना है, राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
2: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहले की हैं।
2: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
2: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनकरों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
0: इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में

0: हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुंचे।
1: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया, बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूं।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए, जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परम्परा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परम्पराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परंपरा में से एक बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @EIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलतफहमी और गलत आकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर स्तर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
3: इसमें कितने बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर ढाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा, 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।
0: सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा की आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज किया। दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
4: जलका नदी मथानी में खतरे के निशान

0: 6.5 मीटर को पार कर जिससे बस्ता और आसपास के इलाकों में निचले स्तर की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अधिकारी संवेदनशील तटबंध पर नजर रखे रहें और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। इस बीच IMD ने अगले 5 दिनों तक पूरे उड़ीसा में व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग और कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए शुरुआती सहायता के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तरी हिस्सों में मूसलाधार बारिश। और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

हम विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन से बोल रहे हैं। लीजिए अब प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। इस कार्यक्रम का पहला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं आरजू फिल्म से। लता मंगेशकर की आवाज है। इस गीत की रचना की है हसरत जयपुरी ने और तर्ज बनाई है शंकर जयकिशन ने।

एक आवाज जिसमें है जोश, जुनून, नशा। एक आवाज जो आपको अपने साथ

0: आ रहे हैं महबूबा महबूबा महबूबा विविध भारती पर सुन जरा 12 अगस्त दिन में और रात में 11 बजे
1: शोक अदाओं के साथ थिरकते कदम
2: चलते रे इश्क भी पड़ जाते
1: पूरे दबंग अंदाज में और दोस्तों की महफिल सजी हो तो
3: ओ केटिको बर्फ बदन है।
1: लेकिन क्या आपने कभी सोचा है इन यादगार गीतों की धड़कनों को नृत्य की परिभाषा किसने दी?
4: मेरा काम यह है कि जो मेरे मास्टर कोरियोग्राफी मेरे ऊपर कर रहे हैं उसे मैंने 200% निखार के उनको दिखाना है। तो मेरा जब एक्टर मुझसे सीखेगा
1: जी,
4: वो एक्टर को पता होना चाहिए कि मैंने इतना करना है।
1: तो मिलेंगे बॉलीवुड की जानी मानी कोरियोग्राफर शबीना खान से, जानेंगे उनके सफर की अनसुनी कहानियाँ, पर्दे के पीछे के दिलचस्प किस्से और उन गीतों के बनने की दास्तान जिन पर झूम उठा पूरा हिंदुस्तान।
5: मर निकला ओ गड्डी लेके
1: 8 अगस्त 2026 को शाम 4 बजे बॉम्बे टॉकीज में सुनिए विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन पर।
6: सदाबहार नगमे कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। अगला गीत आपको सुनवा रहे हैं मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर की आवाज में, भीगी रात फिल्म का गीत है। मजरू सुल्तानपुरी के बोल है, रोशन का संगीत।

अपना देश इस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं किशोर कुमार और लता मंगेशकर के युगल स्वरों में। आनंद बख्शी की रचना है, आजी बर्मन की बनाई धुन पर।

0: आवाज जो आप सभी के जहन में ताजा है और जिससे जुड़ी हैं आपकी ढेर सारी रेडियो की यादें।
1: मैंने ये सोचा कि भारत में तो बहुत ज्यादा भावुक हैं लोग, करोड़ों की संख्या में सुन रहे हैं रेडियो से कान लगाए, तो मैंने तब अपनी आवाज में कंपन लाते हुए कहा था कि ये मैच अब कमजोर दिल के इंसानों के लिए नहीं रह गया है।
0: जाने माने क्रिकेट कमेंटेटर सुशील दोषी की जिंदगी की कहानी, मैटिनी शो 8 अगस्त दिन में 11 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: आए हाय,
0: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
3: मैं और मेरी तन्हाई,
0: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर। वो कॉमिक क्रिएटर है।
4: अगर अमेरिका भी देखें तो सुपरमैन की पहली किताब आई थी 1938 में, पहली फिल्म मेरे ख्याल से 70 के दशक के अंत में आई है।
0: और विविध भारती पर आ रहे हैं अपनी जिंदगी की कहानी सुनाने।
4: उन्होंने लोला कुट्टी करके एक कैरेक्टर क्रिएट किया तो बहुत गाली दी उन्होंने मुझे। प्रोड्यूसर बनना चाहता है, डायरेक्टर बनना चाहता है, स्पॉट बॉय बनना चाहता है, फिल्म मेकर क्या होता है।
0: कॉमिक क्रिएटर और डायरेक्टर आलोक शर्मा होंगे आज के मेहमान।
4: जितने भी फिल्मी कलाकार थे उनके सबके इंटरव्यूज मैं करता था और उसके बाद उसमें आरजेस के वॉइसेस चिपका दी जाती।
0: 12 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी यशपाल शर्मा और प्रतिभा शर्मा।
1: यशपाल जी की एक बहुत अच्छी नेचर है कि मतलब फॉरगिव कर देते हैं चीजों को।
0: सुनिए उनके जीवन संघर्ष अभिनय और अनकहे किस्सों की दिलचस्प दास्तान।
2: मैं अगले दिन आशुतोष ग्वारीकर से मिलने गया, उन्होंने घूम घूम करके 3.5-4 घंटे सिर्फ स्टोरी सुनाई मुझे। रोल जब मैं सुन रहा था तो मुझे लगा यार ये जो लाखा का रोल है ना ये सबसे बढ़िया रोल, नेगेटिव है, प्यार करता है, जलता है, फिर चेंज हो जाता है, सब सुधर जाता है, फिर मैच जीतवाता है, तो मतलब काफी वेरिएशन थी।
0: सेल्यूलॉइड के सितारे 18 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: कि हम तुम चोरी से बंधे एक डोरी से जयो कहा।
3: अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।

0: औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गाँव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
1: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
0: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
1: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
2: सावन की घटा फिल्म का गीत आशा भोसले की आवाज में, SH बिहारी के बोल OP नैयर का संगीत।

0: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश।
1: वंदे
0: सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
2: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है, रविंद्रनाथ से लेकर आज के A.R. रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
0: सुनना न भूलिए विविधा रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
3: सदाबहार नगमे की ये आखिरी प्रस्तुति है लता मंगेशकर की आवाज में। ये गीत है आया सावन झूम के, इस फिल्म से आनंद बख्शी की रचना है, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। हेलो सहेली कार्यक्रम का कीजिए बस थोड़ा सा इंतजार।

0: सुन रहे हैं विविध भारती।
1: सखियों के दिल की जुबान। हेलो सहेली।

सभी सखियों को मुंशी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। सावन मनभावन मौसम जिसका हम सभी बेसब्री से इंतजार करते हैं। सावन झूम के गाता इटलाता सबको अपने रंगों में रंग देता है, अपने साथ लाता है उमंग उत्साह से भरे पर्व तीज त्योहार। हरियाली तीज, कजरी तीज और प्रेम का बंधन रक्षाबंधन जिसमें बसी होती है भाई बहन के प्यार की सुगंध। सावन में झूला झूलना, कजरी गीतों के मीठी तान। सावन में लगते हैं मेले जहां जाते नहीं हम अकेले। संग होती हैं सखियां सहेलियां, यादों वादों और मायके जाने का मौसम जहां से जुड़ी बचपन की हर याद ताजा हो जाती है। बहनों के सजने सवरने श्रृंगार करने का मौसम। आप इस मौसम में क्या खास तैयारी करती हैं और क्या करती हैं मेलों से खरीदारी? हेलो सहेली में अपनी यादों को साझा कीजिए हमारे साथ। फोन की घंटी बज उठी और देखते हैं कौन सी सखी होंगी जो करेंगी हमसे आज अपने

0: हेलो सहेली,
1: हेलो सहेली, नमस्ते।
0: नमस्ते। आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं बिया माँ मुन्ना बात कर रही हूँ मैडम।
0: जी
1: पहलगाम जिला गोकाक तालुक
0: जी
1: गांव कुंदरगी से, और
0: जी
1: मैं कर्नाटका से बात कर रही हूँ मैडम।
0: अरे वाह, आप कर्नाटका से बात कर रही हैं। वहाँ की तो बहुत खास बात है, वहाँ पर बहुत घूमने वाली जगह है, बहुत अच्छी सी जगह है ना वहाँ पर।
1: बहुत अच्छी है मैडम, हरियाली वगैरह बहुत है यहाँ। आप आएंगी तो बहुत मजा आएगा।
0: आपको क्या क्या अच्छा लगता है वहां पर कर्नाटक की खास चीजों को घूमना देखना?
1: यहाँ गार्डन वगैरह है ना मैडम, वो हिड़कल बोल के गांव है,
0: जी
1: और बेलगाम भी हमारा बहुत अच्छा है। वहाँ हम घूमने जाते हैं साल में एक मरतबा या दो मरतबा।
0: जी दिया जी, देखिए ना, सावन का जो मौसम चल रहा है, सावन आ गया है, झूम कर इठलाता बलखाता। तो सावन की कुछ यादें आपके पास हैं तो वो हमें बताइए, सुनकर बहुत अच्छा लगेगा।
1: सावन की यादें मैडम बहुत अच्छा है, बरसात है, रिमझिम बारिश है,
0: और सावन में झूला झूलना, ये कैसा लगता है आपको?
1: बहुत मजा आता है मैडम। हमारे इधर मेला लगता था ना मैडम साल में एक बार,
0: हाँ जी
1: तो हम अपनी सखियों के साथ झूला झूलते थे और
0: अच्छा। और
1: बहुत मजा आता था।
0: जी अच्छा, मेले में आप जब जाती हैं ना, सावन के जो मेले होते हैं, वहां पर क्या क्या चीजें खरीदती हैं?
1: वहां मैडम मैं और मेरी कानों की बाली और मेरा मेकअप का सामान।
0: अच्छा, दिया जी आप बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: मैं रंग फिल्म से सुनना पसंद करूंगी मैडम, तुम्हें देखे मेरी आंखें।
0: चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, नमस्कार मैडम जी।
0: नमस्कार, बताइए आपका क्या नाम है,
1: मैं वी पूनम नायडू बोल रही हूँ।
0: कहाँ से?

0: अनोरा जगदलपुर बस्तर छत्तीसगढ़ से।
1: बहुत प्यारा सा नाम है पूनम जी आपका, बिल्कुल आपकी आवाज भी इतनी मीठी है कि लग रहा है कि पूरी चांदनी बिखर गई है हमारे प्रोग्राम में जी।
0: थैंक यू मैडम जी।
1: बहुत अच्छा, बहुत प्यारा सा बोला आपने। तो देखिए, सावन का जो ये प्यारा सा मौसम चल रहा है, तो सावन की कुछ यादें आपके पास हैं तो वो हमें बताइए।
0: जैसे सावन महीना हो गया आ गया, तो मैडम जी आपको त्योहार व्रत जो है वो सब तैयारियां कर रहे हैं हम लोग, अभी तो स्टार्ट नहीं हुए हैं, लेकिन जैसे ही सावन आ जाता है तो एक मन में उमंग और तरंग आ जाता है मैडम जी, एक खुशी सी छा जाती है सभी के दिलो दिमाग में और बहुत ही अच्छा लगता है।
1: तो बताइए आज आप कौन सा गीत सुनना चाहेंगी?
0: फिल्म का नाम है मंजिल,
1: जी
0: उसमें लता मंगेशकर जी का गाया हुआ एक बहुत ही प्यारा गीत है मेरे, यदि आप इजाजत दे तो थोड़ा मैं गुनगुना सकती हूँ।
1: बिल्कुल, आप गा के सुनाइए।

0: लगे कैसी ये कमी, ला ला ला ला ला ला ला।
1: बहुत प्यारा सा आपने गीत गाया, तो चलिए आपको सुनवाते हैं पूनम जी आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: मैं अंबिका विजय मारवाड़ी बोल रही हूँ। मैं शिरपुर जैन से बोल रही हूँ।
0: अंबिका जी, आपका हेलो सहेली कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए कि आप रेडियो सुनती हैं?
1: हाँ,
0: अंबिका जी, आपके और क्या क्या शौक हैं?
1: मैं रसोड़ा चलाती दीदी,
0: ये क्या होता है?
1: रसोड़ा चलाती, उसे खाना पकाना, रोटी पकाती।

0: अच्छा
1: दाल सब्जी चावल खाने को 10-20 आदमी आते खाने को,
0: जी जी जी
1: तो वो चला थी।
0: अच्छा, तो आपके परिवार में और कौन कौन है?
1: मेरा बेटा, मैं, तीन जन है, बेटी की शादी हो गई।
0: अच्छा, ये बताइए कि आप कभी मेले घूमने गई हैं?
1: मेले घूमने में जाती ना, वो नांदेड़ जाती।
0: अंबिका जी, ये बताइए आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: चंदा मामा से प्यारा वो करते हुए पिक्चर में का।
0: आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली में अंतराल के बाद आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, हम इंदौर से बोल रहे हैं, शीतल भाटी।
0: शीतल जी, आपको मेरा प्यार भरा नमस्कार। शीतल जी, क्या आपने कभी सावन के मेलों को जा करके देखा है?
1: जी जी बिल्कुल देखा है, पर अभी नहीं। जिस हम छोटे छोटे थे, हमारे मम्मी वगैरह हमको मेले में ले जाया करती थी। सावन के यहाँ पर झूले डलते थे, सावन के जो आज भी डलते हैं, पर अभी काफी टाइम से हमने देखा नहीं है। और जो पहले डलते थे उस प्रकार के अब नहीं डलते।
0: तो आप झूलती थी झूला?
1: जी जी मैं बहुत छोटी थी।
0: अच्छा, तो ये बताइए, और आप क्या करती हैं, क्या शौक हैं आपके?
1: जी मैं तो अभी फादर का बिजनेस है, वो संभालते हैं।
0: जी, बहुत अच्छा लगा कि आप अपने पिताजी के साथ उनके काम में हाथ बटा रहे हैं, और बचपन की यादें भी आपने थोड़ी सी बताई हैं। तो
1: जी
0: बताइए, आज आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: आज हमारी मम्मी का फेवरेट सॉन्ग सुनना चाहेंगे हम, आया सावन झूम के।
0: चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: हेलो, मैं नांदेड़ से बात कर रही हूँ, प्रगति मुळे।
0: प्रगति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। बताइए, आप क्या करती हैं?
1: मैं गृहिणी हूँ।
0: गृहिणी हैं। तो गृहिणी हैं तो इसमें बहुत सारे काम भी होते हैं, जिम्मेदारियां भी बहुत होती हैं गृहिणी होने में। तो आपको सबसे अच्छा क्या लगता है कि सबसे पहले हम कौन सा घर में काम कर लें?
1: काम हम तो सभी रोज करते हैं, खाना बनाना, कपड़े धोना, साफ सफाई, झाड़ू पोछा, वो तो करते ही है।
0: जी। अच्छा, ये बताइए प्रगति जी, जैसे सावन का जो महीना चल रहा है, तो आपको किस रंग की साड़ियां पहनना पसंद है, खासकर सावन के मौसम में?
1: सावन के मौसम में हरी।
0: हरी। वाह, क्या बात है। यानी कि हरी साड़ी, हरी हरी मेहंदी हाथों में लगाती होंगी, हरी चूड़ियां, है ना, बालों में गजरा।
1: हाँ,
0: किस तरह के फूलों का गजरा आपको अच्छा लगता है बालों में लगाना?
1: मोगरा।
0: क्या बात है, मोगरे की खुशबू तो बहुत अच्छी होती है ना।
1: हाँ,
0: और आपको कौन कौन से फूल अच्छे लगते हैं?
1: गुलाब, मोगरा, जाई जुई।
0: क्या बात है, बड़ा अच्छा लग रहा है। मुझे तो लग रहा है सखी सहेली जो है आज मोगरे के फूलों से महक गया है ना प्रगति जी?
1: हाँ,
0: अच्छा बताइए कि आज आप कौन सा गाना सुनना चाहेंगी?
1: हम आपके हैं कौन में से हम आपके हैं कौन, ये वाला गाना सुनना चाहूंगी।
0: क्या बात है, तो चलिए प्रगति जी, हम आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत, हम आपके हैं कौन फिल्म से।
2: हाँ।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं? अपना नाम बताइए।
1: शांति भाई बोल रही हूँ भोपाल से। सहेली
0: शांति जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली कार्यक्रम में। ये बताइए कि आप विविध भारती सुनती हैं, उसके कौन कौन से प्रोग्राम सुनती हैं?
1: सब प्रॉब्लम अच्छा लगता है, जो भी आता है ना वो सब अच्छा लगता है।
0: अच्छा शांति जी, हम बात करने वाले हैं सावन के बारे में। ये बताइए
1: हाँ
0: कि बचपन में आपने कभी झूला झूला?
1: हाँ झूला ना,
0: जी
1: बहुत झूला झूला बचपन में, तो इतना झूला झूला के वो ही चेंज बता ही नहीं सकते
0: आपने अपनी सखियों के साथ जब झूला झूला, तो उसकी कुछ यादें हों तो बताइए आप मुझे।
1: बहुत अच्छा लगता था, सखियों के साथ रहती थी, हर चीज की नॉलेज होती थी और बहुत साथ में रहती थी, ऐसा लगता था कि जीवन भर साथ में रहे तो अच्छा लगता है।
0: बिल्कुल, सखियों का साथ ऐसा होता ही है कि हम साथ में रहें। अच्छा, मेले में बहुत सारी दिखती ना चीजें, कि हरी हरी चूड़ियां, लाल हरी चूड़ियां दिखती
1: हाँ
0: हैं,
1: हाँ
0: है ना?
1: दिखती थी ना, जो पसंद आती थी हरी चूड़ी ज्यादा पहनती थी, वो हरी हरी टाइम रहती है ना,
0: जी।
1: तो हरियाली में वो ही अच्छी लगती थी।
0: अच्छा ये बताइए शांति जी, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: झिल मिल सितारों का आंगन होगा, यही मेरे को गाना सुनना है अब।
0: शांति जी, आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत, झिलमिल सितारों का आंगन होगा।

0: अंतराल के बाद सखियों से बातें करने आ गई है मंत्री वर्मा। कार्यक्रम चल रहा है हेलो सहेली। हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं, अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं सुचिका सुमित तटानी बोल रही हूँ, गाजियाबाद उत्तर प्रदेश से।
0: सुचिका जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हेलो सहेली में। नमस्कार, कैसा लग रहा है? आपने आज फोन लगाया है तो आपको कैसा लग रहा है?
1: बहुत अच्छा लग रहा है और मैं आपका प्रोग्राम सुनती भी रहती हूँ और बहुत प्यारी प्यारी बातें, मीठी बातें, कुछ यादें, कुछ खट्टी कुछ मीठी,
0: जी
1: तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है।
0: आप रेडियो बहुत ध्यान से सुनती हैं लगता है।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बचपन की आदत है ना, हम लोग 1970s वाले हैं ना,
0: क्या बात है, मतलब नाइनटीन सेवेंटीज
1: रेडियो
0: की तो बहुत प्यारी प्यारी सी यादें भी होंगी आपकी।
1: बिल्कुल, रेडियो तो उस टाइम के ऐसा है कि स्कूल सुबह विविध भारती से पूरा सुनना और स्कूल जाना, वापस आना, अलग अलग पिक्चरों का गाना सुनना, रात तक देखना, और वो लाइव क्रिकेट मैच का जो टेलीकास्ट होता था, 26 जनवरी का परेड,
0: जी
1: तो एक बहुत प्यारी, मतलब एक अटैचमेंट तरीके का है रेडियो से।
0: जी तो बहुत अच्छी सी यादें आपने साझा करी। और ये बताइए

0: कि सुचिका जी, हम बात करने वाले हैं आज सावन के बारे में, कि सावन का जो मौसम चल रहा है, तो इसमें आप क्या क्या खास तरह से करती हैं घर में तैयारियां, और जो सावन के जो मेले लगते हैं ना, उनको देखा है आपने कभी जा करके?
1: बिल्कुल बिल्कुल, गुड़िया का मेला तो बचपन में, मतलब ये तो हमारे घर के बाहर ही, हम लखनऊ के बिलोंग करते हैं नरही से,
0: जी
1: तो बहुत बड़ा हमारे घर के बाहर ही गुड़िया का मेला लगता है, और वो अनरसी की गोली तो मतलब बचपन को तरोताजा कर देती है। आज भी बिल्कुल सब कुछ नया नया लगता है, और वो झूले, पेंगे, मिट्टी के खिलौने, सौंधी सौंधी खुशबू, और मेरे बाबा का चीजें लाना,
0: जी
1: क्योंकि हम लोग ज्वाइंट फैमिली में से है तो
0: जी
1: बहुत मजा आता था। इतने भाई बहन, वो बात ही अलग है। छत पे सोना, बारिश में खेलना,
0: क्या बात
1: अलग ही
0: है।
1: मजा है वो।
0: और सावन में जो झूला झूलते हैं उसकी भी बड़ी यादें, जब पैंग दिया जाता है, पैंग दे देकर झूलते हैं, तो आपने कभी इस
1: बिल्कुल
0: तरह के झूलों को झूला है कि पैंग दी हो आपने भर भर के?
1: बिल्कुल बिल्कुल, हमारे घर के बाहर ही एक बहुत बड़ा पार्क होता था, हम लोग जितनी भी सहेलियां होती थी झूला लगाते थे, और बिल्कुल जैसे मूवीज में दिखाते हैं ना, उसको फूलों से सजाकर और एक एक करके पेंग लगाते थे इस तरीके से, और भीड़ बाहर होती थी, मम्मी, मेरी माँ लोग, चाची लोग, उन लोग सब हरी हरी चूड़ियां
0: जी
1: और साड़ी तैयार, और सब सावन का सेज, हरा लाल, मतलब एक
0: क्या
1: अलग ही
0: बात,
1: छवि उभर के आती है।
0: क्या बात है। आपने इतनी अच्छी सी बातें करी, जो सावन के झूले की बात करी आपने कि फूलों से सजा होता था, तो बिल्कुल राधा और कृष्ण का वो झूला याद आ गया, है ना
1: कुछ कुछ वैसे ही हम लोग करते थे एक्चुअली, सारी
0: जी?
1: बदमाश लड़की लड़कियां, सब भाई बहन मिलके, मोहल्लों के बच्चे जो खेलते थे, क्योंकि तब
0: जी
1: तो ये गैजेट्स और ये सब तो होता नहीं था, तो वही आनंद, और कि आज शाम को मिलेंगे तो आज, और सावन में जो ब्रेक होता था, हम लोग की छुट्टियां भी होती थी, तो बहुत मजा। और रेनी डे तो शायद आपने भी इंजॉय किया
0: जी
1: होगा,
0: बिल्कुल, हमने भी
1: मतलब
0: इंजॉय किया है रेनी डे का।
1: बिल्कुल, तो बहुत, मतलब आपने ऐसा टॉपिक लिया है कि मैं तो बोलती ही जा सकती हूँ।
0: अच्छा भी लग रहा है कि आप इतनी सारी बातें, इतनी यादें ताजा कर रही हैं। तो जो सावन में बहुत सारे त्योहार होते हैं, हरियाली तीज, कद्री तीज, और बाद में रक्षाबंधन आता है, तो भाई बहन से जुड़ा ये प्यारा सा त्योहार होता है, तो आप क्या तैयारी करती हैं? अभी से तैयारी करेंगी या जब रक्षाबंधन आएगा उसके पहले कुछ दिन पहले तैयारी करेंगी, अपने हाथ से राखी बनाएंगी भाई के लिए या
1: बिल्कुल
0: खरीदेंगी?
1: बिल्कुल, हम लोग जॉइंट फैमिली में रहते थे, और हमारे जॉइंट फैमिली में कजन शब्द बोलना मना है, मतलब हमने कभी यूज नहीं किया, तो हम
0: जी
1: लोग टोटल 13 भाई बहने हैं,
0: क्या बात है।
1: और आप सोच नहीं सकते, और मेरी इकलौती बुआ होती थी, वो दिल्ली से आती थी, पूरा पकवान बनता था मतलब, और हम लोग सब साड़ी पहनते थे, और खाना बनता था, पूरा सजाया जाता था,
0: क्या
1: राखियां
0: बात है
1: हमने रेशम के धागों से, वो गाना नहीं है रेशम
0: जी,
1: के धागों से,
0: हाँ जी,
1: तो उसी में प्यार पिरो के भाइयों के लिए हम सारी बहनें बनाते थे राखियां,
0: जी
1: और हमारे जो सबसे बड़े ताऊ जी थे वो कंपटीशन करते थे कि किसका बेस्ट राखी होगा, तो
0: क्या
1: उसको
0: बात है,
1: प्राइज मिलता था।
0: क्या बात है।
1: हम लोग एक डाइनिंग टेबल के ऊपर मिनी कॉन्सर्ट भी करते थे, आप यकीन नहीं करोगे, डांस होता था, प्रोग्राम होता था, बच्चों, हम लोग सारे जो चिल्लड़ पार्टी होते थे।
0: क्या बात है, यानी कि बचपन की आपने इतनी सारी यादें ताजा कर दी कि मेरी भी यादें ताजा हो गई है। अच्छा सा माहौल बन जाता है जब सब लोग एक साथ होते हैं परिवार में, जब बड़ा
1: बिल्कुल,
0: परिवार होता है तो उसकी रौनक ही अलग होती है
1: बहुत बहुत
0: जी।
1: मजा आता था, क्योंकि हमारे बाबा लोग 7 भाई और एक बहन, तो आप सोच सकती है क्या धमाल होता होगा।
0: क्या बात है, बहुत अच्छा लग रहा है सुनकर, क्योंकि आजकल तो परिवार सिमटते से जा रहे हैं, छोटे से होते
1: हाँ,
0: जा रहे हैं। सुचिका जी ये बताइए कि आपके घर में कौन कौन है?
1: मेरे घर में ससुराल में सास ससुर हैं,
0: जी
1: और देवर देवरानी लोग अभी दिल्ली में, मतलब वो भी गाजियाबाद की तरफ ही रहते हैं, तो बस हम लोग 4-5 जो ना, मेरा बेटा है वो अभी लॉ
0: जी
1: कर चुका है, अभी अभी हाल ही में कृपा है ठाकुर जी की नौकरी पे लगा है, तो
0: क्या बात
1: बस
0: है,
1: छोटा सा प्यारा सा परिवार
0: बहुत अच्छा लगा सुन करके। अच्छा बताइए, आज
1: है।
0: आप कौन सा गाना सुनना पसंद करेंगी?
1: मैं सावन के महीने में सजना को याद ना करूं ऐसा तो हो नहीं सकता,
0: नहीं बिल्कुल,
1: और
0: आप याद
1: सावन है
0: कीजिए
1: तो सजना भी है और उनके लिए निखरना भी है,
0: जी।
1: तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी, आपको अनुरोध करूंगी, सजना है मुझे साजन के लिए, ये वाला गाना आप चला दीजिए।
0: सजना है मुझे सजना के लिए, फिल्म सौदागर का ये गाना,
1: हाँ
0: तो
1: जी,
0: चलिए आपको सुनाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत। आप ऐसे ही अपने सजना के लिए सजती संवरती रहें, यही मेरी शुभकामनाएं हैं।

0: हेलो सहेली, आप कौन बोल रही हैं और कहाँ से बोल रही हैं?
1: हेलो सहेली, मैं अर्चना गुप्ता बिलासपुर छत्तीसगढ़ से बात कर रही हूँ।
0: अर्चना जी, आपने हेलो सहेली कार्यक्रम में फोन लगाया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है आपका फोन लगा?
1: अरे आपको तो मैं जनवरी से ट्राई कर रही हूँ। मैं सोची थी मैं विश करूंगी हैप्पी न्यू ईयर,
0: जी
1: उससे करते करते सावन आ गया, अब तो पलता मिल ही गया।
0: मिल गई ना, तो देखिए सावन चल रहा है ना, तो पहले तो हम लोग एक दूसरे को सावन की ही शुभकामनाएं देते हैं, है ना?
1: आपको भी जी,
0: तो अर्चना जी,
1: आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, सावन की
0: अर्चना
1: जिंदगी हरी भरी रहे आपकी।
0: जी, अर्चना जी, ऐसी ही बहुत प्यारी सी शुभकामनाएं आपने मुझे दी, और हम भी देना चाहेंगे कि आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में हरी भरी खुशियां रंग बिखेरे तरह तरह के, और बहुत सुखमय
1: जी,
0: जीवन हो आपका। बताइए अर्चना जी, अपने बारे में कुछ बताइए।
1: मैं हाउसवाइफ हूँ और घर से मैं थोड़ा सा मिक्सचर, नमकीन और गुजिया इसका काम करती हूँ,
0: अच्छा,
1: जो
0: ये
1: बहुत अच्छा चलता है।
0: बहुत
1: अभी फेस्टिव सीजन है ना, तो अभी मेरे को बिल्कुल टाइम नहीं मिलता है। ये रक्षाबंधन से शुरू होकर दिवाली तक मैं बहुत ज्यादा बिजी रहती हूँ, बाकी समय तो चलता ही है,
0: जी
1: बट अभी त्योहार बहुत ज्यादा रहते हैं ना, तो स्पेशली गुजिया का मेरा बहुत डिमांड रहता है।
0: अच्छा, तो गुजिया आप किस तरह की बनाती हैं, सूजी की
1: मावे
0: या
1: की?
0: मावे की?
1: नहीं, मावे की,
0: उसमें कुछ भी मिलाती
1: मावे
0: नहीं है,
1: की
0: सूजी भी नहीं मिलाती है ना?
1: नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ शक्कर, मावा।

0: ड्राई फ्रूट्स रहता है।
1: क्या बात है। जो आप नमकीन बनाती हैं उसमें कौन सी खास नमकीन आप बनाती हैं जो आपको बहुत अच्छी लगती है और सबसे ज्यादा लोग उसे पसंद करते हैं?
0: चाकोली है, वो बहुत ज्यादा पसंद किया जाता है क्योंकि मेरा थोड़ा डिफरेंट रहता है
1: जी,
0: तो वो बहुत ज्यादा चलता है, पसंद किया जाता है।
1: ये खाना जो बनाने का शौक है, ये आपको बचपन से था या बाद में आपको हुआ?
0: अरे नहीं, मैं तो किस उम्र से खाना बना रही हूँ मेरे को ये भी नहीं मालूम। मेरी मम्मी बचपन से ही काम करवाती थी तो वो आदत पड़ गया था, और खाना खाने का शौक और बनाने का बहुत ज्यादा शौक था तो वो फिर हमारी हॉबी बन गई।
1: क्या बात है। यानी देखिए,
0: बड़े हो गए हैं उसके बाद मैंने ये काम शुरू किया है और भगवान की दया है कि बहुत अच्छा चल रहा है।
1: देखिए, माता पिता का जो भी सिखाया हुआ होता है ना काम, बच्चों को जो बचपन में सिखाते हैं वो अपनी बेटियों को सिखाते हैं कि शादी होगी दूसरे घर जाएंगी तो वहां पर उनको किसी काम में दिक्कत ना हो। तो देखिए, उनका जो सिखाया हुआ था आपको हुनर, वो आज आपके काम आ रहा है, ये बहुत बड़ी बात है।
0: काम आ रहा है ये चीज।
1: तो आपने अपने परिवार में अपने बच्चों को भी इस तरह की शिक्षा दी?
0: नहीं, बच्चे तो भी पढ़ रहे हैं पर हाँ, अभी जैसे गुजिया का टाइम है तो मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करती है क्योंकि
1: जी,
0: उसमें जब तक दो तीन लोग नहीं लगेंगे ना तो नहीं हो पाता। एक एक दिन में 10 किलो 15 किलो बनाना रहता है।
1: बिल्कुल
0: दो
1: सही बात
0: लेडीज
1: है।
0: भी हैं, हाँ दो लेडीज भी हैं तो मेरी बेटी मेरी बहुत हेल्प करती है, मेरे हस्बैंड हेल्प करते हैं।
1: क्या बात है। यानी सावन में आपने गुझियों की याद दिला दी, महक हमारे यहाँ तक आ गई है उड़ करके। अर्चना जी, बड़ा अच्छा लग रहा है। और
0: मेरा तो बहुत अच्छा लग रहा है, आप लोग की आवाज इतनी मीठी
1: जी
0: लगती है ना
1: जी
0: कि मैं क्या बोलूँ, ये
1: जी
0: पूछिए मत।
1: धन्यवाद। अच्छा ये बताइए अर्चना जी, सावन की कौन कौन सी यादें हैं जो आप मुझे बताना चाहेंगी?
0: ऐसे तो बहुत सारी हैं पर हमको अपने शादी के बाद का पहला सावन याद है, जब मैं मायके गई थी, अपने हाथ से भाई को राखी बांधी थी। 30 साल शादी को हो गए, उसके बाद ये चांस दोबारा नहीं मिला तो वो यादगार रहा है मेरे लिए।
1: जी, आप फिर से वापस अपने मायके जाइए और अपनी यादों को फिर से ताजा कीजिए, तो वो बहुत ही अच्छी सी यादें होती हैं, है ना?
0: वो यादें होती हैं पर अभी बच्चे बड़े हो गए हैं, बच्चों को देखना है तो हो नहीं पाता है।
1: जी बिल्कुल, हम समझ सकते हैं ये चीज। तो सावन में जब मेले लगते हैं, वो मेले आपने जाकर देखे हैं?
0: बहुत देखे हैं, बहुत मजा आता है उसके लिए, तो स्पेशली समय निकालती हूँ कि नहीं मेरे को जाना है। उसमें जाने से ऐसा लगता है मेरा बचपना आ गया वापिस।
1: और वहां
0: उस
1: पर
0: समय और कुछ नहीं रहता
1: जी
0: था तो मेला देखना है, कोई भी मेला लगाओ कहीं भी लगाओ तो जाना है, देखने मेला देखने जाना है, प्रदर्शनी देखने जाना है, और जो झूले वगैरह रहते थे झूलने का जो आनंद आता था ना, वो सब चीजें तो अब याद करके ही रह जाते हैं पर लगता है तो मैं तो जरूर जाती हूँ।
1: अच्छा, मेले में जो दुकानें लगती है वहाँ बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, बड़ी बड़ी चीजें मिलती हैं जो घरों में उपयोग की जाती है। बच्चों के खिलौने होते हैं, श्रृंगार का सामान होता है, हार माले चूड़ियां सब होती हैं। तो आप उनमें से क्या क्या चीजें ज्यादा खरीदा करती थी उस समय?
0: मैं किचन का सामान ज्यादा देखती थी, ध्यान उसी पे ज्यादा जाता
1: क्या
0: था।
1: बात है। हम समझ सकते हैं कि आपका शौक बचपन से जो किचन में आपने काम किया है,
0: किचन
1: तो
0: में हाँ
1: जी
0: क्या है क्या नहीं है, अच्छा इस बार ये चीज नया आया है पकड़ कर, वो जो पहले तो बड़े बड़े हम लोग के यहाँ अदरक वगैरह घिसने वाले
1: जी
0: आते थे,
1: जी
0: अब ये छोटे छोटे मिलने लगे तो वो सारी चीजें जैसे मेले में दिखती थी ना तो तुरंत खरीदते थे। और अभी भी किसी भी मेले में जाएंगे तो कुछ मैं नहीं देखूंगी, सबसे पहले गुजिया का सांचा ढूंढती हूँ।
1: क्या बात है। यानी डिजाइनर सांचे आप ढूंढती हैं गुजिया बनाने के लिए, है ना?
0: बिल्कुल बिल्कुल, सबसे ज्यादा ध्यान उसी पे जाता है।
1: बड़ा अच्छा लगा अर्चना जी आपसे बातें करके, खूब सारी यादें ताजा हो गई। तो चलिए बताइए, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
0: बरसात मूवी का, बरसात में हमसे मिले तुम सजन, तुमसे मिले हम बरसात में।
1: बहुत ही खूबसूरत सा गीत आपने चुना है मौसम के अनुरूप, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

0: हेलो सहेली, कौन बोल रहा है और कहाँ से बोल रहा है? अपना नाम बताइए।
1: हेलो सहेली, मैं पूनम जैन बोल रही हूँ, जयपुर से बोल रही हूँ।
0: पूनम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बताइए पूनम जी, आपके कौन कौन से शौक हैं?
1: म्यूजिक मेरा सबसे पहला शौक है, मुझे
0: जी
1: गाने गाना सुनना बहुत पसंद है, साथ में मुझे कुकिंग में भी बहुत इंटरेस्ट है।
0: क्या बात है। और पूनम जी, आपको रेडियो सुनना पसंद है?
1: जी बिल्कुल, बहुत पसंद है।
0: और आपके परिवार में कौन कौन है?
1: मेरे दो बेटे हैं, दोनों लॉयर हैं,
0: जी
1: मेरे हस्बैंड, और बड़े बेटे की शादी हो चुकी है, एक बिटिया है, मेरी डॉटर इन लॉ।
0: जी, क्या बात है। पूनम जी, ये
1: जी,
0: बताइए, जो सावन का महीना है, इसकी यादें आपके जीवन में किस तरह से जुड़ी हुई हैं?
1: सावन का महीना मेरे लिए सिर्फ महीना नहीं है, ये भावनाओं का त्योहार है।
0: जी
1: चारों तरफ हरियाली, झूले, मेहंदी, गीत और भगवान शिव की भक्ति।
0: जी
1: सावन के आते ही मन में उमंग भर जाती है। जैसे अब तो खैर नहीं होता, लेकिन पहले सावन में हमेशा पियर जाती थी, वहाँ पर सबके साथ, मम्मी पापा भाई बहनों के साथ मिलकर बहुत अच्छा लगता था।
0: और जयपुर में किस तरह से सावन आप सभी सखियां मिलकर के मनाती हैं?
1: सावन का महत्व तो झूले की तरह है, झूला सावन की पहचान है। कहते हैं ना, झूला झूलने से मन हल्का होता है, प्रकृति से जुड़ाव होता है,
0: जी।
1: पेड़ों पर रंगीन झूले और उन पर सहेलियों के साथ गाना, यही तो सावन की खूबसूरती है।
0: और वहाँ की क्या खास डिश होती है जयपुर की?
1: खरीद के तो जैसे हम घेवर लाते हैं, यहाँ के फेमस है सावन में घेवर, और गुलाब जामुन, पूरे
0: जी
1: खीरी बनती है, और घर में हम दाल बाटी चूरमा बनाते हैं। सावन मतलब दाल बाटी चूरमा का बहुत है जयपुर के अंदर ना, दाल
0: जी
1: बाटी चूरमा बहुत फेमस है।
0: दाल बाटी चूरमा जो है, जो बाटी होती है, वो तो कई तरह की बनती है ना?
1: हाँ, मसाले वाले बाटी बनती है, आलू की बाटी बनती है, सादा बाटी बनती है। हाँ
0: जी, और मेवे वाली बाटी भी तो बनती है वहां पर?
1: बिल्कुल, अंदर ड्राई फ्रूट डाल के, मेवा डाल के वो भी बनती है।
0: जी पूनम जी, आपने कभी वहां पर जो मेले लगते हैं, वहां पर जाके आपने देखा, एंजॉय किया सखियों संग?
1: जी बिल्कुल, यहाँ पर जयपुर में तीज माता की सवारी निकलती है,
0: जी
1: और भव्य सवारी निकलती है, बिल्कुल एक फेस्टिवल की तरह, तो उसको हम देखने जाते हैं सिटी में।
0: क्या बात है, उसकी खूबसूरती देखते बनती होगी, है ना?
1: जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
0: बताइए पूनम जी, आज आप कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी?
1: ये गीत सुना दीजिए, अब के सजन सावन में, ये मुझे बहुत पसंद है।
0: पूनम जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। चलिए आपको सुनवाते हैं आपकी पसंद का ये प्यारा सा गीत।

सखियों से बातें करते हुए वक्त तो पंख लगाकर उड़ गया और दे गया बहुत सारी यादें। चलते चलते आपको बता देते हैं कार्यक्रम संबंधी जानकारी। प्रत्येक मंगलवार को सुबह 11 से 12 बजे तक रिकॉर्डिंग होती है। प्रत्येक शुक्रवार दोपहर 3 बजे हेलो सहेली कार्यक्रम प्रसारित होता है, तो सुनना ना भूलिएगा हेलो सहेली कार्यक्रम। आप हेलो सहेली के लिए इन बताए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। फोन नंबर है 4002466 2, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 4002466 2, एसटीडी 022। अब इसका दूसरा नंबर भी नोट कीजिए।

0: फोन नंबर है 2867-0288, मुंबई का एसटीडी कोड है 022, यानी 2867-0288, एसटीडी कोड है 022। जिन बहनों की कॉल आज नहीं लग पाई वो निराश नहीं हो, अगली बार प्रयास कीजिएगा, और जिनकी कॉल आज लग गई है उनसे अनुरोध है कि अगले 2 माह तक कॉल नहीं लगाएं। हेलो सहेली कार्यक्रम से विदा लेते हुए आपको ये बता दें कि आपने आज का सफर तय किया मंजरी वर्मा के संग। हमें सहयोग दिया रिकॉर्डिंग इंजीनियर किरण बंग ने और संपादन सहयोग नम्रता टिकोड़े ने। विविध भारती की ओर से इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक। तो अब दीजिए कार्यक्रम से अनुमति, स्वीकार कीजिए मंजरी वर्मा का प्यार भरा नमस्कार।
1: सखियों के दिल की सुबह, हेलो सहेली।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन, गीतों भरी कहानी, बस कुछ ही पलों के बाद। गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज सुनिए विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह।
1: स्वाति की सुबह हमेशा जैसी सुंदर थी। जाते हुए भादो ने उसे सुबह की सैर पर भिगो दिया था। उसके पसंदीदा मौसम के आखिरी कुछ दिन बचे थे, जिसे वो अगली बारिश तक खुद में समेट लेना चाहती थी। भीगी भीगी स्वाति जब अपने कॉलोनी के अंदर पहुंची तो बहुत देर हो चुकी थी। टाइम देखकर वो हड़बड़ा गई। बच्चों की बस आने वाली होगी, देर हो गई आज, सोचती हुई वो घर के अंदर घुसी और सीधे ही किचन में जाकर बच्चों का टिफिन पैक करने लगी। कान्हा और वृंदा को अभिनव ने पहले ही तैयार कर दिया था। टिफिन भी उसकी महाराजिन मंजू बना चुकी थी। हर काम अपने समय से हो चुका था, लेकिन मां का दिल है ना, जब तक खुद काम में हाथ न लगाए उसे चैन ही नहीं पड़ता। बच्चों को भेजकर वो भी गुनगुनाती हुई नहाने चल पड़ी। टाइम पर ऑफिस भी तो पहुंचना था। क्या बात है, आज तो कोई मूड में लग रहा है। आईने के आगे संवरती स्वाति के गीले बालों में तौलिया बंधा था। उसे गुनगुनाते देखकर अभिनव ने उसे बाहों में भर लिया। अभी देर हो जाएगी यार, छोड़ो मुझे। अभिनव को प्यार से झिड़कती हुई स्वाति के चेहरे पर एक लालिमा तैर गई। एक तो इस घर में प्राइवेसी कम मिलती है, उस पर तुम हो कि मौके का फायदा भी नहीं उठाने देती, अभिनव ने शिकायत की। अच्छा जी, 10 साल की शादी है और आप अब भी नौशे मियां बने हुए हैं। अभिनव को चिढ़ाती हुई स्वाति तैयार हो चुकी थी। हाँ भाई, पुराने पति की किसको परवाह होती है, चलो तुम्हारा नया प्रेमी बन जाता हूं। अभिनव ने नई पेशकश की। ये सही आइडिया है, पुरानी शादी में नए प्यार का तड़का। स्वाति हंसती हुई घर का ताला बंद करने लगी। रोज ही दोनों साथ में ऑफिस के लिए निकलते थे। स्वाति पहले अभिनव को उसके ऑफिस पर ड्रॉप करती, फिर अपने ऑफिस चली जाती। रोज की तरह दोनों साथ निकले और अपने अपने ऑफिस चले गए। दिन की शुरुआत जितनी अच्छी थी, ऑफिस पहुंचते ही स्वाति का उतनी ही बुरी खबर से सामना हुआ। बीती रात उसका एक सहकर्मी आलोक नशे की हालत में ऑफिस की बालकनी से नीचे गिर गया और उसकी मौत हो गई थी। ऑफिस में पुलिस और मीडिया का जमावड़ा था, सबके बयान लिए जा रहे थे। मीडिया वाले भी हर किसी से बात करने की कोशिश कर रहे थे। अचानक हुई इस दुर्घटना से स्वाति स्तब्ध रह गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि जो आलोक कल दिन भर अपनी तरक्की को लेकर खुश था, जो अपनी गर्लफ्रेंड को शादी के लिए प्रपोज करने वाला था, उसके साथ ऐसा कैसे हुआ होगा। वो न सिर्फ दुखी थी बल्कि बहुत बेचैन भी थी। इसी उधेड़बुन में वो गलती से लाइव न्यूज करते रिपोर्टर्स के फ्रेम में आ गई। हड़बड़ाई हुई स्वाति ने संकोच में खुद को लेडीज बाथरूम में बंद कर लिया।

0: लूक ने ऑफिस में नशा कैसे किया, आखिर कौन था उसके साथ? उसके मन में सवाल बढ़ते जा रहे थे। इन्हीं सवालों के जवाब बाहर मीडिया और पुलिस भी ढूंढ रही थी। जिंदगी किसी भी पल बदल सकती है, इसका वाकई कोई भरोसा नहीं।
1: जिंदगी कैसी है पहेली हाय।

0: कभी तो हंसाए, कभी ये रुलाए।
1: स्वाति ने अपने चेहरे को धोया और बाहर की तरफ बढ़ी कि उसके फोन की घंटी बजने लगी। उसने फोन उठा लिया। हेलो, तुम ठीक हो? कौन? स्वाति? स्वाति वत्स बोल रही हो ना? हाँ, मैं स्वाति ही बोल रही हूं। आप कौन? पहचाना नहीं? मैं निमिष राठौड़। निमिष? दिल्ली यूनिवर्सिटी वाले निमिष? बिल्कुल सही, तो तुम्हें याद हूं मैं। कैसी बात कर रहे हो, हम फेसबुक पर जुड़े हुए हैं। अरे ऐसे जुड़ने का क्या फायदा जब बस जन्मदिन और नए साल की शुभकामना ही देती हूं। आलोक की मौत का सदमा स्वाति को कई दिन तक रहा, लेकिन निमिष के रूप में उसे उस वक्त एक फौरी आराम मिल गया। निमिष और स्वाति ने 15 साल पहले साथ में ही यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। दोनों के बीच कभी ज्यादा दोस्ती नहीं थी। फेसबुक के आने के बाद सभी लोगों ने अपने पुराने दोस्तों और सहपाठियों को ढूंढ लिया था, और तभी से स्वाति और निमिष भी वहां जुड़े थे। निमिष एक नामी न्यूज चैनल का हेड था और स्वाति को अपने चैनल की लाइव न्यूज के फ्रेम में देखकर ही उसे कॉल किया था। हालांकि कॉलेज में भी दोनों के बीच ज्यादा बातचीत नहीं थी, लेकिन स्वाति को कॉलेज में भी उसका इंटेलिजेंस अच्छा लगता था। उसकी वाणी और स्वभाव में हमेशा ही नरमी रहती। कुछ देर निमिष से बात करके उसका दिमागी बोझ थोड़ा हल्का हुआ। अब जबकि निमिष ने स्वाति के चेहरे की परेशानी कुछ सेकंड्स के वीडियो में ही समझ ली थी, तो उसे निमिष की परवाह अच्छी लग रही थी। शायद ये परवाह भी उसके स्वभाव का ही हिस्सा थी। कुछ दिन के बाद लगभग हर हफ्ते

दिन में निमिष का फोन आता या वो उसे कॉल करके आलोक के केस के बारे में पूछ लेती। धीरे धीरे पुराने सहपाठियों के बीच उनके वर्तमान की जानकारी साझा होने लगी। दोनों ने अपने अपने पार्टनर्स के बारे में एक दूसरे को बताया। भाई तुम्हारी और अभिनय की लव मैरिज है? निमिष ने पूछा। उससे भी बढ़िया, हमारी फ्रेंडशिप मैरिज है, स्वाति ने उसे नया टर्म बताया। यानी तुम्हें किसी से अब तक प्यार नहीं हुआ? निमिष ने उत्सुकता से पूछा। स्वाति ने गर्व से कहा, मित्रता प्रेम की पराकाष्ठा होती है, और ये किस महापुरुष ने कहा है? निमिष ने झट से पूछा। ये एक महान स्त्री ने कहा है, स्वाति ने खिलखिला के जवाब दिया। हाँ, होगी कोई तुम जैसी स्त्री जिसने प्रेम को सही से जाना ही नहीं। निमिष संपादक था, शब्दों के जाल को बुनना उसे खूब आता था। अच्छा, सबकी प्रेम की परिभाषा अलग भी तो हो सकती है। मुझे अभिनव जैसा जीवन साथी मिला जिसने मुझे सहज रहने दिया, कभी बदलने की कोशिश नहीं की, उससे प्रेम अपने आप होता चला गया। अच्छा, और तुम्हें कैसे पता वो दोस्ती नहीं प्रेम है? निमिष ने फिर से सवाल किया। अब स्वाति ने चिढ़कर कहा, तुम्हारी प्रेम कहानी और शादी अमर रहे, इतना ही मानवता के लिए काफी है। भाई मेरी तो अरेंज मैरिज है, निमिष ने बताया तो स्वाति ने झुंझला के कहा, वाह, और ये प्रेम पर तब से ज्ञान दे रहे हैं? नहीं, प्रेम बार बार नहीं होता। निमिष कुछ बोलते बोलते चुप हो गया। मतलब तुम्हें किसी और से प्यार, तो शादी क्यों नहीं की? स्वाति ने उत्सुकता से पूछा। हाँ किया था, पर उससे कह नहीं पाया। कई साल उसे ढूंढा, उसका इंतजार किया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। उम्र निकल रही थी, फिर पूजा का रिश्ता आया और पेरेंट्स ने पक्का कर दिया। इसलिए समझता हूं कि बिना प्यार की शादी कैसे होती है। उसकी शादी को 3 साल हुए थे, जबकि स्वाति की शादी को 11 साल होने को थे। स्वाति आगे पूछना चाहती थी, लेकिन अपने रिश्ते की मर्यादा में उसके और उसकी पत्नी के विषय में कुछ पूछ न सकी। लेकिन उसका दिमाग अब यह जानना चाहता था कि निमिष को किससे प्रेम हुआ था। क्या वो उस लड़की को जानती है? कहीं साथ में पढ़ने वाली कोई लड़की तो नहीं थी?

हफ्ते 10 दिनों में होने वाली कॉल अब रोज होने वाली बातों में बदल गई। निमिष को सही सवाल पूछना आता था। स्वाति बेखटके हर जवाब देती। उसके मन की हर परत अब निमिष को पता थी। निमिष कम बोलता था। जब भी स्वाति खुद से पूछे सवाल का रुख उसकी तरफ कर देती तो वो उदास हो जाता। ऐसा लगता था जैसे उसकी शादी बस एक बंधन, एक जिम्मेदारी हो। उल्टे स्वाति और अभिनव की शादी और सामंजस्य वो सराहता, लेकिन बूझे स्वर में। ऐसे में स्वाति ने उससे अपने पति और रिश्ते की बात करना बंद कर दिया। अब वो बाकी विषयों पर बातें करते, जैसे राजनीति, देश, दुनिया, फिल्म, गाने और खाना भी। स्वाति और निमिष के बीच फोन पर बातों का सिलसिला बढ़ता जा रहा था। जब निमिष अपने ऑफिस के लिए निकलता था, उस वक्त तक स्वाति अपने ऑफिस पहुंच चुकी होती थी। वो जब घर से निकलता तो उसे फोन मिला लेता और जब तक अपने ऑफिस पहुंचता तब तक स्वाति से बात करता रहता। कई बार तो वो रास्ते में ही होती और निमिष का फोन आ जाता। स्वाति ने अभिनव को निमिष के बारे में बता दिया था। उससे बात करके जो भी पुराने यादें लौटती, उनकी कहानी वो अभिनव को रोज सुनाती। अभिनव को स्वाति के दोस्तों से कभी कोई दिक्कत नहीं थी। कॉलेज के दिनों की पुरानी बातें हों या रोजमर्रा की बातें, निमिष और स्वाति के बीच अब कोई पर्दा नहीं था। एक दिन निमिष ने स्वाति को बताया कि जितनी बातें वो उससे करता है, उतनी बातें उसने कभी भी किसी और से भी नहीं की है, न अपने परिवार में, न ही पत्नी के साथ। सच में यार, पति पत्नी की क्या बात कर रही हो? मुझे तो लगता है मैंने कभी भी किसी से इतनी बातें नहीं करी जितनी मैं तुमसे करता हूं। कभी सोचा है कि कैसे तुमसे इतना सहज हूं कि बिना किसी लाग लपेट के हर बात कह पाता हूं? निमिष जानना चाहता था कि स्वाति उसकी जिंदगी में अपनी खास जगह को पहचान रही है या नहीं। अच्छा, लेकिन मैं तो हमेशा से इतनी बातूनी हूं। मैं तो रोज की बात रोज ना करूं तो पेट में दर्द होने लगे। वो हंसने लगी। स्वाति तो स्वाति थी, अल्लड़ और हिंट न देने वाली। हाँ, तुम तो कॉलेज के जमाने से ऐसी ही हो, लेकिन तुम्हारी संगत मुझे बदल रही है, वरना मैं अपने मन की बात किसी से नहीं बांटता। उसने एक बार फिर से अपनी जिंदगी में स्वाति की अहमियत और बदलाव को रेखांकित किया। घुटन नहीं होती? स्वाति ने उससे अचानक पूछा। निमिष तैयार नहीं था। उसे लगा कि स्वाति पूछेगी कि ऐसा क्यों है कि निमिष उसके साथ इतना सहज है, या शायद ये कि उसकी संगत के निमिष पर और क्या असर हो रहे हैं। लेकिन उसने पूछा उसके ना बात करने की घुटन के बारे में। सवाल से निमिष ने यह तो जाना कि स्वाति को उसके स्वभाव को लेकर उत्सुकता भी है और उसकी चिंता भी। उसने थोड़ा सोच के जवाब दिया। आदत है सब अपने अंदर रखने की, खुशी हो या परेशानी, सब बस हमेशा अंदर ही रहा। इसीलिए मैं तुम्हारे जैसा एक्सप्रेसिव नहीं हूं। चलो तुम्हारे बंद ढक्कन को खोलते हैं और देखते हैं कि क्या क्या निकलेगा। स्वाति ने पूरे जोश से निमिष की जिंदगी के बारे में जानने और उसके अकेलेपन को दूर करने का बीड़ा उठा लिया। उस रोज एक लंबी मुस्कान ने निमिष की आंखों को प्रदीप्त कर दिया। स्वाति को अब स्पेशल फील हो रहा था। निमिष वाकई मितभाषी था और वो अपने मन की बात कभी किसी से नहीं कर पाता था, जबकि स्वाति के साथ वो हर बात बिना किसी तकल्लुफ के साझा कर लेता था। उसे खुद पर थोड़ा नाज हुआ, लेकिन जब भी निमिष इस बात पर जोर देता, स्वाति ऐसा दिखाती जैसे ये कोई खास बात नहीं है। दिल ही दिल में उसे ये एहसास था कि उन दोनों के बीच कुछ तो बदल गया था। आखिर उनका आपस में गजब का सामंजस्य था। इतने सालों के बाद

वो संपर्क में आए थे। सिर्फ फोन और चैट पर बात करते हुए कुछ ही हफ्तों में वो दोनों बिना कहे एक दूसरे की बात, यहां तक कि भाव भी समझ जाते। स्वाति को जो अब तक रोमांचक लग रहा था वो अब उसे अजीब लगने लगा। वो जानना चाहती थी कि क्या ये वाकई अटपटा है या स्त्री कंडीशनिंग है जो उसे ये आत्मीयता और अंडरस्टैंडिंग गलत लग रही है। वो जानना चाहती थी कि क्या उसकी तरह निमिष को भी उनका मेलजोल इतनी तेजी से बढ़ना अटपटा लग रहा है। लेकिन निमिष ने उसे फिजूल बातों पर मंथन करने से मना किया। वो किसी भी रूढ़िवादी सोच के चलते अपने रिश्ते को खोना नहीं चाहता था।

निमिष जानता था कि स्वाति के प्रति बढ़ता लगाव दरअसल उसका खोया हुआ प्रेम ही है। वो स्वाति को कॉलेज के जमाने से पसंद करता था, लेकिन संकोच में उसे बता नहीं सका। ग्रेजुएशन के बाद स्वाति आगे पढ़ने दूसरे शहर चली गई और वो कभी उसे ढूंढ नहीं सका। 8 साल बाद जब फेसबुक पर स्वाति मिली तो उसकी शादी हो चुकी थी और परिवार में एक बेटी भी थी। फेसबुक पर स्वाति से इतनी बात करने की उसकी हिम्मत भी नहीं हुई। उस दिन घबराई हुई स्वाति को अपने चैनल की स्क्रीन पर देखा तो उसे रहा नहीं गया और उसने कॉलेज ग्रुप से लिए हुए उसके नंबर पर पहली बार कॉल किया था। उसे पता नहीं था कि बातों का सिलसिला

0: अंदर की चाहत को फिर भड़का देगा। उससे अब सब्र नहीं हो रहा था। सुनो, मुझे तुमसे मिलना है, निमिष ने कहा। अचानक ठीक तो हो? स्वाति को चिंता हुई। बोलो ना, मिलोगी? उसने विनती के स्वर में पूछा। हां क्यों नहीं, इस इतवार को घर पे आ जाओ। स्वाति ने सहज ही निमंत्रण दे दिया। घर पर नहीं, निमिष ने साफ मना कर दिया। क्यों, अभिनव से नहीं मिलना, बल्कि पूजा को भी लेते आना, स्वाति ने फिर से समझाया। नहीं यार, तुमसे मिलना है, किसी और से नहीं मिलना। अभी परिवार को दोस्ती के बीच में मत लाओ ना, निमिष ने झुंझला कर कहा। अच्छा ठीक है, पहले हम दोनों मिलते हैं। स्वाति उसकी मनोस्थिति समझना चाहती थी। करीब 6 हफ्ते फोन पर बात करने के बाद निमिष और स्वाति कॉलेज के बाद पहली बार रूबरू मिले। निमिष आज भी वैसा ही था, जबकि कॉलेज के जमाने में सीख सी दिखने वाली स्वाति अब भरी पूरी महिला हो गई थी। उसका वजन उस पर फबता था, उनका साथ कपूर और आग जैसा था। स्वाति की हंसी की खनक और बातों की खुशबू से निमिष का मन महक रहा था। स्वाति से मिलकर वो जान गया था कि अपने दिल की बात बताना या पुरानी चाहत का राज खोलना स्वाति को दोबारा खो देने जैसा होगा, क्योंकि वो जितनी बात करती उसमें आधे से ज्यादा बातें या उदाहरण उसके पति अभिनव के बारे में होते। स्वाति अभिनव के साथ खुश थी। निमिष उसके दिल में अपनी छोटी सी जगह को खोना नहीं चाहता था। उनकी बातचीत की तरह उनके मिलने का सिलसिला भी बढ़ता गया। कभी निमिष उसके ऑफिस की तरफ आ जाता और उसके साथ कॉफी पी लेता, कभी लंच पैक करवा के साथ ही ले आता और दोनों गाड़ी में ही बोलते बतियाते लंच करते। ऐसा लग रहा था कि अपनी भावनाओं और परिस्थितियों दोनों पर अब उनका कोई बस न रह गया हो। जितनी देर वो स्वाति के साथ रहता, उसके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक कायम रहते। उसे देखकर कोई भी समझ सकता था कि वो पूरी तरह से स्वाति के प्यार में डूबा है। दूर से देखने वाले भी उनके बीच का स्पार्क महसूस कर सकते थे। ऐसे में ये बात उन दोनों को खुद महसूस न हो रही हो, ये संभव नहीं था। बकौल निमिष, वो इस अनाम से प्यारे रिश्ते में कोई सवाल नहीं चाहता था और अपने बीच तेजी से बदलती भावनाओं को वो जानबूझकर अनदेखा करने लगा। स्वाति को निमिष की आंखों का प्यार और आकांक्षाएं साफ दिख रही थीं। मजाक मजाक में वो उसे कई बार प्यार में न पड़ने की चेता चुकी थी। निमिष भी उसकी चेतावनी को हर बार काश ऐसा ही हो जाए बोलकर हंसी में उड़ा देता। वो जानता था कि स्वाति को जिस प्यार के होने का डर सता रहा था, वो पहले से ही उसके जीवन का सच था। शायद उसे खुद भी प्यार में पड़ जाने का डर हो।
1: गीतों भरी कहानी जारी रहेगी एक छोटे से अंतराल के बाद।

0: की लिखी कहानी दिल की गिरह। आइए सुनते हैं आगे की कहानी।
1: निमिष का शक सही था। स्वाति समझ रही थी कि दोस्ती और उनके वर्तमान समीकरण के बीच बहुत फर्क आ चुका है, और ऐसा सिर्फ निमिष की तरफ से नहीं था। उसने स्वयं भी यह समझ लिया था कि अब उनके बीच सिर्फ दोस्ती नहीं है, बल्कि एक दूसरे के प्रति बढ़ता उनका आकर्षण भी है। ऐसे में वो इस बढ़ती लत को यहीं रोक देना चाहती थी। निमिष, हम दोनों खुशहाल परिवार में रहते हैं, हमें सतर्क रहना चाहिए कि इस दोस्ती से अभिनव या पूजा को इनसिक्योरिटी ना हो। तुम ना ओवरथिंकिंग की दुकान हो यार, बेवजह परेशान होती रहती हो, इतना मत सोचो। निमिष ने समझाया कि उनकी दोस्ती में उनके पार्टनर्स के लिए उसे कोई धोखा नहीं दिख रहा है। यार तुम सोचती बहुत ज्यादा हो, अगर दोस्ती से ज्यादा है तब भी ये कोई चीटिंग नहीं है, हमें भी खुश रहने का हक है। अपने पसंदीदा इंसान के साथ समय बिताना अगर किसी को धोखा लगे तो लगा करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। निमिष, ये दोस्ती नहीं है, ये जो तुम्हारी आंखों में दिखता है उससे मुझे घबराहट होती है। मैं अभिनव को धोखा नहीं दे सकती, बात को समझो, हमें मिलना फौरन बंद करना होगा। प्यार व्यार में पड़ जाओगे तो बस, हमें बात भी कम करनी चाहिए। स्वाति के लहजे में चिंता थी। तुम्हें मुझसे प्यार हुआ क्या? नहीं ना, क्या ही फायदा तब इतना सोचने का। निमिष कह नहीं रहा था बल्कि पूछ रहा था। फिर भी यह ठीक नहीं है, किसी से मानसिक लगाव भी इमोशनल चीटिंग ही है। स्वाति ने अपना स्टैंड क्लियर किया। पागल मत बनो स्वाति, ये जो वक्त मैं तुम्हारे साथ जीता हूं वो मेरे पूरे दिन की खुराक है। मुझे नहीं पता तुमसे मिलने से पहले मैं कैसे जिया, मुझे बस इतना पता है कि मेरे नीरस जीवन में जो भी रंग है उसकी वजह यही समय है जो मैं तुमसे बात करते हुए, तुम्हें देखते हुए बिताता हूं। निमिष ने कातर आंखों से स्वाति से उसका चैन न छीनने की गुजारिश की।
2: मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं, तुम होती तो कैसा होता, तुम ये कहती तुम वो कहती, तुम इस बात पे हैरान होती तुम उस बात पे कितनी हंसती, तुम होती तो ऐसा होता, तुम होती तो वैसा होता। मैं और मेरी तन्हाई अक्सर ये बातें करते हैं।

ये रात है, ये तुम्हारी जुल्फें खुली हुई हैं, है चांदनी या तुम्हारी नजरों से मेरी रातें धुली हुई हैं।

ये चांद है या तुम्हारा कंगन, सितारे हैं या तुम्हारा आंचल, हवा का झोंका है या तुम्हारे बदन की खुशबू, ये पत्तियों की है सरसराहट कि तुमने चुपके से कुछ कहा है, ये सोचता हूं मैं कब से गुमसुम कि जबकि मुझको भी यह खबर है कि तुम नहीं हो, कहीं नहीं हो, मगर ये दिल है कि कह रहा है कि तुम यही हो, यही।

मजबूर ये हालात इधर भी है उधर भी, तन्हाई की एक रात इधर भी है उधर भी। कहने को बहुत कुछ है मगर किससे कहें हम, कब तक यूं ही खामोश रहें और सहें हम। दिल कहता है दुनिया की हर एक रस्म उठा दें, दीवार जो हम दोनों में है आज गिरा दें। क्यों दिल में सुलगते रहें लोगों को बता दें, हां हमको मोहब्बत है मोहब्बत है मोहब्बत। अब दिल में यही बात इधर भी है।

स्वाति समझ रही थी निमिष उससे अपने प्यार का इजहार कर देना चाहता है, लेकिन स्वाति से दूर होने का डर उसे रोक रहा था। उस रोज स्वाति जब उससे मिलकर अपने घर के लिए निकली तो उसने निमिष को कोई वादा नहीं किया बल्कि उसे सांत्वना देकर चली गई। धीरे धीरे उसने निमिष के कॉल उठाना कम कर दिया। जब भी वो मिलने को कहता स्वाति कोई न कोई बहाना बना देती। वो ऑफिस तक आ जाता तब भी वो मीटिंग का बहाना करके उससे नहीं मिलती। ऐसा नहीं था कि उसके इस व्यवहार से सिर्फ निमिष दुखी था, दुखी तो वो खुद भी थी।

0: लेकिन उसे पता था कि उसकी ही तरह निमिष भी शादीशुदा है। वो जितना अपने और निमिष के रिश्ते को पड़ताल करती, उसे अपना कदम सही लगता। स्वाति अभिनव से प्यार करती थी, उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी और वो साथ में खुशहाल भी थे। फिर क्यों उसने निमिष को इतना आगे बढ़ने दिया? मुझे न प्यार की तलाश है न प्रेमी की। कैसे संभव है एक इंसान के प्रेम में होते हुए किसी दूसरे की तरफ आकर्षित हो जाना? क्या मैं आकर्षित हूं या मुझे भी निमिष से प्रेम हो रहा है? वो जितना खुद को मथ रही थी, उतने ही अलग अलग जवाब उसके जहन में आ रहे थे। नहीं, मुझे निमिष से प्यार नहीं है, मुझे बस ये एहसास अच्छा लग रहा है कि कोई मेरी परवाह करता है। निमिष मुझसे बात करता है और मुझे अपने जीवन की प्राथमिकता मानता है। मुझे सिर्फ इस एहसास से प्यार है। उसे लगा कि जब से निमिष ने अपने और अपनी पत्नी पूजा के बीच के संबंधों के विषय में बताया, तब से उसे निमिष की ज्यादा फिक्र होने लगी थी। निमिष और पूजा के संबंध किसी बुजुर्ग जोड़े से भी ज्यादा नीरस थे। उनके बीच न तो संवाद था न ही दैहिक संबंध। कम से कम निमिष का तो यही कहना था। उसके जीवन के बारे में सुनने के बाद स्वाति को उससे सहानुभूति होने लगी थी। उस जैसा सुलझा हुआ और प्यारा इंसान अपने जीवन में हर खुशी का हकदार था, प्यार का भी। स्वाति अपनी सोच की परतों से खुद ही घबरा रही थी। कोई भी तर्क, कोई भी वजह इस बात को सही नहीं ठहरा सकती कि मैं एक खुशहाल शादीशुदा जीवन जी रही हूं और ऐसे में अपने 15 साल पुराने एक सहपाठी के लिए मेरा दिल पिघल रहा है। स्वाति ग्लानि से भर गई और उसने निमिष से हर संवाद खत्म करने का फैसला लिया। उसे निमिष के साथ बिताया हुआ हर पल अभिनव के साथ की हुई बेवफाई लग रहा था। वो अभिनव से कुछ छुपाती नहीं थी, लेकिन निमिष के बदले हुए व्यवहार को उसने अभिनव के सामने जाहिर नहीं किया था। वो जानती थी कि अभिनव पजेसिव या कंट्रोलिंग पति नहीं था, लेकिन फिर भी वो उसे पूरी बात बता न सकी। ये भी उसके अपने मन का चोर था शायद। वो निमिष को दिए हुए समय की भरपाई अभिनव के साथ अच्छा वक्त गुजार के करना चाहती थी। स्वाति ने दीपावली की पुरानी लाइट्स को स्टोर से निकाल के अपनी हरी भरी बालकनी में लगाया। सुनहरी लाइट्स में पौधों की खूबसूरती और निखर गई। बेंत के सोफे पर नए चढ़ाए कुशन कवर सज रहे थे। अभिनव घर में घुसा तो स्वाति ने तैयार होकर उसका स्वागत किया। अभिनव के लिए ये सुखद आश्चर्य था। बालकनी में गर्मा गर्म कॉफी के मग उसका इंतजार कर रहे थे।
1: क्या बात है, अभी से दिवाली की सजावट शुरू हो गई।
0: हट, शादी के कई साल बीत जाएं तो यही होता है। स्पेशल फील कराने की कोशिश का अंजाम तो देखो जरा। उसने झूठ मूठ का गुस्सा दिखाया।
1: सॉरी बाबा, मजाक कर रहा था। जीवन में रस बना रहे उसके लिए प्यार में ये सब छोटी छोटी बातें बहुत मायने रखती हैं।
0: देर रात तक दोनों वहीं बैठकर बातें करते रहे। घर और नौकरी की भागदौड़ में दोनों को आपस में बातें करने का मौका कम मिलता था। हालांकि स्वाति अपने हिस्से की बात रोज अभिनव से बोल ही देती थी, लेकिन वो एक तरफा संवाद था। अभिनव ने डिसाइड किया कि अब से हर शाम वो दोनों साथ में कॉफी पिएंगे और हर हफ्ते में कम से कम एक बार साथ में अपने दफ्तर से अलग कहीं जाएंगे। स्वाति को अब हल्का महसूस हो रहा था। हवा में घुले संगीत के साथ उसके जहन में एक चेहरा बार बार उभर रहा था, लेकिन उसने खुद को कड़ाई से रोक लिया और अभिनव को निहारने लगी। कितनी समानता है अभिनव और निमिष में। दोनों कम बोलते हैं, दोनों को मेरी परवाह है। काश हम दोस्त बनके रहते, काश उसे मुझसे प्यार न होता। मुझे उसकी कमी कितनी खल रही है, लेकिन निमिष ने मुझसे संवाद की अपनी कोशिश कुछ दिनों में ही बंद कर दी। प्यार तो नहीं ही रहा होगा उसे, शायद बस पसंद हो या बस आदत हो गई हो बात करने की। शायद कल किसी और की आदत हो जाएगी उसे।
1: स्वाति सोच ही रही थी कि अभिनव ने पूछा, अरे सुनो, वो तुम्हारे ड्राइव टाइम कॉल का क्या हाल है?
0: अभिनव ने उससे निमिष का हाल पूछा था, लेकिन उसकी आवाज के साथ ही स्वाति के दिल में कुछ झन्ना के बिखर गया।

इन सब से दूर निमिष ने अपने दिल के शोर को न्यूज रूम के शोर में दबा दिया। अब वो पहले से ज्यादा खामोश, पहले से ज्यादा अकेला था। प्यार का इजहार न करके वो इतना अकेला तब भी नहीं था जब 15 साल पहले स्वाति चली गई थी। उसको ढूंढना, अपने दिल में बुने सपनों में खोए रहना उसका पसंदीदा काम था। फेसबुक पर स्वाति का मिल जाना उसके लिए किसी त्योहार जैसा बड़ा दिन था। वो उसे वर्चुअल दुनिया में देखकर खुश रहता। इन दिनों उसकी हर पोस्ट दसियों बार पढ़ता और उसकी तस्वीरों को अपने फोन के फोल्डर में छुपा के रखना उसके प्रिय शगल थे। निमिष के हाथ कीबोर्ड पर तेजी से चल रहे थे। उसके चैनल की टीआरपी ने उसे फिर से नंबर 1 बना दिया था।

न्यूज रूम में जश्न जैसा माहौल था। पूरे साल हर हफ्ते नंबर वन रहना आसान नहीं था, लेकिन निमिष ने ये जीत हासिल की थी। लोग एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे कि निमिष का अधीनस्थ प्रोड्यूसर राकेश उसके पास आया। सर, इस साल आपको यूरोप की कपल ट्रिप के वाउचर मिलने वाले हैं, उसने निमिष को बताया। अच्छा, तुम्हें कैसे पता? निमिष ने ऐसे जताया जैसे उसे कुछ मालूम ही नहीं। सर, अंदर की खबर है। आप अपने साथ किसे ले जाएंगे? राकेश ने हिम्मत करके पूछा। क्यों? निमिष ने आंखें उचका के पूछा। सर, मुझे ले चलिएगा ना, इस बार आप किसी को वाउचर दीजिएगा मत, राकेश ने फिर से खुशामद की। तुम क्या मेरे जीवन साथी बनने की फिराक में हो? निमिष ने हंसते हुए उसकी मौज ली। नहीं सर, आप कपल वाले ट्रिप, कॉन्सर्ट टिकट, मूवी और डिनर वाउचर सबको बांट देते हैं, इस बार चलिए ना, साथ चलते हैं, राकेश ने अपनी अर्जी का कारण स्पष्ट किया। जाओ अपना काम करो, निमिष ने उसे ठेल के वापस उसके डेस्क पर भेज दिया। राकेश को उसके दो तीन साथियों ने घेर लिया। अबे तुम क्यों जाओगे? हम जाएंगे, एक ने कहा। अरे भाई, मेरी ना शादी हुई है, मेरा हनीमून हो जाएगा, मुझे और मेरी बीवी को जाने दो, दूसरे ने विनती की। अरे यार, तुम्हारे हनीमून का खर्चा चैनल थोड़ी ना देगा, राकेश ने उसको डपटा। राकेश भाई, तुम उनसे कह दो ना कि तुम्हें गोद ले ले, पहले ने सुझाव दिया। ये सही है, निमिष सर को पापा बना लो, उनके जीवन में नौकरी के सिवा कुछ है भी नहीं, एक रेडीमेड बेटा ही मिल जाएगा। सर सिंगल हैं? नई एंकर नैना ने अचरज से पूछा। तुमको नहीं पता? सब कहते हैं सर अपने जमाने के दिल जले आशिक है, शायद प्रेमिका मिली नहीं या मर गई हो, क्या पता, दूसरे ने बताया। कितना गॉसिप करते हो यार, जाओ अपना काम करो सब, राकेश ने अपने डेस्क से भीड़ को भगाया और ग्लास केबिन में काम करते शांत निमिष की ओर देखा और सोचने लगा। कोई कह सकता है कि इतने अकेले हैं? शायद तभी पूरा पूरा दिन ऑफिस में रहते हैं, छुट्टी नहीं लेते, घूमने नहीं जाते। बीच में कुछ महीने चेहरे की रंगत बदली थी, खुश रहते थे, अब फिर से पहले जैसे बुत बन गए हैं। कांच की दीवार के उस पार निमिष सोच रहा था कि स्वाति से बात शुरू हुई तो वो खुद नहीं जानता था कि पुरानी भावनाएं उस पर यूं हावी हो जाएंगी। किसी को प्यार से दूर करना कितना आसान था, न जवाब का इंतजार, न रूठने का खौफ। ग्रेजुएशन के 3 साल मिलाकर करीब 18 सालों से उसने स्वाति को चाहा था। इतने सालों में उसने इस तड़प को कभी महसूस नहीं किया था। पिछले 1 महीने से स्वाति से उसकी बात बंद है। स्वाति के पीछे भागते 2 हफ्तों में उसने तिरस्कार को समझा था। वो समझता था कि स्वाति अभिनव से ही प्रेम करती है और उसे अपने बारे में आश्वस्त रखने के लिए ही तो निमिष ने पूजा के नाम का झूठ गढ़ा था। वो स्वाति की जिंदगी में अपनी छोटी सी जगह से खुश था, शायद उसे अपनी आकांक्षाओं का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए था, काश दोस्ती ही बनी रहती, लेकिन पीछे लौटना संभव नहीं था। इसलिए उसने स्वाति से कोई संपर्क न रखने का निश्चय किया और उसे हर जगह से ब्लॉक कर दिया ताकि भूले से भी वो उसकी जिंदगी में झांकने ना जाए।

गीतों भरी कहानी इस श्रृंखला में आज आप सुन रहे थे विनीता अस्थाना की लिखी कहानी दिल की गिरह, वाचन स्वर जयंत पात्रिकर का, संपादन सहयोग स्नेहल भिसे, कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता राघवेंद्र सिंह नेगी। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: कमाल साहब कह रहे थे खयाम साहब जो मेरा हीरो है वो सिंगर नहीं है, उसने गाना सीखा नहीं, मुझे ऐसी आवाज।
0: संगीतकार खयाम।
1: पूरे हिंदुस्तान भर से आवाजें इकट्ठी की गई, यहाँ बुलाया गया। सजेशन आई कि साहब एक आवाज है कब्बन मिर्जा साहब, बुलाया उनको, सुना आवाज तो यही है जो चाहिए कमाल साहब को, बेमिसाल गा गए वो। आई जंजीर की झनकार खुदा खैर, तो उसमें जो रिदम है जंजीरों का है।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगी। अभिनेत्री और उसके बनने की दास्तान।
2: चार औरतों की कहानी थी वो, और उन्होंने वहाँ से मुझे कास्ट किया। हमें बहुत मजा आया और हम लोग शाम को बैठ के म्यूजिक, क्योंकि हम लोग गांव में शूट कर रहे थे जहाँ बिजली नहीं।
0: और बातें जिंदगी की, जद्दोजहद की।
2: और आप इतने बड़े बड़े हॉलीवुड स्टार्स और इंटरनेशनल स्टार्स से बिल्कुल सेम प्लेटफॉर्म पे मिलते हो, तभी भी स्ट्रगल पीरियड था, -10। मेरे पास एक ही कोट था, साड़ी पहन के गई थी मेरी मम्मी की, बहुत अच्छी, लेकिन -10।
0: तनिष्ठा चटर्जी, सेल्यूलॉइड के सितारे, 11 अगस्त शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
3: रुपहले पर्दे की जगमगाती दुनिया के अभिनय की सादगी और संवेदना से सजी एक बेमिसाल जोड़ी।
4: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5 बज रहे हैं। वक्त है सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ का।

0: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये बूंगा, रमकोला, भेलकक्ष, बड़वारी, धुरिया, अरचोका, बरपटिया के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वनमंडल के रामानुज नगर में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये खजूरी, सतकोना, मेंड्रा, कैलाशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। बलरामपुर वनमंडल के राजपुर, रामानुजगंज, धमनी और वाड्रफ नगर में हाथियों की कुल संख्या 28 है। ये खुखनिया, बदौली, जामदोहर, रेवतपुर, जवाखाण, धंधापुर, उधवा कटरा, नरसिंहपुर, पकरीडांड, जमुनिया, रामपुर, कनक पुर, चीनिया, शिवपुर, इंद्रावतीपुर, कामेश्वर नगर, सिलाजू, आनंदपुर, कोटराही, पेंडारी, तनवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वन मंडल के लुंड्रा में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये अस्कला, दोरना, मोहरा, जरहा डी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहा है। जिसपुर वन मंडल के कुनकुरी और कांसाबेल में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये पंडरीपानी, फरसकानी, खारीझरिया, बंदरचुआ, लोढ़ा आंबा, डोडा पानी, साजा पानी, सोनार पहरी, तीता पाकेर, बढ़नी झरिया, बटई केला, जुमे केला के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धरमजयगढ़ वन मंडल के छाल, धरमजयगढ़, बोरो, बाकारुमा, लेलुंगा और कापू में हाथियों की कुल संख्या 129 है। ये प्रेमनगर, पोटिया, इंचपारा, कुड़ेकेला, बोजिया, जमाबीरा, आमापाली, पंडोपारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वन मंडल के करतला में दो हाथी विचरण कर रहे हैं। ये पीड़िया, कोटमेर, कोरकोमा, कलगा मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वन मंडल के एतमानगर, जडगा और पसान में हाथियों की कुल संख्या 51 है। ये बंजारी, मड़ई, लोधीबहरा, मतीन, आमाटिकरा, नवापारा, झुनकीडी, जुनवानी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वन मंडल के रायगढ़, घरघोड़ा और तमनार में हाथियों की कुल संख्या 41 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, भैंसगढ़ी, कंटाझरिया, बटुरा कछार, अमलीडी, सराई पाली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानकमार टाइगर रिजर्व के अचानकमार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सराई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वन मंडल के रवान और कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 30 है। ये छताल, दलदली, तालाझर, मुरुमडी, फुरफुंदी, गुड़ागढ़, ताल, दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 24 है। ये कावारामा, नारीपानी, कोनारी, बुड़ार, जिडार, पायलीखंड, बेसराझर, कोदोमाली, तौरेंगा, कुकरार, ताराझर, खोलापारा, छिंदौला, लूठापारा, फरसरा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले।

0: बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे अमर हाथी अमर गोट।
1: सीएफ वन विभाग सरगुजा द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ अभी हम सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 5:05 हो रहे हैं। वक्त है कार्यक्रम चित्रपट संगीत का। कार्यक्रम चित्रपट संगीत का पहला गीत लिखा है आनंद बख्शी ने। आवाज उदित नारायण की है। फिल्म का नाम है दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे और इसके संगीतकार हैं जतिन ललित।

कार्यक्रम चित्रपट संगीत में अभी हमने सुना उदित नारायण की आवाज में दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे फिल्म का गीत। कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं करण अर्जुन फिल्म का गीत, जिसे लिखा है हिंदीवर ने, संगीतकार राजेश रोशन, और इस गीत को अपनी आवाजों से सजाया है कुमार सानू और अलका याग्निक ने।

कार्यक्रम के अगले गीत में आवाजें हैं चंदना दीक्षित और अभिजीत की। इस गीत को लिखा है समीर ने, संगीतकार आनंद मिलिंद, और फिल्म का नाम है कूली नंबर 1।

श्रोताओं, महिला सभा हेतु एक सूचना सुनिए। कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण हर महीने के दूसरे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 11 अगस्त मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसकी रिकॉर्डिंग 10 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर 3:00 से 3:30 के बीच की जाएगी। आप हमें फोन करके डॉक्टर से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे कार्यक्रम की विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता और चर्चा का विषय होगा फेफड़े एवं श्वसन रोग और उपाय। आप हमें फोन कर सकते हैं इन नंबरों पर 07752-266592। आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम चित्रपट संगीत आप सुन रहे हैं एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। आइए चलते हैं कार्यक्रम के अगले गीत की ओर और सुनते हैं बॉम्बे फिल्म का गीत जिसे लिखा है महबूब ने। रेमो फर्नांडिस और साथियों की आवाजें हैं और संगीतकार हैं AR रहमान।

0: कार्यक्रम चित्रपट संगीत का अगला और अंतिम गीत है कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में। फिल्म का नाम है बरसात। इसे लिखा है समीर ने और संगीतकार हैं नदीम श्रवण।
1: कोई मुझसे ये पूछे क्या

नमस्कार, जय जोहार दोस्तों। युवा जगत कार्यक्रम में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। मैं हूं आपकी अपनी श्रुति साहू। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? तबीयत ठीक है ना? इस मौसम में अपना ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्तों, आज की जनरेशन भी कमाल की है। एक तरफ मोबाइल में रील्स स्क्रॉल करने की स्पीड ऐसी कि अंगूठा भी कहे बस भाई थोड़ा आराम दे, और दूसरी तरफ वही युवा जब अपने सपनों के पीछे लग जाता है तो घंटों लाइब्रेरी में बैठकर किताबों के पन्ने पलटता है, मॉक टेस्ट देता है और खुद को एक ही बात कहता है, इस बार नहीं तो अगली बार सही, लेकिन हार नहीं मानेंगे। सुबह 5 बजे का अलार्म लगता है लेकिन उठते हैं 7 बजे, पर जैसे ही परीक्षा की तारीख सामने आती है वही युवा रात रात भर पढ़ाई करते हुए अपने सपनों के लिए जी जान लगा देता है। क्योंकि आज युवा सिर्फ अपना करियर नहीं बना रहा बल्कि अपने परिवार की उम्मीद, अपने खुद के सपने और भविष्य की नींव भी तैयार कर रहा है। लेकिन दोस्तों, मेहनत करना ही काफी नहीं होता, सही दिशा में मेहनत करना ज्यादा जरूरी होता है। तो अगर आप भी UPSC, CGPSC, SSC, बैंकिंग, रेलवे, टीचिंग, पुलिस या किसी भी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का कार्यक्रम आपके लिए। एग्जाम प्रिपरेशन के सफर में सबसे बड़ा सवाल यही होता है, पढ़ाई कहाँ से शुरू करें, क्या पढ़ें, कितना पढ़ें और तैयारी कैसे करें कि मेहनत सही दिशा में लगे। दोस्तों, अक्सर हम सुनते हैं कि उसने पहले ही अटेम्प्ट में एग्जाम क्लियर कर लिया, लेकिन हमें उसकी सफलता दिखाई देती है उसके पीछे की महीनों और सालों की मेहनत नहीं। याद रखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन सही रणनीति आपके मंजिल तक पहुंचने का रास्ता जरूर आसान बना सकती है। सबसे पहले बात करते हैं लक्ष्य तय करने की। कई बार स्टूडेंट एक साथ 4-5 एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर देते हैं। नतीजा ये होता है कि किसी एक भी एग्जाम की तैयारी पूरी नहीं हो पाती। इसलिए सबसे पहले तय कीजिए कि आपको किस परीक्षा की तैयारी करनी है, उसका सिलेबस क्या है, पैटर्न कैसा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखिए। अब बात करते हैं टाइम टेबल की। अब ऐसा टाइम टेबल मत बनाइए कि जिसे देखकर आपको भी डर लगने लगे। ऐसा रूटीन बनाइए जिसे आप रोज फॉलो कर सके। रोज के 5-6 घंटे ईमानदारी से पढ़ना कभी कभार 12 घंटे पढ़ने से कहीं बेहतर होता है। दोस्तों, तैयारी का एक और अहम हिस्सा है रिवीजन। कई विद्यार्थी नई नई चीजें पढ़ते रहते हैं लेकिन पुरानी चीजें दोहराते नहीं। हमेशा याद रखिए, जो पढ़ा है उसे दोहराना भी उतना ही जरूरी है जितना नया पढ़ना। और हाँ, मॉक टेस्ट अगर आप सिर्फ किताबें पढ़ रहे हैं लेकिन टेस्ट नहीं दे रहे हैं तो समझिए आपकी तैयारी अभी अधूरी है। मॉक टेस्ट से न सिर्फ आपकी तैयारी का लेवल पता चलता है बल्कि टाइम मैनेजमेंट और सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है। तो अभी थोड़ा रुकते हैं, इसके बाद हम और भी बात करेंगे। अभी लीजिए, सुनिए जावेद अली, कृति और पूजा विद्यानाथ की आवाजों में फिल्म रांझना का ये गीत, जिसे लिखा है इरशाद कामिल ने और संगीत से पिरोया है AR रहमान ने।

0: QR कोड स्कैन करो, 5,000 का कैशबैक पाओ। वाह, दिन बन गया।
1: UPI पिन एंट्रिंग सिर्फ पैसे भेजने के लिए है।
2: RBI कहता है,
1: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
3: दोस्तों, आप सभी को इंतजार होगा आज के क्रम का। आइए सुनते हैं क्रम मेरी बारी में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के NSS वॉलंटियर्स अलका कंवर, मेघा वंशकार और मोनिश सिंह कश्यप से रिपब्लिक डे परेड तक के सफर में हुई रोचक बातचीत।
4: दोस्तों, क्रम मेरी बारी में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। दोस्तों, कहते हैं सपने वही सच होते हैं जिसके पीछे

0: मेहनत, अनुशासन और धैर्य होता है। हर साल देश भर के लाखों एनएसएस स्वयंसेवक एक सपना लेकर आगे बढ़ते हैं। गणतंत्र दिवस पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर तिरंगे के सम्मान में कदम से कदम मिलाकर परेड करने का सपना, लेकिन ये अवसर केवल चुनिंदा युवाओं को ही मिलता है। आज हमारे साथ ऐसे ही साथी हैं जो प्री आरडीसी और आरडीसी तक का अपना सफर पूरा किए हैं, तो चलिए बिना देरी किए हम उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ है रिपब्लिक डे परेड की हुई
1: अलका कंवर,
0: मेघा वंशकर और प्री आरडीसी किए हुए मोनिश सिंह कश्यप। आपका युवा जगत कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
2: थैंक यू मैम।
3: थैंक यू मैम।
0: तो चलिए आप थोड़ा अपने बारे में हमारे साथियों को बताइए।
2: जय हिंद आप सभी को। मेरा नाम है मोनिश सिंह कश्यप और मैं साइंस कॉलेज से अपनी बीएससी की डिग्री कंप्लीट किया हूँ और फिलहाल एमएससी फर्स्ट सेम में हूँ। मुझे एनएसएस से जुड़े हुए 3 साल हो चुके हैं। मुझे आरडीसी के बारे में हाई कोर्ट परेड से ही पता चला, एनएसएस के थ्रू ही प्री आरडी और आरडी कैंप तक पहुंचे।
3: जय हिंद आप सभी को। मेरा नाम मेघा वंशकर है, मैं डीपीबी प्री लॉ कॉलेज बीएलएलबी के 5th सेम की छात्रा हूँ।
1: जय हिंद, मेरा नाम अलका कंवर है, मैं गवर्नमेंट बिलासा गर्ल्स कॉलेज से हूँ, बीएससी 5th सेम में पढ़ाई कर रही हूँ।
0: जी तो चलिए अभी आपसे सवाल जवाब हम शुरू करते हैं। शुरुआत बिल्कुल शुरुआत से करते हैं। आप बताइए कि इस सफर की पहली सीढ़ी की शुरुआत कैसे हुई, आपने कहाँ से जाना कि ये कैंप होता है, ये परेड होता है?
2: तो पिछले साल 2025 में हमारे छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट में मार्च पास्ट किया एनएसएस के थ्रू, तो उस हाई कोर्ट परेड के थ्रू ही मुझे एनएसएस के आरडीसी परेड के बारे में पता चला। आरडीसी एक कैंप होता है, एक परेड होती है, ये पहले से पता था, हम बचपन से देखते आ रहे हैं टीवी पर जो हर साल टेलीकास्ट होता है। इसी हाई कोर्ट परेड में ही प्रैक्टिस करते करते हम उसके बारे में जाने।
3: तो मेरी शुरुआत स्कूल से हुई है, मैंने एनएसएस अपने स्कूल से 11वीं क्लास में ज्वाइन किया था। अपने बिलासपुर शहर में जो पुलिस ग्राउंड में परेड होता है उसमें एनएसएस की यूनिट लगती है, तो उस यूनिट में हम जाकर स्कूल के बच्चे परेड करते हैं। वहां से मुझे आरडीसी के बारे में पता चला था और स्कूल के बच्चे एनएसएस आरडीसी में नहीं जा सकते थे, तो हमने सिर्फ प्रैक्टिस की थी। फिर मैंने कॉलेज में आकर हाईकोर्ट परेड किया, फिर हाईकोर्ट परेड करने के बाद आरडीसी सिलेक्शन के लिए गई।
1: मुझे आरडीसी के बारे में पहले तो पता नहीं था, मैं 11वीं से एनएसएस से जुड़ी हूँ, तो मेरे कार्यक्रम अधिकारी बंजारे सर जी हैं, तो वो स्टेटस डाले थे कि दिल्ली में परेड करते हुए, तो वो देखे थे तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर उस टाइम पता नहीं था कि ये आरडीसी बोलते हैं इसको, फिर कॉलेज में आई तो पता चला कि इसको आरडीसी बोलते हैं और हम इसको कर सकते हैं, तो वही से पता चला।
0: ओके, तो जैसा आपने बताया कि आप लोगों की शुरुआत कैसे हुई है, तो जहाँ तक मुझे पता है कि ये प्रोसेस सिलेक्शन का आसान नहीं होता है, तो इसकी चयन प्रक्रिया कैसी होती है, इसके क्या लेवल्स हैं, इसके बारे में कुछ बताइए।
2: तो सिलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है कॉलेजेस से। कॉलेजेस में हम अपने बेस्ट वॉलंटियर्स को सिलेक्ट करके डिस्ट्रिक्ट लेवल के भेजते हैं। डिस्ट्रिक्ट लेवल में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से आए हुए वॉलंटियर्स जो अलग अलग कॉलेज से सिलेक्ट होकर आते हैं, उनमें विधाओं को देख करके, उनकी अलग अलग क्वालिटीज को देख करके उन्हें सिलेक्ट किया जाता है और उसके बाद उन्हें नेक्स्ट लेवल जो कि यूनिवर्सिटी लेवल होता है उसमें भेजा जाता है। यूनिवर्सिटी लेवल में उस यूनिवर्सिटी से संबद्ध जितने भी कॉलेजेस होते हैं, वो जितने भी जिलों में फैले होते हैं, वहां से वॉलंटियर्स आते हैं और उनका सिलेक्शन होता है। हमारे सिलेक्शन के लिए हमारे आरडी भोपाल से यूथ ऑफिसर आए और उन्होंने हमारा सिलेक्शन किया था। यहाँ से हर यूनिवर्सिटी में यह जो प्रोसेस होता है वो सेम रहता है और हर यूनिवर्सिटी से सिलेक्टेड वॉलंटियर्स अगले चरण में जाते हैं जो कि होता है प्री रिपब्लिक डे कैंप। इसे हम एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण सिलेक्शन प्रोसेस कह सकते हैं जो कि एक पूरा का पूरा कैंप होता है, 10 दिनों का कैंप। हमारा यह कैंप ग्वालियर मध्य प्रदेश में हुआ था जो कि 3 आरडी को मिलाकर होता है, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड। इन 6 स्टेट्स का एक साथ कैंप लगा था जिसमें 200 वॉलंटियर्स आए हुए थे। उन 200 वॉलंटियर्स में से सिर्फ और सिर्फ 40 का सिलेक्शन हुआ जो कि अगले चरण में गए, जो कि एक तरह से फाइनल चरण था, बट उसमें भी कुछ सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं क्योंकि वहां भी कुछ लोगों को छांट करके अलग किया जाता है ताकि बेस्ट से बेस्ट वॉलंटियर ही कर्तव्य पथ पर चल पाए।
0: ठीक है दोस्तों, आपने इन सारी लेवल्स को बखूबी पार किया है, तो अब सिलेक्शन के बाद होती है असली तैयारी जहाँ पे हमें हर दिन अपने आप को और बेहतर बनाना रहता है, हमें हर दिन नया कुछ सीखना होता है। तो आपका जो पूरा सफर रहा है उसमें आपने क्या

0: क्या सीखा, किस तरीके से आपने तैयारियां की, इसके बारे में कुछ बताइए।
1: हाँ बिल्कुल, जैसा कि आपने बोला, सिलेक्शन के बाद ही हमारी असली तैयारी शुरू होती थी। एक स्टेज में सिलेक्ट होने के बाद हमको हमारी गलतियां पता चलती थी कि हमारे वीक पॉइंट्स क्या हैं, जिनको हम अगले स्टेज के लिए सुधार करते थे। जैसा कि यूनिवर्सिटी लेवल में सिलेक्ट होने के बाद हमें पूरे के पूरे एक महीने का टाइम मिला था प्री आईडी कैंप जाने से पहले, जिसमें हमने अपने वीक पॉइंट्स पे काम किया। जैसा कि मेरा वीक पॉइंट था कल्चरल एक्टिविटीज, जो कि मैंने बचपन से कभी भी किया नहीं था, बट इसके लिए अपनी पूरी जान लगाकर मेहनत की, जिसके थ्रू मैं प्री आईडी कैंप तक पहुंचा। बट फिर भी कुछ ना कुछ कमी रह गई, जिसके कारण मैं आगे नहीं बढ़ पाया।
2: आरडीसी कैंप में पहुंचने के बाद जो फाइनल सिलेक्शन होता है, हम लोग का 200 लोगों का ऑल इंडिया से जो सिलेक्शन होता है, उसमें सिर्फ 148 लोग ही कर्तव्य पथ पर चलते हैं। तो उसका चयन हमारा जो होता है वो लास्ट 23 जनवरी तक चलता है। कैंप 1 जनवरी से रहता है, तो हमको अपने आप में सुधार करने के लिए 23 दिन का टाइम मिलता है कि हम अपने ऊपर सुधार करके उन 148 में शामिल हो सके। वहाँ छत्तीसगढ़ के हिसाब से बहुत ज्यादा ठंडी रहती है और समय का बहुत परहेज रहता है। 3 बजे उठना, 4 बजे उठना, वो सब चीजों को हमारे हेल्थ के साथ मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमको बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना पड़ता था वहाँ हर चीज का।
0: काफी अच्छा है आप लोगों ने जो ड्यूरेशन गैप मिला है उसमें सीखा है। कहते हैं मुश्किल हालात इंसान की असली परीक्षा लेती है, तो जैसा मुझे पता है पिछले 26 जनवरी को दिल्ली में काफी मौसम खराब था, बारिश हुई है, तो आप बताइए कि उस खराब मौसम में आप लोगों ने अपना प्रैक्टिस कैसे जारी रखा और 26 जनवरी के दिन के महत्व को और भी खास बनाने के लिए बहुत तैयारियां की।
2: जी हाँ, जब हमारा फाइनल रिहर्सल वो होने वाला था, तो उस दिन सुबेरे से 4 बजे से जो बारिश हो रहा था वो दिन भर हुआ, रुका नहीं, तो पूरा का पूरा जितने भी प्लाटून थे कर्तव्य पथ पर, वो सारे जो थे वो सारे बारिश में परेड किए। NSS कंटिजेंट का एक वो था मोटिवेशन के लिए, हमारी यूथ ऑफिसर सर लोग, हमारे कैंप डायरेक्टर सर थे, कैंप कमांडर सर थे, और हमारी मैम थी यूथ ऑफिसर और कंटिजेंट लीडर्स मैम, वो सारे बच्चों के साथ भींग कर हम लोगों को मोटिवेशन दे रहे थे कि तुम कर सकते हो। तो उससे हमारे अंदर वो जुनून रहा कि हमको करना है, और हमारे अंदर एक डेडिकेशन था कि हमको उस पथ पे चलना है, इस वजह से ये पूरा हो पाया।
0: आपने रिपब्लिक डे कैंप किया है, तो आप दोनों अपना एक्सपीरियंस बताइए कि कैसा लगता है जब हम पूरा सेलेक्ट होके कर्तव्य पथ पर हमारे तिरंगे झंडे को सलामी दे रहे होते हैं।
3: जब मैं पहली बार कर्तव्य पथ में गई तो मुझे एक अलग ही खुशी हो रही थी बहुत। मैं वहां जाके कर्तव्य पथ को प्रणाम की और तब मुझे लगा कि हम जितनी मेहनत किए हैं उसका फल आज मिला है।
2: हाँ, तो जब हम लोग सेलेक्ट हुए 148 वॉलेंटियर, तो एक अपने पे प्राउड मोमेंट था, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ राज्य को वहाँ कर्तव्य पथ पे प्रेजेंट कर रहे, कर्तव्य पथ पर चल रहे थे, तो हमारे अंदर एक अलग ही ऊर्जा थी, और सबसे बड़ा चीज हमारे तिरंगे को सलामी देने के लिए बहुत ही गर्व का पल था हमारे लिए कि हम उस पथ पर चल पाए।
1: हर स्टेज में सिलेक्ट होना एक अलग चीज है, बट हर स्टेज में सिलेक्ट होने के बाद जो खुशी होती थी कि मैं जो अपना लक्ष्य है उसके एक कदम और पास आ गया हूँ। वो 10 दिन का जो कैंप था को हमने सिर्फ अटेंड नहीं किया, उस कैंप को हमने जिया था। हमने वहाँ अलग अलग स्टेज से आए हुए साथी वॉलंटियर्स, उनसे एक ऐसा बॉन्ड शेयर किया, ऐसा बॉन्ड बनाया जो आज तक नहीं टूटा। हम सिर्फ एक कैंप के लिए या एक सिलेक्शन प्रोसेस के लिए गए, हमने एक फैमिली जैसा माहौल वहाँ पाया, और यही हमारा बेस्ट एक्सपीरियंस था वहाँ का।
0: और जैसा आपने बताया कि जो आपने बॉन्ड शेयर किया है अदर स्टेट के वॉलंटियर्स के साथ, कैंप में दोस्ती बनी आपकी, तो शायद यही बहुत बड़ा रीजन होता है इन सारे एक्टिविटीज का, इन सारे फंक्शंस का, इन सारे मौकों का, कि हम कैसे आपस में मिल रहे हैं, कैसे आपस में जुड़ रहे हैं, हमारी यूनिटी बन रही है और यूनिटी स्ट्रांग बन रही है। तो ये बहुत अच्छी चीज है और काफी खूबसूरत चीज है जो आपने ऐसा एक्सपीरियंस किया भी है और आप उसे समझ भी रहे हैं।
3: तो मेघा, आप बताइए कि इतने लंबे समय के प्रोसेस, इतने सारे सिलेक्शन, सारी चीजों को क्रॉस करते हुए आप जब आरडीसी के लिए सेलेक्ट हो गई, वहाँ गई, न्यू दिल्ली गई, तब आपको कैसा महसूस हुआ वो हमारे साथियों के साथ साझा कीजिए। और ये भी बताइए कि ऐसे कोई यादगार पल रहे हैं जो आप हमें बताना चाहेंगी।
2: इतने सारे राज्यों से आए हुए थे लोग, उनका कल्चर, उनकी लैंग्वेज, जो खान पान था वो सब हमने देखा, हमने दूसरे दूसरे राज्यों का किया। यह हमारे लाइफ का एक नया और पहली बार हुआ एक्सपीरियंस है। और चलो मैं आपको एक किस्सा सुनाती हूँ जो मेरे साथ आरडीसी में हुआ, कि हम लोग परेड, नॉर्मली हम लोग बहुत टाइम से परेड कर रहे थे।

0: बहुत सारे चरणों चरणों को क्रॉस करके गया लेवल्स को, तो कभी भी परेड करते थे, ग्राउंड से आ जाते थे। लेकिन आरडीसी में ऐसा हुआ कि हम लोग परेड ग्राउंड में जाते थे, परेड करते थे, वहाँ परेड ग्राउंड को बिस्तर समझ के वहीं सो जाते थे, देन फिर उठते थे, परेड करते थे। और दूसरे दूसरे राज्यों से जो आए हुए थे उनके साथ परेड करना, एक मार्चिंग करना, उनसे कन्वर्सेशन करना, उनसे कोऑर्डिनेट करके चलना, एक बहुत बड़ा टास्क था और एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। उसके बाद हम लोग सब प्रेसिडेंट हाउस गए, उनसे मिले, वहाँ कल्चरल इवेंट हुआ। उसके बाद हम लोग वाइस प्रेसिडेंट सर के पास गए, उन्होंने एक बात बोला था कि मैं किसान का बेटा होकर यहाँ तक आ सकता हूँ तो तुम भी आ सकते हो। देन उसके बाद हम लोग पीएम रैली में गए। यह मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं प्रधानमंत्री सर से डायरेक्ट इंटरेक्ट की और उनसे बातचीत करने का मौका मिला, और उन्होंने मेरे से यह क्वेश्चन किया कि आप कौन से राज्य से हैं और दूसरे राज्य वालों से कैसा आपसे बना। अच्छा लगा उनसे मिलके। अब मैं आपको आरडी का सबसे स्पेशल और खास पल बताती हूँ। जब आरडीसी में इतने सारे टीम थे, इतने सारे स्टेट के लोग आए हुए थे, उनमें से जो कर्नाटका राज्य के लोग थे उनका एक गिफ्ट करने का एक ट्रेडिशन है, खादी से उन लोग किसी भी का सम्मान करते हैं। तो 200 वॉलंटियर में उन्होंने खादी से मेरा सम्मान किया, और ये विश करते हुए वो कैंप से हम सब आए कि एक बार कर्नाटका जरूर जाएंगे।
1: ठीक है मेघा, यही तो है हमारे लिए काफी अच्छी चीज की अनेकता में एकता हम बिल्ड कर रहे हैं, और आपने वो सारी चीजें वो अनुभव किया।
2: तो चलते चलते ये कि जो युवा या जो वॉलेंटियर इन फ्यूचर कर्तव्य पथ पर परेड करना चाहते हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देंगे?
3: तो जो भी साथी वॉलेंटियर्स आने वाले समय में रिपब्लिक डे कैंप के लिए तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बस एक ही की नोट है कि लगातार निरंतर अभ्यास करते रहो, क्योंकि कंसिस्टेंसी ही आपको आपके लक्ष्य तक पहुँचाएगी। आप जितना प्रैक्टिस करते जाओगे आप उस चीज में उतना ही परफेक्ट होते जाओगे। ये जो सिलेक्शन होता है, लाखों वॉलेंटियर्स में से ही केवल 200 वॉलेंटियर्स उस जगह तक पहुंच पाते हैं, और उन 200 में से भी सिर्फ 148 वॉलेंटियर्स ही कर्तव्य पथ पर चल पाते हैं। सबसे जरूरी चीज है कि आप खुद पर भरोसा रखो।
4: जैसा कि मैं कर्तव्य पथ तक पहुंच पाई हूं, उसमें मेरे यूनिवर्सिटी, मेरे कॉलेज और मेरे छत्तीसगढ़ स्टेट और आरडी भोपाल के जितने भी अधिकारीगण हैं उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है, उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है। इन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूं।
3: एंड अ स्पेशल थैंक टू आवर एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मनोज सिन्हा सर, और हमारी प्रोग्राम ऑफिसर मुना कैवट मैम और अरविंद पांडे सर, जिन्होंने बेसिक लेवल पे हमारा मनोबल बढ़ाया, डेली के डेली हमारे प्रैक्टिस में हमारे साथ खड़े रहते थे।
2: काफी अच्छी बातचीत हुई हमारी, और आप हमारे साथ जुड़े और आपने अपना अनुभव हमारे साथियों के साथ साझा किया। आगे आपके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
4: धन्यवाद,
3: थैंक यू मैम।
5: दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे क्रम मेरी बारी में अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के एनएसएस वॉलेंटियर्स अलका कंवर, मेघा वंशकार और मोनिश सिंह कश्यप से रिपब्लिक डे परेड के सफर में हुई रोचक बातचीत। दोस्तों, कार्यक्रम की शुरुआत में हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की बात कर रहे थे। ठीक है, ऐसी गलती तो सबसे होती रहती है। वैसे एक बात हम सभी में कॉमन है, सपने बड़े हैं और उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत भी बड़ी करनी होगी। सबसे पहली गलती कई स्टूडेंट्स यही करते हैं कि वे दूसरों को देखकर तैयारी शुरू करते हैं, पर किसी की देखा देखी नहीं, अपने इंटरेस्ट एबिलिटी के अकॉर्डिंग एग्जाम दीजिए, सही किताबें और सही सोर्स चुनें। आज जानकारी की कमी नहीं है बल्कि इन्फॉर्मेशन की अधिकता सबसे बड़ी चुनौती है। हर दूसरे दिन नई किताब, नया यूट्यूब चैनल या नई पीडीएफ बदलते रहेंगे तो तैयारी बिखर जाएगी। नोट्स बनाने की आदत डालिए, पढ़ते समय अपने छोटे छोटे नोट्स बनाइए, यही नोट्स परीक्षा से पहले आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेंगे और आखिरी समय में पूरी किताब पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ, कई विद्यार्थी पढ़ाई के चक्कर में नींद कम कर देते हैं या खाना छोड़ देते हैं, लेकिन स्वस्थ शरीर और शांत मन के बिना अच्छी तैयारी पॉसिबल नहीं है। अच्छी नींद लें, व्यायाम करें और स्ट्रेस को खुद पर हावी ना होने दें। दोस्तों, अच्छी नींद एक्सरसाइज जितनी इम्पॉर्टेंट है

उतना हेल्दी न्यूट्रिशन भी ज़रूरी है। तो सही टाइम में और हेल्दी खाना खाइए। अब ज़रा मोबाइल की भी बात कर लेते हैं। मोबाइल बुरा नहीं है, लेकिन उसका इस्तेमाल कैसा है ये ज़रूर मायने रखता है। अगर वही मोबाइल ऑनलाइन क्लास, करेंट अफेयर्स और टेस्ट सीरीज़ के लिए इस्तेमाल हो, तो यही आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। और अपनी तुलना दूसरों से मत कीजिए। आज आप कल से बेहतर हैं या नहीं, बस ये मायने करता है। और सबसे ज़रूरी है आपका खुश रहना। अगर आप खुश हैं, शांत हैं, तभी पढ़ाई अच्छे से हो पाएगी। तो दोस्तों, याद रखिए, प्रतियोगी परीक्षा सिर्फ किताबों की परीक्षा नहीं होती, बल्कि धैर्य, अनुशासन, सेल्फ कॉन्फिडेंस और निरंतर कोशिश की भी परीक्षा होती है। अगर हौसला मजबूत है, मेहनत है, लक्ष्य है, तो सफलता देर से मिलेगी, लेकिन मिलेगी ज़रूर। तो दोस्तों, लीजिए अब हमारे कार्यक्रम का अगला गीत। आवाज़ें हैं कीर्ति सागातिया राम संपत के, इसे लिखा है प्रसून जोशी ने और संगीतकार हैं राम।

ठीक है दोस्तों, अभी अपनी दोस्त श्रुति को इजाजत दीजिए, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, हंसते मुस्कुराते अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद। जय जोहार।

दो मेगा हर्ट्स पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:05 हो रहे हैं। वक्त है कार्यक्रम विवरण का। आज रात्रि 8 बजे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे संसद समीक्षा। शाम 6:20 और शाम 7 बजे सुनिएगा ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्में गीतों का कार्यक्रम। ईमेल करें, गीत सुने। शाम 7:30 पर सुनिएगा कार्यक्रम ग्राम सभा, जिसमें आज हम सुनेंगे बरसात में पशुधन के सुरक्षा विषय पर भी रखे गोट। साथ ही सुनिएगा फोन इन कार्यक्रम, जिसमें आज का विषय है खरीफ फसलों में जल प्रबंधन, और इस विषय पर श्रोताओं के फोन पर पूछे गए सवालों के जवाब देंगी कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर की प्रक्षेत्र प्रबंधक डॉक्टर चंचला रानी पटेल। साथ ही हम सुनेंगे मंडी और मौसम की जानकारी। रात्रि 8:15 पर खुशबू बिखरेगी रजनीगंधा की। रात्रि 9:15 से लेकर 11 बजे तक हम रिले करेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रमों को। ये तो थी आज के मुख्य कार्यक्रमों की जानकारी। आइए अब आपको बता देते हैं कल प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में।

कल प्रातः 6:30 पर सुनिएगा खेती की बात। सामिक सुझाव होगा करेला के उन्नत खेती विषय पर। वाचन स्वर होंगे नंद कुमार यादव के। कार्यक्रम चिंतन होगा प्रातः 6:45 पर। विषय होगा सत्यमेव जयते और आलेख होगा डॉक्टर रामानुज शर्मा का।

सुबह 8:30 पर हम लेकर आएंगे समन्वित कार्यक्रम डॉक्टर की सलाह, और सुबह 9 बजे सुनेगा कार्यक्रम बातों बातों में। इन दोनों ही कार्यक्रमों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से करेंगे।

सुबह 10:30 पर सुनेगा कार्यक्रम नए तराने। शाम 5 होगा प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ। शाम 5:35, 6:20 और शाम 7 सुनिएगा ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने। शाम 7:30 पर हम लेकर आएंगे किसान वाणी आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से। और इसी के साथ कार्यक्रम विवरण अब यहीं समाप्त होता है। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:10 होने को है। आइए अब जुड़ते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से और सुनते हैं छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब आप सुनेंगे छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन के संग रामेश्वरी बघेल के जय जोहार। पहले सुनाओ आज के प्रमुख समाचार। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जावत है। राष्ट्रपति है कहिन कि हथकरघा सिर्फ आजीविका के साधन नहीं है बल्कि समावेशी विकास के सशक्त माध्यम आए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा है कहिन है कि अनुसूचित जनजाति समाज ला समान नागरिक संहिता यूसीसी के दायरा ले बाहर रखे जाही और छत्तीसगढ़ में मातृ दूध कोष के स्थापना करे जाही। अब समाचार विस्तार ले। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हकीन है कि हथकरघा सिर्फ आजीविका के साधन नहीं है भलुक समावेशी विकास के सशक्त माध्यम घलो आए। आज नई दिल्ली में 12वां राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौका में कार्यक्रम ला संबोधित करत उमन कहिन कि हजारों बछर ले हथकरघा भारत के संस्कृति और सभ्यता के हिस्सा रहे है। हथकरघा हा देश के समृद्ध विरासत ला संजोए राखे के संगे संग रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति के प्रेम ला घलो बढ़ावा दे है। कार्यक्रम में राष्ट्रपति हा बछर 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार देन। ये पुरस्कार बुनकर मल्ला उनकर शिल्पकला नवाचार और भारत के हथकरघा परंपरा ला संजोए राखे के सेती देगीस। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हा अपन संदेश में कहिन है कि आजिक दिन ला देश हा अपन समृद्ध और जीवंत हथकरघा विरासत के जश्न मनाथे। देश के बुनकर और कारीगर मन के कला कौशल ला नमन करत श्री मोदी हा कहिन कि कतकुन पैत ले ये शिल्पकार मन देश के परंपरा ला संजो के राखिन है। एति सोशल मीडिया में एकठन पोस्ट साझा करत श्री मोदी हा कहिन कि सरकार हा हथकरघा क्षेत्र ला सरलक समर्थन देवत रही जौन ग्रामीण सशक्तिकरण और माइलोगन के अगुवाई में विकास के संगे संग आत्मनिर्भर भारत के सपना ला साकार करे बर महत्वपूर्ण स्तंभ है। उमन नागरिक मन ले अपन पसंद के हाथ ले सिरजाए जिनिस ला साझा करे बर हैशटैग नेशनल हैंडलूम डे के उपयोग करके वीडियो बनाए के आग्रह करीन है। ए बेरा उमन कहिन कि एखर ले हथकरघा ले जुड़े शिल्पकार मन ला प्रोत्साहन मिलही। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के मौका में आज रायपुर के पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय बुनकर सम्मेलन के आयोजन करेगीस। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल होइन। ये मौका में मुख्यमंत्री हा राज्य हथकरघा संघ के माध्यम ले पात्र बुनकर परिवार मन ला आने आने योजना के तहत 10 करोड़ 90 लाख रुपया ले ज्यादा के सहायता राशि प्रदान करीन। कार्यक्रम ला संबोधित करत मुख्यमंत्री हा कहिन कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के मंत्र ला आगू बढ़ावत राज्य सरकार हा बुनकर कारीगर और हस्तशिल्पकार मन ला सशक्त आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाए बर प्रतिबद्ध है। बुनकर और कारीगर मन के सम्मान हा संस्कृति स्वाभिमान और समृद्धि ला सशक्त बनाए के आधार है। कार्यक्रम ला विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह घलो संबोधित करीन। एबेरा मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष मन ग्रामोद्योग विभाग के प्रदर्शनी के घलो अवलोकन करीन। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा हकीन है कि अनुसूचित जनजाति समाज ला समान नागरिक संहिता यूसीसी के दायरा ले बाहर रखे जाही। उमन कहिन कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करे के तैयारी बर एकठन समिति गठित करके काम करे जावत है। समिति हा एखर ले जुड़े आने आने पहलू मन के घलो अध्ययन करत है। रायपुर में विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत काली राज्य स्तरीय कार्यक्रम के आयोजन करेगी। ये मौका में छत्तीसगढ़ के पहली मातृ दूध कोष यानी ह्यूमन मिल्क बैंक की स्थापना की घोषणा करेगी। ए बेरा स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल हा कहिन कि ये उदिम हा नान्हे लैका मन ला सुरक्षित ढंग ले महतारी के दूध देवाय मा महत्वपूर्ण होही। कार्यक्रम मा आने आने जिला के 10 जन महतारी मन ला माता यशोदा सम्मान देगीस। बता दें कि ये कार्यक्रम के उद्देश्य स्तनपान के महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ाना और मातृ शिशु स्वास्थ्य के सेवा ला मजबूत करना रहिस है। छत्तीसगढ़ हा कंप्रेस्ड बायोगैस सीबीजी इकोसिस्टम के विकास बर भारत सरकार ले 50 करोड़ रुपया के प्रोत्साहन राशि पवैया देश के पहली राज्य बन गए है। ये राशि पूंजीगत निवेश विशेष सहायता योजना के तहत स्वीकृत करेगी। एति मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हकीन कि एखर ले स्वच्छ ऊर्जा

0: किसान मन के आय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण ला बढ़ावा मिलही। राजपत्र में प्रकाशन के संगे संग प्रदेश में घलो धर्म स्वातंत्र्य अधिनियम 2026 लागू हो गए है। राजपत्र में अधिनियम के नियम के प्रकाशन के संग यह जम्मू राज्य में प्रभावी हो गए है। नवा नियम कानून के क्रियान्वयन के प्रक्रिया, प्रावधान और प्रशासनिक व्यवस्था ला स्पष्ट रूप ले निर्धारित करे गए है। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आपमन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम

0: निर्धारित करे गे हे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आप मन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हव।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: अब आगु बढ़थन बाचे समाचार गोती। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग हा SI संवर्ग और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा बछर 2024 के प्रारंभिक परिणाम लल्ले के सोशल मीडिया में बगरे अफवाह के खंडन करी से। आयोग है स्पष्ट रूप ले ही से कि परिणाम में उही नाव प्रदर्शित करे गए है जौन अभ्यर्थी मन अपन ऑनलाइन आवेदन में दर्ज करे रही। एति आयोग हा अभ्यर्थी और आम लोगन ले अपील करे है कि ओमन भ्रामक जानकारी ऊपर विश्वास झन करें और परीक्षा ले जुड़े जानकारी सिर्फ आयोग के आधिकारिक वेबसाइट ऊपर ही भरोसा करें। प्रदेश में MBBS और BDS प्रवेश के पहली चरण बर काउंसलिंग बर ऑनलाइन आवेदन 9 अगस्त ले शुरू होही। सरकारी और निजी मेडिकल के संग डेंटल कॉलेज में प्रवेश बर छात्र मन 16 अगस्त तक आवेदन कर सकी। उन्हें च्वाइस फिलिंग और लॉकिंग प्रक्रिया 9 अगस्त ले 17 अगस्त तक चलही। सुनैया मल्ला बता दन कि प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषय ऊपर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में ये दारी नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान ऊपर केंद्रित कार्यक्रम के प्रसारण करे जाही। एकर प्रसारण काली 8 अगस्त के आकाशवाणी केंद्र रायपुर डहरले FM और प्राइमरी चैनल में बिहनिया 9 बजे करे जाही। जिला छत्तीसगढ़ के जम्मू आकाशवाणी केंद्र एक संग्रह रिले करही। छत्तीसगढ़ के दुजन खिलाड़ी मधु सिदार और गीता यादव के चयन भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम में हुए है। दोनों खिलाड़ी 30 अगस्त ले 13 सितंबर तक चीन के मोको में होवैया जूनियर एशिया कप में देश की अगुवाई करही। उमन बिलासपुर के खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण लेवत है। एति खेल मंत्री अरुण सावहा दोनों खिलाड़ी मन ले वीडियो कॉल में गोट बात करके उमनला प्रतियोगिता पर शुभकामना दीन है। धमतरी जिला के नवागांव के रेणुका गोस्वामी ला 15 अगस्त के दिन राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम में शामिल होए बर न्योता मिले है। एकर बाद उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ओमल्ला बधाई और शुभकामना देवत कही कि ये सम्मान छत्तीसगढ़ के बेटी ग्रामीण युवा और कौशल विकास की सफलता के प्रतीक आए। रेणुका गोस्वामी हा पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल विकास योजना के तहत प्रशिक्षण लेके अपन चिन्हारी बनी से। रायपुर के भाजपा कार्यालय में हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा ऊपर बैठक आयोजित करेगी। एकर बाद पत्रकार मन ले गोट बात करत उप मुख्यमंत्री अरुण सावह कहिन कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश में 10 ले 14 अगस्त तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाले जाही। वहीं 11 ले 15 अगस्त तक हर घर प्रतिष्ठान और कार्यालय मन में तिरंगा फहराए बर जन जागरण अभियान चलाए जाही। उमन कहिन कि भाजपा कार्यकर्ता गांव गांव और गली गली जाके लोगन ला तिरंगा बांटी और घर में फहराए बर कही। श्री साव कहिन कि बस्तर के माओवाद प्रभावित इलाका में जिहां कभू तिरंगा नहीं फहरीस वहां विशेष रूप ले ये अभियान चलाए जाही। गौरेला पिंडरा मरवाही जिला में 18 ले 21 अगस्त तक 26वां राज्य स्तरीय शालेय क्रीड़ा प्रतियोगिता के आयोजन करे जाही। प्रतियोगिता में प्रदेश के 5 संभाग ले 14 ले 19 बछर के करीबन 540 खिलाड़ी शामिल हुई। ये प्रतियोगिता में जिम्नास्टिक क्रिकेट ताइक्वांडो और कबड्डी के स्पर्धा हुई। आखिर में प्रमुख समाचार एक घाव फिर। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जावत है। राष्ट्रपति है कहिन कि हथकरघा सिर्फ आजीविका के साधन नहीं है भलुक समावेशी विकास के सशक्त माध्यम आए। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा है कहिन कि अनुसूचित जनजाति समाज ला समान नागरिक संहिता UCC के दायरा ले बाहर रखे जाही और छत्तीसगढ़ में मातृ दूध कोष के स्थापना करे जाही। एकरे संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यह सिरावत है। जय जोहार।
2: FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के

6:20 हो रहे हैं। वक्त है ईमेल पर आधारित फरमाइशी कार्यक्रम का। कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने में आप सभी का स्वागत है। श्रोताओं, कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का पहला फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं। भूचो खेचिया बठिंडा से प्रेम सिंह जोड़ा, मनजीत कौर, करणवीर, करण, दपिंदर, वरिंदर, सिमरन, एकम, दमन और अभिजोत। मन की लोरमी से नारायण खांडे, रजनी, तुषार, समीर खांडे। पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस निखिल, यशस्वी वर्मा। लच्छनपुर से रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मे शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू। सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, सलमा बेगम, रेहान और फैजान मोहम्मद। पिपरिया से कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम। समडिल नवापारा से मुकेश गुप्ता, श्रद्धा, अदिति, राधे, दीपक, अंकु और राघव गुप्ता। यवतमाल विदर्भ महाराष्ट्र से संतोष खड़से और विनोद खड़से। बठेना पाटन दुर्ग से बलकरण वर्मा, अंजनी, ज्योति, निधि, निखिल, संजय, आशु, राजिम और रजमत वर्मा। गांधी चौक बाड़मेर राजस्थान से बबलेश पवार, डैनी और मनीष पवार। गांव लोहगढ़ ठाकुरावाला से स्वर्ण सिंगिल, दलजीत, राजदीप, गुरलाल, अविराज, गुरनूर और शुभदीप सिंह। शास्त्री नगर बीड शहर से किशन सपकाल, आशा, सोनिया, विशाल सपकाल। वाशिम महाराष्ट्र से विठल सुरोशे, सुषमा, परिधि, मायरा सुरोशे। देवरी भाटापरा से केआर साहू, आकाश, कमलेश, गनुलाल रजक और मुरली क्षत्रिय। शेरी वड़नेर महाराष्ट्र से बलदेव दामोदर, अरुणा, अनामिका दामोदर। ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक, बलवीर सिंह। सेक्टर 67 मोहाली चंडीगढ़ से टीडी मल्होत्रा, ऋतिक, प्रतीक, अनिल शर्मा, जयवीर सिंह और अमनदीप। कालका से हमारे साथी है शुभचंद्र बजाज, साहिल और बिट्टा बजाज। डाबकी रोड अकोला से सुशीला देवी मंदुरकर, सदानंद और कुमार गौरव मंदुरकर। मदनपुर से श्रवण कुमार साहू, योगेश, राहुल साहू। बठिंडा रोड मंडी डब्वाली से राजेंद्र नारंग, अंजू मोहित, तान्या नारंग। वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू थॉमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से सैयद मसरूर शायना, परवीन नाजिया, इब्राहिम। रैया रोड राजकोट से राजेश कृष्णा, प्रथम स्वाति और ख्याति कुमारी। पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग और पूनाराम देवांगन, इनके साथ है कृष्णा। लुतरा खमरिया से अक्रम अमीन, अर्श और आतिका। दतरेंगी भाटापारा से हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्रमणि और नोखेलाल वर्मा। महाराष्ट्र से रूपेश संघई, महेश, प्रज्ञेश, प्रीतेश संघई। पोटिया कलादुर्ग से संजय साहू, सुजाता, शशांक, सीमा साहू। कोपरगांव से सुरेश माड़ोदे, वर्षा माड़ोदे। नेवासा से अमोल लोखंडे और शारदा। नैला बोरसरा से हेमदेव तिवारी, दुर्गा प्रसाद, अमन कुमार, उमाबाई, मीनाक्षी, अंजुलता, विष्णु प्रसाद तिवारी। लालपुर मारो से कीर्ति कुमार ध्रुव, संतोषी, निम्मी, पम्मी, सिया, हर्षिता और निशांत ध्रुव। दादा बाबू रोड गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासिन अंजान, साइमा नवाज, हसन, बाबू अहद, मिफ्रा नवाज और चाहत। बगबुड़वा पथरिया से नरेन नेताम, कुसुम नेताम। गांव जामथड़ा कच्छ गुजरात से गंगा वणकर, प्रीति, जूली, गीता और महिमा। सांदुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़। मस्तानपुरा पूर्णा जंक्शन से अनंता भगत, अरुणा सुलोचना और चेतन भगत। ग्राम कोयलारी कवर्धा से कैलाश चंद्राकर, मुकुंद पूर्णेंद्र और साहिल चंद्राकर। टैगोर गार्डन नई दिल्ली से रविंद्र सिंह छाबड़ा, स्वीटी छाबड़ा। राहुल नगर अमरावती से सिद्धार्थ गोंडाने, अर्चना ताई, हीरोमन शेंडे, प्रणय और प्रसिद्धि। पद्मा टॉकीज नेपानगर मध्य प्रदेश से सुदर्शन शाह, पल्लवी, प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन और राजेंद्र शाह। बिहार स्टेट डुमराव से आसमा अंसारी, आमना और वली उल्लाह अंसारी। जेल रोड रायगढ़ से नरेंद्र कुमार तिवारी, महेंद्र कुमार, जोई गुड़िया, यामिनी और उमा तिवारी। भोपालगढ़ राजस्थान से धर्मेंद्र छिम्पा, कपिल, पूजा परिहार। गिर्रा पलारी से वीरेंद्र साहू, सोनू, आशीष, कपिल साहू। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं ए हरिहरन और सुरेश वाड़कर की आवाजों में गुलजार का लिखा हुआ गीत। संगीतकार है विशाल भारद्वाज और फिल्म का नाम है माचिस।

कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने में अभी हमने सुना ए हरिहरन और सुरेश वाडकर की आवाजों में माचिस फिल्म का गीत। कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में अकेले हम अकेले तुम फिल्म का गीत, जिसे संगीत से सजाया है अनु मलिक ने और गीतकार हैं मजरूह सुल्तानपुरी। इस गीत की फरमाइश हमें ईमेल के माध्यम से भेजने वालों के नाम हैं महसूल सीतामढ़ी से अकरम हुसैन, प्रिंस इशरत, वसीम, रुबीना, आरिज, नदीम, शमीम, ममता, रानी शर्मा, पूनम कुमारी शर्मा, जमशेदपुर से अपूर्व सिंह, अनुपम कुमारी, राकेश कुमार, पश्चिम बिहार दिल्ली से नीरज अग्रवाल, सहज श्लोक अग्रवाल, अनारकली बाजार जगराव से सुनील पाठक, कमल दीपिका मल्होत्रा, गव्या सुच्चा सिंह पाठक, पोटियाला दुर्ग से संजय साहू, सुजाता शशांक, सीमा साहू, भाटापारा से विष्णु साहू, पूरव वीरा, हर्ष कुमकुम, योगेश्वरी साहू, पथरिया भरेवा से चंद्रलाल सिंगरौल, नारायणी, नोमेश नेहा और वान्या सिंगरौल, नेहरू चौक पैठन से सुरेश जाधव, अनीता आरती, पूजा प्रसाद, सोनल सिया जाधव, सरगुजा मैनपाट से रूबीना थापा, रेशमा सोनम, फातिमा आदिबा और आसमा थापा, सालेह भाटा महासमुंद से जीतू ध्रुव, केवल किरण, दिव्यांशी और खेमू ध्रुव, नरगोड़ा छत्तीसगढ़ से कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मी देवी, जोगेशपुरी, ट्विंकल

पल मीनाक्षी निशा और तुलसी गोस्वामी, खेल बाजार पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल नानक चंद मल्होत्रा, शिवाजी कॉलोनी रोहतक से पीयूष सिक्का, कुनिका डुग्गू सिक्का, रोहांसी से मुकेश साहू, नंदिनी मनीष, मयंक और जानकी साहू, महादेव घाट अमलेश्वर से डोमन ठाकुर, सुमन मिथिलेश तारण ठाकुर, दतरंगी भाटापारा से द्वारका प्रसाद वर्मा, किशोर कुमार वर्मा, बल्लारपुर जिला चंद्रपुर महाराष्ट्र से हेमंत कुमार भारशंकर, प्रिया ओमी समीक्षा भारशंकर, तेवरता डबरीपारा से महेंद्र प्रताप मरकाम, जया जागेंद्र गजेंद्र, जयंती ममता मनीषा सुरेंद्र, मोहन सिंह मनमोहन सिंह, गिरजाबाई मरकाम और चंद्रपाल मरावी, ग्राम पिपरलोड सरगांव से दीपेश वर्मा, पूनम ज्योति और शिवांश वर्मा, वरवट बकाल बुलढाणा से नारायण हागे, कमल दिव्या जय हागे, ग्राम राजापुर जिला सूरजपुर से मानिक राम प्रजापति, सविता घनश्याम राम, हरिशंकर रत्नेश कुमार और प्रशांत प्रजापति, ग्राम कालापारा सरगुजा से राम चंद्र गुप्ता और पांडे राम राजवाड़े, दुर्गा कॉलोनी हांसी से राजू मिगलानी, बबीता सुभाष योगी, बब्बू और डब्बू, रोहिदास चौक पंडरपुर सिटी से प्रशांत शिंदे, सुनीता यशराज और कृष्णा घोड़के, लगान पंडरिया से हमारे साथी हैं उत्तम कुमार बघेल, रुखमनी साहिल भारती बघेल, लच्छनपुर जिला बलौदा बाजार से विश्वनाथ साहू, पंकज तिरुपति साहू, ओवरेठी पारा भाटापारा से अनीता साहू, वीणा नेहा मोनिशा साहू, भिलाई तीन चरौदा से नौशाद अहमद सिद्दीकी, हमीदून जीशान शहनवाज अहमद सिद्दीकी, मेहरनगर उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत गवहाणकर, सरिता प्रणीता सिद्धांत प्रिंस और एकांश गवहाणकर, नागपुर से वैशाली शैलेश गवहाणकर, श्वेता सुमित और ध्वनि, जिला मुरादाबाद ग्राम दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मोहम्मद फरमान, सलमान इरफान, इसरार और नरगिस खातून, बागबहरा भदरसी से पन्नालाल सेन, खुशबू तारा कौशल सेन, जमानिया गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश जायसवाल, उर्मिला दीपक, स्वाति जायसवाल, गमरिया जमशेदपुर से रोहन जायसवाल और आर्य जायसवाल, तेलंगाना निजामाबाद से शेख अल्लाह बख्श, बेगम राबिया शेख और रहीम मुन्ना, जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्टो, रोजी पर्ल विलिस डिकेस्टो, बक्सर बिहार से शरफुद्दीन अंसारी, फातिमा खातून और आसमा खातून अंसारी, सारिमपुर बक्सर से राज एस डी अंसारी और असलम अंसारी, इंदिरा चौक दिल्ली से अजीम वकार, माहिरा अजीम और जेबा अजीम, ग्राम पजोनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसौलिया, आदर्श सार्थक और अलौकिक चंसौलिया, अहमदाबाद से महिमा रूपल और राधिका श्री माली, बुलढाणा वड़शिंगी महाराष्ट्र से अमोल मानकर, शोभा दीपाली श्लोक कुमार, बुलढाणा इस्लामपुर से सहदेव दामोदर, शशिकला साधना और सुमेद, लुतरा खमरिया से नकुल शाम, मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अजीज, पटेल नगर मलौट से रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू और गुड्डू जाजोरिया, स्टेशन रोड जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू, पप्पी भाटिया, रायपुर से हमारे साथी हैं नीलू मेघ, वंदना कुमार और बिट्टू कुमार। आइए सुनते हैं आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर अकेले हम अकेले तुम फिल्म का ये गीत।

0: कंप्रीमियम ज्यादा बोनस अपनों के लिए सबसे सही RPLI इससे बेहतर कुछ नहीं।
1: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
2: श्रोताओं, महिला सभा हेतु एक सूचना सुनिए। कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण हर महीने के दूसरे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 11 अगस्त 2026 मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसका रिकॉर्डिंग 10 अगस्त दिन सोमवार को दोपहर 3 बजे से 3:30 के बीच की जाएगी। आप हमें फोन करके डॉक्टर से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे कार्यक्रम की विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता और आपसे चर्चा का विषय होगा फेफड़े एवं श्वसन रोग और उपाय। आप हमें फोन कर सकते हैं नंबरों पर 0775226592। आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुनने में। आइए अब आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अनुराधा पौडवाल की आवाज में सड़क फिल्म का गीत, जिसे लिखा है समीर ने और संगीतकार है नदीम श्रवण। इस गीत की मिलीजुली फरमाइश हमें ईमेल के माध्यम से भेजने वालों के नाम है गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, बिमला इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा, भाटापारा से हिमकेश्वर साहू, करण राहुल चंपा साहू, तेलंगाना भोंगिर से मोहम्मद बुरहानुद्दीन और यूसुफ उद्दीन, दादरी गेट भिवानी से कृष्ण मेहरा, कोमल किरण कपिल कुणाल मेहरा, ग्राम पहरा अहिवारा जिला दुर्ग से पोषण बंछोर, चंद्रकिरण, प्रीति और छाया बंछोर, रिंगनी से दिनेश वर्मा, करुणा वर्मा, चिरमिरी कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ राम सहोदर, रसेड़ा से इंद्रभान मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश कुमार, संध्या कीर्ति कुमार, डिकेश वासु, डॉली पूर्वेश साहू, लोरमी चचेड़ी से शंकर कोलाम, संतोषी, संजय, संध्या, शिवम कोलाम, देवरी भाटापारा से गनुलाल रजक, के आर साहू, अश्विनी वर्मा, गणेश राम, बिहारी कॉलोनी दिल्ली से तुलसी मस्कीन, वीना चैतन्य, मेघा मस्कीन, नांदघाट कातलबोड़ से भाग सिंह राजपूत, भाग्यश्री, टिकेश्वर और ऋतु राजपूत, ग्राम उचभट्टी से मुकेश गोस्वामी, मधु, आशीष, शिवन्या, अन्नू गोस्वामी, सोंगा मगरलोड से फनेश कुमार चंदन, सावित्री देवी, मोहित कुमार, देविका रानी, गजेंद्र पार्थ और हेयांश चंदन, बलौदा से दिलहरण गौता, मंजली, आनंद पटेल।

समृद्धि पटेल, बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल मंजू, रंजना बंदना प्रियल और दिव्यांशी विश्वकर्मा, मजनू का टीला दिल्ली से कमल बालूजा, मधु सागर बालूजा, सतना मध्य प्रदेश से उमंग मलिक, आकांक्षा और माही मलिक, इंदिरा चौक तखतपुर से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, सिद्धार्थनगर दरियापुर बावली से गजानन येले, नवदीप विश्वदीप और अशोक येले, नलेश्वर नगर नरवेल महाराष्ट्र से पीएस नावकर, निर्मला विशाल नावकर, बिहार से याकूब आसमा कुरैशी, यूसुफ सरफुद्दीन, वसीम सलीम कलीम और आसमा कुरैशी, छत्रपति संभाजीनगर से राजेश साबले पाटिल, राजदीप, राशि और शीतल, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार साहू, बीमा वैभवी विनोद विभूति अंशु बबली और प्रियांशु साहू, गांव खेड़ावाड़ी जिला हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोड़खे, नंदा हनुमान उत्तम जमदाड़े और ग्राम सोनपुर फुलवारी कला जिला मुंगेली से सीताराम यादव, चित्तू कीर्ति, यश कुमार देवी, मेघा रामसरुन, ललिता यादव।

0: अनुराधा पौडवाल के गाए सड़क फिल्म के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने का ये अंक अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 6:45 होने को है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से और सुनते हैं प्रादेशिक समाचार।
1: ये आकाशवाणी का रायपुर और सरायपाली केंद्र है। अब आप सुनेंगे प्रादेशिक समाचार।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी।
3: ये राशन के 15,000

0: जियो के 2000
1: और लाइट बिल के
0: अब 0 रुपए कैसे दूं?
1: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
0: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
3: हर घर सूर्य घर।
4: कम प्रीमियम, ज्यादा बोनस, अपनों के लिए सबसे सही RPLI, इससे बेहतर कुछ नहीं।
5: अपने परिवार को दीजिए सुरक्षित जीवन रूरल पोस्ट लाइफ इंश्योरेंस RPLI की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के साथ। अपने नजदीकी डाकघर से आज ही संपर्क करें या indiapost.gov.in पर लॉग ऑन करें।
6: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
7: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
6: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
7: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं, उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
6: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने ना आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
7: क्यों?
6: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
8: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
9: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
10: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
9: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
10: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
9: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
10: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
8: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए, विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
11: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
10: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
11: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
10: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
11: आकाशवाणी से।
8: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर, आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
12: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि अनुसूचित जनजाति समाज को समान नागरिक संहिता UCC के दायरे से बाहर रखा जाएगा। नवजात शिशुओं को सुरक्षित मातृ दुग्ध उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ में ह्यूमन मिल्क बैंक की स्थापना की जाएगी और राज्य की 2 खिलाड़ी मधु सिदार और गीता यादव का चयन भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम के लिए किया गया। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। आज नई दिल्ली में 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हजारों वर्षों से हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न हिस्सा रहा है।
13: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृति पोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भर

0: कर्तव्य से भी जुड़ा।
1: कार्यक्रम में राष्ट्रपति ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपरा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा कि इस दिन देश अपनी समृद्ध और जीवंत हथकरघा विरासत का जश्न मनाता है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा करते हुए श्री मोदी ने कहा कि सरकार हथकरघा क्षेत्र को निरंतर समर्थन देती रहेगी। उन्होंने नागरिकों से अपने पसंदीदा हथकरघा उत्पादों को साझा करने और हैशटैग नेशनल हैंडलूम डे का उपयोग करके वीडियो बनाने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि इससे इस क्षेत्र से जुड़े शिल्पकारों को प्रोत्साहन मिलेगा। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आज रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में राज्य स्तरीय बुनकर सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने राज्य हथकरघा संघ के माध्यम से पात्र बुनकर परिवारों को विभिन्न योजनाओं के तहत 10,90,00,000 रूपये से अधिक की सहायता राशि प्रदान की। साथ ही उत्कृष्ट बुनकरों को राज्य स्तरीय पुरस्कारों से सम्मानित किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोकल फॉर लोकल के मंत्र को आगे बढ़ाते हुए राज्य सरकार बुनकरों, नागरिकों, कारीगरों और हस्तशिल्पियों को सशक्त, आत्मनिर्भर और समृद्ध बनाने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। बाद में पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हथकरघा उत्पाद की बिक्री के लिए सरकार ने देश के 5 एयरपोर्ट को शोरूम के लिए अधिकृत किया है।
2: आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। सबसे पहले तो समस्त छत्तीसगढ़ वासियों को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं और बुनकर समाज के उत्थान के लिए सरकार खड़ी है। 2.5 वर्षों में उनके लिए काफी काम किए हैं। उनके उत्पाद को और मार्केटिंग देने के लिए, प्रचार प्रसार के लिए हम लोग देश के 5 एयरपोर्ट को भी शोरूम के रूप में ले रहे हैं।
1: कार्यक्रम को विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने भी संबोधित किया। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि अनुसूचित जनजाति समाज को समान नागरिक संहिता यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में समान नागरिक संहिता के संबंध में सुझाव देने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। समिति इस संबंध में विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रही है। आम नागरिकों और संगठनों से भी सुझाव मांगे गए हैं।
3: छत्तीसगढ़ में यूसीसी के लिए कमेटी बना करके और रंजना देसाई जी जो हैं उनके माध्यम से इस पर काम किया जा रहा है। लोगों से फीडबैक लिए जा रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है कि अनुसूचित जनजाति समुदाय इससे अलग होगा, उसके लिए बात नहीं होगी। लेकिन बाकी जितने भी समाज हैं, चूंकि वो पारंपरिक का जीवन का है, इसलिए बाकी जितने भी और समाज, सारे ही समाजों के लिए एक कानून, एक प्रावधान होना चाहिए। इस पर छत्तीसगढ़ में भी काम किया जा रहा है। आने वाले समय में ये हम देखेंगे कि यूसीसी हमारे छत्तीसगढ़ में भी लागू।
1: रायपुर में विश्व स्तनपान सप्ताह के तहत कल राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर छत्तीसगढ़ के पहले मातृ दूध कोष यानी ह्यूमन मिल्क बैंक की स्थापना की घोषणा की गई। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने कहा कि यह पहल नवजात शिशुओं को सुरक्षित मातृ दुग्ध उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण होगी। कार्यक्रम में विभिन्न जिलों की 10 माताओं को माता यशोदा सम्मान से सम्मानित किया गया। छत्तीसगढ़ कंप्रेस्ड बायोगैस CBG इकोसिस्टम के विकास के लिए भारत सरकार से 50 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। यह राशि पूंजीगत निवेश विशेष सहायता योजना के तहत स्वीकृत की गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि इससे स्वच्छ ऊर्जा, किसानों की आय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। रायपुर स्थित भाजपा कार्यालय में हर घर तिरंगा अभियान और तिरंगा यात्रा को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद पत्रकारों से चर्चा करते हुए उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि हर घर तिरंगा अभियान के तहत प्रदेश में 10 से 14 अगस्त तक भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। वहीं 11 से 15 अगस्त तक हर घर प्रतिष्ठानों और कार्यालयों में तिरंगा फहराने के लिए जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता गांव-गांव और गली गली जाकर लोगों को तिरंगा वितरित करेंगे और घरों पर तिरंगा फहराने के लिए प्रेरित करेंगे। श्री साव ने कहा कि बस्तर के माओवाद प्रभावित क्षेत्रों में जहां कभी तिरंगा नहीं फहरा, वहां विशेष तौर पर यह अभियान चलाया जाएगा।
4: राजधानी रायपुर में तिरंगा यात्रा का आयोजन 10 अगस्त को प्रातः 10 बजे से होगा। पूरे प्रदेश भर में तिरंगा यात्रा की तैयारी पार्टी ने

0: दी है। हर मंडल में, हर नगरी निकाय में और पंचायतों में भी, बड़ी पंचायतों में तिरंगा यात्रा का आयोजन की तैयारी है। और बस्तर में नक्सलवाद के कारण बड़ी संख्या में गांव जहां कभी तिरंगा झंडा नहीं फहरा, ऐसे गांवों में विशेष रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहराने की योजना है।
1: प्रदेश की दो खिलाड़ी मधु सिदार और गीता यादव का चयन भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम में हुआ है। दोनों खिलाड़ी 30 अगस्त से 13 सितंबर तक चीन के मोकी में होने वाले जूनियर एशिया कप में देश का प्रतिनिधित्व करेंगी। वे बिलासपुर के खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण ले रही हैं। उप मुख्यमंत्री और खेल मंत्री अरुण साव ने दोनों खिलाड़ियों से वीडियो कॉल पर बात कर उन्हें बधाई दी और प्रतियोगिता के लिए शुभकामनाएं दी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने एसआई संवर्ग और प्लाटून कमांडर भर्ती परीक्षा 2024 के प्रारंभिक परिणाम को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों का खंडन किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि परिणाम में वही नाम प्रदर्शित किए गए हैं जो अभ्यर्थियों ने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में दर्ज किए थे। आयोग ने अभ्यर्थियों और आम लोगों से अपील की है कि वे भ्रामक जानकारी पर विश्वास न करें और परीक्षा से जुड़ी जानकारी के लिए केवल आयोग की आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करें। प्रदेश में एमबीबीएस और बीडीएस प्रवेश के प्रथम चरण की काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन आवेदन 9 अगस्त से शुरू होंगे। शासकीय और निजी मेडिकल तथा डेंटल कॉलेजों में प्रवेश के लिए विद्यार्थी 16 अगस्त तक आवेदन कर सकेंगे। वहीं चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की प्रक्रिया 9 अगस्त से शुरू होकर 17 अगस्त तक चलेगी। धमतरी जिले के नवागांव की रेणुका गोस्वामी को 15 अगस्त के अवसर पर राष्ट्रपति भवन में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने उन्हें बधाई और शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि यह सम्मान छत्तीसगढ़ की बेटियों, ग्रामीण युवाओं और कौशल विकास की सफलता का प्रतीक है। रेणुका ने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत प्रशिक्षण प्राप्त कर अपनी पहचान बनाई है। श्रोताओं, प्रादेशिक समाचार एकांश के समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में के तहत इस बार नशा मुक्त युवा विकसित भारत संकल्प अभियान पर केंद्रित कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। इसका प्रसारण कल 8 अगस्त को आकाशवाणी केंद्र रायपुर द्वारा एफएम और प्राइमरी चैनल पर सुबह 9 बजे से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। गौरेला पिंडरा मारवाही जिले में 18 से 21 अगस्त तक 26वीं राज्य स्तरीय शालेय क्रीडा प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। प्रतियोगिता में प्रदेश के पांचों संभागों से 14 से 19 वर्ष आयु वर्ग के करीब 540 खिलाड़ी शामिल होंगे। प्रतियोगिता में जिम्नास्टिक, क्रिकेट, ताइक्वांडो और कबड्डी की स्पर्धाएं होंगी। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आज रायपुर में आयोजित कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना के तहत पात्र महिलाओं के खातों में 30वीं किश्त की राशि ऑनलाइन जारी की। प्रदेश में प्रभावी नीति निर्माण और डेटा आधारित निर्णय प्रणाली को बढ़ावा देने के लिए योजना आर्थिक और सांख्यिकी विभाग, राज्य नीति आयोग और आईआईएम रायपुर के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। और दुर्ग जिले के स्मृति नगर पुलिस ने 15 ग्राम हीरोइन के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया है। जब्त हीरोइन की कीमत 3,40,000 रुपए बताई जा रही है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने कहा है कि अनुसूचित जनजाति समाज को समान नागरिक संहिता यूसीसी के दायरे से बाहर रखा जाएगा। नवजात शिशुओं को सुरक्षित मातृदुग्ध उपलब्ध कराने के लिए छत्तीसगढ़ में ह्यूमन मिल्क बैंक की स्थापना की जाएगी। और राज्य की दो खिलाड़ी मधु सिदार और गीता यादव का चयन भारतीय महिला जूनियर हॉकी टीम के लिए किया गया। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
2: एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। श्रोताओं, कृपया एक महिला सभा हेतु सूचना सुनिए। कार्यक्रम स्वास्थ्य वार्ता फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण हर महीने के दूसरे मंगलवार को होता है। इस माह इसका प्रसारण 11 अगस्त मंगलवार को शाम 5:35 से किया जाएगा। इसका रिकॉर्डिंग 10 अगस्त सोमवार को दोपहर 3 बजे से 3:30 के बीच की जाएगी। आप हमें फोन करके डॉक्टर से अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारे कार्यक्रम की विशेषज्ञ होंगी डॉक्टर आकांक्षा गुप्ता और आपसे चर्चा का विषय होगा फेफड़े एवं श्वसन रोग और उपाय। आप हमें फोन कर सकते हैं नंबर पर

07752-2665592 आपके फोन का हमें इंतजार रहेगा। सूचना समाप्त हुई। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। कार्यक्रम है ईमेल करें गीत सुने। इस अंक का पहला फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं ग्राम बुड़गहन से रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश कुमार, चंद्रकांता और शशिकांता प्रजापति। सूर्यनगरी जोधपुर राजस्थान से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी, कल्पित और गर्वी। कोटवा नारायणपुर बाबापट्टी बलिया से ओम प्रकाश राय, उषा, अमित, हैप्पी राय। दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से प्रतीक राय, रोशनी और प्रांजल राय। अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, राहुल, गोपी वर्मा। रघुवीर नगर दिल्ली से दिलावर खान, हसीना बानो और एलिजा नायाब। डोंगरगांव से राष्ट्रपाल गजभिये, राधिका, अनिष्का और तन्मय गजभिये। हसदा नंबर 2 से कमलेश साहू, जितेंद्र पायल साहू। भाटापारा से हमारे साथी हैं बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोवाराम वर्मा, सूरज बारेकर, नारायण यदु और भुवन कामरी। भिलाई नगर से अशोक श्याम कुंवर, प्रमिला, आसमा श्याम कुंवर। भानबेड़ा मुंगवाल से भरत राम पड़ोटी, जयंती, हेमंत, उमंग और मोक्ष पड़ोटी। कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ सिंह। सुराणा मोहल्ला बीकानेर से नरेंद्र सुराणा, कांतिलाल, शरद, मयंक, विमल अभाणी, लालेंद्र, होलेंद्र, रॉनी जैन और प्रमोद दमाणी। नागचून रोड संजय कॉलोनी खंडवा से अब्दुल गफ्फार डावर, अब्दुल हक, जियाउल हक, मोहम्मद उमर डावर, राजेंद्र कटारे। भाटापारा से सोहन जोशी, पायल जोशी। पाकुड़ झारखंड से उत्तम कुमार भगत, श्वेता, किसु, तासु, अर्णवानंद, सत्यमानंद। बोड़ागाछी पश्चिम बंगाल से मुन्ना भगत और गुड्डी भगत। ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां, ये हमारे साथी हैं आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से। मोंताला महाराष्ट्र से विजय सुरड़कर, रत्नमाला और आरती कुमारी। बिलाईगढ़ से रोशनलाल देवांगन, कौशल्या, हेमलता, डिम्पल देवांगन। ग्राम पंचायत खोंदला उदयपुर सरगुजा से जीवधन सिंह पैकरा, घुरनी, करिश्मा, कलेश्वर सिंह, सोमार साय, सुखराम, हीरामणि पैकरा। सावंतपुर से ऋषि सेन, रितेश, कंचन माही। ऊपरकोट मोहल्ला चौखुंटी बुलंदशहर से मोहम्मद सईद अब्बासी, निगत परवीन, शाहनवाज, सरफराज, फरदीन, सुहान अरजान और अबान अब्बासी। बिलासपुर से हमारे साथी हैं छन्नूलाल श्रीवास, अनीता, पुष्पा, अंजू, योगिता, रजन साहू, हेमंत नामदेव और धर्मदास वाधवानी। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाजों में दिल तो पागल है फिल्म का गीत, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और संगीतकार है उत्तम सिंह।

उदित नारायण और लता मंगेशकर की आवाज़ों में दिल तो पागल है फिल्म का गीत अभी हमने सुना। कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने में। कार्यक्रम में आइए आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में राजा फिल्म का गीत, जिसे लिखा है समीर ने और संगीतकार है नदीम श्रवण। इस गीत की मिलीजुली फरमाइश हमें ईमेल के माध्यम से भेजने वालों के नाम हैं उत्तम नगर दिल्ली से बोधराज खोरवाल, कमला रानी, गीतिका और भानु, जिला खरगोन सनावद मध्य प्रदेश से अशोक वर्मा, अर्चना, अनुज, आयुषी, रमेश चंद्र और शेख मूसा और इनके साथ है राजकुमार बुडाना, आदलपुरा गोगावा से संजय बामनिया, माया कान्हा और कृष्णा, चांदनी चौक गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की नानू, रविंद्र, रौनक सेन, चंद्रनगर सहारनपुर से कौशल्या जोशी, अजीता और गोवर्धन रोड मथुरा से दुर्गा कुमारी, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी ठाकुर साहब, मदरसा गेट भाऊपुर मड़ियाहू जौनपुर से इरशाद अहमद अंसारी, कामरान अरमान, नवेद अजरा तबस्सुम, रायपुर अनेई जिला बनारस से अब्दुल माजिद अंसारी, नौरीन और आफिया परवीन, झुमका सिटी बरेली से शाहरुन नूर अंसारी, मोइन तस्लीम, सर्वेश सैनी और प्रधान, भूतकछार लोरमी से दुर्गेश मरकाम, निर्मला दीपक, धनराज मरकाम, निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत सिंह और लवप्रीत कौर, इंदिरा विहार दिल्ली से अंसारी निशा, डब्लू अंसारी, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, मोनो सोनू, कान्हा, आदित्य देवांगन, जांजगीर चांपा से दिलदार मीरी, ज्योति जाह्नवी, दीक्षांत मीरी, कुंभार गली कोलगांव से पांडु चंदन, उषा प्रतीक्षा प्रथमेश चंदन और इनके साथ है पांडुरंग कुंभार, सौराष्ट्र

राजकोट से जूली जगदीश गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी। ग्राम पंचायत सिरकुतंगा महादेव पारा पोस्ट लहपटरा जिला सरगुजा से योगेश कुमार राजवाड़े, श्याम राजवाड़े, परमान लल्लू बल्लू घनू, अमित कुमार, अभिजीत, गोविंद, तरुण, सकलराम, प्रियांशु, राजकुमारी, नेहा, नायरा, समायरा, खुशी, सौम्या, उमेश्वरी, मुन्नीबाई, सोनामती, माया राजवाड़े और सिमरन राजवाड़े। मलौट पंजाब से राज शर्मा, मीना, योगेश, निवान, सौरव, शाइना और मैंडी शर्मा। गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार दूदी, प्रमोद कुमार, सौरभ दूदी। जेल रोड जालंधर से रोशन जहां, नुसरत और मन्नत जहां। दतरेंगी से भागवत वर्मा, शांति देवी, लीलावती, विनीता और रुद्र वर्मा। मऊनाथ भंजन उत्तर प्रदेश से राजेश कुमार वर्मा, प्रीति, कार्तिक, आर्यन वर्मा। शिव मंदिर हकीकतपुरा मऊ से मुन्ना भाई स्वर्णकार, पिंकी, आर्यन, कृष्णा और पीहू स्वर्णकार। ग्राम पुतकी कला कवर्धा से राधेश्याम पांडे, वीणा, विनय शंकर, नयन पांडे। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं राजा फिल्म का ये गीत।

कार्यक्रम का अगला फरमाइश गीत सुनना चाहते हैं ग्राम बेवरा संबलपुर से शिवदयाल वर्मा, नरोत्तम तुषार वंशिका वर्मा, भाटापारा से दान सिंह रावत, पद्मिनी शुभम सौरभ रावत, ग्राम गतौरा से बोधीराम, आर्यन शंकर, अमन सूरज राठौर, मुन्ना पाठक, कुलदीप प्रधान, विजय पांडे, संतोष यादव, जितेंद्र श्रीवास, चंद्र प्रकाश लहरे, डोंडी लोहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय तुषार डॉली, पूजा आरती और प्रभा देवी तामुरिया, मारहरा दरवाजा ईटा से नबी हसन अब्बासी, रसीद वारसी, नवेद सुहेल और अनम अब्बासी, पानीपत हरियाणा से अनिल कटारिया, मंजू नरेश मल्होत्रा, ज्ञान भूषण शर्मा, पीपरपारा पालचुआ मुंगेली से उत्तरा दिवाकर, परमेश्वरी भानुप्रिया, योगिता नितिन वंशिका दिवाकर, रानीगांव नगरी जिला धमतरी से खिलेश कुमार साहू, चित्ररेखा शुभम सेजल साहू, मॉडल टाउन करनाल से सुधीर नूतन, संदीप गुगलानी, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा शर्मा, ईशप्रीत शर्मा, हरिपाल कौर, तेलीपारा बिलासपुर से गुणवंत श्रीवास, करुणा आयुष विवेक और आयुषी श्रीवास, लोरमी ग्राम चचेड़ी से कमलकांत मरावी, प्रमिला नेहा पुष्पराज ऋषभ मरावी, वारणा शाहपुर कोल्हापुर से विजय चौहान, इंदुरकर तेजस्विनी, अंकिता और अनिकेत चौहान, अंभई तालुका सिल्लौड़ जिला छत्रपति संभाजीनगर, औरंगाबाद महाराष्ट्र से अनिल कुमार घोड़के, वैशाली प्राजक्ता वैष्णवी गायत्री और यज्ञेश घोड़के, बागपत उत्तर प्रदेश से संजय ढिंगिया, नमन ढिंगिया, जेल रोड बक्सर से असलम आजाद, मुस्तफा तन्हा और शमसुल हक, चूड़ी लाइन मुंगेली से मोहम्मद इशाक, खतीजा बेगम, अशफाक आफरीन बेगम, अल्ताफ नीलोफर कौसर, रायपुर से मोहम्मद इमरान, इशरत परवीन, हसनैन रजा, गौसिया फातिमा, ग्राम लसुड़िया पाता तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद वैष्णव, दिव्या सुमन कोमल परी कृतिका रमेश चंद्र डांगी, कुंभारगल्ली श्रीरामपुर से अशोक दले, सविता अनिकेत रोहिणी ऋषिकेश जीविका, पुणे से अजय सोनवने, करिश्मा और अविका, बाबा कुटीर रायगढ़ से शिवकुमार चौहान, संक्रांति उत्कर्ष चौहान, ग्राम पंचायत बोरी खुर्द से सुधाकर राजे जाधव, प्रशांत जगुताई, संचित वायार प्रथमेश देशमुख, स्वामी देशमुख, प्रणाली सानवी, बिहार से वसीम अकरम, शबनम गुड़िया खातून, रायपुर से विनोद वंडलकर, वीणा और विविधा वंडलकर। आइए आप सबकी मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं समीर का लिखा हुआ गीत। संगीत आनंद मिलिंद का है, फिल्म का नाम है हम दोनों और आवाजें हैं उदित नारायण और अलका याग्निक की।

कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने के इस अंक का अगला और अंतिम फरमाइशी गीत सुनना चाहते हैं। गांव जाखोद राजस्थान से शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत, सुंदरलाल, योगेश, दीपक और पूजा खटक। जवाहरनगर दुर्ग से आरसी कांबड़े, करुणा मीना, अश्विनी और विपुल कांबड़े। गांधीबाग अकोला से रमेश कटनकर, वैशाली धनंजय कटनकर। सरोज चौक अमरावती से कमरुल्ला नसीम बेगम। यवतमाल महाराष्ट्र से राहुल मनवर, सरला विशाल, चेतन रोशनी और प्रियांशी। मुंगिसापुर से मोहम्मद जाकिर मंसूरी, कमरून निशा, शबिस्ता पलक, लुबना और यश मंसूरी। जलालाबाद पश्चिम से सूरज गगनेजा, पूनम, विशाल प्रिया, दिशानी और निमिता हुजा। आकोट से विनायक बेंडे, मंगला, विजय, शुभम, पवन जरिए, के संजीव, डाबे राव। उत्तर प्रदेश से श्रवण कुमार प्रजापति, शिवम आर्यन, लवीश, मुनेश देवी प्रजापति। बाघामुड़ा कोमा खान से प्रज्ञानंद देवांगन, नंदिनी प्रकाश, गायत्री, यशवर्धन और यशस्वी देवांगन। किशनगंज बिहार से रविंद्र मोहनदास, आशा देवी, राघव कुमार, भानुप्रिया, मेघा और राशि। खमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र प्रजापति, सावित्री देवी, प्रतीक कुमार। संबलपुर कांकेर से फागुराम यादव, ज्योति ओजस्वी यादव। जिला बालोतरा से मोहनलाल प्रजापत, माणक, उषा, बाला देवी प्रजापत। कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, विजेंद्र कुमार जयजान, नूर, नमन, सिमरत, मन्नत, गुरकीरत, राहुल और गुरशब्द राहुल। कोल सिटी बरकाकाना से अफजल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निप्पी साहनी और मोहम्मद अफसल मलिक। झज्जर हरियाणा से बिट्टू भाटिया, रीटा, रजत, मयंक भाटिया। चमन पार्क दिल्ली से सोनम, सना और अदीबा। फजिलका पंजाब से भूषण खेरा, विशु खेरा। सिद्धेश्वर नगर यवतमाल से पंजाब रामटेके, यशोधरा, श्राव्या रामटेके। नथाना पंजाब से हरजिंदर छिंदा, जसवीर, जसी, सीता और गीता। अंबागढ़ चौकी से रिजवान खान, आयशा सभिया, अनस और रेहान। मेन रोड तिल्हारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा, सुजाता पोहरकर। कृष्णा पार्क दिल्ली से सुखविंदर सिंह जौड़ा और सीटी दीवाना। आइए आप सब मिलीजुली फरमाइश पर सुनते हैं अनु मलिक के संगीत से सजा हुआ गीत। फिल्म का नाम है नाजायज। कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजें हैं और बोल हैं हिंदी वर के।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाजों में नाजायज फिल्म के इसी गीत के साथ ही कार्यक्रम ईमेल करे गीत सुने अब यहीं समाप्त होता है। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। शाम के 7:30 हो रहे हैं। लीजिए पेश है कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा कार्यक्रम के सुनैया जम्मो संगी संगवारी बहिनी महतारी मन ला अंजोरी भाई के जय जोहार राम राम। संगवारी होए फर्रा तो जम्मो झन के खेती किसानी के बूता काम हर धरा रपटी भरधराय हो ही। अभी दू चार दिन ले पहले मोर बहुत जन संगी मन कर गोट बात हुई, भेंट मुलाकात हुई तो सभी जन बताइन के मजा आ गए अंजोरी भैया। फर्रा तो

जैसे चाहत है नुसने हमार खेती किसानी हो ही। भाई एकर पर हमार हम तो हमेशा यही बात लगथन के बासत है कुकरा उठा हो गे बिहान गा जागौगा मोर भैया कमैया किसान गा मेहनत ले हर याद उदाई के कोराला जुच्छा झन रहन देव धान के कटोराला पूजाए ओ अपर खोती तुहर पूजाए हर सनम हर हवा पोथी पुरान गा जागोगा मोर भैया कमैया किसान गा कमलते की सयंगा मेहनत ले हरिया दो खेत कोला बारी ला मेहनत ले नदा ही गरीबी बीमारी है ना। तो भाई अब लाओ थोड़ा गुनगुना लीन।

0: ये सुघर श्रृंगार गीत सुनाद्री से रामायण वस्तकार और अनुपमा मिश्रा। अब आओ सुनिन फोरिन कार्यक्रम जेकर विषय हवाए खरीफ फसलों में जल प्रबंधन और विशेषज्ञ हवाए डॉक्टर चंचला रानी पटेल प्रक्षेत्र प्रबंधक कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर और उमन सोगट बात करत हवाए हमार हरीश मारवा। तो लाओ बढ़िया सुघर ढंग ले मन लगा के सुनत हमन ये गुड बात ला।
1: संगी हो फोनिंग कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है। ए दार के आज के जिन विषय है खरीफ फसल में जल प्रबंधन और हमर बीच में हमर पहुना हवाए डॉक्टर चंचला रानी पटेल प्रक्षेत्र प्रबंधक कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर। पूरा जानकारी बताबो सलाव घलो हमार विशेषज्ञ मन बताए फोन आप मन लगा था बृहस्पति के 10:30 से 11 बजे के बीच। फोन नंबर है 3100206 और बिलासपुर के एसटीडी कोड है 077752। तो स्वागत करत हन आप सबो संगवारी मन के बैसाखू के जय जोहार। हमार विशेषज्ञ डॉक्टर चंचला रानी पटेल प्रक्षेत्र प्रबंधक कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर मन आप मन से सलाव के रूप में बताएं खरीफ फसल में जल प्रबंधन। तो आपन के स्वागत है हमर कार्यक्रम में। जय जोहार।
2: जय जोहार।
1: संगी हो एक कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिले है सौरभ केसरवानी मन के। जैसे कि हमर विषय घलो है कि पानी के प्रबंधन जिन सिंचाई के प्रबंधन हमला करना चाहिए और ज्यादा पानी हो जाते फसल घलो नुकसान होते। तो खरीफ फसल में सब फसल में अलग अलग जल प्रबंधन घलो करना रही थे एकर बारे में बता।
2: खरीफ फसल में जल प्रबंधन अलग अलग फसल के हिसाब से अलग अलग होते। धान जैसे किसान भाई मन अभी खरीफ में अधिकतर धान फसल लगाए हैं। धान फसल ल छोड़ के अन्य जो फसल है उनमें अधिक समय तक जल भराव की स्थिति नहीं बने देना है। ओहर अच्छा नहीं होए। जल प्रबंधन काबर आवश्यक है ला पहले मैं बताना चाहा। किसान भाई मन ला खरीफ के जो फसल लगाथन किसान भाई मन लगाते वो अधिकतर वर्षा आधारित रहते वर्षा के ऊपर निर्भर करते। तो उनमें जल के प्रबंधन बहुत अधिक आवश्यक है काबर की कभी वर्षा अधिक हो जाते कभी कम होते तो कभी जल भराव की स्थिति आ जाते तो कभी का होते सूखा आ जाते।
1: अच्छा अच्छा।
2: तो एकर लिए जल के जो उचित प्रबंधन है जैसे धान जैसी फसल में निरंतर उनमें पानी मिलत रहे और जे फसल अधिक पानी की आवश्यकता नहीं हो ओला सड़े से बचाया जा सके ओकर बर जल के प्रबंधन करना आवश्यक है।
1: अच्छा अच्छा।
2: एकर अलावा जो अनियमित वर्षा है ओकर से बचाव बर भी जल प्रबंधन करना आवश्यक है और फसल की अच्छी वृद्धि जैसे अंकुरण है जड़ के विकास है फूल आना और दाना बने के समय फसल में पर्याप्त नमी बने रहे ओकर लिए जल प्रबंधन आवश्यक है और उत्पादन के गुणवत्ता में भी वृद्धि होते एकर से। जो दाना भरे के कंडीशन रहते फसल के तब वो में नमी प्रदान करना है ताकि ओकर गुणवत्ता अच्छा हो सही समय में उचित मात्रा में नमी देना जल प्रबंधन कहलाते। और जल भराव से होने वाला नुकसान जैसे कि जल भराव होते थे तब पौधा के जड़ मन लगा नहीं मिले ऑक्सीजन नहीं मिले तेकर लिए जड़ के वृद्धि नहीं हो सके और पौधा के वृद्धि भी कम हो जाते।
1: अच्छा,
2: और
1: अच्छा।
2: जल प्रबंधन के एक उद्देश्य ये भी है कि हमार पास अगर पर्याप्त मात्रा में पानी है लेकिन हम ओकर अच्छा से उपयोग नहीं करत हन तो ओकर पूरा दक्षता हम उपयोग करके अच्छा उत्पादन नहीं ला सकत हन तो ओला जाने पर भी अच्छा से कैसे जल ला उपयोग करना है ओकर अधिक कम पानी में अधिकतम उपज कैसे लेना है दक्षता बढ़ाना है एक लिए भी जल प्रबंधन आवश्यक है।
1: अच्छा अच्छा।
2: ओकर अलावा जैसे अभी बहुत अधिक ज्यादा बारिश हो जाते तो कई बार का होते पानी है बहा के निकल जाते पानी के संग में का निकल जाते हमार खेत के माटी भी बहा जाते।
1: हाँ, हाँ।
2: तो खेत के माटी बहा जाते तो ओकर संग में पोषक तत्व भी बहा जाते तो पौधा अच्छा से पोषक तत्व नहीं ले पाए और का होते ओकर वृद्धि पर विपरीत प्रभाव पड़ते।
1: अच्छा अच्छा।
2: और अधिक पानी होए पर भी खेत में जैसे ज्यादा पानी है या सूखा है तो पोषक तत्व जो उपलब्ध होते हैं ओकर भी पौधा अच्छा सा उपयोग नहीं कर पाए एक कारण भी हमला का करना है जल के प्रबंधन करना आवश्यक हो जाते।
1: तो जैसे कि खरीफ में पानी की बचत करना तो बड़े जरूरी है तो एक उपाय कौन कौन है एला बताता अपन।
2: पानी बुहात है तेला बुहान देथन ठीक है। और किसान भाई मन का करते हैं जैसे जेकर पास ट्यूबवेल है बोरवेल है ते तो पानी नहीं रही तो सिंचाई कर सकते लेकिन जेकर जो केवल वर्षा के आधार पर खेती किसानी करते हैं किसान भाई मन वो मन ला का करना चाहिए खरीफ के जल जो वर्षा के जल है ओला खेत के जल खेत में गाँव के जल गाँव में ये वाला सिद्धांत अपना के सुरक्षित करे के उपाय करना चाहिए। ओकर लिए का कर सकते है तालाब में सुरक्षित कर सकते है खेत में छोटा तालाब बना के जैसे फार्म पाउंड कहते हैं ओला बना के अपन खेत के ढलान के जहाँ

0: पानी जमा होते हैं वहां पर एकत्रित करके रख सकते हैं और जीवन रक्षक सिंचाई के रूप में उपयोग कर सकते हैं।
1: अच्छा अच्छा।
0: एकर अलावा खेत के समतलीकरण, मतलब अगर खेत में कहीं गड्ढा रही, कहीं ऊपर रही, उभार रही, तो का हुई जल के जो बहाव है, जल के जो बिखराव है, वो समान रूप से सभी जगह नहीं हो, एक जगह भर जाही तो एक जगह सूखा हो जाही। तो एकर लिए किसान भाई मतलब पहले से तैयारी कर लेना चाहिए, खेत के समतलीकरण कर लेना चाहिए, खेत के मेड़ मजबूत बनाना चाहिए, थोड़ा ऊंचा बनाना चाहिए। और जहां पर ढालू जमीन है, जैसे कई जगह किसान भाई मन के ढालू जमीन है, तो ढाल के विपरीत दिशा में जुताई करना चाहिए। और अगर धान के अलावा दूसरा फसल लगाते हैं, जैसे मक्का है, मूंग है, उड़द है, तो ओमन पर जब जुताई करते हैं तो विपरीत दिशा में जुताई करें, जेकर से का हुई पानी के बहाव रुक रुक के हुई।
1: अच्छा।
0: और पानी ना खेत में संरक्षित रही और मिट्टी भी संरक्षित रही, मिट्टी भी बह के नहीं जाही उकर से। एकर अलावा फसल अवशेष और मल्च के उपयोग करना चाहिए किसान भाई मन ला, मल्च और फसल अवशेष जो भी है उकर मल्च के रूप में उपयोग करी तो ओमें का हुई मृदा में नमी संरक्षित रही, वाष्पीकरण कम हो ही। और ये कब हो सकत है, जब किसान भाई मन कतार में जब कोई फसल ल बोए हो ही, मक्का है, मूंग उड़द है, सब्जी वाली फसल है, जेला कतार में बोए हैं, वो समय खेत में मल्च के उपयोग कर सकत हैं। और लगाए से पहले हमन पहले का करते हैं, गोबर के खाद डालत रहें, कंपोस्ट डालत रहें, अब का होते सब जन गाय मन ऐसी ढील देते हैं, गोबर मिले नहीं जितका मिलना चाहिए खेत में, है ना। तो गोबर के खाद डालो खेत में, कंपोस्ट डालना चाहिए, वर्मी कंपोस्ट डालना चाहिए, एकर से का होते मिट्टी के संरचना में सुधार होते और मिट्टी भूरभुरा होते और ओकर जल धारण करे के क्षमता बढ़ते, जल धारण करे के क्षमता ऐसे बढ़ते कि अगर सूखा पड़ गए है तो मिट्टी में नमी बने रही जेकर से पौधा ला पानी मिलत रही। एकर अलावा जैसे सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां, ड्रिप इरिगेशन और स्प्रिंकलर इरिगेशन, ये दो प्रकार की सूक्ष्म सिंचाई पद्धतियां हैं, बहुत से किसान भाई मन एकर उपयोग भी करते हैं, बहुत अच्छी बात है। ड्रिप सिंचाई में का होते जहां पानी की जरूरत है जड़ के पास में,
1: अच्छा।
0: वहीं पौधा लब्ध है, एकर से पानी के बचत भी होते और पौधा के विकास भी अच्छा होते। और दूसरा प्रकार के खरपतवार जहां पानी नहीं मिला थे वहां नहीं उगे, और हमन का करथन खुला खेत में पानी छोड़ देथन बहाव पद्धति से, तो जहाँ पानी जाते वहाँ खरपतवार बीज उगते और वो का करते पौधा के साथ प्रतिस्पर्धा करते, पोषक तत्व बर, जमीन बर और प्रकाश बर, वैसे ही पानी बर भी प्रतिस्पर्धा करते।
1: अच्छा,
0: ठीक है। तो खरपतवार नियंत्रण किसान भाई मतलब पानी बचाए बर खेत में करना चाहिए है।
1: और जैसे कि ज्यादा पानी गिरा थे कई जगह देखी, कई क्षेत्र में बहुते पानी गिरे है और खेत घलो लपलप भर गए, तो ऐसा स्थिति में ज्यादा पानी हो जाते तो कौन प्रकार के उपाय करना चाहिए?
0: ओला सुरक्षित रूप से खेत से बाहर निकाले के उपाय किसान भाई मन पहले से करके रखना चाहिए। और जल भराव ज्यादा अधिक हो जाते तो ओकर विपरीत प्रभाव फसल पर ऐसे पड़ते, जैसे जड़, जल भराव की स्थिति में जड़ ला ऑक्सीजन नहीं मिल पाए।
1: अच्छा।
0: और क्या होते मिट्टी के जो छिद्र है, वायु छिद्र है, वो पूरा पानी से भर जाते, ठीक है, जड़ के श्वसन के प्रक्रिया बंद हो जाते, जेकर से जड़ के सड़ना प्रारंभ होते और लंबा समय तक अगर पानी भरे रहते तो उमे जड़ के गलन प्रक्रिया, पौधा में पीलापन आना, एकर अलावा जो पोषक तत्व तो पानी में घुलनशील होते वो या तो पानी के साथ बह के निकल जाते बाहर, या तो लीचिंग के माध्यम से नीचे जड़ क्षेत्र, जो पौधा के जड़ क्षेत्र होते उकर पहुंच से दूर चल देते, जेकर कारण जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के क्षय बढ़ जाते और कुछ सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे सल्फर है, जिंक है, ओकर उपलब्धता भी प्रभावित होते। एकर अलावा रोग एवं कीट के प्रकोप ज्यादा होते, नमी रहेले फफूंद जनित रोग, पौध गलन, जड़ गलन, ऐसे टाइप के बीमारी पौधा मन में देखे जाते। और उपज और गुणवत्ता में कमी तो लगभग 20-80% तक के कमी आ सकते, ये ना पौधे के अवस्था पे निर्भर करते कि फसल कौन सी अवस्था में है और जल भराव की अवधि कतका दिन तक निर्भर करते। जैसे धान है, धान अन्य फसल की अपेक्षा ज्यादा जल भराव की स्थिति ला सहन कर सकत है, लेकिन अगर 7-10 दिन से ज्यादा हो गए है पानी भराव की स्थिति और किसान भाई मन पानी निकासी की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं, तो ओकर कल्ला बने की जो क्षमता रहते वो कम हो जाते, ओकर ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ते। जल भराव के 7-10-15 दिन हो जाते स्थिति, तो 10-40% तक संभावित उपज में हानि हो सकत है। एकर अलावा जैसे मक्का लगाते हैं तो मक्का के प्रारंभिक वृद्धि अवस्था पर 2-4 दिन के जल भराव ला मक्का सहन कर लेते, लेकिन अगर ओकर से ज्यादा दिन के भराव, जल भराव के कंडीशन होते तो 50% तक ओकर उपज में हानि हो सकत है। सोयाबीन है, 2 से 3 दिन से ज्यादा जल भराव नहीं होना चाहिए फसल में, जल निकासी के व्यवस्था होना चाहिए, काबर की एकर जड़ में नोड्यूल फॉर्मेशन करने वाला जो बैक्टीरिया होते ओकर क्रिया बंद हो जाते और वो पौधा पोषक तत्व ला अवशोषित नहीं कर पाते।

0: अरहर, मूंग, उड़द ए मन में जल भराव की स्थिति में पूरा जड़ के विकास ही रुक जाते और बहुत ज्यादा दिन तक जल भराव होए से पौधा मर भी सकते है। तो एक प्रकार से किसान भाई मन ला जल भराव के दुष्प्रभाव ला देखत हुए जल ला निकासी के सुरक्षित व्यवस्था करना चाहिए। अपन खेत में नाला बनाना चाहिए और ऐसे निकासी करना चाहिए कि मिट्टी भी संरक्षित रहे और जल भी सुरक्षित रूप से बाहर होके एकत्रित हो सके।
1: अच्छा अच्छा, बढ़िया बात बतावा था हमारे बीच में के। अब आज के विषय है खरीफ फसल में जल प्रबंधन। आप और डॉक्टर चंचला रानी पटेल, प्रक्षेत्र प्रबंधक, कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर में। और जैसे कि हम चर्चा करी आगू के गोठ बात में के पानी जब कम गिरे लगत है, पानी की कमी पड़ जाते, सूखा पड़ जाते, तो ऐसा स्थिति में का करना चाहिए किसान संगवारी मल्ला?
0: उपलब्ध जो जल है उकर कुशल प्रबंधन आवश्यक है। जैसे मैं पहले ही बताए हूँ, जल प्रबंधन बर किसान भाई मन छोटे तालाब बना सकत हैं, मेड़ बड़ा बना सकत हैं, जेकर से खेत के मिट्टी, खेत के पानी खेत में ही रहे। एकर अलावा किसान भाई मन ला ये सुनिश्चित करना चाहिए कि कुछ सिंचाई पानी ऐसे होते जो जीवन रक्षक सिंचाई कहलाते। यदि सिंचाई सुविधा उपलब्ध है तो जो विशेष अवस्था में फसल मन जब रथे वो मन ला क्रांतिक अवस्था कथे, जिनमें पानी की सबसे अधिक आवश्यकता रथे, तो वो समय जो सिंचाई दिए जाते जीवन रक्षक सिंचाई कहलाते, ओकर लिए पानी की व्यवस्था बना के किसान भाई मन ला रखना है। और हल्का सिंचाई 3 से 5 सेंटीमीटर के हल्का सिंचाई खेत में करना है। जीवन रक्षक सिंचाई बर किसान भाई मतलब पानी की व्यवस्था बना के रखना है। जब सिंचाई की सबसे अधिक जरूरत होते, मिट्टी में नमी उपलब्ध होना चाहिए।
1: एटी फोन आ गए, अगर बात गोड़ बात करूं। हाँ, फोन इन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत है।
2: हाँ नमस्ते सर।
1: हाँ नमस्ते,
2: मैं सविता पटेल हूँ सर।
1: अच्छा,
2: परसापाली के रहने वाले हूँ, बम्बली ब्लॉक के हूँ।
1: अच्छा अच्छा, जांजगीर चांपाले आपन गोठियावा था।
2: हाँ।
1: आज के विषय आपन जानत हो कि खरीफ फसल में जल प्रबंधन, और हमारे बीच में विशेषज्ञ पहुना बैठे हवाए। आप और डॉक्टर चंचला रानी पटेल, प्रक्षेत्र प्रबंधक, कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर के। तो इनकर से आप मन सवाल पूछ सका था और समस्या का समाधान कर सका था।
2: तो अभी जैसे हम खरीफ फसल में लगाए हैं धान, कटाई करे हैं, ओकर देखभाल हम लग कैसे किया जाए, एकर लिए जानकारी चाहिए।
1: अच्छा, गोड बात करत रहे ना, आनी बानी के प्रश्न रही से रेडियो ले सुनिहा, और कम पानी गिरत है का समस्या आते, एक बारे में बतावा था मैं, बता।
0: कौन से विधि से धान ला लगाए है?
2: रोपा से लगाए हैं दीदी।
0: हाँ, रोपा से लगाए है। अच्छा, कतका दिन के हो गए?
2: 15 दिन हो गए हैं।
0: 15 दिन हो गए है। खाद वाद डाले हो बेसल डोज में? रोपा जब लगाते किसान भाई मन, तो रोपा लगात समय जो DAP और पोटास के जो बेसल डोज होते वो डाल देना चाहिए खेत में, वो जो कर अनुशंसित मात्रा है। ओकर बाद यूरिया जो खाद डालना है ओला 3 बराबर भागों में करके डालना है, 3 बार डालना रथे। ठीक है, अब पहला आप मतलब रोपाई के 5 से 7 दिन बाद डाल देना रही से, और दूसरा अब 20 दिन बाद, और ओकर 20 दिन बाद, मतलब दूसरा 20 दिन में और तीसरा 40 दिन में आप मतलब डालना है। ठीक है, इला छिड़क के डाल सका था। और जैसे अभी बहुत पानी भराव के कंडीशन अगर खेत में है, तो जो दानेदार खाद होते जैसे यूरिया है, पोटाश है, और जो भी खाद है वो मतलब नहीं डालना है खेत में, मतलब उर्वरक मतलब, काबर की वो पानी के साथ बह जाते और ओकर पूरा उपयोग पौधा के जड़ में नहीं कर पाए। और जैसे खरपतवार नाशी दवा के उपयोग करना चाहिए। अभी तो रोपाई में अंकुरण पूर्व खरपतवार नाशी दवा जो हमन पहले डालथन प्री इमरजेंसी लगथन, ओकर ज्यादा आवश्यकता नहीं रहे, काबर की हमन खेत ला मचाई कर देथन। लेकिन अगर आपके पास बोरवेल है तो आप खेत के मचाई कर दे हो और खेत में पानी भर के रोपाई करे हो, ठीक है। पर किसान भाई मतलब मैं सुझाव देना चाहा कि हमन धान के रोपाई ला थोड़े कम करे बर कथन, और जो पानी भूमिगत जल स्रोत है, अभी कहते वर्षा के समय है, तब भूमिगत जल स्रोत ला हमला का करना है, बढ़ाना है। तो किसान भाई मन हो सके तो धान के ना सीधी बुआई करना चाहिए, ठीक है। ओमे का होते भूमिगत जल स्रोत भी हमारे बचत रहते, जैसे अभी हम जल संरक्षण के ऊपर बात करथन, भूमिगत जल स्रोत भी बचे रहते और धान में अतिरिक्त पानी की भी जरूरत नहीं रहे। जैसे हमन सोचथन ना धान के खेत ला भर के रखना है पानी से, ठीक है, तो धान के खेत ला पानी से भर के रखना जरूरी नहीं है। 2 से 5 सेंटीमीटर पानी लगभग रोपाई के 5 से 7 दिन तक भर के रखना है। अगर पानी नहीं गिरी से तो जरूरी नहीं है बोरवेल से पानी देना। आप मन ला देखना है कि मिट्टी में हल्का दरार आए है तब सिंचाई करा, ठीक है। एकर से का होते आप मन के सिंचाई के पानी बचते 13 से 14% आप अपन सिंचाई के पानी बचा सका था, और उत्पादन में भी कोई भारी नुकसान नहीं हुए। तो एक प्रकार से जल प्रबंधन करना है। बहुत अधिक बारिश होते तक जो उर्वरक है ओला नहीं देना है खेत में, जैसे हम जेला पत्ता में छिड़क के देना है, जैसे खरपतवार नाशी दवाई डालथन, जैसे कीटनाशी दवाई डालथन, वैसी ही स्प्रे वाला दवाई होते, मतलब खाद होते, यूरिया होते और NPK 19

0: 19 होते, एकर छिड़काव हम कर सकत हन। ये ज्यादा लाभदायक होते 2% यूरिया के छिड़काव या 1% पोटास के छिड़काव हम कर सकत हन। ये विभिन्न अवस्था में एला करना रहते, जैसे अगर सूखा के स्थिति आते तब।
1: ठीक है, तो आप मन के समस्या के समाधान हो गई सो है लगत है। हाँ लेवा, जय जोहार। एक फोन आ गए, एक बार गोड़ बात करबो।
2: हेलो।
1: हाँ, फोन इन कार्यक्रम में आप मन के स्वागत भैया, जय जोहार।
2: जय जोहार भैया, जय जोहार। ग्राम उज भट्टी ले उमेन दास मानिकपुरी बोला था।
1: अच्छा अच्छा,
2: खरीफ फसल में जल प्रबंधन के बारे में पूछना रही साहब।
1: अच्छा अच्छा, तो हमारे विशेषज्ञ पहुना है डॉक्टर चंचला रानी पटेल। आप प्रक्षेत्र प्रबंधक कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर में आपन सवाल रख सकत।
2: खेत मन में कैसे टाइप के पानी ल रखना है, कितना मात्रा में रखना है, ला थोड़ा बताए रही विस्तार से।
0: जैसे अभी कौन से फसल लगाए है भैया?
2: मैं धान के लगे है अभी।
0: हाँ, वही धान के मैं बतात हूँ। जैसे हम का सोचथन, धान के खेत में पानी भर के रखना अच्छे सोचथन है ना, तो धान की कुछ स्थिति मतलब वो वृद्धि के अवस्था होते ते में पानी भर के रखना जरूरी है। जैसे रोपाई करे हैं हमन, तो रोपाई के 5 से 7 दिन तक, 10 दिन तक 3 से 5 सेंटीमीटर पानी भर के रखना चाहिए। ओ का प्रारंभिक अवस्था में का होते, खरपतवार मन भी उगे में रोकते। और दूसरा ये है कि अगर ओकर बाद पानी नहीं गिरी से, जैसे भी पानी नहीं गिरी से, तो धान के खेत में हमन पानी नहीं भर पाए हन, भराए नहीं है, मेड़ नहीं बंधाए है, पानी नहीं रुके, तो हमें चिंता करे के कोई जरूरत नहीं है। जब तक हल्का दरार नहीं आई मिट्टी में, तब तक आप मन ला चिंता करे के आवश्यकता नहीं है। क्रांतिक अवस्था जो मैं कहा था, वो ऐसा अवस्था होते अगर वो समय धान के खेत सूखा हो गए, तो ओकर उपज में विपरीत प्रभाव पड़ी। तो समझ गए ना, जैसे कल्ला निकलत समय, गभोट अवस्था में, फूल आए के समय, दाना भरे के समय, ए समय धान में हल्की सिंचाई, वही फिर 2 से 5 सेंटीमीटर आप पानी भर के रख दो तो बन जही, या नमी खेत में बने रहना चाहिए। ठीक है, एकर से पानी के बचत भी होते और एक्स्ट्रा आप मतलब खर्चा नहीं आए। ठीक है, कम खर्चा में, कम पानी में अच्छा उपज ला सकते। और दूसरा, खरपतवार नियंत्रण बहुत जरूरी है। अगर आप मन लाइन से रोपाई करे है, तो मशीन चला के जो पैडी वीडर आते ओला चला के आप खरपतवार नियंत्रण कर सकत है। ओकर से का होते, भूमि के जो ऊपरी सतह है ना, वो टूटते, तो वो टूटते ना, तो का होते जो वाष्पीकरण के प्रक्रिया होते, जल के वाष्पीकरण से सतह से, भूमि की सतह से, वो कम हो जाते। और खरपतवार नियंत्रण भी होते, खरपतवार नियंत्रण ए लिए भी आवश्यक है, काबर की जतका जल पौधा ला चाहिए, ओ जल का प्रतिस्पर्धा कौन करते, खरपतवार कर, तो खरपतवार नियंत्रण करना भी बहुत आवश्यक है। तो ए प्रकार से आप धान के खेत में जो नमी है ओला संरक्षित करके रख सका था।
2: जी जी,
1: ठीक है भैया, जय जो।
2: हाँ, बहुत बढ़िया जानकारी मिली आप दोनों झल, बहुत बहुत बधाई हो भाई। मोला जानकारी नहीं दी से, हमन पानी भर के रखत रहे खेत में।
1: हाँ, हाँ, प्रबंधन जरूरी रहते।
0: हाँ, अगर कम पानी है आपके पास, जब पानी नहीं गिरा थे, तो वो चीज से परेशान नहीं होना है।
2: जी जी जी,
1: ले बहुत बहुत धन्यवाद फोन करे। ग्राम सभा कार्यक्रम फोन इन कार्यक्रम में आपन के स्वागत भैया, जय जोहार।
3: जय जोहार।
1: कहाँ ले बोला था?
3: मैं पारिया गांव ले बोला था।
1: अच्छा, जांजगीर चांपा जिला ले।
3: हाँ, जांजगीर चांपा जिला।
1: हाँ, तो आज के जन विषय है आपन जाना था कि खरीफ फसल में जल प्रबंधन, आपन प्रश्न रख सका था, हमारे पहुना मन बैठे है हमारे।
3: हाँ, जैसे अभी रोपा लगाए हैं, उमा पानी ज्यादा रहना चाहिए कि कम?
0: 3 से 5 सेंटीमीटर तक है तो चल ही। ठीक है, ओकर से थोड़े ज्यादा है तो भी चली, लेकिन एकदम पौधा के बुड़तले पानी नहीं रहना चाहिए खेत में। ठीक है, पौधा दिखना चाहिए ऊपर जमीन के, और 3 से 5 सेंटीमीटर रखना पर्याप्त है खेत में पानी। और अगर पानी खेत में नहीं रुका थे, तो अलग से सिंचाई, अगर मिट्टी में नमी है और जमीन फटे नहीं है, तो अलग से सिंचाई देने की भी आवश्यकता नहीं है। मिट्टी में जब जमीन फटे लग जाही, जब फटे हुए दिखाई दी खेत धान के, तब आप सिंचाई करके फिर से 3 से 5 सेंटीमीटर पानी के स्तर ला मेंटेन करके रख सकत हूँ।
1: ठीक है भैया। फोन इन कार्यक्रम में आपन के स्वागत है, जय जोहार।
4: राम राम बैसाखू भाई।
1: राम राम, जय जोहार। कहाँ ले बोला था, नाऊ बतावा ना?
4: भाठा पारा दतरिंगिल बुलत रहे बैसाखू भैया, हिरुराम साहू।
1: अच्छा, तो साहू जी कैसे कैसे पल्लो करना है, पूरा कार्यक्रम में आप मन ला बताए हैं, है ना? कार्यक्रम में सुनिया गोट बात है, हर चला थेला ध्यान लगा के आपन सुना।
4: राम राम, जय जोहार।
1: जय जोहार।
0: तो एक क्रांतिक अवस्था ला किसान भाई मन विशेष प्रकार से ध्यान रखें। एक क्रांतिक अवस्था में ज्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए खेत में, और पानी के कमी भी नहीं होना चाहिए। उपज ला अच्छा से बनाए रखे बर, कम पानी में अच्छा उपज पाए बर, ये सभी क्रांतिक अवस्थाओं में किसान भाई ला खेत में पर्याप्त मात्रा में नमी बनाए रखना है।
1: बहुत बढ़िया बात बताया है हमारी।

0: सूर्यमा के खरीफ फसल में जल प्रबंधन कैसे करना चाहिए और आप हो डॉक्टर चंचला रानी पटेल प्रक्षेत्र प्रबंधक कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर छत्तीसगढ़ में आपन हमारे स्टूडियो में आया किसान संगवारी मन के जैन सवार रही से ओकर समाधान घलो बढ़िया ढंग ले करे हा। जय जोहार, राम राम।
1: राम राम
0: संगी हो। ए तो रही से आज के फोन इन कार्यक्रम कैसे लगेज आप मन खचित हमर जैन चिट्ठी पत्री है चिट्ठी मिली कार्यक्रम होते आपन बताहा और आपन के समस्या के समाधान कैसे होते एकरो जानकारी आप मन भेजे करा और आज के विषय आपन जाने होहा अवैया बिरस्पत के आने विषय रही रेडियो ले जुड़े रहा और फोन नंबर बता देते हैं दूठी फोन नंबर है ना पहली है 3100026 और दूसर फोन नंबर है 2665 92 एकर पहली बिलासपुर के एसटीडी कोड लगाए पर पड़ते 07752 संगी हो। एक कार्यक्रम में तकनीकी सहयोग मिली से सौरभ केसरवानी मन के और आज के कार्यक्रम इन्हें सिरावत है बैसाखू के राम राम जय जोहार।
2: अभी सुनत रहन फोन इन कार्यक्रम हेलो किसान मरी जी मा विशेषज्ञ है खरीफ फसलों में जल प्रबंधन विशेषज्ञ रही डॉक्टर चंचला रानी पटेल जो प्रक्षेत्र प्रबंधक कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर जो गुट बात कर रही है हमार हरीश मारवा बैसा खुबाई तो बड़ा अच्छा ढंग लिए मन बताई हा भाई कि खरीफ फसल हर वर्षा आधारित फसल होते जेमा जल प्रबंध बहुत आवश्यक है पीछे छिपाई पीछे हमला सिंचाई ले कौन ढंग ले करना है काबर के हर भी चीज के विधि है पर्याप्त रूप ले या पानी ला अच्छा ढंग ले अच्छा पानी मिली तबे खेती बढ़िया हुई सुनो सुन के ज्यादा से ज्यादा लाभ उठा। और अब मैं बताता हूँ पाछू 24 घंटा में मिले जानकारी अनुसार जिसे हमला जानकारी मिले है सबले ज्यादा तापमान रही से 28 डिग्री सेल्सियस और सबले कम तापमान रही से 26 डिग्री सेल्सियस। आज बिलासपुर मंडी में फूल भाव गोभी के भाव से 2200 रुपये किलो क्विंटल करेला के भाव रही 3000 ले 3500 रुपये क्विंटल भिंडी के भाव से 3000 ले 3500 रुपये क्विंटल लिमाऊ के 6000 ले 6500 रुपया गाजर के भाव से 1800 ले 2000 रुपये क्विंटल लौकी के 1400 ले 1600 रुपया प्याज के 1800 ले 2000 और कटहल के भाव से 1200 ले 1400।

0: जानदे। यही बात के संग जम्मू कार्यक्रम को सुनिया दीदी महतारी संगी संगवारी मल्ला अंजोरी भाई की जय जोहार राम राम।
1: कार्यक्रम ग्राम सभा अभी हम सुन रहे थे FM बैंड 103.2 MHz पर। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8 बजने को है। आइए अब जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं संसद समीक्षा।

अब आप वैष्णवी से संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुनिए। पहले लोकसभा, लेखक हैं पीटीआई भाषा के अनुवारुल हक। लोकसभा की कार्यवाही आज भी विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण बाधित रही। अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर कई विपक्षी दलों के सदस्यों ने आज सदन में फिर हंगामा किया, जिससे प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं चल सके। सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। हंगामे के बीच ही सदन ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा के बिना पारित कर दिया। सदन में गतिरोध के लिए संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि विपक्षी सदस्य लोग गृह मंत्री के नाम का नारा लगाकर सदन से चले जाते हैं, लेकिन जब गृह मंत्री अमित शाह सदन में चर्चा का जवाब देंगे तो विपक्ष सुन नहीं पाएगा।

सदन की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का उल्लेख किया। फिर सदन ने कुछ क्षण मौन रखकर देश के स्वतंत्रता आंदोलन में बलिदान देने वाले शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इसके बाद जब लोकसभा अध्यक्ष ने प्रश्नकाल शुरू कराया तब विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मुद्दा उठाने लगे और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के बारे में गृहमंत्री अमित शाह के बयान की अपनी मांग दोहराते हुए नारा लगाने लगे। श्री बिड़ला ने भारत छोड़ो आंदोलन के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान का उल्लेख करते हुए विपक्षी सांसदों से उनसे प्रेरणा लेने को कहा। अध्यक्ष ने कहा कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के योगदान को भारत ही नहीं पूरी दुनिया मानती है और उनसे प्रेरणा लेती है। उन्होंने कहा कि जब आप सब भी उनसे प्रेरणा ले और देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करने के लिए चर्चा संवाद करें तथा अपने विचारों को अभिव्यक्त करें। उन्होंने कहा कि प्रश्नकाल महत्वपूर्ण समय होता है और उसे चलने देना चाहिए। श्री बिड़ला ने कहा कि बाबा साहेब आम्बेडकर का मानना था कि देश के अंदर लोकतंत्र को सशक्त और मजबूत करना है तो चर्चा और संवाद ही इसका रास्ता है। उन्होंने कहा कि वे हर बार आप सबसे आग्रह करते हैं लेकिन उनका आचरण संसदीय मर्यादाओं के अनुरूप नहीं होता है। अध्यक्ष ने कहा कि आपको इस पर विचार करना चाहिए। इसके बाद हंगामा नहीं थमने पर उन्होंने कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी। एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की बैठक शुरू हुई तो मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 को चर्चा और पारित कराने के लिए सदन की पटल पर रखा। इस दौरान विपक्ष के सदस्य अयोध्या के राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी और दिल्ली में प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस कार्रवाई के मुद्दे पर लगातार नारेबाजी कर रहे थे। हंगामे के बीच ही सदन ने विधेयक को चर्चा के बिना पारित कर दिया। राज्यसभा में ये विधेयक सोमवार को ही पारित हो चुका है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि ये लोग आज भी सवेरे से गृहमंत्री का नाम ले लेकर नारे लगा रहे हैं और हंगामा करके गायब हो जा रहे हैं। गृहमंत्री अमित शाह सुबह सुबह संसद में आते हैं और देर रात को ही वापस जाते हैं। वे दिन भर संसद में ही रहते हैं। श्री रिजिजू ने कहा कि जिस दिन यहाँ चर्चा होगी गृहमंत्री अमित शाह जब यहाँ जवाब देंगे तो आप लोग सुन नहीं पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि नियम के अनुसार जो विधेयक होता है उसी से संबंधित मंत्री को सदन में आना होता है। उन्होंने विपक्ष की आलोचना करते हुए कहा कि आप यहाँ निर्देश नहीं दे सकते कि कौन से मंत्री आएंगे और किसको जवाब देना है, वे सरकार और आसन तय करते हैं। इसका पीठासीन दिलीप सैकिया ने विपक्षी दलों के सदस्यों से कार्यवाही चलने देने का आग्रह किया और कहा कि आप मन बनाकर आए हैं कि सदन चलने नहीं देंगे, ये सही नहीं है। इसके बाद उन्होंने कार्यवाही सोमवार सुबह 11 बजे तक स्थगित कर दी। संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी और तब से सदन में विभिन्न मुद्दों पर हंगामे की स्थिति के कारण आज लगातार 15वें दिन प्रश्नकाल और शून्यकाल नहीं हो सके हैं। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 के कारणों तथा उद्देश्यों में कहा गया है कि एमएसएमई आर्थिक विकास के मुख्य कारक है, रोजगार सृजन करते हैं और नवाचार को बढ़ावा देते हैं। ऐसी इकाइयां सकल घरेलू उत्पाद और निर्यात में महत्वपूर्ण योगदान देती है। ये देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। इसमें कहा गया है कि पिछले कुछ समय के दौरान तकनीकी बदलाव, सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित प्रणालियों के बढ़ते प्रयोग और बदलते विधिक परिदृश्य के कारण मूल अधिनियम में बदलाव की आवश्यकता है। इस विधेयक के माध्यम से 2006 के मूल अधिनियम में संशोधन का प्रावधान है। विधेयक में प्रस्ताव किया गया है कि एमएसएमई के निःशुल्क और स्वैच्छिक पंजीकरण के लिए एक डिजिटल प्लेटफॉर्म अधिसूचित किया जाएगा। इसमें यह भी कहा गया है कि एमएसएमई की तरलता के मुद्दे को ध्यान में रखते हुए इन इकाइयों से वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद के मामले में केंद्र के अधीन सार्वजनिक उपक्रमों को उनके इनवॉइस के निस्तारण व्यापार प्राप्य छूट प्रणाली प्लेटफॉर्म के माध्यम से करना होगा। विधेयक में इस बात के भी प्रावधान है कि राज्य सरकारें अपने सार्वजनिक उपक्रमों के लिए भी इस तरह के उपबंध करेंगी। इस दौरान सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों से संबंधित कई सांसदों के

प्रश्नों के लिखित उत्तर दिए। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने सदन को बताया कि इस साल 31 मई तक आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने के कारण राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने 2000 से ज्यादा अस्पतालों को सूची से हटा दिया है और 1200 अन्य अस्पतालों को निलंबित कर दिया है। उन्होंने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि योजना के दिशा निर्देशों के उल्लंघन के लिए 29 प्राथमिकी भी दर्ज की गई है और लगभग 303 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि नियमों के उल्लंघन के कारण 2,359 अस्पतालों को सूची से हटाया गया है। उन्होंने कहा कि इस योजना में धोखाधड़ी के मामले में कतई बर्दाश्त न करने की नीति अपनाई जाती है और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के अंतर्गत राष्ट्रीय धोखाधड़ी रोधी इकाई संदिग्ध दावों का पता लगाने के लिए AI और मशीन लर्निंग पर आधारित स्वचालित प्रणाली का इस्तेमाल करती है। मंत्री ने कहा कि संदिग्ध माने गए दावों के भुगतान से पहले जांच 31 जुलाई 2026 तक 676 करोड़ रुपए से अधिक की बचत हुई है। आयुष्मान भारत योजना देश की आबादी के निचले 40% हिस्से को द्वितीय और तृतीय स्तर के अस्पतालों में भर्ती कराने के लिए प्रति परिवार प्रतिवर्ष 5,00,000 रुपए का कैशलेस स्वास्थ्य बीमा कवरेज देती है। ये योजना सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है। श्री नड्डा ने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान पात्र लाभार्थियों के लिए लगभग 4 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए, अस्पताल में भर्ती होने के लगभग 3 करोड़ मामलों को मंजूरी दी गई और योजना के अंतर्गत 5,000 से अधिक अस्पतालों को सूची में शामिल किया गया। उन्होंने कहा कि केंद्र ने इस योजना को लागू करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को साल के दौरान 8,400 करोड़ रुपए से अधिक जारी किए गए। एक अन्य प्रश्न के जवाब में श्री नड्डा ने कहा कि 31 जुलाई 2026 तक देश में लगभग 96 करोड़ आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाते आभा बनाए गए थे, जिनमें से 5 करोड़ से अधिक खाते गुजरात में बनाए गए। उन्होंने कहा कि आभा आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का एक अहम घटक है। अब सुनिए राज्यसभा में हुई कार्यवाही की समीक्षा। लेखक है पीटीआई भाषा के माधव चतुर्वेदी। राज्यसभा में अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मुद्दे पर प्रधानमंत्री और प्रदर्शनकारी छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई के बारे में गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग कर रहे विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण आज भी गतिरोध बना रहा। विपक्षी सदस्यों की नारेबाजी और हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही एक बार के स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। उच्च सदन की बैठक पूर्वाहन 11 बजे शुरू होने पर सभापति सीपी राधाकृष्णन ने आगामी 9 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन की 84वीं वर्षगांठ का जिक्र करते हुए कहा कि करो या मरो के नारे के साथ हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी के लिए जो संघर्ष किया उसकी वजह से ही आज हम आजाद हवा में सांस ले रहे हैं। उन्होंने कहा कि करो या मरो के आह्वान ने लाखों देशवासियों को सभी बाधाओं से ऊपर उठकर एकजुट होने और राष्ट्र की स्वतंत्रता के साझा लक्ष्य के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। सभापति ने कहा कि गंभीर दमन, जेल और अनेक कठिनाइयों का सामना करने के बावजूद स्वतंत्रता सेनानियों ने अदम्य साहस, दृढ़ संकल्प और देश की आजादी के प्रति अटूट प्रतिबद्धता दिखाई। उनके निस्वार्थ बलिदान और दृढ़ इच्छा शक्ति ने स्वतंत्रता आंदोलन को मजबूत किया तथा 1947 में देश की आजादी का मार्ग प्रशस्त किया। बाद में सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम के वीरों के सम्मान में कुछ क्षण के लिए मौन रख उन्हें श्रद्धांजलि दी। सभापति ने इसके बाद जैसे ही शून्यकाल की कार्यवाही शुरू की तभी विपक्षी सदस्यों ने हंगामा और नारेबाजी शुरू कर दी। हंगामे के बीच विपक्ष के नेता और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मॉनसून सत्र के दौरान संसद में गृह मंत्री की लगातार अनुपस्थिति का मुद्दा उठाया। श्री खड़गे ने कहा कि सरकार सभापति की टिप्पणियों का सम्मान नहीं करके सदन का अपमान कर रही है। कल सभापति राधाकृष्णन ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू से कहा था कि वे विपक्ष के भावनाओं को गृह मंत्री तक पहुंचाएं और सदन में उनकी मौजूदगी की मांग

0: पर विचार करे। विपक्षी दल 20 जुलाई को संसद की ओर मार्च कर रहे प्रदर्शनकारी छात्रों पर हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर गृह मंत्री से सदन में बयान देने की मांग कर रहे हैं। हालांकि श्री रिजिजू ने कहा कि सभापति की ओर से इस मामले में कोई निर्देश नहीं दिया गया है और विपक्ष के नेता सदन को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब सत्र चलता है तब गृह मंत्री पूरे दिन सदन में मौजूद रहते हैं और मंत्री अपने मंत्रालयों के एजेंडे के अनुसार संसदीय कार्यवाही में हिस्सा लेते हैं। उन्होंने कहा कि विपक्ष ये तय नहीं कर सकता कि कौन सा मंत्री कब सदन में आएगा। श्री रिजिजू ने कहा कि सभापति ने केवल टिप्पणी की थी लेकिन कोई निर्देश नहीं दिया था। संसदीय कार्य मंत्री ने आरोप लगाया कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के सदस्य नारेबाजी करते हैं और फिर संसद से बाहर चले जाते हैं। उन्होंने इस व्यवहार की निंदा की। हंगामे के बीच ही सभापति ने सदस्यों से शून्यकाल में लोकहित के मुद्दे उठाने के लिए कहा। बीजू जनता दल के सुलता देव ने पखाला भात की विशिष्टता और ओडिशा की परंपरा में इसके महत्व को रेखांकित करते हुए इस व्यंजन को GI टैग देने की आवश्यकता पर बल दिया। उन्होंने कहा कि पखाला भात केवल एक भोजन नहीं बल्कि राज्य की संस्कृति, परंपरा और जीवन शैली का अभिन्न हिस्सा है। उन्होंने सरकार से इस संबंध में आवश्यक कदम उठाने की मांग की। भाजपा के प्रकाश चिक बाराइक ने उत्तर बंगाल के अलीपुरद्वार जिले में युवाओं की खेल प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक अत्याधुनिक स्टेडियम बनाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में प्रतिभाशाली खिलाड़ियों की कमी नहीं है लेकिन उन्हें उच्च स्तरीय प्रशिक्षण और बेहतर खेल सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के कारण अपनी प्रतिभा को निखारने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। भाजपा के अमरपाल मौर्य ने उत्तर प्रदेश के अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र के धार्मिक एवं सांस्कृतिक महत्व को देखते हुए इन क्षेत्रों को जोड़ने वाले राम दर्शन रेल पथ गलियारे के निर्माण की मांग की। उन्होंने कहा कि अयोध्या, प्रयागराज और बुंदेलखंड क्षेत्र भारत की आध्यात्मिक विरासत और धार्मिक परंपराओं के प्रमुख केंद्र रहे हैं तथा इन क्षेत्रों का संबंध भगवान राम के जीवन और उनसे जुड़ी आस्थाओं से है। उन्होंने कहा कि यदि राम वन गमन मार्ग से जुड़े प्रमुख स्थानों को एक ही रेल गलियारे के माध्यम से जोड़ दिया जाए तो इससे श्रद्धालुओं को काफी सुविधा मिलेगी। जब ये सदस्य अपने मुद्दे उठा रहे थे तो विपक्षी सदस्य लगातार नारेबाजी और हंगामे कर रहे थे। हालांकि सभापति ने उनसे सदन की कार्यवाही चलने देने की कई बार अपील की लेकिन इस अपील का कोई असर न होते देख उन्होंने 11:30 पर बैठक को दोपहर 12 तक स्थगित करने की घोषणा की। दोपहर 12 बैठक पुनः शुरू होने पर सभापति राधाकृष्णन ने प्रश्नकाल शुरू करने को कहा। उन्होंने समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन से पूरक प्रश्न पूछने को कहा। सुमन ने ट्रेनों में कवच और सिग्नल प्रणाली लगाए जाने से संबंधित विषय पर पूरक प्रश्न पूछने के बजाय कहा कि सदन में गतिरोध कायम है और विपक्ष अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के मुद्दे पर चर्चा चाहता है। सभापति ने सुमन को अपनी बात पूरी करने का मौका दिए बिना ऑल इंडिया अन्ना DMK सदस्य डॉ. एम थंबी दुरे से आज की प्रश्नावली में सूचीबद्ध से प्रश्न से संबंधित पूरक प्रश्न पूछने के लिए कहा। थंबी दुरे ने पूरक प्रश्न पूछा और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसका जवाब भी दिया लेकिन हंगामे की वजह से सदन में उनकी बात नहीं सुनी जा सकी। सभापति ने सदस्यों से शांत रहने और प्रश्नकाल चलने देने की अपील की लेकिन उनकी अपनी बात का असर न होते देख उन्होंने 12:04 पर बैठक दिन भर के लिए स्थगित कर दी। अभी आप संसद में हुई आज की कार्यवाही की समीक्षा सुन रहे थे।
1: दिस इज मीडियम वेव और FM।
2: संसद समीक्षा अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। FM बैंड 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:15 हो रहे हैं। वक्त है फिल्म संगीत के कार्यक्रम रजनीगंधा का।

जब संगीत रूह को सुकून देता है, तब कुछ आवाज़ें ऐसी होती हैं जो सीधे दिल में उतर जाती है। उन आवाज़ों में एक नाम ऐसा है जिसकी ठंडक किसी चंदन के लेप जैसी है, जिसकी साधना किसी मंदिर के प्रांगण जैसी पवित्र है। आज 7 अगस्त है और आज की शाम समर्पित है भारतीय संगीत जगत के उन जीवित संत पद्मश्री और सुर सम्राट सुरेश वाडकर जी के जीवन

किसी भी महान कलाकार की नींव उसके संस्कारों और शुरुआती तालीम में छिपी होती है। सुरेश वाडकर जी का जन्म महाराष्ट्र के कोल्हापुर में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। घर में संगीत का कोई बहुत बहुत बड़ा घराना नहीं था, लेकिन भीतर सुरों की एक ऐसी प्यास थी जो उन्हें मुंबई खींच लाई। बचपन में उन्होंने पंडित जियालाल वसंती जी से संगीत की शुरुआती शिक्षा ली। वे घंटों रियाज किया करते थे, धूप में, छांव में, बस सुरों के साथ। लेकिन उनके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आया जब वे महान संगीतकार, कवि और गुरु पंडित हृदयनाथ मंगेशकर के संपर्क में आए। हृदयनाथ जी ने इस कच्चे हीरे को पहचाना और इसे तराशना शुरू किया।

श्रोताओं, 1970 के दशक के अंतिम वर्षों में सुर भारती नाम की एक संगीत प्रतियोगिता हुई, जिसमें सुरेश वाडकर जी ने हिस्सा लिया। उस प्रतियोगिता के निर्णायक मंडल में स्वर कोकिला लता मंगेशकर भी थीं। जब सुरेश जी ने गाना गाया तो लता दीदी ने उसी वक्त भविष्यवाणी कर दी थी कि ये लड़का आगे चलकर भारतीय संगीत का एक नया स्तंभ बनेगा। मोहम्मद रफी साहब ने भी एक साक्षात्कार में कहा था, ये लड़का आने वाले कल का रफी बनेगा। कितनी बड़ी बात थी ये, है कि नहीं? फिल्म पहेली 1977 से उनके पार्श्व गायन की शुरुआत हुई, लेकिन निर्देशक के विश्वनाथ की फिल्म सुर संगम, जो कि 1984 में आई थी, इस फिल्म ने तो इतिहास ही बदल दिया। पंडित लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत में और जयदीप जी के निर्देशन में उन्होंने जो गाना गाया, वो सिर्फ गाना नहीं था, बल्कि संगीत साधना थी।

एक तरफ शास्त्रीय संगीत की ऊंचाइयां थी तो दूसरी तरफ कमर्शियल सिनेमा की रंगीन दुनिया। सुरेश वाडकर जी ने दोनों ही दुनिया में ऐसा संतुलन बनाया जो मिसाल बन गया। राजश्री प्रोडक्शन की फिल्म नदिया के पार हो या फिर ब्लॉकबस्टर मैंने प्यार किया, उनके गाए गीत हर भारतीय की जुबान पर चढ़ गए। जब वे कहे तो उसे सजना गाते हैं तो गांव की सौंधी खुशबू महक उठती है, और जब वे दिल दीवाना बिन सजना के माने ना गाते हैं तो हर प्रेमी का दिल धड़क उठता है। क्या आपने कभी गौर किया है, उनकी आवाज में एक अजीब सा संकोच, एक मासूमियत और एक ठहराव है जो उन्हें भीड़ से अलग खड़ा करता है। और बात सिर्फ रोमांटिक गानों तक सीमित नहीं थी। फिल्म उत्सव का वो कालजयी गीत सांझ ढले गगन तले या फिल्म लिबास का खामोश साफ साना, ये साबित करते हैं कि वे किसी भी मूड में आराम से ढल सकते हैं।

फिल्मी दुनिया की भाग दौड़ से सुरेश वाडकर जी ने खुद को थोड़ा पीछे खींचा, लेकिन संगीत से उनका रिश्ता और गहरा हो गया। उन्होंने अपना पूरा ध्यान अध्यात्म, भक्ति संगीत और आने वाली पीढ़ी को तराशने में लगा दिया। उन्होंने मुंबई और पुणे में सुरेश वाडकर अजंता कला अकादमी की स्थापना भी की, जहां आज सैकड़ों बच्चे संगीत की तालीम ले रहे हैं। साधना सरगम, श्रेया घोषाल से लेकर कई अन्य कलाकारों को उनका मार्गदर्शन मिला है। संत कबीर, सूरदास और तुलसीदास के भजनों को उन्होंने जिस तरह अपनी आवाज दी है, वो आज देश के कोने कोने में शांति का संदेश फैला रही है। भारत सरकार ने उनके इस अतुलनीय योगदान को देखते हुए सन 2000 में देश के प्रतिष्ठित पद्मश्री सम्मान से इन्हें नवाजा।

0: सुरों के साधक, सादगी की मूर्ति और हम सब के चहेते सुरेश वाडकर जी के जन्मदिन पर आकाशवाणी परिवार की ओर से हम उनके दीर्घायु और स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं। भगवान से प्रार्थना है कि उनकी ये सुरीली आवाज़ यूं ही पीढ़ियों को महकाती रहे। ठीक एक रजनीगंधा के फूल की तरह, जिसकी महक समय के साथ कम नहीं होती बल्कि और गहरी होती जाती है। श्रोताओं, आज के इस अंक से मैं अंशुल गुलकरी आप सबसे अनुमति मांगता हूँ। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी। नमस्कार। कार्यक्रम रजनीगंधा अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं समाचार।
1: मानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है। क्या आप परेशानियों से घिरे हैं, मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखें, समाधान आपके पास है। टेली मानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है। आप अकेले नहीं हैं, मदद बस एक कॉल दूर है।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
3: यह विधेयक भुगतान

0: में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन को संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर कामकाज में बाधा आई। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले ही दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका। इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर दोनों सदनों स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही जल्दी ही स्थगित हो जाने के कारण गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य भी नहीं लिए जा सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए, इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना, वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाना तथा दोनों देशों के उच्चायोगों में राजनयिक और आधिकारिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
3: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
1: श्री जायसवाल ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
3: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहां के सरकार के बारे में कही गई।
1: प्रवक्ता ने पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हुए हाल ही में रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भारत इच्छुक है। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल में हुए रक्षा समझौते पर उन्होंने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेहर कुमार ने नई दिल्ली में बताया

0: कि जेम प्लेटफॉर्म पर कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
1: 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में, और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार पोर्टल के थ्रू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति विभिन्न देशों और समाजों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने साझा संस्कृति, विरासत, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य शामिल थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
0: उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर घोषणा पत्र अपनाया गया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि घोषणा पत्र समावेशी, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता दोहराता है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया। श्रीलंकाई प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुर करुण थिलाके ने किया। 2 दिवसीय ब्रिक्स वेब्स बाजार 2026 का मुंबई में आज समापन हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के 20 सदस्य और भागीदारी देशों के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 275 से अधिक व्यावसायिक बैठकें की गईं। एक रिपोर्ट।
3: मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार 2026 का समापन कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घोषणाओं के साथ हुआ। NFDC के प्रबंध निदेशक प्रकाश मकदूम ने कहा कि इस आयोजन ने ब्रिक्स देशों के बीच रचनात्मक सहयोग की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित किया। इस दौरान NFDC ने ब्राजील की रियो फिल्मे के साथ ऑडियो विजुअल सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र का आदान प्रदान किया, जबकि NFDC और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने रूस के गॉस फिल्मो फोन के साथ सहयोग जारी रखने की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका, रूस, थाईलैंड और कजाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल 2027 की भी घोषणा की। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
0: झारखंड में JPSC और JSSC सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। एक रिपोर्ट।
4: छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से परीक्षाएं रद्द करने और पूरे मामले की अदालत की निगरानी में CBI जांच कराने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने कहा कि इस विषय पर सरकार सदन में सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों से मिलने आज शाम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। प्रशासन ने बताया कि टीम ने धरना स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता के लिए छात्रों ने 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की अंतिम सूची भी जारी कर दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित लोग बाढ़ से हुए नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
5: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए

0: रेड वार्निंग जारी की है। विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होगी और ये सिलसिला 3 दिनों तक जारी रह सकती है। सालंदी और जालका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और केंदुझर जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अभी भी राहत सामग्री और मवेशियों के चारे के लिए जूझ रहे हैं, जबकि फसलों को हुए भारी नुकसान ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
2: केरल के उत्तरी जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 4 अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है, जबकि शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राज्य के सभी जिलों में पिछले 1 सप्ताह से तेज बारिश हो रही है। शनिवार के लिए 10 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि रविवार से राज्य में वर्षा में कमी आने का अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: राजधानी दिल्ली में आज सवेरे से कुछ जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है।
3: राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ और कई इलाकों में लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली में कल भी हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भानु के साथ ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: उज़्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया। तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन उठाया और ये पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: गुड इवनिंग, दिस इज आकाशवाणी। I'm Shagun Chopra with the news at 9. The headlines. Parliament clears MSME Development Amendment Bill to ensure faster payments and quicker dispute resolution. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar says relations with Pakistan can only move ahead in an environment free of terror, hostility and violence. New Delhi reiterates its call for safe and unhindered navigation in international waters. Government e-marketplace completes 10 years with cumulative procurement crossing 20 lakh crore rupee mark. Alert issued for very heavy rain in Haryana, Chandigarh, Delhi, Kerala and Odisha. And in Asian Youth and Junior Weightlifting Championships, Titli Maji clinches silver medal in women's 45 kg category. And now the news in detail. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by the Parliament, with the Lok Sabha approving it today. The Rajya Sabha had passed the bill on Monday. The bill aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The legislation provides that every central public sector enterprise must settle all invoices for procurement of goods or services from MSMEs on the trade receivables discounting system. As per the bill, if mediation fails in case of dispute, then the reference for arbitration must be made within 30 days from the date of termination of mediation. Both Houses of Parliament today witnessed opposition's uproar over several issues, including the alleged police action during students' protest over the NEET issue. More from our correspondent.
5: Both the Houses of Parliament once again faced disruptions following opposition uproar over several issues, including alleged police action during

0: झुक गया आसमां फिल्म का गीत आप सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, हसरत जयपुरी के बोल शंकर जयकिशन का संगीत।
1: विविधा में इस रविवार 9 अगस्त 2026 को सृजन भारती के अंतर्गत विविध भारती में आयोजित विशेष ऑडियो विजुअल शो भारतीय फिल्म संगीत में वंदे मातरम, इसके संपादित अंश। सहभागी विशेषज्ञ राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के मूर्धन्य अध्येता मिलिंद प्रभाकर सबनीस।
2: वंदे मातरम का जो संगीत प्रवास है वो बहुत बहुत ही लंबा है, रविंद्रनाथ से लेकर आज के AR रहमान और अजय अतुल तक अभी भी वो चालू है।
1: सुनना न भूलिए विविधा, रविवार 9 अगस्त दिन में 11 बजे।
0: विविध भारती पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आपके लिए।

आशा भोसले की आवाज में नरम गरम फिल्म से गीत आप सुन रहे थे। गुलजार ने इसे लिखा, राहुल देव बर्मन ने संगीत से सजाया। कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती पर और कार्यक्रम का नाम है आपके लिए।

तेरी कसम फिल्म का गीत आप सुन रहे थे। अमित कुमार और लता मंगेशकर की आवाजें, आनंद बख्शी के बोल, राहुल देव बर्मन का संगीत। और इसके साथ ही आज का ये कार्यक्रम समाप्त होता है। संगीत का ये सुरीला सफर आपने तय किया अपनी दोस्त नेहा शर्मा के साथ, और आज के लिए मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन विविध भारती का सुरीला सफर जारी रहेगा।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना। जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
1: जब मैं गांव के छोटे छोटे बच्चों के साथ धूल मिट्टी में खेला करता था।
0: संगीतकार सचिन देव बर्मन।
1: बहुत ही बूढ़ा किसान एक गीत गाया करता था। एक बूढ़े किसान का गीत मेरे दिल में घर करता गया।

सन 1947 भारत का विभाजन हो रहा था। एक प्रोडक्शन कंपनी में काम करने वाला एक प्रोडक्शन मैनेजर लाहौर

से मुंबई की तरफ रवाना हो रहा था। जाने माने शायर कतील शिफाई उसके दोस्तों में से एक थे। दो दोस्त जुदा हो रहे थे और शायर दोस्त ने अपने फिल्मी दोस्त से विदा लेते हुए उसे एक शेर उपहार में दिया। कतील शिफाई ने एक पर्ची पर लिख कर दिया था, उड़ते उड़ते आस का पंछी दूर उफक में डूब गया, रोते रोते बैठ गई आवाज किसी हरजाई की। ये पर्ची उस लड़के ने संभाल कर रख ली। देश के विभाजन के वक्त लाहौर से मुंबई आने वाला वो प्रोडक्शन मैनेजर था जे ओम प्रकाश। जे ओम प्रकाश आगे चलकर फिल्मी दुनिया के एक बड़े निर्माता और निर्देशक बने। उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई।

जे ओम प्रकाश का जन्म 24 जनवरी 1927 को सियालकोट पंजाब में हुआ था। हम उन दिनों की बात कर रहे हैं जब भारत अविभाजित था। ओम प्रकाश के पिता लाहौर के एक स्कूल में टीचर थे और उन्होंने हमेशा अपने बच्चों को उसूल सिखाए। उन्होंने सिखाया कि जिंदगी में तमाम उपलब्धियों से बढ़कर हैं आपके उसूल। पिता हमेशा बेटे से कहा करते थे कि आपको हमेशा जिंदगी में सीखते रहना है, ज्ञान की प्यास कभी खत्म नहीं होनी चाहिए और कभी ये मत मानो कि तुमने सब कुछ जान लिया है। और जानने की लालसा जिंदगी में बनाए रखना, देखना तुम आगे बढ़ते चले जाओगे। अपनी पढ़ाई खत्म करने के बाद ओम प्रकाश लाहौर में एक फिल्म प्रोड्यूसर के दफ्तर में क्लर्क बन गए। बहुत लगन के साथ काम किया और फिर वो मैनेजर की पोस्ट तक पहुंचे, यानी धीरे धीरे उनकी तरक्की होती चली गई। दिल में

हमने आपको बताया कि विभाजन के बाद जे ओम प्रकाश मुंबई आ गए। ये वो दिन थे जब उनकी जिंदगी का संघर्ष चल रहा था। संघर्ष के इन दिनों की रातें जे ओम प्रकाश लोकल ट्रेनों में सोकर बिताते थे। दादर से ट्रेन में बैठते, ट्रेन कल्याण तक जाती और फिर दादर वापस आती। जे ओम प्रकाश उस ट्रेन में ऊँगते रहते। जब पुलिस वाले देख लेते तो भगा देते थे, उतार देते थे। मुसाफिर थे जे ओम प्रकाश, चलते चले जाते थे लोकल ट्रेनों में अपनी मुफलिसी के दिनों में।

जे ओम प्रकाश को निर्माता निर्देशक मोहन सहगल की कंपनी में काम मिल गया। ये वो दिन थे जब मोहन सहगल न्यू दिल्ली फिल्म बना रहे थे। जे ओम प्रकाश प्रोडक्शन मैनेजर बन गए। मुंबई में अपने शुरुआती दिनों में जे ओम प्रकाश चिंचपोकली नाम के एक इलाके में चौल में रहा करते थे। अभिनेता राजेंद्र कुमार भी उन दिनों में संघर्ष कर रहे थे और वहीं उनके साथ रहा करते थे। दोनों दोस्तों ने एक दूसरे से वादा किया कि जब वो फिल्म उद्योग में बड़ा नाम बन जाएंगे तो एक दूसरे के साथ काम करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि ये वादा पूरा भी हुआ। जे ओम प्रकाश प्रोडक्शन मैनेजर के तौर पर लगातार काम करते रहे और उन्होंने फिल्मी दुनिया में फिल्में बनाने के हर पहलू पर गौर किया, उसे सीखा और उसमें माहिर बन गई।

साठ के दशक का वो जमाना जब जे ओम प्रकाश के भीतर एक सपना पल रहा था, और वो सपना था प्रोड्यूसर बनने का सपना। उन्होंने आसपास खोजबीन शुरू की कि कोई ऐसा फाइनेंसर हो जो पैसे लगाने के लिए राजी हो जाए और उनकी फिल्म बन जाए। बहुत संघर्ष के बाद जब कहीं कोई उम्मीद नहीं बची थी, अचानक एक दिन फाइनेंसर का फोन आया, वो फिल्म में पैसा लगाने के लिए राजी हो गए। इस तरह से 60 के दशक में जे ओम प्रकाश ने अपना प्रोडक्शन हाउस बनाया फिल्म युग। फिल्म युग की पहली फिल्म आई आस का पंछी। इस फिल्म के हीरो थे वही राजेंद्र कुमार जो चिंच पोकली के संघर्ष के जमाने में जे ओम प्रकाश के साथ रहा करते थे। हीरोइन थी वैजयंती माला, संगीत निर्देशक थे शंकर जयकिशन। मजेदार बात यह है कि इस फिल्म के निर्देशक बनाए गए मोहन कुमार, जो मोहन सहगल के असिस्टेंट हुआ करते थे। फिल्म आस का पंछी जबरदस्त हिट रही और एक प्रोड्यूसर के तौर पर जे ओम प्रकाश और फिल्म युग छा गए।

0: कहां तक चले।
1: इसके बाद मोहन कुमार के ही निर्देशन में जे ओम प्रकाश ने अपने प्रोडक्शन हाउस फिल्म युग की दूसरी फिल्म पेश की, जिसका नाम था आई मिलन की बेला। ये फिल्म सन 1964 में आई थी। राजेंद्र कुमार और सायरा बानो इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे।

सन 1966 में जे ओम प्रकाश ने एक नए निर्देशक को मौका दिया। ये निर्देशक थे रघुनाथ झालानी, जो उन दिनों में बिमल रॉय के असिस्टेंट हुआ करते थे। रघुनाथ झालानी ने बनाई आए दिन बहार के। मुख्य कलाकार थे धर्मेंद्र और आशा पारेख।

सन 1969 में रघुनाथ झालानी ने ही बनाई आया सावन झूम के। ये भी जे ओम प्रकाश की एक बहुत जबरदस्त फिल्म थी।

आपको बता दें कि जे ओम प्रकाश अक्सर ही नई प्रतिभाओं को मौका दिया करते थे। उन्होंने रघुनाथ झालानी को मौका दिया बतौर निर्देशक, जिन्होंने आए दिन बहार की बनाई। रघुनाथ झालानी बिमल रॉय के सहायक निर्देशक हुआ करते थे। इसी तरह उन्होंने मुकुल दत्त को मौका दिया और निर्देशन की दुनिया में उनका पहला कदम बना आन मिलो सजना।

सचिन भौमिक जाने माने स्क्रिप्ट राइटर हुआ करते थे। उन्हें निर्देशन की दुनिया में मौका दिया जे ओम प्रकाश ने और फिल्म आई राजा रानी। दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश की फिल्मों के नाम हमेशा अ से हुआ करते थे। ये उनका एक अंधविश्वास था कि अगर वो फिल्मों के नाम अ से रखेंगे तो वो फिल्में ज्यादा चलेंगी। इत्तेफाक ये भी हुआ कि दो ऐसी फिल्में उन्होंने बनाई जिनके नाम अ से नहीं थे और वो ज्यादा नहीं चली, सचिन भौमिक के निर्देशन वाली राजा रानी और फिल्म भगवान दादा। ये दोनों फिल्में जे ओम प्रकाश के प्रोडक्शन से आई थीं और इनका नाम अ से नहीं था। वैसे अ से फिल्मों के नाम शुरू होने की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। इस कहानी का ताल्लुक उसी घटना से है जो हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत में आपको बताई थी। सन 1947 में जब भारत का विभाजन हो रहा था, तब जे ओम प्रकाश के दोस्त मशहूर शायर कतिल शिफाई ने जुदा होते हुए एक पर्ची पर एक शेर लिखकर दिया था जे ओम प्रकाश को। कतिल शिफाई ने ये कहा था कि तुम चाहो तो इस शेर का इस्तेमाल आगे चलकर अपनी फिल्मों के लिए कर लेना। सन 1960 के जमाने में जब जे ओम प्रकाश प्रोड्यूसर बने और अपनी पहली फिल्म बनाने लगे, तो जो कहानी उनके पास थी वो थी एक नौजवान की कहानी जो फौज में जाना चाहता है और उसके परिवार वाले इसके लिए राजी नहीं हैं। इस फिल्म का नाम उन्होंने कतिल शिफाई के इस शेर में से ही लिया, आस का पंछी। आगे चलकर कतिल शिफाई ने जे ओम प्रकाश को चिट्ठी लिखी और कहा, देखा मेरा शेर तुम्हारे कितने काम आया।

जी ओम प्रकाश फिल्मी दुनिया में पूरी तरह से डूब जाना चाहते थे, यानी फिल्म बनाने के हर पहलू पर जुनून की हद तक उनका ध्यान था। चूंकि वे फिल्में प्रोड्यूस कर रहे थे, इसलिए उनकी रचनात्मक प्यास अभी भी पूरी तरह से नहीं बुझ रही थी और इसके लिए उन्होंने निर्देशक बनने की ठानी। सन 1973 में वो निर्देशक बन गए फिल्म आपकी कसम के जरिए। इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे राजेश खन्ना, मुमताज और संजीव कुमार। वैसे आपको बता दें, आपकी कसम सन 1970 में आई के एस सेतु माधवन की फिल्म वजवे मायम पर आधारित थी, लेकिन ये जे ओम प्रकाश की फिल्मी समझ थी कि उन्होंने मूल मलयालम फिल्म के अंत को बदल दिया। मूल मलयालम फिल्म में पति और पत्नी दोनों ही समाप्त हो जाती हैं, लेकिन जे ओम प्रकाश ने फिल्म आपकी कसम का अंत कुछ इस तरह से रखा कि पति पत्नी के कदमों में अपना दम तोड़ता है और इस तरह से वो अपना प्रायश्चित करता है।

जाने माने निर्माता निर्देशक बी आर चोपड़ा ने आपकी कसम को देखकर ये कहा था कि ये फिल्म किसी नए नवेले निर्देशक का काम नहीं लगती, बल्कि एक बहुत पके हुए और समझदार निर्देशक का काम लगती है। जे ओम प्रकाश ने इसके बाद बनाई आंखों आंखों में।

फिल्म युग हमेशा अपनी सामाजिक फिल्मों के लिए जाना जाने वाला फिल्म बैनर रहा। उन्होंने ऐसी फिल्में बनाई जो परिवार के साथ देखी जा सकें या जिनमें कोई सामाजिक पहलू हो। जे ओम प्रकाश ने इस तरह से मनोरंजक और खुशनुमा फिल्में बनाने वाले एक निर्माता निर्देशक के तौर पर अपना नाम स्थापित कर लिया था। सन 1975 में उन्होंने निर्देशन किया फिल्म आक्रमण का। सन 1975 जे ओम प्रकाश के करियर का एक बहुत महत्वपूर्ण साल बन गया जब उन्होंने कमलेश्वर की कहानी पर गुलजार के निर्देशन वाली फिल्म प्रोड्यूस की

निर्देशन किया, यानी ऐसी फिल्में जिन्हें उन्होंने प्रोड्यूस नहीं किया था। ऐसी ही एक फिल्म थी सन 1977 में आई आशिक हूं बहारों का। सन 1981 में आई फिल्म आसपास के निर्देशक जे ओम प्रकाश ही थे। इस फिल्म की एक खासियत आपको बता दें, मशहूर गायक मोहम्मद रफी 31 जुलाई 1980 को इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर चले गए थे। उनका जो आखिरी गाना रिकॉर्ड किया गया था वो फिल्म आसपास के लिए ही किया गया था। सन 1980 में जे ओम प्रकाश ने बनाई अपनी जबरदस्त कामयाब फिल्म आशा।

इस फिल्म के मुख्य कलाकार थे सुचित्रा सेन और संजीव कुमार। सन 1977 में जे ओम प्रकाश ने फिल्म अपनापन का निर्माण और निर्देशन किया। दिलचस्प बात यह है कि जे ओम प्रकाश ने बाहर की कई फिल्मों का

सन 1982 में अपना बना लो, सन 1983 में आई अर्पण, 1985 में आपके साथ।

जी ओम प्रकाश ने इस बीच में कई फिल्में बनाई जिनमें से कुछ बहुत कम चली और कुछ नहीं चली। सन 1993 में उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म का निर्देशन किया था जिसका नाम था आदमी खिलौना है। जी ओम प्रकाश अपने फिल्मी करियर में इम्पा के प्रेसिडेंट रहे, इसके अलावा फिल्म प्रोड्यूसर्स गिल्ड के प्रेसिडेंट भी रहे और फिल्म फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए भी उन्होंने जमकर काम किया। वो फिल्मी दुनिया से रिटायर हो चुके कलाकारों के कल्याण में लगे रहे थे।

0: आप सुन रहे थे निर्माता निर्देशक जी ओम प्रकाश पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। शोध आलेख और स्वर यूनुस खान, संपादन आकांक्षा सिंह, प्रस्तुति मनीषा जैन।
1: आज के फनकार।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: अक्सर मैंने अपने आप को घुटा घुटा ही पाया है, और या तो बिल्कुल बागी।
0: नामचीन अभिनेत्री मीना कुमारी साहिब बीवी और गुलाम की छोटी बहू के बारे में।
1: साहब बीवी और गुलाम फिल्म की छोटी बहू मेरी हमजाद थी। मैंने इसे बहुत बहुत प्यार किया है। जब पहली बार मुझे मालूम हुआ कि पिक्चर फेल हो गई, तो मुझे महसूस हुआ मेरी कोई बहुत अजीज बहुत प्यारी सहेली सीढ़ियों से गिरकर जख्मी हो गई। और जब मुझे इसी फिल्म पर अवार्ड मिला, तो मेरी समझ में नहीं आया कि मैं इसे कहाँ संभालूं, किसे दिखाऊं।
2: कि मैं तन मन की सुध बुध गवा बैठी पिया।
0: ऐसी अनमोल यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन साथी।

प्रस्तुत है छाया गीत। छाया गीत सुनने वाले सभी श्रोताओं को पूजा नारायणिया का नमस्कार। बरसात से प्रेम का अटूट नाता है। कहते हैं प्रेम कभी शब्दों का मोहताज नहीं होता। प्रेम तो एक एहसास है जो कभी किसी मुस्कान में उतर आता है तो कभी किसी खामोशी में, कभी किसी खत की स्याही में और कभी बरसती हुई बारिश की हर बूंद में।

प्रेम जब होता है तो मौसम बदलने लगते हैं, धूप नरम लगने लगती है, चांद कुछ ज्यादा ही अपना सा लगने लगता है और हवा जैसे किसी का नाम कानों में घोलकर गुजरने लगती है और बरसात की हर एक बूंद हम पर ऐसे बरसती है जैसे किसी का प्रेम बरस रहा हो।

बरसात में आसमान भी खुलकर प्यार बरसाता है और धरती भी उसे अपनी खुली बाहों में तड़पकर समेट लेती है। बरसात की हर एक बूंद जैसे किसी अधूरे ख्वाब की कहानी कहती है।

अंतराल के बाद छाया गीत में आपका फिर से स्वागत है। बरसात पुरानी यादें ताजा कर देती है, तो कभी खिड़की या छत पर गिरती बूंदें किसी की दस्तक देने लगती है, और भीगी हुई मिट्टी की खुशबू किसी पुराने मिलन की याद बन जाती है।

रात की तन्हाइयों में जब बारिश की धीमी फुहारें खिड़की से टकराती हैं, तब दिल भी किसी का नाम लेकर मुस्कुरा देता है। चांद बादलों में छिपा होता है, तब भी उसकी रोशनी दिल को रोशन कर रही होती है। ठीक वैसे ही जैसे सच्चा प्रेम दूर होकर भी दिल को वैसे ही धड़काता है जैसे महबूब सामने ही बैठा हो।

प्रेम में मिलना जितना सुंदर होता है, विरह उतना ही गहरा दर्द वाला। दूरियां प्रेम को कम नहीं करती, बल्कि और बढ़ा देती हैं। बिछड़कर भी प्रेमी एक दूसरे के लिए जब दुआ बन जाएं, तो ऐसा प्रेम अमर हो जाता है। कुछ रिश्ते साथ होकर भी अधूरे रह जाते हैं और कुछ दूर रहकर भी पूरी जिंदगी का सहारा बन जाते हैं।

0: विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम अभी हम अनुप्रसारित कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 11 बजने को है, आइए जुड़ते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से और सुनते हैं हिंदी और अंग्रेजी में समाचार।
1: दिल्ली से रिले करते हैं।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मोहम्मद जुबैर। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
3: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है।
4: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
2: श्री जायसवाल ने कहा कि भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पर पिछले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक